अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई, जिसने तुम्हें पाकीजा चीजों का रिस्क दिया। वही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला है। वो कायनात का रब, वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी को तुम पुकारो, अपने दीन को उसी के लिए खालिस करके। सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से कह दो कि मुझे तो उन हस्तियों की इबादत से मना कर दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से बय्यनात आ चुकी हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बुल आलमीन के आगे सरे तस्लीम खम कर दूं। वही तो है जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाओ, फिर और बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्रर वक्त तक पहुंच जाओ और इसलिए कि तुम हकीकत को समझो। वही है जिंदगी देने वाला और वही मौत देने वाला है। वो जिस बात का भी फैसला करता है बस एक हुक्म देता है कि वो हो जाए और वो हो जाती है। तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयात में झगड़े करते हैं, कहां से वो फिर आए जा रहे हैं? ये लोग जो इस किताब को और उन सारी किताबों को झुटलाते हैं जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजी थी, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा जब तौक इनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़कर वो खोलते हुए पानी की तरफ खींचे जाएंगे और फिर दोजख की आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा कि अब कहां हैं अल्लाह के सिवा वो दूसरे खुदा जिनको तुम शरीक करते थे? वो जवाब देंगे, खोए गए वो हमसे, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को ना पुकारते थे। इस तरह अल्लाह काफिरों का गुमराह होना मुतहक्किक कर देगा। उसे कहा जाएगा, ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ है कि तुम जमीन में गैर हक पर मगन थे और फिर उस पर इतराते थे। अब जाओ।

الذين ونحن في صلاح وثبات واستقامة وعافية.

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, ब्रेकफास्ट दिन का सबसे ताकतवर आगाज है, हम कहते तो हैं, मगर आज हम जो बात करेंगे वो ये है कि नाश्ता छोड़ना और क्या उससे हम नुकसान उठाते हैं। सुबह का वक्त है और सबसे कीमती वक्त है, लेकिन अफसोस कि हम में से बहुत से अफराद जो हैं नाश्ता नहीं करते। तो क्या आप भी उनमें शामिल हैं? ज़रा गौर कीजिए और बताइए। तो आज हम बात करेंगे कि नाश्ता छोड़ना यानी ब्रेकफास्ट ना करना कैसे दिन भर की कारकर्दगी को कम कर देता है। ब्रेकफास्ट जब हम करते हैं सही तरह से तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो तेज़ हो जाता है, हमारे ब्रेन को जो एनर्जी है वो मिलती है, जो हमारा वजन है वो बैलेंस में रहता है और दिल के लिए तो बहुत बेहतरीन है ही। ब्रिटिश न्यूट्रिशन जर्नल के मुताबिक जो अफराद रोज नाश्ता करते हैं उनकी याददाश्त 25% बेहतर होती है। तो लिसनर्स, नाश्ता ब्रेकफास्ट जिस्म को एनर्जी देता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी इंजन को स्टार्ट करने के लिए पेट्रोल जो है वो चाहिए होता है। और अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो आप ब्रेकफास्ट लाजमी कीजिए, उसमें अंडे हों, ओट्स, दूध या फ्रूट बेहतरीन इनका कॉम्बिनेशन है। बाज़ोकात ऐसा होता है कि हम बहुत जल्दी में हैं मगर फिर भी नाश्ता आपने ज़रूर करना है। एक आप बनाना ले सकते हैं या सेब, वो ही आप ले लीजिए। बच्चों के लिए आप ब्रेकफास्ट को कलरफुल बनाइए ताकि उन्हें वो अट्रैक्ट करे और वो दिल से जो ब्रेकफास्ट है वो करें। चाय खाली पेट ना पीजिए। अब यह है कि अपना पसंदीदा नाश्ता भी आप बता सकते हैं। बहरहाल ब्रेकफास्ट सेहत की पहली खुराक है, जो दिन का आगाज सही करता है वो जिंदगी भी मतवाजन बैलेंस में गुजारता है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: Anytime, anywhere.
0: Yes, anytime, anywhere.
3: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.

0: प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी।
1: साथियों, एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सारा था। सारा बहुत जहीन और मेहनती बच्ची थी, लेकिन सबसे अहम बात ये थी कि वो बेपनाह हौसला और हिम्मत रखती थी। वो हमेशा अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश करती रहती थी और कभी भी हिम्मत नहीं हारती थी। सारा के गांव में एक दरिया था जिसमें बहुत ज्यादा पानी आता था। गांव के बच्चे हमेशा इस दरिया के किनारे खेलते थे, मगर सारा का दिल हमेशा खौफ

सता रहता था। वो कभी भी दरिया के करीब नहीं आती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि अगर वो पानी में गिर गई तो उसे तैरना नहीं आता। इसके दिल में हमेशा ये खौफ रहता था कि अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। इसके बावजूद सारा के दिल में ये भी था कि वो एक दिन अपनी इस कमजोरी को शिकस्त देगी और अपनी हिम्मत को जीतेगी। एक दिन गांव में बहुत बड़ी आफत आई। मौसम में अचानक तब्दीली हुई और जोरदार बारिशें होने लगी। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, क्योंकि दरिया के पानी ने अपने किनारे से बाहर आना शुरू कर दिया था। बारिश इतनी ज्यादा थी कि गांव के कई मकानात और खेत पानी में डूब गए। सारा के वालिदैन भी परेशान थे, क्योंकि उनके खेत और घर भी खतरे में थे। सारा अपने वालिदैन को तसल्ली देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिल में गहरी तश्वीश थी। इसकी वालदा ने कहा, सारा, हम सबको मिलकर काम करना होगा बेटा, ताकि हम अपने गांव को बचा सकें। अम्मी की बात सुन के सारा को अचानक से याद आया कि एक दफा उसके वालिद ने कहा था, बेटा, हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। मुश्किल वक्त में जो लोग हिम्मत करते हैं वो सबसे ज्यादा कामयाब होते हैं। बस सारा ने दिल में अजम कर लिया कि वो इस मुश्किल वक्त में अपने गांव की मदद करेगी और अपने खौफ पर काबू पाएगी। साथियों, दरिया के पानी की सतह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और गांव के लोगों को नदी के पार जाने की जरूरत थी। गांव के बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि दरिया के दूसरे किनारे तक रसाई के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए, ताकि गांव के लोग उस तरफ से खुराक और पानी का इंतजाम कर सकें। हमें दरिया के पार जाना होगा, एक बुजुर्ग ने कहा। अगर हमने उस तरफ से चीजें ना मंगवाई तो हमें मुश्किलात का सामना होगा। सब लोग सोच रहे थे कि ये काम कैसे किया जाएगा, क्योंकि दरिया का पानी बहुत तेज था और इससे गुजरना नहायत खतरनाक था। सारा की नजर उसकी बड़ी बहन मरियम पर पड़ी, जो हमेशा बहुत बहादुर और मेहनती थी। मरियम ने कहा, हमें अपने खौफ पर काबू पाना होगा और दरिया पार करना होगा। सारा ने कहा, मरियम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं भी दरिया पार करने के लिए तैयार हूँ। मरियम ने मुस्कुराकर कहा, सारा, तुम्हारे दिल में हिम्मत है और यही बात हमें कामयाब बनाएगी। दरिया के किनारे पर पहुँचने पर सारा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। पानी का शोर और उसकी गहराई उसे खौफजदा कर रही थी। मरियम ने सारा की तरफ देखा और कहा, सारा, हमें ये जानना होगा कि खौफ हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें हिम्मत और ईमान के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सारा ने मरियम की बात सुनी और खुद को हौसला देने की कोशिश की। उसने कहा, हाँ हाँ, मुझे अपनी हिम्मत को आजमाना होगा। दरिया में कश्ती मौजूद थी, लेकिन कश्ती को चलाने के लिए बहुत ज्यादा हौसले और ताकत की जरूरत थी। मरियम ने कहा, हमें एक साथ मिलकर कश्ती चलानी होगी। सारा, तो मेरे साथ हो ना? सारा ने घबराहट के बावजूद कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों बहनों ने कश्ती में बैठकर दरिया पार करने का इरादा किया। सारा का दिल अभी भी बहुत खौफजदा था, लेकिन उसने अपने खौफ को काबू करने का फैसला किया। दोनों बहनें कश्ती चलाते हुए दरिया के वस्त में पहुंची। दरिया का पानी बहुत तेज और गहरा था, लेकिन सारा ने हिम्मत ना हारी। वो अपने अंदर की कुवत को महसूस कर रही थी और उसने अपने खौफ की जगह अजम और हौसले को बढ़ाने की कोशिश की। हम करीब पहुंच रहे हैं सारा, मरियम ने कहा। हाँ हाँ मरियम, मैं समझती हूँ, हम ये कर सकते हैं मरियम, सारा ने कहा। दोनों बहनों ने आखिरकार दरिया पार किया और दूसरे किनारे पर पहुंच गई। गांव के लोग जो इसकी दूसरी तरफ खड़े थे वो खुश हो गए और उन्होंने दोनों बहनों का शुक्र अदा किया। सारा को समझ आ गया कि इसका खौफ सिर्फ उसके दिमाग में था। जब उसने अपने खौफ का सामना किया तो उसने हकीकत में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। सारा और मरियम ने गांव के लोगों को खुराक और जरूरी सामान पहुंचाया।

गांव के लोग इनका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत ने हमारे गांव को बचा लिया। तुम दोनों ने न सिर्फ दरिया को पार किया बल्कि हमें दिखा दिया कि अगर दिल में हिम्मत हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। सारा ने मुस्कुराकर कहा, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जब हम एक साथ हों तो कोई भी मुश्किल हमें शिकस्त नहीं दे सकती। तो साथियों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हिम्मत और शुजात इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब हमें जिंदगी में खौफ या मुश्किलात का सामना होता है तो हमें अपनी हिम्मत को आजमाना चाहिए। सच ये है कि अगर हम अपने खौफ का मुकाबला करें तो हम कामयाब हो सकते हैं। सारा ने अपनी हिम्मत से न सिर्फ अपने खौफ को शिकस्त दी बल्कि पूरे गांव की मदद भी की। ये कहानी हमें ये बताती है कि कामयाबी सिर्फ उन लोगों का हिस्सा बनती है जो कभी हिम्मत नहीं हारते। अगर आपका दिल मजबूत और पक्का हो तो कोई भी मुश्किल आपके रास्ते में नहीं आ सकती। साथियों, हिम्मत का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन जब हम अपने खौफ का सामना करते हैं और हिम्मत से काम लेते हैं तो हम हर मुश्किल पर काबू पा सकते हैं।

0: हम जिस चीज़ पर इतना गुरूर करते हैं वो असल में चंद साल के लिए हमारे हाथ में दी गई एक अमानत है। ज़मीन हमसे पहले भी थी, हमारे बाद भी रहेगी। माल हमसे पहले दूसरों के पास था, हमारे बाद किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए मोमिन की सोच ये होनी चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है मैं उसका एब्सोल्यूट ऑनर नहीं, मैं उसका ट्रस्टी हूँ। और एक दिन मुझे पूछा जाएगा कि यह अमानत कहाँ से ली, कैसे इस्तेमाल की और किस हाल में वापस छोड़ कर आया। जब ये तसव्वुर दिल में बैठ जाए तो रिज़्क़ का खौफ भी कम होता है, माल का गुरूर भी टूटता है और ख़र्च करना भी आसान हो जाता है। क्योंकि फिर इंसान ये तो जान लेता है कि भाई मालिक वो है, मैं सिर्फ़ अमीन हूँ, राज़िक वो है, मैं सिर्फ सबब इख्तियार करने वाला हूँ और आखिरकार वापसी भी उसी के पास है। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम सामीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हल्के में। सामीन किराम, हमारी एक बड़ी गलती ये है कि हम आरजी चीज़ों को दायमी समझ बैठते हैं, माल हो, मकान हो, जायदाद हो या मनसब, हम उनके साथ ऐसे वाबस्ता हो जाते हैं जैसे ये कभी हमसे जुदा नहीं होंगे। ज़रा दुनिया के सबसे बड़े मनसब को ले लीजिए, किसी मुल्क के सर बज़ाहिर इक्तदार की आखिरी बुलंदी है ना, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी सिर्फ दो ही इम्कान हैं, या एक दिन मनसब आपको छोड़ देगा या आप दुनिया छोड़ कर मनसब से जुदा हो जाएंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं। हमने अपनी ही ज़िंदगी में कितने हुक्मरानों को आते जाते देखा, इक्तदार रह गया, साहिब इक्तदार चला गया। इसी हकीकत को समझ लेने के बाद आइए अल्लाह ताला के एक और प्यारे नाम की तरफ, अल करीम। आखिर अल्लाह से बढ़कर करीम कौन हो सकता है? ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए, क्या हमने ये तय किया था कि किस घर में पैदा होंगे? क्या हमने पैदाइश से पहले इंतखाब किया था कि हमें इस्लाम की नेमत नसीब हो? नहीं, ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें ईमान और इस्लाम की नेमत अता की, अपने अजीम खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रखा और कुरान जैसी अजीम किताब अता फरमाई। ये सब उसके करम है और अल्लाह की करम नवाजी सिर्फ नेमत देने में नहीं, हमारे ख़ताओं के बावजूद हमें मोहलत देने में भी है। इंसान गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, फिर कभी भटका हुआ वापस अपने रब के दरवाजे पर भी आ जाता है, सर झुकाता है और कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अब रब करीम तौबा कबूल फरमा, चूँकि वो बंदे की लग्जिश पर उसको अपने दर से धतकार नहीं देता, फिर बंदे को भी अपने रब की उस सिफत के असरात अपनी ज़िंदगी में पैदा करने चाहिए। लोगों के साथ कुशादा दिल हो, मामलात में शरीफ हो, खरीदो फरोख्त में अच्छा रवैया अख्तियार करे, माफ़ करना सीखे और दरगुजर से काम ले। कुरान का कितना खूबसूरत सवाल है, وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, माफ़ कर दो, दरगुजर करो। وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ, क्या तुम ये पसंद नहीं करते, أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, कि अल्लाह तुम्हें माफ़ कर दे। वो या तुम अल्लाह से मगफ़रत चाहते हो तो ख़ुद भी माफ़ी बांटना सीखो, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी फरमाएं तो तुम भी दूसरों के लिए आसानी पैदा करो। अब ये बात तो वाज़ह है कि अल्लाह सिर्फ करीम नहीं, वो हकीम और अलीम भी है। एक इंसान सखी हो सकता है लेकिन हिकमत से खाली, वो औलाद को इतना माल दे कि उसी माल से औलाद बिगड़ जाए, नीयत सखावत की थी, नतीजा नुकसान निकला। लेकिन अल्लाह ताला की अता ऐसी नहीं, वो करीम भी है, हकीम भी और अलीम भी, इसलिए वो जानता है कि किस बंदे को कितना देना है और कौन सी चीज़ किस वक्त उसके हक में बेहतर है। यहाँ हमारे रिज़्क़ के बारे में एक बड़ी गलत फहमी दूर होती है। बाज़ लोग पूरी ज़िंदगी ये समझते रहते हैं कि मुझे लाजमन अमीर होना है, मैंने मेहनत की, कारोबार किया, कोशिश की, फिर भी बहुत ज़्यादा मालदार क्यों नहीं हुआ। सुनिए कि हम ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के लिए दौलत ही सबसे बड़ी अता हो, मुमकिन है अल्लाह ने आपके लिए माल के ख़जाने ना खोले हों मगर इल्म के ख़जाने खोल दिए हों, मुमकिन है

सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल

0: Chat.
1: राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01।
2: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: राइट गाइस, सलाम आदाब, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, उम्मीद करें आप लोग खैरियत से होंगे। और आज है वीकेंड, थर्सडे का दिन, August 27। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर जीने का इरादा है और आज फिर एक नया दिन है, एक नई उम्मीद है। चलो एक नई कोशिश करते हैं। देखिए, ये एहसास जो है ना, ये दिल को बड़ा मजबूती देता है। ये एहसास जो दिल को ये यकीन दिलाता है कि हर सुबह अपने साथ एक नया मौका, नया रास्ता और एक नई कामयाबी लेकर आई है। कल की नाकामयाबियां आज की हिम्मत को कमजोर नहीं कर सकती और जब तक हौसला जिंदा है तब तक मंजिल भी मुमकिन है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मुस्कुराइए, अपनी चाय है या कॉफ़ी है, जो भी है उसे लीजिए हाथ में, बहुत ही आराम से, इत्मीनान से, खुद पर भरोसा करते हुए एक कदम आगे बढ़ाइए अपने ख्वाबों की तरफ। हो सकता है कि आज की एक नई छोटी सी कोशिश कल की एक बड़ी कामयाबी बन जाए, है ना, यू नेवर नो। इसीलिए हर दिन हमें और आपको बताता है कि आज एक नई शुरुआत करने का मौका है और हर नई शुरुआत में एक नई कामयाबी छुपी है। तो बस आज भी इसी पॉजिटिव नोट के साथ अपने शो का आगाज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वैसे आप अपनी खैरियत, अपनी वेलबींग मुझे भेज सकते हैं लिखकर 666-222-107 पर। और हाँ, हम और आप जो है वो कनेक्टेड रहेंगे ओवर अ कॉल, नंबर है 443-443-77। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बात हुई है, इतनी प्यारी खूबसूरत सी आज सुबह है थर्सडे। एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही माहौल होता है। फदोस जिनकी छुट्टी होती है, जिनका नहीं है, दिन का मतलब बाद में जिन्हें छुट्टी मिलेगी तो उनके लिए तो वो डे होता है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं हर दिन जो है वो हमें और आपको कुछ ना कुछ मुस्कुराने का मौका तो दे ही रहा है। तो बस इधर उधर ज़रा सा देखना है और देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें और आपको सुकून दे रही हैं, हंसने का मौका दे रही हैं, मुस्कुराने का मौका दे रही हैं। इन छोटी छोटी चीजों को जो है वो इग्नोर ना करें। और अक्सर होता ये है कि हम जो है ना बड़ी की तलाश में छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जबकि देखा जाए तो असली मजा इन्हीं में है। तो बस आज भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आज का टॉपिक भी बड़ा मजेदार सा टॉपिक है। आज थोड़ा सा मैंने डिफरेंट रखा है, नॉट दैट मोटिवेशनल साइड एंड ऑल, यू नो, आज का कुछ और ही साइड पे है, टुवर्ड्स प्रैक्टिकल कह सकते हैं, या ये कहिए कि कुछ ना कुछ एक हमें और आपको एक लर्निंग, हमारा आपका एक लर्निंग सेशन होगा। वैसे तो हर रोज ही लर्निंग सेशन है, लेकिन आज का थोड़ा सा इन ऑल टुगेदर डिफरेंट वे, तो मजा आएगा।

0: कुछ मेरी बात होगी। जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीज़ा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुज़ूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर।

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद, अ वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ. और चलिए अब बात कर लेते हैं मौसम की. तो आज का मौसम कैसा रहने वाला है वो मैं आपको बताऊं. समर ही है तो हॉट रहेगा, सनी रहेगा थ्रू आउट. और अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज 42 डिग्री सेल्सियस, बट यू आर गोना फील लाइक 50 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग पीक आफ्टरनून. तो बस आप थोड़ा सा ये तो ध्यान में रखिए कि बस लास्ट है, लेकिन हाँ बस हम इसको बाय बाय कहने के एकदम लास्ट वाले स्टेज पे हैं. अब इस सितंबर थोड़ा सा मॉडरेट हो जाता है एंड अक्टूबर से तो मौसम बहुत ही अच्छा हो जाता है. इसके अलावा अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो मिनिमम टेम्परेचर रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस. और अगर हवा की बात की जाए तो काफ़ी लाइट और मॉडरेट है फ्रॉम ईस्ट टू साउथ ईस्ट, और एक्सपेक्ट की जा रही है 10-20 किलोमीटर पर आवर. वहीं पर ह्यूमिडिटी लेवल्स की बात की जाए तो इट्स अगेन रिलेटिवली हाई, और इवनिंग्स और मॉर्निंग्स में भी एक रेंज है 50-80. तो हल्का सा आफ्टरनून्स में आपको थोड़ी ज़्यादा ही गर्मी महसूस होती है बिकॉज ऑफ द हाई ह्यूमिडिटी. वहीं पर यूवी इंडेक्स की बात करें तो इट्स अगेन वेरी हाई एंड इट्स एट 9. सो जितने भी रेजिडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, प्लीज़ यू ट्राई टू लिमिट और प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर. क्योंकि और फिर भी अगर आपको जाना ही जाना है, डायरेक्टली सनलाइट से आपको बचना है, लेकिन अगर आपको जाना ही पड़ रहा है, आपका काम ही ऐसा है, तो आप जितने भी प्रिकॉशंस हो सकते हैं वो सारे के सारे लीजिए. बाकी अब मैं देख रही थी कि वेदर कैसा रहेगा कुछ वीक में, किस तरह की हलचल रहेगी. तो ऑल टुगेदर मौसम जो है वो फ्राइडेज़ और सैटरडेज़ भी ऐसे गर्म ही रहेगा, और टेम्परेचर अगेन 43 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और मिनिमम 32. तो मतलब कोई दूर दूर तक, कहीं से कहीं तक कोई चांस नहीं है बारिश के, कोई अच्छे मौसम के फ़िलहाल, बट हाँ इंशाल्लाह आने वाले टाइम में तो ऑफकोर्स. तो चलिए ये तो मौसम की बात हुई, और अब आ जाते हैं आज के दिन के हवाले से कुछ बात करते हैं. और आज 27th of August में दुनिया भर में कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेंसेस ही जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं. द फर्स्ट वन इज नेशनल जस्ट बिकॉज डे. ये अब देखिए क्या दिन है. ये दिन ऐसा दिन है जहां लोग बिना किसी खास वजह के कोई अच्छा काम करते हैं. अब देखो, अच्छा काम करने के लिए कोई खास वजह तो चाहिए नहीं होती है, सिर्फ आपकी अच्छी नीयत चाहिए. बट यहाँ पे ये दिन इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, मुझे पढ़ के भी हंसी आई, लेकिन चलिए जैसा लिखा है वैसा मुझे आपको बतानी है. तो बस यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि ये दिन कहीं ना कहीं खुशी और पॉजिटिविटी को फैलाने का काम करता है, विच इज़ नाइस. हमें भी तो अच्छी चीज़ें देखनी चाहिए ना. इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग डे है, और ये जो है वो है वर्ल्ड रॉक पेपर सिजर्स डे. ये काफ़ी मशहूर गेम है जो बच्चे आपके खेलते होंगे, आई एम श्योर, रॉक पेपर सिजर्स. तो इस दिन को आज सेलिब्रेट किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये दोस्ती और फन का एक सिंबल है, उस तरह से इसे सेलिब्रेट करते हैं. अच्छा भाई, आज है इंटरनेशनल लॉटरी डे भी. तो पता नहीं किसी की कभी निकलती है नहीं निकलती, मेरी तो कभी नहीं निकली, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिन जो है वो लॉटरी की हिस्ट्री और एक रिस्पॉन्सिबल पार्टिसिपेशन के हवाले से भी मनाया जाता है. व्हेन आई से रिस्पॉन्सिबल, तो ये वर्ड आपको जहन में रखना है कि देखिए. उसके अलावा आज है नेशनल बनाना लवर्स डे. तो बनाना यानी केला किस किस को पसंद है, वैसे तो देखा जाए बहुत ही हेल्दी और एनर्जी रिच फ्रूट है. तो बस इसी फ्रूट की अहमियत को आज के दिन और ज्यादा मजीद हाईलाइट किया जाता है, और इस तरह से इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है. इसके अलावा आज है नेशनल पेट्रोलियम डे. तो भाई, पेट्रोलियम इंडस्ट्री और एनर्जी रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस को याद दिलाता हुआ ये आज का दिन. तो ये थे कुछ आज के ऑब्जर्वेंसेस. बाकी अब आज के आपके जो मैसेजेस हैं, हम उधर आ जाते हैं. तो यहाँ पे सलाम कहा है मुझे, सबसे पहले मैसेज दिख रहा है हुसैन जी का, वालेकुम अस्सलाम, मैं उम्मीद कर रही हूँ आप खैरियत से होंगे. यूसुफ शमीम जी का मैसेज है, एंड मे योर शो बी फिल्ड विद ग्रेट वाइब्स एंड एंडलेस स्माइल्स ऑलवेज, थैंक यू सो मच. वर्ल्ड लेक डे, कुछ नया तो मुझे यहाँ से पता चलता है, आज वर्ल्ड लेक डे भी है दोस्तों. चलिए, यूसुफ शमीम जी ने हमने जो मिस किया वो हमें बता दिया, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. इसके साथ हमें आपसे सलाम सऊदी अरेबिया से है, इनका नाम हेलो लिख रखा है. हाय जी नाजिया मैम, आप अपना नाम भी लिख देते तो बहुत ही अच्छा था. आपने नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया तो अब हमें पता नहीं चलेगा. थोड़ा सा अपना नाम भी ज़रूर लिखा कीजिए, थोड़ा नहीं पूरा लिखा कीजिए. कामरान जी हमारे साथ जुड़ते हुए गुड मॉर्निंग कहते हैं. अली गुड मॉर्निंग कहते हैं, अलखोर से हमें सुन रहे हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको. यहाँ पर हमारे साथ इनका नाम भी, सबके नाम मुझे चेक करने पड़ता है. इनका नाम यू जेड लिख रखा है, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है. सलाम कहते हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैडम जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी. उम्मीद करते हैं कि आप एकदम खैरियत से होंगे. एंड थैंक यू मैम बताने के लिए, बहुत शुक्रिया. यहाँ आसिफ जी का मैसेज है और मोहम्मद हमारे साथ जुड़ गए हैं. थैंक यू कहते हैं. थैंक यू क्यों कह रहे हैं आप, मुझे किस चीज़ के लिए थैंक यू कह रहे हैं बताइएगा ज़रा प्लीज़. अच्छा यहाँ पे सलाम कहते हैं मोहम्मद इब्राहिम जी. वालेकुम अस्सलाम, उम्मीद करते हैं हम आपकी कि सुबह जो है वो बहुत ही अच्छे नोट पे स्टार्ट हुई है और इंशाल्लाह आपका दिन भी बहुत अच्छे से जाए. तो चलिए ये तो आज के कुछ वेदर और ऑब्जर्वेंसेस जो मैंने आपके साथ शेयर किए. अब एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा ब्रेक लूँगी और फिर वापस आऊँगी तो कुछ और लोकल अपडेट्स भी आपके साथ शेयर की जाएगी. इन द मीनवाइल अगर आपको कुछ शेयर करना है मेरे साथ तो ज़रूर जुड़िए 6662107 पर, क्योंकि अभी तो हम आपके सारे के सारे मैसेजेस ले रहे हैं. यहाँ पर शहजाद अहमद जी हैं, सलाम कहते हैं. मुझे जब भी स्ट्रेस होता है मैं खाना खा लेता हूँ. अच्छा आपको जब स्ट्रेस होता है आप खाना खा लेते हैं, चलिए ये भी अच्छा ही बात है कि खाना खाने से आपका स्ट्रेस अगर कम हो जाता है या दूर हो जाता है तो खाइए, लेकिन फिर भी थोड़ा खा के रुकिएगा, थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा. अच्छा इसके अलावा यहाँ पर एक और मैसेज है, इनका नाम है मोहम्मद मोहम्मद. सो सलाम कहते हैं और इन्होंने भी कुछ पूछा है प्राइस मनी को लेकर. चलिए उस पर तो हम अभी तक आपको कोई बहुत ही अच्छा कॉन्क्रीट ऐसा सॉलिड सा जवाब नहीं दे पाए हैं. हर रोज़ ही हमारे लिसनर्स पूछ रहे होते हैं. बस मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि इंशाल्लाह मिलेगा आपको, बस आप दुआ करते रहिए कि जल्द से जल्द आपको मिल जाए. तो चलिए फिलहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे तो कुछ और बातें आपके साथ शेयर करेंगे. स्टे हुक्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.
1: हर घर की अपनी कहानी होती है, कभी पेरेंटिंग का चैलेंज, कभी बच्चों की तरबियत की फिक्र, कभी फैमिली रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश. तो आइए मिलकर बात करते हैं उन मसाइल पर जो हर घर का हिस्सा हैं. एक्सपर्ट काउंसलिंग, प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स और रियल लाइफ डिस्कशन के साथ हम ढूंढेंगे बेहतर और मजबूत फैमिली रिलेशनशिप का रास्ता. सुनिए प्रोग्राम फैमिली मैटर्स विद आरजे नाजिया हर वेडनेसडे शाम 5 बजे से ओनली ऑन FM 107. फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स. आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है, वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं, तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और अवाम, जिसमें हर हफ्ते वजारत दाखला के मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक नुमाइंदे अपने शोबे की जिम्मेदारियों, खिदमात, कवानीन और अवाम से मुतालिक अहम उमूर के बारे में तफसीली मालूमात फराहम करते हैं. हर पीर रात 8 बजे से तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ पुलिस और अवाम. पुलिस और अवाम, जानिए, समझिए और बाखबर रहिए. ओनली ऑन FM 107. ओनली ऑन FM 107.
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं. ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं. कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं.
3: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर.
4: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے.

0: इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी ये हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें। हर हफ्ते इतवार से जुमेरात सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। मैं हूं नासिया आपके साथ एंड 6:30 ऑन द क्लॉक और आपको वापस वेलकम कहेंगे इसी शो में। और चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ आज की लोकल अपडेट्स पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि कतर साइंटिफिक क्लब के यंग इनोवेटर्स प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले यंग इन्वेंटर्स अब दूसरे स्टेज यानी इंजीनियरिंग डिज़ाइन फेज में दाखिल हो चुके हैं। और इस फेज में पार्टिसिपेंट्स अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल और टेक्निकल डिजाइंस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जी हाँ, प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसमें 15 से 30 साल के टैलेंटेड यूथ शामिल हैं। जी हाँ, पहले फेज में उन्होंने डिजाइन थिंकिंग और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम किया और अब इस फेज में इंजीनियरिंग डिजाइन पर काम किए जा रहे हैं। अब पार्टिसिपेंट्स टेक्निकल ड्रॉइंग्स बना रहे हैं, सूटेबल मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हैं और प्रोटोटाइप्स के लिए डिटेल स्पेसिफिकेशंस तैयार कर रहे हैं। आपको बताएं कि मेंटर्स भी उनकी रहनुमाई कर रहे हैं ताकि उनके आइडियाज रियल मॉडल में तब्दील हो सके। तो ये बहुत ही कमाल की अपडेट। इसके साथ आ जाते हैं एक और अपडेट की तरफ और ये है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन के हवाले से। MOEHE ने एकेडमिक ईयर 2026 और 2027 के लिए अपनी प्रायोरिटीज का ऐलान किया है। यहाँ पर मिनिस्ट्री का जो फोकस है वो है स्टूडेंट्स वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, नेशनल आइडेंटिटी और डिजिटल एम्पावरमेंट। जी हाँ, कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में एनुअल एजुकेशनल मीटिंग हुई जिसका थीम था पीपल फर्स्ट, एथेंटिसिटी इज स्ट्रेंथ एंड ऑफ कोर्स इन दिस डिजिटल वर्ल्ड इट्स एम्पावरमेंट। जी हाँ, ऑफिशियल्स ने कहा कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज देने के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के कॉन्फिडेंस, वैल्यूज और आइडेंटिटी को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत जरूरी है। यहाँ पेरेंट्स को भी एनकरेज किया गया कि वे स्टूडेंट्स की मेंटल वेलबींग और एकेडमिक प्रोग्रेस में एक एक्टिव रोल अदा करें। वहीं पर मिनिस्ट्री ने स्टूडेंट सेफ्टी, हेल्थ एनवायरनमेंट और डिजिटल लर्निंग टूल्स की अहमियत को भी हाईलाइट किया। तो ये थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और हायर एजुकेशन का फोकस, जहाँ कहीं ना कहीं स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग एंड ऑफकोर्स नेशनल वैल्यूज को मजबूत करके फ्यूचर रेडी जनरेशन तैयार करना है। सो दिस इज एक्सीलेंट एंड नाइस। एंड इसके साथ अब एक और अपडेट, ये है कतर फोटोग्राफी सेंटर के हवाले से। आपको बताएं कि कतर फोटोग्राफी सेंटर और कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लॉ नंबर 10 ऑफ 2026 के मुताबिक एक अवेयरनेस सेशन ऑर्गेनाइज किया जो कि ड्रोन से रिलेटेड था। और इस सेशन में पार्टिसिपेंट्स को ड्रोन लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई। वहीं पर QCAA के ऑफिशियल्स ने बताया कि नया जो लॉ है वो टेक्नोलॉजी की ग्रोथ और इनोवेशन को सपोर्ट करता है, साथ ही पब्लिक सेफ्टी, प्राइवेसी और एयर स्पेस प्रोटेक्शन को भी इंश्योर करता है। जी, आपको बताएं कि लॉ के मुताबिक जो है इनके रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, परमिट्स, ऑपरेशन के लिए रूल्स तैयार किए गए हैं और वायलेशन की सूरत में पेनल्टीज भी काफी हैवी रखी गई हैं। तो बस अब इन चीजों का ख्याल रखते हुए ही फोटोग्राफी करनी है। इसके अलावा एक और अपडेट, हाँ जी, तो ये अपडेट जो है वो है पीएचसीसी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के हवाले से. जी हाँ, पीएचसीसी यानी प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन 30th अगस्त से लेकर 10th सितंबर तक बैक टू स्कूल कैंपेन लॉन्च कर रही है. और इस साल जो कैंपेन का स्लोगन रखा गया है वो है हेल्दी बॉडीज बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशंस. जी हाँ, ये कैंपेन कतर के तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स और किंडरगार्टन्स में चलाई जाएगी और इसका मकसद है स्टूडेंट्स में हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करना और उन्हें सेहतमंद लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करना. जी हाँ, कैंपेन में स्टूडेंट्स को हेल्दी स्लीप हैबिट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का कम इस्तेमाल, ज़्यादा वाटर कंजम्पशन, हेल्दी न्यूट्रिएंट्स और फिजिकल एक्टिविटीज़ और मेंटल वेलबींग की अहमियत बताई जाएगी. साथ ही सेल्फ डिसिप्लिन और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी प्रमोट किया जाएगा. आपको बताएं कि इस साल एक नई प्रैक्टिकल अप्रोच भी इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए एक मौका है कि वो हाँ जी कि उनके पास एक मौका है कि वो अपना वीकली ट्रैकिंग कार्ड जो है वो असेस करें जिससे वो अपनी हेल्दी हैबिट्स को आसानी से मॉनिटर भी कर सकते हैं. जी, कैंपेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि ये पेरेंट्स के लिए भी होगी, टीचर्स के लिए भी है और स्कूल नर्सेस के लिए भी है ताकि वो भी हेल्दी बिहेवियर्स को सपोर्ट कर सकें. वहीं पर पीएचसीसी की स्कूल हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर लैला अब्दुल्ला के मुताबिक कैंपेन का मकसद ऐसी जनरेशन तैयार करना है जो हेल्थ कॉन्शियस हो और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपना सके. कैंपेन के दौरान लेक्चर्स भी होंगे, वर्कशॉप्स भी होंगे, कुछ अवेयरनेस सेशंस भी होंगे, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी होंगे और कॉम्पिटिशन्स भी होंगे जो हेल्दी होंगे और बच्चों को मोटिवेट करेंगे. चलिए ये अपडेट एंड नाउ कमिंग टू दी लास्ट अपडेट. और ये लास्ट अपडेट है कतर की मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी के हवाले से. आपको बताते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने अल वक्रा और अल वुकैर में 3 नए पब्लिक पार्क्स ओपन कर दिए हैं और ये पार्क्स जो हैं वो लोकल इन्वायरमेंट से

0: क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना और फैम और देखा जाए तो फैमिली फ्रेंडली रिक्रिएशनल डेस्टिनेशंस को भी बढ़ाना और सपोर्ट करना है. तो बस ये थी कुछ आज की हमारी अपडेट्स जो हमने आप तक पहुंचा दी. एंड नाउ वी आर डन फॉर दिस सेशन. इस सेगमेंट से हमारा हो गया डन हो गया. अब वापस जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी देन ऑफ कोर्स हम और आप जो है वो अब आज के मुद्दे पे बात करेंगे. यस, आज का हमारा जो मुद्दा है वो इंटरेस्टिंग है. आई एम श्योर आपको मज़ा आने वाला है और मुझे भी देखना है कि एक्चुअली इसका ताल्लुक मैं अपने से रख के करूँगी और फिर मैं देखना चाहूँगी कि इतने लोग जो हैं वो कितने कमाल की चीज़ें हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. यहाँ पर कुछ और हमारे पास मैसेज है. इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं. गुड मॉर्निंग कहते हैं. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. एंड ये वी वी आई पी इन खतर आपने अपना नाम नहीं लिखा, लिख देते तो कितना अच्छा था, हमें पता चल जाता. आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं सुबह सुबह. आपकी आवाज़ सुन के दिल को नहीं रूह को सुकून मिलता है. थैंक यू सो मच. कोई भी स्ट्रेस हो आपकी आवाज़ सुनकर सारा स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है. आहा, कितनी अच्छी अच्छी बातें. आपका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, वी वी आई पी इन कतर बस यही लिख रखा है आपने. चलिए थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे और प्यारे प्यारे वर्ड्स के लिए. इसके साथ सलाम कहते हैं, सभी लिसनर्स को सलाम कहते हैं और आपको अलखोर से सुन रहे हैं इमरान, मोहसिन और सतायपन जी. सो थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए, बहुत शुक्रिया. एंड गुड मॉर्निंग नाजिया जी एंड लिसनर्स, टुडे वी से गुड बाय टू योर मॉर्निंग शो. हाँ, ये तो आज तो नहीं, अभी दो दिन और हैं मेरे पास कि 1 सितंबर से हम जो हैं फिर वो आफ्टरनून्स में आ जाएंगे. बट या विच हैज़ बीन लाइक अ क्लास रूम ऑफ लर्निंग एंड जॉय इज इट. ओके, यू वर रियली ट्रूली इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ दिस सेशन, इंस्पायरिंग अस, एनरिचिंग आवर मॉर्निंग्स एंड लीविंग अ मार्क एज स्ट्रॉन्ग एज एनी प्रोफेसर. ओह रियली इज दैट. अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर हार्ड वर्क. वील मिस योर एनर्जी एंड येस वील स्टिल होप यू ज्वाइन द जिम नाउ. प्लीज़ कुड यू शेयर गाबाजीज नंबर. मैं भेजती हूँ गाबा जी का नंबर आपको, उनसे भी पूछती हूँ एंड डेफिनेटली मैं भेजती हूँ. आरिफ अंसारी जी हैं और मैं आप कैसी हैं? मैं अच्छा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ सब खैरियत से होंगे. हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ जी, हम सब खैरियत से, उम्मीद कर रहे हैं आप भी एकदम खैरियत से होंगे. थैंक यू. और ये मैसेज मीत का था, मुझे याद हो गया आपका नाम तो मैंने मैसेज तो आपका पढ़ लिया बट आपका नाम यहाँ पर मैंशन नहीं किया, बट आपका नाम मीत है. एंड एक और प्यारा सा मैसेज, मैडम हो सके तो आप आफ्टरनून ना जाए. ऐसे कैसे हो पाएगा, देखिए तो जिसको जाना है उसको तो जाना ही है आफ्टरनून. बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर भी क्यों, डेफिनेटली आपकी और हमारी मुलाकात आफ्टरनून्स में हो रही है. 1:30 ऑनवर्ड्स जो है वो हम और सर्वर आपके साथ होंगे. तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर हमारे साथ जुड़िए और लोगों के साथ, सभी के साथ जुड़े रहिए आप तो थ्रू आउट, लेकिन कोशिश कीजिए कि हमारे साथ भी टाइम निकाल के ज़रूर आप जुड़ें. तो चलिए फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रही हूँ, वापस आऊँगी तो और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपके साथ आज शेयर होंगी. एंड हाँ, आज का जो मेरा सवाल है वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बड़ा मज़ा आने वाला है. कहीं ना कहीं मेरे अपने बैकग्राउंड से उसका ताल्लुक है, इसीलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. एंड आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा. सो बस जुड़े रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए शो समर मॉर्निंग्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी.
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे. सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सन एंड साउंड. सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा के साथ संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी, दिल से देसी.
2: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिसपे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिसपे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती हैं। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे.
1: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ, एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी, देसी.
3: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको.
4: टॉप 10 काउंटडाउन.

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: Absolute Cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
0: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
3: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में,
0: हर मंडे सुबह 10 से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
3: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है, ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं, और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार ना कर सकें, और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए, उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें, ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है, ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें, ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें, ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें, ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
4: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
5: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopahar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
0: हर घर की अपनी कहानी होती है, कभी पेरेंटिंग का चैलेंज, कभी बच्चों की तरबियत की फिक्र, कभी फैमिली रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाने की कोशिश। तो आइए मिलकर बात करते हैं उन मसाइल पर जो हर घर का हिस्सा हैं। एक्सपर्ट काउंसलिंग, प्रैक्टिकल पेरेंटिंग टिप्स और रियल लाइफ डिसीजन के साथ हम ढूंढेंगे बेहतर और मजबूत फैमिली रिलेशनशिप का रास्ता। सुनिए प्रोग्राम फैमिली मैटर्स विद आरजे नाजिया हर वेडनेसडे शाम 5 बजे से ओनली ऑन FM 107। फैमिली मैटर्स, क्योंकि हर फैमिली मैटर्स।
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
6: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ 6:48 ऑन द क्लॉक। एंड यस, अब हम आज का जो टॉपिक है उसकी तरफ आ जाते हैं। आज कोई ऐसी मोटिवेशनल बात नहीं हो रही है, ना ही बहुत ही ज़्यादा फिलोसफिकल वे में हम बात करने वाले हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आपकी हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा, मतलब हमारे कारोबार से जुड़ा, हमारे बिजनेस से जुड़ा। और मैंने कहा था आपसे कि मुझे ये वाला टॉपिक इसलिए भी पसंद है क्योंकि समवेयर ऑन द अदर, क्योंकि मैं खुद भी बिज़नेस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मुझे जो है बिज़नेस बहुत एक्साइट करता है, बड़ा मज़ा आता है और मुझे इसे एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा आज आपके साथ। आज बिल्कुल लास्ट कह लास्ट ही हमारा चल रहा है आज, तो बस मुझे लगा लास्ट में आते आते ये वाला सवाल एक बार तो मुझे आप लोगों से पूछ ही लेना चाहिए। देखिए, बिज़नेस की जो दुनिया है वो ऐसी दुनिया है वहाँ हर रोज़ चीज़ें रैपिडली चेंज होती रहती हैं और ये काफ़ी नेचुरल है। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा हर किसी के लिए चैलेंजिंग बन जाती है वो है कॉम्पिटिशन। पहले तो कॉम्पिटिशन जो था कॉम्पिटिटर्स के साथ एक पैलेंस स्ट्रैटेजी तैयार की जाती थी, लेकिन आज का जो दौर है वो ये है कि कंपटीशन से ज़्यादा कलेबरेशन में लोग इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, जो कि अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ न्यू बिजनेस मॉडल जो इंट्रोड्यूस हो गया है मार्केट में। लेकिन जब भी किसी भी बिजनेस को हम कामयाब करना चाहते हैं तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी होती है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अगर कोई बिजनेस, किसी टाइप का बिजनेस जो है वो कामयाब होने लगता है तो दूसरे लोग भी उसी तरह का बिजनेस लेके मार्केट में एंट्री करने लगते हैं। ऐसे में कई बिजनेस ओनर्स जो हैं वो घबरा भी जाते हैं और समझते हैं कि शायद उनका जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन असल में जो कामयाबी छुपी है वो है कंपटीशन से घबराने में नहीं, बल्कि उसे कन्वर्ट करने में। हर बिजनेसमैन ये समझता है कि मार्केट में उसने एंट्री ली है तो वो सिर्फ अकेला है, जबकि ऐसा है नहीं, कितने सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी होते हैं, तो उसकी शुरुआत भी एज अ कॉम्पिटिटर ही होती है। ये चीज़ हम और आप समझते ही समझते हैं, तो बस मुझे लगा कि आज इसी स्किल को थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करते हैं और एक सिनेरियो आपके साथ शेयर करते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोग किस तरह का उस पर रिस्पॉन्स देंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं अपनी एक चाय की शॉप खोलूं, जो कि ऑलरेडी खुल चुकी है और मैंने इसे 6 महीने तक चलाया, बहुत अच्छा चलाया। धीरे धीरे मेरे जो कस्टमर्स थे वो बन भी गए, काफ़ी सेल मेरी देखा जाए तो स्टेबल भी हो गई। लेकिन कुछ महीने बाद हुआ ये कि शॉप के बिल्कुल पास एक और चाय की शॉप खुल गई और नए कॉम्पिटिटर्स ने जो चाय की शॉप खुली वहाँ पर उन्होंने नए अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए और कुछ मॉडर्न सेटअप इंट्रोड्यूस कर दिया। और इस वजह से जो मेरे लॉयल कस्टमर्स थे वो अब धीरे धीरे स्विच करने लगे, यानी मेरी जो सेल है वो अब कम हो गई है। तो आज मैं आपसे जानना ये चाहूँगी कि मुझे क्या करना चाहिए। चलो एक बार वापस से मैं ऐसे झटपट सिनेरियो को आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि मैंने एक चाय की शॉप खोली, कुछ महीने तक मैंने उसे चलाया, बहुत अच्छी चली, काफ़ी स्टेबल मेरी सेल हो गई। लेकिन एक और चाय की शॉप खुलने के बाद से मेरी जो सेल है वो कम हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? क्या मुझे कोलैबोरेशन करना चाहिए? क्या मुझे अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को और मज़ीद इम्प्रूव करना चाहिए? या आपको लगता है कि मुझे अपनी लोकेशन ही चेंज कर देना चाहिए? या आपको लगता है कि मैं किसी और तरह के बिजनेस में आ जाऊं? या आपको ये लगता है कि मैं अपना बिजनेस ही बंद कर दूं? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जो भी सजेस्ट करना है वो

0: आप सजेस्ट कीजिए, मजेदार है। सोचिए आप मेरा बिजनेस नहीं सोचिए, अपना बिजनेस सोचिए, क्योंकि अगर आप अपना सोचते तो शायद आपको कोई फैसला लेना मुश्किल हो जाता। इसलिए ये बिजनेस मैंने अपने नाम रखा, मैंने कहा ये मैं अपने नाम डीड रखती हूँ, आपको मौका दे दी हूँ कि आप इस पर सोचें और मुझे बताएं कि अगर इस तरह का बिजनेस हो जहाँ बहुत ही कॉम्पिटिशन हो गया है जिसकी वजह से वो बिजनेस नहीं चल रहा है, तो उसे रिवाइव करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। देखिए सबसे पहले तो मैं भी आपको ये बताऊंगी कि हर बिजनेस को इन डेप्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इन डेप्थ समझने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो अपनी स्ट्रैटेजीज को कमज़ोर समझें। जो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जो भी बिजनेस जिस तरह भी जिस विजन के साथ जिस इंस्टिंक्ट के साथ आप उसको लेकर आए हैं मार्केट में, वो सारी चीज़ों पे तो आपको काम करना है, बट देन यू हैव टू बी विजिलेंट। व्हेन आई से यू हैव टू बी विजिलेंट मतलब आँख नाक कान खोल के रखिए, आस पास के माहौल को देखते रहिए, चीज़ें और सिनारियों को समझते रहिए। और अगर कोई इंसान इस तरह से करता है तो उसका बिजनेस जो है वो आसानी से चलता ही चलता है, कम से कम चलता रहता है, ये तो मैं होंगे। और एक लाइन तो आपने सुनी होगी, हमेशा कहते हैं ना कि बिजनेस जो है वो इट्स फार बेटर देन व्हाट यू डू, मतलब जॉब करने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लें। और हर शख्स कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पे ये सोचता ज़रूर है कि अब मेरे पास थोड़े से पैसे जमा हो गए, तो फिर एक खुजली शुरू हो जाती है कि चलो इसे कहीं इन्वेस्ट किया जाए, कुछ खुद अपना बिजनेस कर लिया जाए। और हर आदमी को बिजनेस का वो सेंस जो स्ट्रॉन्ग सेंस होना चाहिए वो नहीं होता, एंड दैट्स हाउ कुछ लोग जो है वो पैसे भी डुबो देते हैं, उनका बिजनेस भी उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और एक जॉब ना करने की वजह से जो लंबा गैप हो जाता है उसके बाद रीस्टार्ट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो बस लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि बिजनेस जो है वो इट्स फार बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग एज अ जॉब करने से, क्योंकि जॉब में आपकी एनर्जी आपका टाइम आपकी सारी चीज़ें लग रही हैं। यहाँ अगर वो सारी चीज़ें आप अपने खुद के प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं तो ये अभी नहीं तो आने वाले टाइम में आपके बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एक अच्छा एसेट आपका तैयार हो जाता है। तो आज सवाल है हमारा बिजनेस पर, और मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बिजनेस जो वाकई डूब रहा है या बिल्कुल इट्स ऑन द वर्ज, तो आप क्या रेकमेंड करना चाहेंगे, आप उसे किस तरह से क्या स्ट्रैटेजीज बताना चाहेंगे जिससे वो बिजनेस रिवाइव हो जाए। यहाँ मैंने सिर्फ चाय की दुकान की बात की है, अब आप मुझे बताइए क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए, शुड आई लुक फॉर सम इंटरेस्टिंग ऑफर्स, या फिर मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को और बेहतर करूँ, क्या मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अपनी शॉप पर बुलाऊँ, या मैं क्या करूँ मैं जो नई शॉप खुली है उस बंदे के साथ जाके बात करूँ, उससे कोलैबोरेशन की बात करूँ। इनिशियली तो कोई भी कोलैबोरेट करने को तैयार नहीं होगा, तो ये भी एक पॉइंट है मेरे जहन में। हो सकता है आपके जहन में कोई और बेटर स्ट्रैटेजी हो जो आप मुझे सजेस्ट कर दें, देन फील फ्री टू कनेक्ट विद मी ऑन द नंबर 443-443-77, या फिर आप मुझे जो है वो मैसेज भी कर सकते हैं 666-22-107। तो चलिए कुछ मैसेजेस की तरफ भी हम आ जाते हैं। यहाँ पर मैसेज मुझे है, हैप्पी वाला वीकेंड, कैसी है मैडम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद कर रही हूँ आप भी खैरियत से होंगे। मुमताज अहमद जी का मैसेज है, थैंक यू सो मच, एंड क्या टाइमिंग्स होंगे 1 सितंबर से, ये पूछना है। आप अपना मुझे नाम भी बताइए प्लीज़, सऊदी अरेबिया से कोई हमारे साथ जुड़ा है। और मेरे टाइमिंग्स जो होंगे शो के वो होंगे 1:30 PM आफ्टरनूनस में मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा मोहसिन नाम है इनका, ऑल राइट मोहसिन, थैंक यू सो मच। और आफ्टरनूनस में मैं उम्मीद करती हूँ आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ेंगे, आपकी हमारी मुलाकात होगी। यहाँ पे गुड मॉर्निंग के साथ हैं लतीफ़ जी, एंड लतीफ़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। एंड इसी के साथ एक कॉलर भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन है हमारे साथ?
1: आपका बात सुनकर अच्छा लगा, तो मेरे पास कुछ आइडिया है।
0: हाँ जी बताइए।
1: तो मुझे लगता है अगर इधर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो आपका बिजनेस इधर से शिफ्ट कर लेना चाहिए,
0: अच्छा। बट आपको नहीं लगता कि इतना सेटअप है मेरा, फिर मैं वहाँ पे पूरा प्रोसीजर नए तरीके से शुरू करूँ और नया सेटअप करूँ और वहाँ पे चल पाएगा नहीं चल पाएगा, मतलब क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि मुझे शिफ्ट कर लेना चाहिए, शुड आई वेट फॉर सम टाइम? ओके आई थिंक इन्होंने, खैर चलिए बहुत ही अच्छी आपकी राय थी कि भैया नहीं चल रहा ना तो आप शिफ्ट कर लो, दैट्स इट. लेकिन देखिए शिफ्ट करना इज़ अ वेरी टीडियस टास्क, आसान तो नहीं होता है. और इसकी भी गारंटी नहीं हो पाती कि आप जब शिफ्ट करके किसी और एरिया में कहीं और लोकेशन में जाते हैं तो वहाँ पे 100% बिजनेस चल रहा है. बट देन ये एक अच्छा मशवरा है कि ठीक है आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप शिफ्ट कर लीजिए, दिस कुड बी वन सोल्यूशन. या बहुत सारे लोग ऐसा करते ही करते हैं कि ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा और कॉम्पिटिटर्स ना हो, एंड दैट्स हाउ उनके लिए वहाँ पर काम करना आसान हो जाए. तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है. थोड़ा सा और सोच के रखिए जहन में कि एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ, व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस ना देयर हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कि ये काम ऐसे करो एंड यस करो, करो तो होगा. एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं. हेलो गुड मॉर्निंग.
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वेरी लवली, गुड मॉर्निंग.
0: आहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जावेद बाजवा जी, राइट?
2: एग्जैक्टली.
0: वेलकम बैक. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेलकम बैक जी. कैसी रही, हाउ वाज योर ट्रिप?
2: والله الحمد لله. انت شلون؟ كلهم زينين ما شاء الله عليكم.
0: الحمد لله اچھی رہی, بہت ہی اچھی رہی, something like that. आंसर तो यही होगा कुछ, हालांकि मुझे समझ में नहीं आया बट ऐसे तुक्का लगाया मैंने, हाँ यही कुछ कहा होगा. चलिए नाइस.
2: 110% एग्जैक्टली, मतलब सही, मतलब इसका मतलब आपको अवेयरनेस आप सीख चुकी हैं अरबी.
0: नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये तो सिर्फ मैंने ऐसे तुक्का लगाया कि जो सवाल है उसका यही जवाब होगा. जस्ट दैट, सीखना तो बहुत कुछ है मुझे, लेकिन देखिए मेरी सुस्ती मुझे कहाँ पर लेके जाती है और मैं कब क्या शुरू कर पाऊँ, सीख पाऊँ, वो एक बात है. फिलहाल तो बस एक ही टारगेट है कि जिम ज्वाइन कर लूँ, एंड लेट्स सी.
2: देखिए मैं एक चीज़ को जानता हूँ, पहले तो मैंने आप सबको, FM 107 की पूरी टीम को, मैनेजमेंट को, तमाम मेरे भाई बहनों को मैंने बहुत बेतहाशा लम्हा ब लम्हा हर पल मिस किया मैंने.
0: हमने भी आपको बहुत बहुत बहुत मिस किया. आप नहीं थे इतने टाइम तो वाकई आपको हम लोग मिस कर रहे थे. आई थिंक हमारे सारे लिसनर्स, आपके सारे फ्रेंड्स.
2: उसके बाद क्योंकि आज मेरी मिड नाइट वापसी हुई, अर्ली मॉर्निंग कह लें, तो रात को मैं फिर ट्रेवल करूँ 3 दिन के लिए. और आपका माशाल्लाह फिर आपका शो जो है वो उसको मिस मैं करूँगा, लेकिन आपकी जात के लिए मैं डेडिकेशन जरूर देना ये चाहता हूँ आते ही कि आपकी आवाज की गूंज दिलों में हमेशा रहेगी. नाजिया जी, आपकी आवाज की गूंज हमेशा रहेगी दिलों में. शो बदलेगा जरूर मगर लिसनर हमेशा ही जुड़े भी रहेंगे और आपको याद भी रखेंगे. इट्स रियली कॉम्प्लीमेंट.
0: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. और मैं तहे दिल से सारे लिसनर्स का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहिए. मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला मॉर्निंग्स में, मुझे भी आइडिया नहीं था, एंड रियली रियली. अब बाकी मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हो रहा है, इनिशियली तो मुझे था कि चलो आफ्टरनून से अच्छा हो जाएगा, बट अब आप लोग के प्यार को देख के मुझे लग रहा है कि आई एम गोना मिस माय मॉर्निंग लिसनर्स. तो ये बात तो सच है.
2: बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. मैं बस इसके बाद ना वो थोड़ा सा टॉपिक लोगों से मैं सुनूंगा क्योंकि मैंने प्रॉपर अभी तक आराम भी नहीं किया, तो मैंने कोशिश की पहले मैं अपनी कॉल कर लूँ, उसके बाद अभी जस्ट एक रेस्ट डिनर भी, और उसके बाद फिर एक मीटिंग है मेरी रात को, फिर मुझे ट्रैवल करना है. तो मेरे तमाम दोस्तों को मेरी जानिब से सलाम. और टॉपिक मैंने सुना है, और टॉपिक यही है कि मतलब अगर आप किसी जगह पर अपना बिजनेस खोलते हैं और आपके जहन में ये आए कि मैं इसको बंद कर दूं, तो फौरन ये चीज नहीं होनी चाहिए. आप वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप उसमें बेहतर क्या कर सकते हैं. सबसे पहले तो आपकी जान पहचान, आपका अखलाक, आपकी ऑफर्स होनी चाहिए आपके पास.
0: ये जान पहचान, आपका अखलाक, ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने.
2: देखिए जुबान बहुत, जुबान दिलों को चीरती भी है और दिलों को जेर भी करती है, दोनों चीजें.
0: राइट, बहुत सही, बहुत ही अच्छी बात. ये मैंने लिखी है आपकी स्ट्रेटजी. नहीं, अच्छा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है. अगर आप किसी शॉप में जाए, कोई बंदा बहुत रूड हो ना, तो

0: पे, है ना, कोई आपसे बहुत रूडली बात करे, अटेंड ना करे आपको उस तरह से, तो आप किस तरह से कस्टमर्स को अटेंड करें, कैसा आपका अखलाक है, कैसा एटीट्यूड है, बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है. इनफैक्ट
1: जो बंदा रूड फितरतन, देखिए हर इंसान के ना, नाजिया जी मोस्टली थोड़ा हटके बात कर रहा हूँ, कि हर इंसान का ना एक अपना एटीट्यूड है. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे समझ नहीं आती कि एटीट्यूड व्हाट डज इट मीन, ये चीज, ये बला क्या है, एटीट्यूड क्या चीज है, ये मुझे तो समझ नहीं आती. आप हम्बल रहे, आप यकीन कीजिए, आप यकीन करें कि मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुबह मेरी कोशिश रहती है कि रास्ते में हर बंदे को सलाम का हुक्म भी है पहल, और मुस्कुराहट, ऐसे ऐसे लोगों के आपकी मतलब आपको मुस्कुरा के वापिस वो करते हैं कि आपका पूरा दिन आपको लगता है कि मुझे रब मिल गया, मुझे रब मिल गया, तलाश जिसको आप कर रहे हैं वो मिल रहा है आपको मुस्कुराहट में. तो एटीट्यूड मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे अगर कोई भाई बता सकता तो जरूर बताइए एटीट्यूड कहाँ से मुझे मिलेगा, मैं भी 2-4 किलो ले लूँ.
0: 2-4 किलो आप नहीं संभाल पाएंगे, आप वैसे बंदे नहीं है आपके लिए. बोझ हो जाएगा, भारी हो जाएगा. चलिए, बट थैंक यू सो मच कि आप इतने टायर्ड हैं एंड डिस्पाइट ऑफ दैट आपने टाइम निकाला, आप मेरे साथ जुड़े, ट्रूली मींस अ लॉट. बहुत शुक्रिया, प्लीज टेक इनफ रेस्ट, और इंशाल्लाह आप, हम उम्मीद करें कि आप आफ्टरनून्स में डेफिनेटली जुड़ेंगे.
1: वो डेफिनेटली आफ्टरनून में प्रॉब्लम क्या होती है कि वो जो टाइमिंग आपकी है माशाल्लाह, वो तो खैर मैं कोशिश करता रहूंगा, लेकिन आई एम

0: किसी और जगह पे गए होते हैं आप मतलब हाँ.
1: वापस आएंगे तो इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. मैंने सोचा इसे और सिंपलीफाई कर देती हूँ आप सबके लिए, बहुत ही ज्यादा जनरलाइज कर देते हैं इसे. एंड द टॉपिक इज नाउ लाइक बिजनेस या फिर नौकरी, ज्यादा बेहतर क्या लग रहा है आपको मुझे बताइए 666-222-107 पर या फिर कॉल कीजिए 443-443-77 पर.

0: FM 107. Time check. राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:05.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर. दिल से देसी.
0: हां जी, वेलकम बैक गाइस. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नाजिया आपके साथ. मुझे लगा कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो दिया मैंने तो कहीं आपके लिए चैलेंजिंग तो नहीं हो गया, तो चलिए इसको और मैंने आसान कर दिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस और जॉब्स. आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है? और अगर आपको बीच में ऐसा लगता है कि कुछ आप मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए मुझे कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, देन वाई नॉट, वो भी आप ऐड कर सकते हैं. फिलहाल मेरे साथ एक कॉलर यहाँ पे जुड़ गए हैं, चलिए बात करते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
2: हाँ जी,
0: हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी. गाबा जी, आपका तो नंबर किसी ने मांगा है, मीत जी ने.
2: हाँ जी, दे दीजिए मैडम.
0: अच्छा,
2: दे सुनी.
0: ठीक है, चलो, हम तो सब कुछ ऑन एयर ही पूछ रहे होते हैं आपसे. चलिए, अच्छी बात है कि आप लोगों की दोस्तियां जो है ना वो स्ट्रांग होती चली जाए.
2: देखिए मैडम जी, अभी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपकी इस दुआ के लिए. सबसे पहले तो हमारे उस्ताद जी जावेद बाजवा जी की कॉल सुन रहा था मैं.
0: जी जी जी, माशाल्लाह. आगे
2: देखिए मैडम, स्ट्रगल देखिए उनका. परदेश में रह के भी बंदा परदेसी बाबू है.
0: ये तो है, वाकई है तो मसला. तो आपको क्या लगता है, इसी में जवाब छुपा हुआ है या वाकई आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे?
2: जी, उसकी तरफ भी मैं आता हूँ. सबसे पहले नाजिया मैडम, फिर पता नहीं संडे या मंडे को कॉल मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ.
0: अच्छा,
2: लगने का तो मेरे को कोई मसला है नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को. टाइम मिले या ना मिले, मैं थोड़ा सा शो के हवाले से पहले कुछ कहना चाहता हूँ.
0: प्लीज, जरूर.
2: जैसे जावेद बाजवा जी बात कर रहे थे ना मैडम.
0: हाँ
2: बिल्कुल नाजिया मैडम जी, इस शो ने हमें बहुत कुछ सिखाया तो है ही है, और साथ में बहुत से अच्छे लोगों के साथ इंट्रोड्यूस भी करवाया है, उनके साथ दोस्ती भी करवाई है जी.
0: वाओ, नाइस. चलिए, तो बड़ी खुशी की बात है कि आपके दोस्त भी बन गए बहुत सारे लोग इसी शो के थ्रू. वेरी नाइस, ये तो मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है.
2: देख लीजिए, जैसे अपना रईस भाई हो गए.
0: हाँ.
2: तौफीक जी हो गए, बाजवा साहब हो गए
0: जी, जी.
2: और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने आप ही मैसेज कर देते हैं मैडम. देखिए सुबह.
0: और मुझे भी पता है, बहुत अच्छा लगा. पहले तो आप लोग कह ही रहे थे, लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे अब लगने लगी कि लोग बहरीन से, सऊदी से भी जुड़ते हैं और वो भी सुन रहे हैं, टाइमिंग्स पूछ रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं. तो मुझे लगा कि चलिए, अब दूर दूर तक हमारे शो को लोग पसंद भी कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं, क्योंकि वहाँ से जुड़ना और मैसेज करना, करते रहना, सऊदी से बहुत सारे लोगों के आते रहते हैं. तो

0: अपने आप में बड़ी बात है. That's nice.
1: नाजिया जी देखिए वो शो आता था ना अलिफ लैला, वो दरवाजे के पीछे होता था ना, उसको बोलते थे खुल जा सिम सिम, उसके पीछे खजाना होता था. वैसे ही 6 बजे के बाद जो आपका शो है ना मैडम, ये भी हम सभी के लिए किसी खजाने से कम नहीं है.
0: अब बाकी मुझे अब आप रुलवाएंगे क्या, चाहते कि मैं रोके जाऊं?
1: ना ना ना ना ना. अच्छा मैडम एक चीज और पूछनी थी मैंने.
0: हाँ जी पूछिए.
1: ये जो अभी अंडर 17 वर्ल्ड कप आ रहा है, उम्मीद तो हम यही करते हैं भी आप ही होस्ट करें उसे.
0: अब तो कुछ कह तो नहीं सकते, देखिए अब ये पता चलेगा आगे जैसे जो हमें मिलेगा स्केड्यूल. सो लेट्स सी, लेट्स होप. बाकी तो अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं है.
1: चलो हमारी तो उम्मीद यही है मैडम, क्योंकि हम 2-3 आपस में बातें करते हैं ना दोस्त, तो यही होता है देख के भी नाजिया जी ही करें उस शो को तो अच्छा रहेगा. बाकी जैसे मैडम मैनेजमेंट का सिस्टम आपका जो है,
0: लेट्स सी, लेट्स सी.
1: हाँ हम लोगों की जो फर्स्ट चॉइस है एज एन आरजे, वो आरजे नाजिया जी ही हैं.
0: हाँ हाँ जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. लेकिन देखते हैं हमारी टीम क्या फैसला करती है तो वो पता चलेगा. अच्छा आज जो मेरा टॉपिक है, हालांकि है तो मेरी प्रॉब्लम, उसका सोल्यूशन आपको देना, बट स्टिल इफ यू वांट टू कीप इट लाइक बहुत ही, अगर आप उसको जो है वो जेनरिक फॉर्म में कुछ बताना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं. दैट्स ओके.
1: मैडम आपने सिर्फ चाय के बिजनेस के हवाले से बात करी है या बिजनेस कोई भी बंदा कर रहा हो?
0: मैंने तो वैसे अपना चाय सोचा, मुझे लगा चलो ये थोड़ा सा आसान है और रिलेट भी करेंगे शायद बहुत सारे लोग.
1: नाजिया जी जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, चंडीगढ़ में 1000 से ऊपर चाय वाला होगा. मैंने अपनी जिंदगी में एक भी शॉप नहीं देखी भी जो चाय की दुकान बंद हुई हो बंदे का, या उसका कोई लॉस हुआ हो.
0: ये बात कही आपने, देखो ये होता है मोटिवेट करना कि नहीं जी लॉस नहीं होता. हाँ ये है, पता है वहाँ एक और भी बात समझ में आती है, एक सिनेरियो ये समझ में आता है कि वहाँ पर जो है वो लोग बहुत है, कंज्यूमर्स बहुत है, कस्टमर्स बहुत है, लार्जेस्ट है आपको पता ही है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है. तो वहाँ पे जो सबसे ज्यादा चीज है वो फायदे की कि वहाँ पे कंज्यूमर्स बहुत है, बहुत बड़ा मार्केट है कंज्यूमर्स का. अभी और कंट्रीज की बात करें तो शायद उतना बड़ा मार्केट नहीं है कंज्यूमर्स का, क्या लगता है आपको?
1: मैडम देखिए आप ज्यादा दूर नहीं जाना, आप गुड़गांव की मिसाल ले लीजिए, वहाँ पे कितनी सारी एमएनसीज हैं, बहुत सारा कमर्शियल एरिया है, और जितना मर्जी बड़ा सीईओ जीएम हो उसने मैडम चाय तो ठेले वाले की ही पीनी है.
0: हाँ ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये ट्रेंड अभी भी है वहाँ पर, लोग जो है ना वहीं से मंगवा के फलानी शॉप माई फेवरेट वहीं से चाय आएगी. सो चाय इज अ काइंड ऑफ एडिक्शन ऑल्सो राइट, कि जहाँ से हमें पसंद है वहीं से मंगवाएंगे.
1: बिल्कुल मैडम जी, एक साइकोलॉजी लगा लीजिए, अच्छी चीज ये है. चाहे आप मैडम 5-star में कॉफी पी सकते हैं, कॉफी आपको अच्छी लगेगी, मगर जो मैडम चाय का टेस्ट है ना वो ठेले वाले से लेके ही पीने में है.
0: ये तो है, और स्पेशली अगर कुल्हड़ में चाय मिल रही है तो आहा क्या बात है, एकदम सेट हो जाए वहां गए.
1: आपके यूपी में बहुत मिलती है मैडम कुल्हड़ में?
0: बहुत ज्यादा,
1: वृंदा मथुरावन आगरा में तो बहुत ही ज्यादा है.
0: हाँ जी बहुत मिलती है, बहुत ज्यादा. तो आपका कहने का मतलब ये है कि मुझे सब्र रखना चाहिए और बंद नहीं करना चाहिए?
1: देखिए मैडम जैसे अभी गर्मी का समय चल रहा है ना, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं, जैसे इंडिया में भी हलवाई हैं, उनको अभी कुछ नहीं बच रहा आगे. वो इसीलिए सबर करके बैठे हैं कि आगे जो समय आ रहा है ना, फेस्टिवल सीजन, शादियों का सीजन भी, उसमें हम लोग अपनी कमी पूरी कर लेंगे.
0: ये बात तो मतलब आप कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुझे 1-to-1 वैसे कस्टमर्स पे ध्यान नहीं देना है, इवेंट्स पे भी काम करना चाहिए कि वो भी मुझे मिल जाए, सो दैट मेरी वहाँ से भी पैरेलल इनकम इंक्रीज हो और जो है मेरा बिजनेस थोड़ा सा रिवाइव हो इन दैट वे. अच्छा वैसे मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है, जॉब करना ज्यादा अच्छा है या फिर अपना खुद का बिजनेस?
1: मैडम मैं बिजनेस के साथ ही जाऊंगा.
0: बिजनेस के साथ, ओके
1: जी जी. तो मैं मैडम और दूसरी एक बात और बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान है, थोड़ा बहुत पैसा है आपके पास, अगर आपको कोई पॉलिटिकल बंदा जानता है फिर तो बेस्ट है.
0: अच्छा
1: आप उसको एक दो बार अपनी शॉप पे बुलाइए,
0: ओके,
1: आपका जो भी बिजनेस है वहाँ पे बुलाइए, अच्छा खासा बिजनेस चल जाएगा. और मैडम अगर उनके साथ जी अगर उनके साथ आपकी जान पहचान नहीं है तो आप इन्फ्लुएंसर्स को वहाँ पे बुलाइए, पैसा दीजिए, फिर चांसेस हैं बिजनेस चलने के.
0: सो मुझे मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम करना होगा, इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुला के थोड़ा सा अपना बिजनेस बेहतर करना है. ये नहीं कि कॉम्पिटिटर आया तो मैं डर के हट जाऊँ. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. नाइस, बहुत ही अच्छी एडवाइस आपने दी और बड़ी कमाल की.
1: आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं.
0: हाँ जी बताइए.

0: बहुत सारे यहाँ पे कतर में भी किचन्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनका जो मैडम बिजनेस है वो ये ऑनलाइन डिलीवरी एप्स के थ्रू ही चलता है, वो भी प्रमोशन के जरिए। तो आज का दौर मैडम ऐसा है, सोशल मीडिया से प्रमोशन तो करनी ही पड़ेगी बंदे को।
1: प्रमोशंस करना है, मार्केटिंग जो है स्ट्रेटजीज अपनी बेहतर करनी है, एंड दैट्स द वे आउट। नाइस, बहुत ही अच्छी आपने एडवाइस दी, थैंक यू सो मच। मेरे बिजनेस बचाने के लिए अगर मेरा बच जाएगा तो कुछ ना कुछ आपको भी मिलेगा इसमें से।
0: और मैडम जो छोटे बिजनेसेस है ना,
1: हाँ जी,
0: जैसे MNCs के आसपास में जो बंदे खाना खाते हैं बैठ के, कड़ी चावल वाले हो गए, राजमा चावल वाले हो गए, या चाय वाले हो गए, उनको तो मैडम प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बस अपना टेस्ट कस्टमर को दिखाना पड़ता है। एक बार कस्टमर ने टेस्ट कर लिया तो अपने आप ही मैडम बंदे लेके आता है, क्योंकि उनको प्रमोशन की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ही वहाँ पे इतना ज्यादा क्राउड रहता है।
1: मुझे लगता है कि प्रमोशन से ज्यादा इंसान कहीं ना कहीं अपनी एक लोकल ब्रांडिंग पे काम कर ले। एक बार चीज हल्की सी ब्रांडिंग के दौर में आ गई ना तो वो एक्सक्लूसिव हो जाती है, फिर भले से आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, फलाने रिकमेंड, माउथ टू माउथ जो है पब्लिसिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है ना, कह रही वहाँ फलाने के उस जगह पे, उस कोने पे, यू वोंट बिलीव कि कोई मुझसे कहता उस कोने पे ना वो टिक्की बहुत अच्छी है। अब उस कोने पे इतने लोग जा रहे हैं, इतना छोटी सी शॉप है बट हजारों लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो एक हो भी गया उसका नाम, इतने साल से है वो, इतने साल से है, ये भी बड़ा फर्क पड़ता है। पहले मैं सोचती थी पुरानी दुकानों की शायद उतनी वैल्यू नहीं क्योंकि उस तरह से उन्होंने अपने को चेंज नहीं किया, बट आई हैव सीन सो मेनी शॉप्स जो उसी स्टाइल पे चल रही हैं जो हम बहुत पहले कॉलेज डेज में देखते थे, आज भी वही उसी ढर्रे पे चल रही हैं शॉप्स, बट आज भी उतनी ही भीड़ है, तो दे हैव नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन द टेस्ट।
0: हाँ मैडम, बहुत सारी शॉप्स हैं जिन्हों के दादे परदादे के समय से उन्होंने वैसी रखी हुई है, मगर उनके मैडम आप बिजनेसेस देखोगे ना,
1: देखो,
0: आजकल
1: वही ना, वही ना,
0: गाड़ियों का शोरूम, रियल एस्टेट में,
1: वही ना, एक बिजनेस से उस बिजनेस से कितने बिजनेस हो गए उनके। तो यही कि बना के
0: मैडम बस, जी एग्जांपल्स तो मैडम बहुत है, मैं बस लास्ट में एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे मैडम अपने हॉस्पिटल्स होते हैं इंडिया में बड़े, उनके आसपास में आपने देखा होगा फ्रूट वाले, जूस वाले बहुत सारे रहते हैं,
1: हाँ जी,
0: मगर बंदा जूस उसी से पार्सल लेके आता है जिसका हाइजीनिक होता है जूस।
1: साफ सफाई का या भरपूर ख्याल, नाइस, बहुत अच्छे अच्छे टिप्स आपने दी हैं, काफी प्रैक्टिकल हैं, बहुत छोटी छोटी हैं बट दे आर लाइक रियली वर्थ इट, बहुत जरूरी है। नाइस, थैंक यू जी, बड़ा अच्छा लगता है आपकी जो हमेशा से ना प्रैक्टिकल अप्रोच है उसे मैं सल्यूट करती हूँ, आई रियली अप्रिशिएट, इसीलिए शायद बहुत सारे लोग आपके साथ इमीडिएटली यू नो दे फील कनेक्टेड, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक और बहुत ही प्रैक्टिकल सी अप्रोच है। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच,
0: ख्याल रखिएगा,
1: हैप्पी वीकेंड, बाय। ऑलराइट, आज बिजनेस एंड जॉब्स की बात हो रही है, इन दोनों के बीच आपको एक पिक करना है तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे एंड क्यों, एंड देन मेरे बिजनेस को अगर रिवाइव करने की बात हो तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज आप मुझे सजेस्ट करना चाहेंगे। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, कैसे हैं आप?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आपका नाम पूछूं मैं?
2: काशिफ।
1: ओके, सो काशिफ कैसे है, कैसी जा रही है आपकी सुबह, हाउ इज योर मॉर्निंग गोइंग?
2: बस सुबह हुई अभी अभी।
1: अच्छा, चलिए, अच्छा
2: है, अच्छी हुई है कि पहली बार में कॉल लग गया।
1: ओह वाओ, नाइस, चलिए मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है कि आपसे मेरी बात हो रही है। आई थिंक दिस इज लाइक सेकंड टाइम वी आर टॉकिंग, एक बार हो रही है ना,
2: हाँ, एक दो बार पहले हुई है बात,
1: एक आध बार हुई है पहले,
2: उसके बाद चांस नहीं मिला मुझे, जो सच्ची बात है।
1: चलिए आज मिल रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। सॉरी आई डिडंट गेट यू।
2: मैं बोला कोशिश में डेली करता हूँ लेकिन चांस नहीं मिला।
1: रियली सैड, चलिए आई एम ग्लैड कि आज फाइनली वीकेंड है और आपको एक चांस भी बहुत अच्छा मिला, और आई एम श्योर आप बहुत अच्छा कुछ बताएंगे भी मुझे।
2: नहीं, मुझे ने अभी सुना नहीं है कुछ के किस बारे में बात हो रही है, बस देखा कॉल एंड हो रही है, कुछ शो बिजनेस की बात चल रही है, मैंने मिला।
1: अच्छा, बिजनेस की आज बात कर रही हूँ, पहले तो सवाल ये कि बिजनेस या जॉब बेहतर ऑप्शंस क्या हैं, आप किसे ज़्यादा बेटर समझते हैं। फिर मैंने अपना एक सिनेरियो दिया है बिजनेस का, जहाँ मैंने एक चाय की शॉप खोली, कुछ महीने बहुत अच्छी चली लेकिन एक और कॉम्पिटिटर आ गया, और जैसे ही वो कॉम्पिटिटर आए, एक और चाय की दुकान जो खुली है उसके बाद से मेरा बिजनेस

0: बहुत ज़्यादा स्लो हो गया तो अब मुझे कौन सी स्ट्रैटेजीज जो हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए जिससे मेरा बिजनेस रिवाइव करे बाउंस बैक करे
1: जी। तो इसमें मेरे हिसाब से तो 90% जो भी आएंगे वो उनका यही रहेगा कि बिजनेस बेस्ट रहे।
0: बिजनेस बेस्ट
1: क्योंकि जॉब और बिजनेस में मैं तो अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल देख चुका हूँ इस चीज का।
0: अच्छा
1: क्योंकि मैंने अच्छा खासा बिजनेस करते हुए उसको छोड़ के बस वो ज्यादा के चक्कर में जॉब स्टार्ट कर ली। आज मुझे फील हो रहा है वो कि नहीं वो बेस्ट था।
0: आपका अपना बिजनेस आपने छोड़ के स्टार्टेड
1: अच्छा खासा काम चल रहा था मेरा, अच्छे खासे कस्टमर भी थे, फिर बस वो की बातों में जो है ना वो कतर में जो लिखा हुआ था हमारा कतर में आ गया।
0: हाँ यहाँ ने लिखा था।
1: तो उसके बाद यही रहा कि मेरा अभी तक जो प्रैक्टिकल हिसाब से मेरा मशवरा तो यही रहेगा कि भाई जॉब तो कहीं भी मिल जाएगी, कभी भी मिल जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग आपको अगर करनी है तो आप बिजनेस से करें, छोटा हो बड़ा हो लेकिन बिजनेस से करें। और दूसरी बात ये है कि जो आप कह रही है ना कि बिजनेस वो पहले अच्छा खासा चल रहा था फिर नहीं चल रहा है या कुछ भी, तो इसमें वो एक आपने सुनी होगी चीनी कहावत है कि अगर आपको मुस्कुराना नहीं आता तो आप दुकान नहीं खोलो। सबसे पहले तो मेरा जो प्रैक्टिकल है वो यही है क्योंकि एक बार आप एक बंदे को ना कोई भी कस्टमर है आपके पास, कोई भी कस्टमर चाहे वो छोटा है बड़ा है, एक बार वो आपके पास आया ना आपने उसके मतलब उसको बस हल्का सा फील करवा दिया कि आप उसके साथ रूड हो, आप तो थोड़ा इरिटेट हो गए उससे तंग हो गए, यकीन मानो वो बंदा दोबारा वापस नहीं आता है।
0: बिल्कुल
1: चीज को तो बंदा खुद पे भी कर सकता है कि यार मेरे साथ एक बार ऐसा हो तो मैं थोड़ा ही ना वापस जाऊंगा, क्योंकि आज के दौर में कॉम्पिटिटर आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे।
0: ये तो है।
1: कस्टमर के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है,
0: बहुत ज्यादा है।
1: आपके पास एक ही ऑप्शन है कस्टमर, और कस्टमर के पास बहुत से ऑप्शन है। कस्टमर को क्या मतलब है एक शॉप से, उसको आपसे बेहतर ट्रीटमेंट करने वाला मिल गया, आपको बेहतर आपसे बेहतर मिला वो उधर ही जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं मेरे वाले साहब वो कहते थे कि कस्टमर किसी का सगा नहीं होता। मुझे बड़ी पसंद है, वो कहते थे कि कस्टमर किसी का सगा नहीं होता, तुम जितना कर सकते हो उसके साथ अच्छे से 1,00,000 से पेश आ सकते हो, जितना तुम उसको वो बेहतर से बेहतर दे सकते हो ना वो देना पड़ता है। अभी अगर आपकी अभी इधर इधर मैं इधर कर रहा हूँ ना काम कर रहा हूँ जिधर मैं इधर एक जगह में, चलो रेस्टोरेंट का नाम नहीं ले सकता लेकिन ये है कि मेरे वो बिल्कुल बाजू में है रेस्टोरेंट है, वो वहाँ पे अगर मैं खाना खाऊं या वहाँ पे जाऊं तो मुझे 10 सेकंड लगते हैं जाने, ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है वहाँ पे जाके वो उनका ट्रीटमेंट कुछ खास नहीं है, उधर जाके बैठे रहो भाई, कोई आएगा ऑर्डर लेगा ऑर्डर दे के फिर बैठे रहो के खाना। अब उससे दूसरी तरफ में एक रेस्टोरेंट है, कम से कम 5 मिनट चल के जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ जाओ आप बस बोलो ये चीज, अगले 2 मिनट में वो आपके आगे रख दे। अब मैं देखता हूँ डेली का देखता हूँ, आज भी ब्रेकफास्ट के टाइम में मैंने देखा कि जो मेरे साथ में अब 5 मिनट चल के जाना पसंद करते हैं लेकिन 10 सेकंड वाले के पास नहीं जा रहे।
0: तो
1: उसका रीजन वही है कि वो कस्टमर के पास ऑप्शन बहुत है, अब तक आप कस्टमर को अच्छे इखलाक के साथ उसको वो जैसे वो कस्टमर, अब हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता,
0: हर कस्टमर
1: के साथ अलग अलग तरीके से आपको बिहेव करना पड़ता है।
0: बहुत सही,
1: कस्टमर की सिचुएशन के हिसाब से आपको उस वक्त में डालना पड़ता है, भाई इस कस्टमर से मुस्कुरा के बात करनी है, इसको हंस हंस के बात करनी है, इसके साथ थोड़ा मजाक भी कर सकता हूँ, इसके साथ बिल्कुल सीरियस बात करनी है काम के हिसाब से, ऐसे कस्टमर को देख के वो आपको उसके हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना होता है। नहीं तो भाई कस्टमर के पास इतने ऑप्शन और स्पेशली आज के दौर में इतने ऑप्शन है कस्टमर के पास कि एक ही बार आएगा वो, दूसरी बार तो देखेगा भी नहीं, फिर वह एंड में यही होगा कि एक कस्टमर, कभी कभी हम लोग को लगता है यार एक बंदा चला भी गया तो क्या हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं, एक बंदा जो गया ना वो अब उसके जानने वाले जितने हैं वो भी गए,
0: सब गए, बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है कि एक गया मतलब सब गया, तो एक को भी वो रोक के रखना है, वो भी आपका बना के रखना है,
1: एक को ही रोक के रखना है और एक को नहीं जाने देना है।
0: ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छी एडवाइस दी आपने, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत समझाते हुए एंड बहुत ही सटीक, जो वाकई एप्लीकेबल है कि अगर हम कस्टमर्स को वो सेटिस्फैक्शन दे देंगे, वो सर्विसेज अच्छी और नहीं देंगे तो वो कभी वापस नहीं आएगा।

0: यू सेड कि कस्टमर्स के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, दैट्स ट्रू. नाइस, बहुत ही अच्छी एडवाइस दी. थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. हैव अ फैंटास्टिक डे एंड हैप्पी वीकेंड आपको. अपना ख्याल रखिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज. तो भाई बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं लोग. देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने बिजनेस में बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, बड़े बड़े जो है ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहते हैं, बट छोटी छोटी डिटेल, छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती हैं. यहाँ पर एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. कैसे हैं अंशु जी, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. तो आज बिजनेस की बात चल रही है, क्या कहेंगे?
1: टॉपिक अभी मैं रेडियो खोला, माशाल्लाह पहला काल लग गया.
0: अच्छा, चलिए बड़ी अच्छी बात है. वो तो जैसे जैसे मुझे जो जो दिख रहे हैं आज हमारा टॉपिक, पहला तो ये भी सवाल हमने रखा है कि आपके हिसाब से बिजनेस करना ज्यादा अच्छा है या जॉब ज्यादा बेहतर है करना. फिर मेरा अपना खुद का बिजनेस है उस पर मैं पूछ रही हूँ, मतलब एक ऐसी सिनेरियो मैंने बनाया और पूछ रही हूँ कि अगर वो मुझे रिवाइव करना है तो क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए.
1: पहला अपना बिजनेस,
0: अपना बिजनेस. अच्छा, अभी तक ज्यादातर लोगों का यही कहना है. अच्छा, क्यों ऐसा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अपना बिजनेस में तो बड़ी मेहनत है, जॉब तो आसान है करना? नहीं,
1: जॉब जो है, जॉब में जो आपका एक फिक्स अमाउंट रहता है और आगे आने वाली पीढ़ी का भी कोई भविष्य नहीं. अब बिजनेस जो है मतलब आगे वाले पीढ़ी भी उस बिजनेस में जा सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं.
0: सही, मतलब आप कहते हैं एक तरह का एक एसेट बिल्ट हो जाता है जो आगे जनरेशन के भी साथ उनके भी काम आएगा और आगे बढ़ेगा. बिजनेस जॉब्स तो आपने की खत्म, रिटायर यू आर डन. हाँ, ये तो है.
1: अब हम लोग क्यों करते हैं इतना काम या अपने बच्चों के लिए ना, तो बिजनेस ही बेस्ट है. बच्चों का आगे चल के काम आएगा, वो भी मेरे बिजनेस में हाथ मारेंगे, नहीं समझ में आएगा तो अपना कहीं और करेंगे. शुरू से बिजनेस ही बेस्ट है.
0: बिजनेस ही बेस्ट है, जिसे जैसा जब मौका मिले तो वो बिजनेस में ही अपना जो है वो लक आजमाए. दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. हाँ, अच्छा, कुछ लोग ये भी अप्रोच रखते हैं कि चलो हम जॉब भी कर रहे हैं, साइड में बिजनेस कर रहे हैं. ये साइड में जो बिजनेस होता है वो चल पाता है? आपको लगता है कि साइड बिजनेस चलाना आसान है या बिजनेस का मतलब है फुल टाइम आपको उसको देना है?
1: अब वो जो है जॉब की टाइमिंग और बिजनेस की टाइमिंग पे पता चलता है, फर्क होता है. जैसे जॉब आपकी है 9 to 5 है, ओके, और आपका बिजनेस चाय का दुकान है, तो आप 9 to 5 को चाय के बाद जो है 6-7 के बाद चाय चलती है मेरे मतलब यूपी में, शहर में 6-7 के बाद ही चाय अच्छी चलती है, 6-7 से लेके 12-1 बजे तक चलता है. तो ये आपका हो सकता है, टाइम पे मैटर करता है. अब एक ही वक्त में दोनों नहीं हो पाएगा. जैसे 9 to 5 आप जॉब कर रहे हो, उसमें आप बिजनेस भी करना चाहे तो आपका फोकस डिवाइडेड हो जाएगा.
0: सही, तो मतलब इस तरह से हमें बिजनेस को भी देखना, टाइप ऑफ बिजनेस क्या है और फिर टाइप ऑफ जॉब देखते हुए.
1: जैसे 6 बजे के बाद स्टार्ट होता है, जैसे अंडर रोल, अंडर रोल हुआ या कोई भी ऐसा बिजनेस हुआ छोटा मोटा जो 6 शाम होने के बाद ही स्टार्ट होता, तो वो आप कर सकते हैं जॉब करने के बाद.
0: सही, तो वो इस तरह का बिजनेस आप कहना चला सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा चैलेंजिंग है.
1: या तो अपनी दुकान है तो आप कोई बंदा रख दे, फिर उसके बाद 6 बजे के बाद उस दुकान पे बैठ जाए आने के बाद.
0: आपको लगता है कि कोई दूसरा जो है वो कमा के देते का आपको? मुश्किल लगता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता.
1: आजकल टेक्नोलॉजी इतनी है, कैमरा लगा दे, कोई दिक्कत हो तो कस्टमर आ रही.
0: कस्टमर हम कैमरे में सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं. हम ये भी देख रहे हैं हमारा मैनेजर जो है उस तरह से अटेंड नहीं कर रहा है. अब उसको ये थोड़ी पड़ी है कि मुझे बिजनेस कमाना है, उसकी तो सैलरी उसे मिल ही रही है, तो अपनी तरफ से बिल्कुल डन है.
1: दुनिया में बहुत बेरोजगार है.
0: अच्छा, हटाते हैं
1: सबसे, उससे बेहतर मिल जाएंगे. जब देखे वो उसको अपनी रोजी से ही खुद नहीं मोहब्बत है, तो उसको रख के क्या फायदा, जो अपनी रोजी से मोहब्बत ना करे. जो अपनी रोजी रोटी से मोहब्बत करे, सोचे किसी से मेरा घर चल रहा है, तो वो बंदा जो है अपनी रोजी रोटी पे फोकस देगा, वो ना जलन रखेगा ना कुछ नहीं रखेगा, ना वो टाइम पास करेगा।

0: देगा। मुश्किल है ऐसे बंदों को ढूंढना, मैं मिल जाते हैं,
1: मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, बहुत ही बहुत सारी आपने जो है वो टिप्स भी दी और बताया भी, और बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन आपके हमारे साथ। अभी तक जितने लोग हैं उनका यही कहना है कि बिजनेस इज ऑलवेज गुड, इट्स अ गुड ऑप्शन, तो आपने भी यही किया, तो जबरदस्त। लेट्स होप कि हम लोग वन डे अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए, इंशाल्लाह। देखिए कभी इंशाल्लाह। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अपना ख्याल रखिएगा जी। ओके, अल्लाह हाफिज। आज है बिजनेस और जॉब के बीच कड़ा मुकाबला, और अभी तक बिजनेस जीता हुआ हर हाल में। हालांकि बिजनेस को चलाना और उसकी स्ट्रैटेजीज, उसके लिए टाइम देना बहुत टीडियस है, जैसे मैंने कहा बड़ा टफ पड़ता है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट लोगों का मानना यही है कि अपना खुद का बिजनेस इज ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन। लेट्स सी आगे जो हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं उनका क्या कहना है। हेलो, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। ये तो रईस जी की आवाज लग रही है मुझे
2: यार, थोड़ा अच्छे निकल के थोड़ा भारी भारी आवाज है, लेकिन बड़े पक्के
1: ये तो आवाज मेरे जहन में है। कुछ जो मेरे बिल्कुल कंसिस्टेंट लिसनर्स जैसे आप हैं, रईस जी हैं, शहजादा जी हैं, गाबा जी हैं, जावेद बाजवा जी हैं, जो हमेशा राइट फ्रॉम द डे वन से जुड़े रहे ना, तो उनकी आवाजें मेरे एकदम जहन में ऐसे फिट है।
2: जी जी जी, आप हैं वो रईस जी ही हैं, बात कर रहे हैं, और हमारे तमाम भाइयों को सलाम व आदाब।
1: वालेकुम सलाम।
2: और हमारे वेलकम उनको भी, मतलब हमारे भाई जावेद साहब
1: जी जी,
2: अल्लाह ताला से मतलब वो वापस आ गए, तो सुहेल भाई से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके अपने उसको जो जरूरियात हैं घर के पूरा करके वापस आ जाए अच्छे से, और तमाम हमारे भाइयों को सलाम व आदाब। और हमारे गापा पाजी को भी सतरी अकाल। हमारे पाजी मतलब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके जाते हैं, बड़ा
1: अच्छा अच्छा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या बता के गए, कि सब हम दोस्त हो गए हैं शो में बात करते करते, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा है।
2: लेकिन अभी थोड़ा सा मिस करेंगे इस शो का, इंशाल्लाह कोई और आएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा, जुड़ाव कोशिश करेंगे वो हर कोई, मतलब बेहतरीन ये है अपनी तरफ से भाई, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, हो जाएगा सब कुछ
1: इंशाल्लाह।
2: महवेश का अभी पता नहीं, मतलब महवेश इस महीने में आ रही है सब
1: जी जी, महवेश जो है वो आ रही है, और इंशाल्लाह फिर संडे और मंडे दो दिन हम और महवेश साथ होंगे।
2: मैंने मैसेज किया था उनको, लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो मतलब इसके लिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया।
1: अच्छा,
2: टॉपिक पे आते हैं। मैं थोड़ा सा ये कहूंगा कि जो अच्छे प्रोफेशन उसमें मतलब जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा मेरे हिसाब से। या तो छोटे छोटे छोटे जॉब में, मतलब आदमी बहुत छोटे पैसे अमाउंट में अगर जॉब कर रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा करना टफ नहीं होता है कोई भी बिजनेस करने के लिए। वो उसके या तो कोई उसका बैकग्राउंड कोई, मतलब उसके फैमिली के लोग अगर करके बना के रखे हैं, तो उसमें मतलब आदमी एडजस्ट होना इतना बड़ा नहीं होता है मेरे ख्याल से। लेकिन अपने हिसाब से अगर कोई अच्छी खासी जॉब मतलब रहता है, अब लाख डेढ़ लाख कमाने वाला अगर आदमी महीने का, और जाके वो अचानक जॉब मतलब कोई भी मतलब बिजनेस शुरू करता है, और वो थोड़ा दिन तक उसको बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा, और इतना आसानी से बहुत आसानी से नहीं हासिल हो जाता है कोई भी चीज। और इखलाक की बात, ये तो बहुत बड़ी सबसे अहम चीज है, इखलाक तो बहुत बड़ी चीज है। और उस माहौल के लोगों से पहले हमको, आपको पहले वहां का आपको माहौल समझ के, और उन लोगों से थोड़ा सा अपना एक फीलिंग बना के, वहाँ के लोगों से हमको राय लेके, उस मार्केट के लोगों से राय लेके हमको थोड़ा सा ये करना चाहिए, पहले स्टार्टअप करना चाहिए हमें कि हम, मैं ये करने के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे भाई आप लोगों का क्या राय है, अगर आप जैसा बताओ। हालांकि कोई जरूरी नहीं कि एक पे ही मतलब आपको एक किसी ने कह दिया नहीं, और हर कोई मतलब आपको अच्छे से मोटिवेट नहीं करेगा, कोई डीमोटिवेट, लेकिन उसमें आपको भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि किस हिसाब से हमें, तो वहाँ का राय, वहाँ का माहौल देख के आपको मतलब उस बिजनेस को मतलब स्टार्ट करना चाहिए, ना कि मतलब बस कोई भी जाके देखे कि मतलब फला दुकान कपड़े का बड़ा अच्छा चल रहा है, फला होटल बड़ा अच्छा से चल रहा है, अब हम भी चलो बगल में आएंगे तो हमारा भी शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मैं खुद मतलब बिजनेस में, मैं मतलब ये नहीं कि मैं रेंट पे छोड़ छोड़ के, मैं खुद अपना कई सालों से मैं अपना दुकान घर बना के, और मैं हाला थोड़ा सा ये करके मैं खुद मतलब थोड़ा वेटिंग में हूँ। हाला प्लानिंग मैंने कर लिया है, क्योंकि बहुत हो गया, प्लानिंग मैंने कर लिया है, लेकिन दूसरा भी हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया है कि मतलब और लोगों को भी थोड़ा दूसरे तरफ उनको लगा के जॉब में, उसके बाद में फिर मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि रास्ता अभी इतना जरूरत बन चुका है खर्चे का, इतना जरूरत बन चुका है पहले के माहौल के हिसाब से, कि हम वो नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं बर्दाश्त

0: कर सकते हैं उस हिसाब से, पढ़ाई से लेके और घर की जरूरियात कि एक बैग हम उसी के ऊपर डिपेंड होके मतलब अपने बिजनेस को शुरू कर दें कि बस चलो यहीं से सब हो जाएगा, नहीं हो पाता है मेरे ख्याल से। हाँ भाई, किसी का मतलब अगर किसी के अपने फैमिली के लोग या कोई करीब के लोग हैं, बहुत नसीब वाले होते हैं कि जो उनका मतलब फौरन ये हो जाता है, सेटअप हो जाता है सही से, लेकिन वो इतना जल्दी से इतना आसानी से नहीं मिल पाता है मेरे ख्याल से। तो थोड़ा सा सोच समझ
1: के, यानी आप कहते कहीं ना कहीं जो है जॉब करने का फायदा है, एक सबसे बड़ा तो फायदा ये है कि आपकी फिक्स सैलरी आ रही है, आपको पता ही है। थोड़ा सा आपका जो आपने कहा भी कि फाइनेंशियल रिस्क कम होता है, हाँ ये भी है।
0: जॉब को भी मैं एकदम ऊपर नहीं रखूंगा, क्योंकि हमारे दीन ने बिजनेस को सबसे ऊपर रखा है, इसको मैं ऊपर रखूंगा। इसके लिए डबल दुआएं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है इसको, लेकिन ये भी नहीं कहा कि मतलब हर कोई अगर अपना बिजनेस, तो भाई नौकरी कौन करेगा उसके पास, तो मतलब वो आमिल कौन रहेगा, काम करने वर्कर कौन रहेगा, तो ये नहीं है। मतलब थोड़ा सा आपको वहाँ पे अच्छे से मतलब फैसला करना, सोच समझ के, जज्बात में और बहुत जल्दबाजी में भी एक दूसरे को देख के नहीं करना चाहिए।
1: और एक चीज मुझे लगती है, हर आदमी के जैसे आपने कहा नेचर पे भी डिपेंड करता है। मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या मैं उस टाइप की बंदी हूँ जिसे अपनी स्टेबल इनकम सही लगती है, एक स्ट्रक्चर्ड करियर सही लगता है, तो मेरे लिए जॉब इज अ गुड ऑप्शन। क्या मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बहुत लोग जो है वो कम रिस्क ही रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनको नहीं समझ में आता है बिजनेस इज अबाउट टेकिंग रिस्क एंड चांसेस। तो ऑफकोर्स फिर वो उस बंदे के लिए, क्योंकि उसकी नेचर ही नहीं है, तो बिजनेस के लिए बिजनेस का जो है वो एक नेचर भी होना चाहिए,
0: माइंड आपको बना के सेटअप करके पूरा एकदम सब तरफ एकदम डिलीट करना चाहिए। बैकग्राउंड को अगर हम अपने माइंड में घूम घूम के हम लेके आएंगे, तो फिर हमें वो हर दिन हमको हार्ट करेगा, और मतलब यार इससे अच्छा तो वही था कि हम इतना करके और ये कर देते, नहीं फिर वो मजा नहीं रहेगा। इसके लिए मैंने कहा कि या तो बहुत छोटे मतलब जो बेचारे जॉब करने वाले होते हैं, तो उनके पास हो जाए तो सोचते हैं कि यार वहाँ पे भी हमको क्या इतना बड़ा फायदा हो रहा है, चलो यहीं से शुरू करके, और वो कामयाब भी हो जाते हैं।
1: कामयाब एक रईस एक चीज और है, आप जितने भी कामयाब बिजनेसमैन को सुनेंगे, क्योंकि मैं तो इस दौरान बहुत सारे इंटरव्यूज करती रहती हूँ, तो मैंने एक चीज जो सब में कॉमनली देखा और नोटिस किया कि सबने पहले जॉब की, वहां से एक्सपीरियंस लिया, थोड़ी सेविंग की और फिर अपना बिजनेस स्टार्ट किया।
0: बिल्कुल
1: हाँ, इस तरह से उन्हें मार्केट की अंडरस्टैंडिंग मिलती है और फिर जाहिर है वो अपना खुद का कुछ कर पाते हैं। तो शुरुआत करेंगे जॉब से। हाँ,
0: लोगों का मतलब थोड़ा सा मतलब ये भी लें वहाँ का, मतलब लोगों का नजरिया क्या है, हमारे उसके उस माहौल में थोड़ा सा करके कोशिश करके, उसके बाद में हम नहीं कहते बिजनेस स्टार्ट करें, और आपके आने वाले फ्यूचर बच्चे बाल बच्चों के लिए भी वो बहुत बेहतरीन मतलब जरिया बन जाता है, और वो एक बार जब शुरू हो गया तो आपका इखलाक बहुत बड़ी चीज है। आज का एटीट्यूड और इखलाक जो जैसे हमारे जावेद साहब ने कहा कि बिल्कुल मतलब वो बहुत जरूरी है। अगर आप भाई डॉक्टर होते हैं कोई कोई मतलब उनका एटीट्यूड कुछ अलग, लेकिन भाई वहाँ पे कोई कोई मजबूर होके, क्योंकि उनके पास वो इतना अच्छा ये होता ना, मजबूर होके जाते हैं। लेकिन अगर कोई छोटे उसमें, तो वो नहीं जाना पसंद करता है, क्योंकि उनका जो रवैया होता है, बिहेवियर होता है उनका, कोई किसी किसी का बड़ा मतलब सख्त होता है, तो वो लोग हाँ मजबूर होके कि भाई मतलब भाई कोई सर्जन है, कोई अच्छा हाथ का या कोई भी चीज का मतलब है ये, तो भाई मजबूर होके उसी हमारे इसमें इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं, तो मजबूर होके जाता है। लेकिन खुशी खुशी कोई बंदा, चाहे कोई भी बिजनेस हो, चाहे होटल हो, चाहे कोई मतलब उसके साथ में बड़ा इखलाक बहुत बड़ी चीज है, इखलाक
1: बहुत बड़ी चीज है,
0: और सोच समझ के अपना स्टार्टअप करना चाहिए। मतलब पीछे को ज्यादा तरजीह ना देके, फिर मतलब ये नहीं कि फिर मुड़ना कि 2-4-6 महीने के बाद फिर बंद करके फिर उसी पे, नहीं फिर मजा नहीं है। फिर आपको एकदम फैसला कर लेना चाहिए कि थोड़ा सा ये करके कुछ दिन और आजमाना चाहिए, 4-6 महीने में नहीं होता है, 1-2 साल आजमाएं, अगर नहीं तो फिर उसके बाद कुछ ऑप्शन चुने, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना जल्दबाजी में ना मतलब उसको बंद करके और

0: हमारे पास जितना अल्लाह ताला लिखा है अपना इखलाक और वो रवैया बेहतर रखो, ईमानदारी रखो, तो इंशाल्लाह धीरे धीरे धीरे धीरे अल्लाह ताला उसमें जरूर बरकत देगा।
1: बरकत कहेंगे,
0: घबराना नहीं चाहिए।
1: बहुत ही अच्छी एडवाइस आपकी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
0: ज्यादा कोई फैसला बड़ा मैंने तो नहीं शुरू किया अभी तक, तो मैं जॉब पे ही डिपेंड हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ मार्केट का माहौल थोड़ा देख के, तो उसके ऊपर मैंने अपना मतलब कम्प्लीमेंट किया है।
1: मार्केट स्टडी ना आप अच्छे से कीजिएगा, कोई जल्दबाजी में बिजनेस स्टार्ट मत कीजिए, उसके लिए खूब टाइम लीजिए, खूब अच्छे से रिसर्च कीजिए, सब कुछ कीजिए।
0: मैं खुद अपना भी प्लान करके करके करके मैं एकदम प्लान करता हूँ, फिर मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह धीरे धीरे उसके तरफ मेरा रुझान ज्यादा है, क्योंकि अब बहुत हो गया, अब और लोगों को थोड़ा सा और आगे करके इंशाल्लाह मैं खुद अपना प्लानिंग कर रहा हूँ।
1: बहुत ही अच्छा, इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जो भी काम करें, इंशाल्लाह। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का,
0: बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम भाइयों को सलाम और आदाब। ओके, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। ऑलराइट, यहाँ पर आज बात हो रही है ऑफकोर्स बिजनेस की, बात हो रही है जॉब की, और मेरे छोटे से बिजनेस की, जो चाय का बिजनेस मैंने आपके साथ शेयर किया वो ठीक ठाक तो चल रहा था, लेकिन अब एक कॉम्पिटिटर आ गया और उसके बाद से मेरा बिजनेस जो है वो काफ़ी स्लो हो गया है। तो मुझे अपने बिजनेस को रिवाइव करने के लिए आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, कौन कौन से स्ट्रैटेजीज आपके जहन में, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर है 6622107, या फिर आप मुझे कॉल कीजिए, कॉल करने के लिए नंबर है 4434377। और फिलहाल यहाँ पर एक मैंडेटरी ब्रेक तो हमें लेना ही लेना है, हम यूं गए और बस यूं आए।

0: 107 पर दिल से देसी।
1: Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नासिया आपके साथ, और आज बात हो रही है बिजनेस की या फिर जॉब की। आपके लिए, आपको आपके हिसाब से क्या लगता है बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? वहीं एक और भी मैंने अपना बिजनेस का एक सिनेरियो आपके साथ शेयर किया है, जहां पर मैं चाहती हूं कि आप मुझे अच्छी गुड एडवाइस दीजिए जिससे मेरा बिजनेस रिवाइव करे, बेहतर हो, एक गुड पेस पे आ जाए। एक कॉलर मेरे साथ यहां पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खलील जी हैं क्या?
2: गुलाम मुस्तफा जी।
1: हाँ जी, गुलाम मुस्तफा जी, कैसे हैं आप बताइए, और कैसी जा रही है आपकी सुबह?
2: मैं तो ठीक हूँ। पहले आपने पैसा, फिर हाँ और ना, फिर रिजल्ट, और आज आप अच्छा घुमा लेती है।
1: ये सारी चीज

0: क्या आपके और हमारे साथ जुड़ी हुई है ना?
1: अब तो मैं वो क्या कहते हैं बादाम भी लेकर आया हूँ घर में, वो अखरोट भी लेके आया हूँ. मैंने कहा वो दिमाग दिमाग भी तो तेज होना चाहिए ना बात करने के लिए.
0: नहीं नहीं माशाल्लाह आप सबका दिमाग अच्छा खासा तेज है, ऐसे मत कहिए. बस ये है कि कभी कुछ मौके पे याद आ जाता है, कुछ नहीं आ पाता है, बस यही बात है.
1: तो आप कभी कभी थोड़ा सा चेंजेस लाए, पूछे आप पाकिस्तान का शेर सुनाए, आज आपने आपकी महीने में सैलरी ज्यादा आने वाली, कुछ इस तरह के मौजूद भी लेकर आए.
0: चलिए इस तरह के भी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में आपको सुनाई देंगे, सुनेंगे जब हम लोग आफ्टरनून में पहुंचेंगे. अभी तो खैर जी, अभी तो इसी तरह के टॉपिक्स चल रहे हैं. तो कुछ ऐड करना चाहेंगे?
1: बिजनेस और
0: जॉब पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्या है?
1: वैसे मैंने तो सारी जिंदगी नौकरी की है.
0: अच्छा,
1: तो अब जो जिंदगी के बाकी चंद साल रह गए रिटायरमेंट से पहले, मैं कहता हूँ ये भी इसी जॉब में गुजर जाए. वैसे तो बहुत सारे लोग मैंने देखा है यहाँ पर जॉब के साथ साथ छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं. तो मैंने भी एक दो बार ट्राई की है, तो अच्छा उसमें फायदा भी मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर टाइम आप दे नहीं पाते. और सबसे पहले आपको ये सोचना है कि अगर आपने अगर साइड बिजनेस करना है तो आपका माइंड किस चीज का है, यानी कि आप साइड बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आपके माइंड के अंदर ये होना चाहिए कि आपने क्या चीज को आपने प्रमोट करना है या क्या आगे लेके चलना है, क्योंकि आपका दिमाग भी तो होना चाहिए ना, आपने वो काम कर सकते हैं आप.
0: मतलब एक तो आपका इंटरेस्ट हो, आप पैशनेट हो, फिर आपके पास नॉलेज हो वैसी, तब आप वो काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. हाँ ये बात है.
1: मैं पाकिस्तान में जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत सारी ऐसी शॉप्स होती है, इतनी पुरानी पुरानी शॉप्स है. अभी कल ही मैंने एक वीडियो मैंने शेयर किया अपने किसी अजीज के साथ, तो उसमें ना सियालकोट के अंदर एक शॉप थी, वो चापे थे ना चापों का गोश्त, तवा सा बड़ा था उसके ऊपर टक टक करके बना रहा था. तो मैंने उसको सेंड किया, मैंने कहा इतनी मजेदार, और ये मैंने कहा कभी सियालकोट आओ तो आप खिलाइएगा. तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, ये तो हमारे घर आते हैं, ये तो मेरे हस्बैंड के दोस्त ही है. तो बताया इन्होंने ये जो इनका ये चांपों की ये जो बनाते हैं ना बिजनेस इनका, ये इनके बाप दादा से चला रहा है.
0: देखिए कितना पुराना है और कामयाब.
1: तो मैं ये अर्ज करना चाहता था कि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे काम ऐसे हैं, बिजनेस ऐसे जो उनके बाप दादा से चले आ रहे हैं. हमारे यहाँ एक स्वीट शॉप देखिए, बहुत सारी ऐसी हैं जिनके नाम आप सुनेंगे तब, जलंधर स्वीट. आप जलंधर किधर है? वो तो पाकिस्तान
0: लाहौर स्वीट्स तो बहुत फेमस है, लेकिन चलिए भी अच्छा है, जलंधर स्वीट्स भी है,
1: दिल्ली स्वीट्स भी है, सियालकोट स्वीट्स भी है. तो ये वो ऐसे नाम है. मैं अभी डेढ़ दो साल पहले मैं लाहौर गया, तो आते हुए मैंने कहा मैंने यहाँ से मिठाई लेनी, तो वो मुझे एक शॉप के अंदर, लेकिन मैंने पहली दफा जिंदगी में नाम सुना बुंदुस्वीट. ये कौन सी शॉप है? तो देखा उसके ऊपर ना डब्बे के ऊपर बहुत सारे महाराजा किस्म के और महारानी किस्म, मुझे लगता है कि ये नाम जो है बहुत ही पुराना है.
0: अच्छा, तो आपने बातों में बड़ी अच्छी बात कह दी गुलाम जी. नाम जो भी आपका बिजनेस है, कोई भी रेस्टोरेंट है, कोई कैफे है, टी शॉप है, जो भी है, उसमें आपने नाम क्या रखा है, कितना कैची है, ये भी मैटर करता है. कुछ यूनिक है या कैची है तो लोग जो है ना कम से कम एक बार कहते हैं अच्छा ये नाम, चलो लेट्स विजिट फॉर वन टाइम, लाइक एक बार जाके देखते ही देखते हैं कि क्या है. तो ये भी चीज़ आपने बहुत अच्छी एक आइडिया दिया बातों में कि नाम का भी फर्क पड़ता है.
1: अच्छा, और एक दूसरी बात आपको ये बताऊं कि जब पाकिस्तान में जाता हूँ ना, तो वहाँ सियालकोट देखे, गुजरांवाला देखे, वैसे मैं बेसिकली गुजरांवाला से हूँ,
0: अच्छा,
1: लाहौर चले, आपको कुछ ऐसे बाजार नजर आएंगे, इतने पुराने बाजार, इतनी पुरानी शॉप और इतना पुराना उनका वो खाने पीने का स्टाइल और वो चीजें. तो जब हम खाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है, जो टेस्ट हमें वहाँ मिलता है ना उनके बिजनेस के अंदर या उन चीजों के अंदर, वो यहाँ आपको नहीं मिलेगा.
0: ये बात है, एक हमारा एक वो बन जाता है, इमोशनल कनेक्शन भी बन जाता है ना, कि पहले बचपन में हम ऐसा खाते थे और अभी भी हमें वैसा ही अगर मिल रहा है तो देयर इज लाइक इमोशनल क्वोशेंट, वो एक पार्ट ऐड हो जाता है, एंड दैट्स हाउ हम उस पे बार बार जाते हैं या उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं. ये भी बहुत अच्छी बात है आपने कही. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मैटर करती हैं और बहुत मैटर करती हैं किसी भी बिजनेस को कामयाब बनाने के लिए. इन चीज़ों पर ध्यान रखना, जैसे आपने कहा कि भाई एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कस्टमर आता है आपका प्रोडक्ट खरीदने नहीं है, वो एक्सपीरियंस खरीदने आता है. ये लाइन आप

0: में बहुत अच्छे से समझा दी, तो ये वाकई मैटर करती है।
1: एक बात और ऐड करूंगा।
0: हाँ जी।
1: अब देखिए बहुत सारे जो ना डॉक्टर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी ना इस लाइन में आ जाए, लेकिन उनके तीन चार बच्चों में से एक बच्चा भी काबिल नहीं होता कि डॉक्टर बन सके। ऐसा भी मैंने देखा अपनी जिंदगी के अंदर, कोई आईटी में चला जाता है, कोई और पढ़ लिख जाती है, लेकिन वो डॉक्टर के पेशे में नहीं आते। तो मुझे बड़ा शौक था ना डॉक्टर बनने का एक एक वक्त जमाने में। तो मैंने अपने बड़े बेटे से एक दफा कहा, जब वो आज से बहुत साल पहले की बात है, गालबन वाटरी में था अभी, तो वो जॉब करता है। तो मैंने एक दफा उसको कहा, मैंने कहा बेटा आप इतनी मेहनत से पढ़ते इतना पढ़ते हैं, तो मेरी ख्वाहिश है मैं आपको डॉक्टर बनाऊं। उसने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं डॉक्टर बना, मुझे क्यों बनाना चाहते हैं
0: आप अपना जो ड्रीम था मुझ पे थोपना चाहते हैं। हाँ, ये बात है।
1: उस दिन बाद मैंने कभी किसी बच्चे से को नहीं कहा कि आप डॉक्टर बने।
0: तो नहीं, ऐसे मत कहिए डॉक्टर बने,
1: फॉरवर्ड जवाब दिया
0: नहीं, आप सवाल ऐसे, क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ऐसे सवाल है।
1: सवाल उसने कहा आप क्यों नहीं डॉक्टर बना, मुझे क्यों बनाना चाहते
0: हैं। ये तो है, क्योंकि डॉक्टर बनना, बने रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई लाइफ लॉन्ग चलती है डॉक्टर कि आपको पता ही है। उसमें तो वही बंदा जा सकता है जिसको बहुत पढ़ाई लिखाई का शौक हो और पूरी जिंदगी तैयार है पढ़ने के लिए। तो ये तो है।
1: तो आपसे एक छोटा सा शिकवा भी है, मैं कर लूं?
0: हाँ जी करिए।
1: आप कल भी वो नूरजहां का कुछ गाना सुना दिया करें, इतनी अच्छे से है
0: अरे गुलाम जी, ये हमारे देखिए सेट होता है कि रात में ना वैसे गाने चलेंगे 70s 80s के 60s वाले, सुबह आप नहीं चला सकते, हमारे हाथ में नहीं होता है, हमारी टीम सेट करके देती है पूरा लॉग हमारे लिए। तो हम जो है इधर उधर चेंज करें तो हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, तो इसलिए हम नहीं कर सकते। ये बाउंड है, आपने देखा होगा पूरे शो में बहुत सारे हमारे आरजे से कहते रहते हैं कि नहीं अब बीट ही बोलिए या ऐसे सॉन्ग रिक्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो हमें गाइडलाइंस हैं। अब हमें भी तो कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। आई होप आप समझ रहे हैं कि हमारी भी अपनी सर्टेन लिमिटेशंस हैं, इसलिए नहीं चला सकते नूर जहाँ जी। लेकिन रात में हमारे चलते हैं लेट नाइट, इस तरह के सॉन्ग्स हम चलाते हैं, हमारा शो है स्पेशली। तो मैं टाइम थोड़ा सा और क्रॉस चेक कर लूँगी, तो आप सुनिए रात में स्पेशली हमने शो रखे हैं जहाँ पुराने सॉन्ग्स वगैरह हैं उनके बारे में ट्रिवियाज भी शेयर करते हैं हमारे आरजेस आपके साथ, तो वहाँ ज़रूर कनेक्ट होइएगा, ठीक है।
1: लेकिन वो जो हम मॉर्निंग में सुबह ड्यूटी से आते हुए आपको टाइम दे पाते हैं, वो शाम भी दे पाएंगे।
0: अब ऐसा ना हो कुछ लोग कहें कि मैम आपने चला दिया ऐसा गाना, हम सो गए आपकी वजह से, ये वाली भी हो जाती कहानी। नहीं लेकिन हम समझ सकते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं पुराने, लेकिन देखिए कुछ अगर इसका सोल्यूशन निकल आए इंशाल्लाह इन फ्यूचर तो जरूर, क्यों नहीं। वो गाने तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं, एंड यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, अच्छा लगेगा। जज़ाकअल्लाह जी, थैंक यू सो मच गुलाम जी आपकी कॉल के लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपकी ये चाहत और जो हमारे व्यूज लेती हैं और हमें बहुत कुछ आपसे सीखने का मिलता है, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपको भी हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बातों बातों में गुलाम जी कह गए। एक तो नाम इन्होंने बड़ा अच्छा बताया और ये समझाया कि वो जो कनेक्शन बनता है ना, यू नो व्हाट आई मीन टू से एग्जैक्टली, कि भाई आपका एक इमोशनल, आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज और वो जो इमोशनल कनेक्शन आप जो किसी भी शॉप के किसी भी खाने के साथ कर पाते हैं, वो भी उस डिश को, उस शॉप को, उस बिजनेस को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे मैंने कहा कि लोग प्रोडक्ट खरीदने नहीं जाते, वो एक्सपीरियंसेस बाय करने जाते हैं। ये हमें समझना है बिजनेस में, बिजनेस के टर्म्स में हम लोग इस तरह से कहते हैं, जो आपने एक्सप्लेन भी किया यहाँ पे। एक और कॉलर मेरे साथ जुड़े हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं समझ जी आप, खैरियत से?
2: मैडम आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ, मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, कुछ बताइए।
2: हाँ मैडम, कहाँ से, माशाल्लाह से अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बोले, वरना मुश्किल हो जाएगी फिर।
0: अल्हम्दुलिल्लाह मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है जो मैंने शेयर किया है कि अगर मैं बिजनेस शुरू और अगर वो ना चले तो तब के लिए आप मुझे कुछ बताइए।
2: नहीं, आपका बिजनेस चली जाएगा माशाल्लाह से, कोई ऐसी बात नहीं। बिजनेस का पहला उसूल है कि जो है बात करना होता है, और माशाल्लाह से आप बात बहुत अच्छी करते हैं। कहाँ कैसे किसको कहाँ पर कहाँ रोकना है, कहाँ बिठाना है, ये आपको बहुत अच्छा बखूबी आ चुका है। तो आपका बिजनेस चल पड़ेगा, आपकी दुकान पे सारे ग्राहक रहेंगे, बेफिक्र रहें आप।
0: चलिए फिर तो, चलिए मैं काफी खुश हुई इस बात से कि मैं खुद ही बैठा करूँ अपनी दुकान पे, है ना, ये आपने मुझे एडवाइस दी।
2: ना आपको बैठने की

0: जरूरत नहीं है, बस आप टीम मीटिंग कर लेंगे ना तो सारी टीम में एक मोटिवेशन जाग जाएगी और खुद ब खुद जो है अपने काम पे चल पड़ेंगे। ये बहुत कम लोगों के पास होता है।
1: समझ गई आपने, बातों बातों में बहुत अच्छी बात भाई, टीम के साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, अपनी टीम को मोटिवेट करना
0: नहीं होता है ना। अब हमारे दादा परदादा हुआ करते थे, वो जो अकेले जो है अकेला काशी सब देख लेगा बोले सब, अभी नहीं है, अभी सब टीम के साथ चलना पड़ता है, टीम बनानी होती है, बिजनेस का जो है क्या बोलते सबने स्ट्रेटजीज करना होता है, बहुत सी सारी चीजें होती है। लेकिन ये है कि देखिए एम्प्लॉय और बिजनेस का जो आपने बात रखा है, बिजनेस की तरफ जाएंगे एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, हर कोई बिजनेस की तरफ नहीं जा सकता है,
1: नहीं जा सकता।
0: क्योंकि बिजनेस का एक ऐसा है कि ये जितने भी बड़े बड़े कंपनीज खड़ी हुई हैं आज, इन्होंने एक या दो डेकेड्स लिए हैं अपनी लाइफ में, तब जाके ये चीज खड़ी हुई है उनकी। और आज के टाइम पे क्या हो गया है, सबको शॉर्टकट जाने की खुशी है, जल्द से जल्द मैं बड़ा बन जाऊँ, जल्द से जल्द मैं, तो ऐसा नहीं होता है, एक या दो पीढ़ी को खपना पड़ता है बिजनेस में, तभी जाके तीसरी पीढ़ी मौज मारती है।
1: बहुत सही बात आपने कही, कम से
0: जो है गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून मिलता है, उनके माँ उनके दादा परदादा मिट्टी के बर्तन में खाए हैं तो ये सोने की प्लेट में खा पा रहे हैं।
1: ये बात आपने सही कहा।
0: तो एम्प्लॉयज भी जो है बिजनेस को ओनर को मतलब रिच बनाने में एम्प्लॉयज का हाथ होता है, उसका कोई कमाल नहीं है। एम्प्लॉयज अब जैसा कि आप हैं, आप जो है चला रहे हैं आरजे को, आरजे का कोई कमाल नहीं है, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा आपके चैनल वालों को, चैनल चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी एक चैनल जो है पैसा पकड़ूंगा जो खोल के बैठ जाऊंगा, लेकिन इसको चलाने के लिए जो मेहनत होती है वो मेहनत जो करता है बंदा उसकी कदर करें। जब बिजनेस में जो है एम्प्लॉयज की कदर होना शुरू हो जाएगी तब उसका बिजनेस जो है चार चांद होता है। देखिए अब यूरोपियन कंट्रीज में और कनाडा में वहाँ पर जो है एम्प्लॉयज को खुश रखते हैं, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन के ऊपर में काम होता है। यहाँ तो फर्जी साला सब गुलामी में लगे पड़े हैं, मतलब मारो इन्हें जितना होता है कि लगड़ा दो।
1: ये आपने सही बात कही कि अगर किसी भी बिजनेस को कामयाब करना है तो उसके एम्प्लॉयज यानी जो टीम का जो सपोर्ट है उसे मोटिवेटेड रखिए, उनको अपना उनको थोड़ा सा उनका मोरल जो है थोड़ा हाई रखिए, एंड दैट्स हाउ उनका जो काम होगा जो वो देंगे रिजल्ट्स अमेजिंग होंगे। ये बहुत अच्छी बात है, टीम आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए,
0: इंटरकनेक्टेड होती हैं ये चीजें। और एम्प्लॉयमेंट कोई बुरी चीज नहीं है, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छी चीज है। इसमें आपको देखिए कि आप एक जगह रुक नहीं सकते, अनलेस आप अपने स्किल्स को जो है इम्प्रोवाइज करते रहे। अब आप जब एक प्रोफाइल में आते हो, जब एक 15 साल के बाद में 20 साल के बाद में आपको एक जैसा कि हम एक सोचते हैं कि मेरा बिजनेस एक 10 साल के बाद यहाँ तक पहुँचना चाहिए, मेरी इतनी सारी ब्रांचेस होनी चाहिए एक्स वाई जेड, तो उसी तरीके से भी अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो आप ये चीज सोचना चाहिए कि 15 साल के बाद में मैं ये पोजिशन पे रहूँ, और वो पोजिशन पे रहने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है जो स्किल्स होती है आपको उसके ऊपर में वर्कआउट करना होता है, तब जाके वो सारी चीजें मिलती हैं। और डर्टी पॉलिटिक्स से जाएंगे तो एक ना एक दिन तो फॉल डाउन हो ही जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत होती नहीं है वो संभालने के लिए। जैसा कि बिजनेस लोग पता नहीं होता है खोल लेते हैं कर लेते हैं पैसा बन जाता है चलो शुरू करते हैं, फिर उसके बाद में वो गिर जाते हैं, बिजनेस चलता नहीं है, फिर
1: वापस जॉब पे आ गए,
0: खराब है, किस्मत खराब है यार, ऐसे वैसे। तो ऐसा नहीं है, आपकी किस्मत अब बहुत अच्छी होती है, हर एक की किस्मत अल्लाह ने बड़ी सुनहरी लिखी है, पर जितना है कि अपने आप पे काम करते रहना होता है, कंसिस्टेंसी होनी बनी रहती है और कुछ नहीं है। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट लास्ट में यही कहूंगा कि नसीब है,
1: नसीब
0: वो कहते हैं ना कि तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है।
1: बहुत सही।
0: तो बिजनेस में जो है हर कोई अंबानी नहीं बन जाएगा और हर कोई जो है बिल गेट्स नहीं बन जाएगा बोले ऐसा है। और ये जितने भी जो पैसे वाले है ना इनके पास में कोई एजुकेशन नहीं है मैडम, ये बस जो है दिमाग है, इन्होंने इस्तेमाल किया है कहाँ कैसे कैसे कौन से डिसीजन को किस तरीके से लेना चाहिए उन्होंने लिया है, और बड़े बड़े डिग्रियों वाले इनके पास में जो है सलाम ठोकते बैठे हैं। वही तो बताओ ना, किस्मत की बात है, बिजनेस फर्स्ट पे रखना चाहिए अगर बंदे को उतना ही, और बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं है, बिजनेस के लिए बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए होता है।
1: कोई कहता है समझिए एक लाइन बहुत अच्छी मुझे याद आई, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट भी कर रही हूँ बीच में।
0: नहीं नहीं कोई नहीं, आप बोलिए।
1: किसी ने मुझे अभी बताया जब मैं बिजनेस इंटरव्यूज कर रही थी कि बिजनेस के लिए बिजनेस माइंड होना बहुत जरूरी है, और जैसे आपने कहा कि इसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं है, बिजनेस माइंड होना जैसे हम कह सकते हैं बिजनेस एक्यूमेन होना वो बहुत जरूरी है, और हर किसी के पास नहीं होता, कुछ लोग जो है वो दे आर गुड एज एन एम्प्लॉई। हाँ
0: आपने बिल्कुल सही कहा, आप जो है अब मेरे यहाँ में हम जो है कुछ सर्कल होता है आप जिस सर्कल में उठेंगे बैठेंगे उसका असर बहुत होता है
1: जी।
0: तो आप बिजनेस माइंडेड पीपल लोगों के साथ भले ही वो

0: उठाएंगे ही क्यों ना हो, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, अगर उसके साथ में भी उठेंगे बैठेंगे तो आपको बिजनेस के टिप्स मिलेंगे, बिजनेस करने का हौसला मिलेगा. और जो है इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा हौसला बुलंद वाले लोगों के साथ बैठा करो बल्कि.
1: बहुत अच्छा कहा आपने.
0: तो आपकी जो है क्या कहते हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए करेज जाएगा आपके पास में. बिजनेस में सारा खेल करेज का है मैडम.
1: हाँ, रिस्क आप कितना ले ले. बिल्कुल बिल्कुल 100%
0: कैलकुलेटिव रिस्क होता है. और कभी कभी जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाके रिस्क लेना पड़ता है.
1: yes.
0: तो सारा रिस्क का खेल है, लेकिन पेशेंस बहुत है इसमें.
1: 24
0: में लगे होना है आपके बिजनेस के लिए. आप एम्प्लॉयमेंट में क्या है ना कि हमको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि चलो भाई छुट्टी मिल जाएगी, ऐसे हो जाएगा एक्स वाई जेड उसमें थोड़ी बहुत. लेकिन ये ना आपके उसमें ग्रो नहीं. बिजनेस यानी आप एक 10 झाड़ लगा सकते हो, एम्प्लॉयमेंट यानी एक या दो ही झाड़ लगाओगे उसी से आपको फायदा पहुंचेगा, बस वही है.
1: और आपकी इस लाइन से ना मुझे एक चीज याद आ गई. हम लोगों ने अपने बिजनेस उसमें पढ़ा था जब स्टडी की थी कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी कहलाती है, जहाँ के कंपटीशन को बीट मत करो, कंपटीशन को इररेलेवेंट ही बना दो मार्केट में. जब वो इररेलेवेंट होगा तो वो, हाँ, तो ये चीजें आपने बोलते बोलते मुझे याद दिला दी मेरी पढ़ाई. बट वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी खासी आपकी अच्छी नॉलेज है, अच्छी पकड़ है.
0: कॉम्पिटिशन में मेरा ये मानना है कि कॉम्पिटिशन पहले तो करना ही नहीं चाहिए. अपनी बिलीव, अपने तकदीर पे आपको पहले सबसे पहले भरोसा होना चाहिए कि आपकी तकदीर पे आपको अल्लाह ने बहुत लिखा है. अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं दूसरा करूँगा. हार नहीं माननी है जिंदगी में, चाहे कोई भी मरहले में रहो, हार नहीं माननी है. जो बंदा हार मान लेता है उसके लिए दुनिया नहीं है, दुनिया है ना आखिरत है. हिम्मत से लड़ते रहना है, चलते रहना है, बस ये बात है.
1: ये बात है, बहुत ही अच्छी बात, जबरदस्त समझे. थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े थे मेरे साथ और इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर करते हैं. हैव अ ग्रेट वीकेंड, अपना ख्याल रखिएगा. ओके, अल्लाह हाफिज़. बाय, अल्लाह हाफिज़. ऑलराइट, यहाँ पर एक छोटा सा क्विक सा मैंडेटरी ब्रेक और वापस आएंगे तो इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। राइट गाइज, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स। मैं हूं नासिया आपके साथ और इस वक्त हमारे स्टोरी क्लॉक में बज रहे हैं 8:06।
0: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग्स आरजे नासिया के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हाँ जी हाँ जी, वेलकम बैक। और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जो है कॉलर कनेक्ट हो चुके हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। आप शहजादा यूं ही नहीं है, पता है आपका नाम जो है वो बिल्कुल आपके आपकी शख्सियत आपकी पर्सनालिटी के साथ 100% मैच करता है। आप शहजादा हैं वाकई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। कल के लिए तो पहले मैं आपको सॉरी बोलूंगी। प्लीज प्लीज, आई एम रियली सॉरी।
2: आई नो दैट मैं वहां पर

0: कल मैं आपको कॉल ही नहीं कर पाई विद द कॉल्स, असल में बिजी आती रहती लाइन तो हम खुद मिला ही नहीं पाए.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और लास्ट में सोचा था कि मिलाएंगे, फिर वो एकदम सहन से निकल गया.
1: हाँ हाँ बिल्कुल.
0: तो आज के आई एम सॉरी फॉर दैट.
1: हाँ जी जावेद साहब को मोस्ट वेलकम. आगे जावेद साहब और उनकी आवाज भी मैंने सुनी, बड़ी खुशी हुई है. और फिर जावा भाई, रईस भाई, सब और जितने भाई अपने सब आज है ना, बड़ा अच्छा लगा. लेकिन मेरी नाजे में मेरी बराबर डेली रिंगिंग होती थी, लेकिन रिसीव कई किसी और की होती थी. तो फिर मैंने गाबा जी को मैसेज भी किया, मैं बोला मेरा बैड लक चल रहा है.
0: नहीं नहीं ऐसे मत कहिए प्लीज प्लीज.
1: आज लग है वीकेंड में.
0: हाँ देखा
1: आखिरकार
0: आपका हमेशा ये तो हमारे लिए बैड लक हुआ कि हम आपसे बात नहीं कर पाए थे दिन एक दो दिन, ये बात जरूर है. लेकिन हाँ आपने मुझे मैसेज किया था, मुझे याद है. मेरी थोड़ी सी
1: हाँ.
0: तो आज तो मैं बिजनेस की बात कर रही हूँ, कुछ कहेंगे आप?
1: बिल्कुल. बिजनेस तो मेरे मतलब है ना, एक मतलब खाब, एक मतलब रग रग में है, जितने बिजनेस मैन है ना.
0: नहीं नहीं आपकी रग रग में क्रिकेट है.
1: क्रिकेट है लेकिन बिजनेस का पता नहीं कई टाइम थे, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट जॉब था ना सऊदी अरब में.
0: अच्छा.
1: तो वैन सेल्समैन था, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड प्रोडक्ट.
0: अच्छा अच्छा.
1: तो हाँ, तो हमको ऐसा ऐसा एरिया दिया जाता था ना कि जहाँ से सेल निकालना मुश्किल था. टारगेट होता था, टारगेट अचीव करेंगे तो फिर आपको कमीशन है.
0: अच्छा.
1: तो जो हम दुकान वाले से कन्विंस करते थे ना, उसको मक्का लगाते थे, उसको फायदे दिखाते थे. तो हम अगर समझ लो 20 विजिट करते थे ना, तो उसमें से ना 2 या 5 लोग मतलब लेते थे, क्लिक होता था. तो 15 जो है ना रिजेक्ट होता था. अब इसकी वजह क्या है कि हम मेहनत नहीं करते, क्या प्रोजेक्ट में अपना जान नहीं है, प्रोडक्ट में जान नहीं है, या उस क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं, या दुकान वाले को मुनाफा नहीं है, क्या हो सकती थी इसकी वजह से? या वो एरिया में जो पॉपुलेशन है वो इस चीज को लाइक करते हैं या नहीं करते हैं? जो जो हम लेके मार्केट में घूम रहे हैं. तो इसी तरह से कोई भी रेस्टोरेंट है या टी स्टॉल है ना,
0: मैं तो टी स्टॉल ही लेके चल रही हूँ.
1: हाँ बिल्कुल. तो टी स्टॉल भी आप देखे होंगे ना. टी स्टॉल तो पहले तो आपको है ना सर्वे करना है, पूरा सर्वे करना है कि यहाँ कितना एरिया है, कितना बड़ा ये है, इसमें कितना पॉपुलेशन, कितनी पब्लिक है, और यहाँ पे कितने शॉप ऑलरेडी है अवेलेबल. हाँ, और अवेलेबल है उसके बाद सर्वे के बाद आपको खुद जजमेंट मिलता है ना कि यहाँ पर हर एक शॉप पे इतना क्राउडेड है. आप भी कभी विजिट किया तो आपको वेट करना पड़ा, आपको टाइम पे मतलब नहीं मिल पाया जो जितना जल्दी चाहिए था. तो अगर आपके पास वो टैलेंट, वो कॉन्फिडेंट, वो स्किल है कि आप वो टेस्ट में एक ब्रिलियंट टेस्ट दे सकते हो, एकदम ब्रिलियंट, एकदम डिफरेंट, और हर चीज से क्वांटिटी से और हर चीज से मतलब ज्यादा और थोड़ा सा चीज में, सही है? तो जो एक पिएगा ना तो वो बाद में ना 4 को लेके आएगा. ठीक है. हालांकि वहाँ और शॉप ऑलरेडी है पहले से ही है, पूरा कवरेज एरिया, लेकिन वो जो एक जब एक बार जो बंदा पी के गया वो 4 को लेके आएगा, बोले कि वहां चलते ही अभी उधर शॉप खुला है, कभी वहां की चाय पिया है क्या? हाँ. तो ये जो स्किल आपके आपके अंदर है कि आप, आपके पास ऐसा मटेरियल, आपके पास एक ऐसे टैलेंट है ना कि आप उसको उसी चाय को कैसे डेवलप करते हो छा जाने के लिए. ये अपने आपका खुद का, अपना खुद का एक्सपीरियंस खुद उसमें एक है ना, बेहतरीन मास्टर होना बहुत जरूरी होता है उसके लिए. आप खुद उसमें, ये नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया कि मेरे भाई को बिठा दिया और शाम को आए भाई क्या बेचा, तो बोले भाई मैं तो 100 रुपए का बेचा, ग्राहकी नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है ना.
0: सही कहा. और पता है इसे इसे जो आपने बात कही ये मुझे याद है, इसे कहते हैं कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटजी. कि हम लोग क्या होता है ना, जब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं सोचते ये रहते हैं कि नए कस्टमर्स आए, जबकि प्रॉफिट जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर से आता है जो आपके बने हुए हैं. और वो कैसे आप पब्लिसिटी माउथ टू माउथ, जैसे आपने कहा कोई बहुत अच्छी बना रहा है तो उस फ्रेंड ने उसको बोला, उसने बोला, तो इस तरह से बस जो आपके बन जाए उन्हें बना के रखो, वो जाने चाहिए. अगले आ रहे नहीं आ रहे, बट वो नहीं जाने चाहिए. ये आपकी स्ट्रेटजी बहुत इम्पोर्टेंट है इस पे काम करना.
1: और जी जी जी. और उसके लिए ना आप है ना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप है ना 6 मंथ का है ना आप बैंक में ना स्टाफ की सैलरी उसका

0: आपका खुद का शॉप नहीं है तो उसका रेंट ठीक है, वो सब आपको है ना बैकिंग करके चलना है पीछे छह महीने का। ये नहीं कि सेल होएगा बिकेगा इसमें से प्रॉफिट निकाल के मैं उसमें से सब मैनेज करूंगा, ऐसा नहीं होता है। वो छह महीने आपको बैकिंग पीछे करके चलना है, उस पर डिपेंड नहीं हो जाना है कि ये मतलब। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस, आपका टैलेंट, आपकी स्किल क्या नहीं ये होगा, ये महीने नहीं अगले महीने, अगले महीने नहीं अगले महीने, लेकिन होगा होगा होगा और वो होता है, तो होता है। हाँ ये नहीं क्या नहीं होता है, होता है मालूम है। और जिस हर चीज का है ना जो कोटेशन निकालना है ना वो भी एक टैलेंट है। मिसाल के तौर पर आपने एक टी स्टॉल खोल के दे दिया अपने भाई को, क्या भाई तू चला, अब उसने शाम को बोल दिया कि दे ये तो 100 रुपीज का मेरे पास है ना काम हुआ है, हुआ ही नहीं। लेकिन आपको कैसा पता चलेगा कि 100 का कैसे काम हुआ, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट आपने उसका कोटेशन निकाला ही नहीं। वहाँ आप लॉस, वहाँ आपका लॉस हुआ ना, वहाँ आप नुकसान में, और आपको हर महीना नुकसान ही दिखा दे रहा है। लेकिन आपके पास खुद टैलेंट है ना, जैसे मैं कोई टी स्टॉल खोलता हूँ ना तो मैं स्टार्टिंग में ना 5 लीटर दूध पिए ना चाय बनाता हूँ मैं, ठीक है, और उसमें मैं निकालूंगा खुद खड़े रह के जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाती कि कितने कप निकले इसमें। एक कप की एक कीमत है, एक रियाल है, एक एक कप की एक रियाल है। तो मैंने अगर 5 लीटर में, 1 लीटर में अगर 10 कप बनते तो मेरे 50 कप होना चाहिए और मेरे पास 50 रियाल मेरे गले में रहना चाहिए, क्या मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ या ना हूँ।
1: सही,
0: हाँ। तो ये कोटेशन है ना हर एक मटेरियल का, हर एक आपके पास आइटम का, चाहे वो बिरयानी हो, चाय हो या कोई बेकरी प्रोडक्ट हो, तो आपको खुद को मतलब उसमें ना खुद मतलब वो एक्सपीरियंस इतना होना चाहिए कि वो आप पूरा मिक्सिंग करने के बाद इसमें से इतना माल निकलता है, इसकी इतनी प्राइस है और इसका इतना टोटल गल्ले में होना चाहिए। जब ये माल इतना प्रोडक्ट हुआ, प्रोडक्शन हो गया और ये सेल हो गया तो गल्ले में तो माइनस दिखा रहा है, कैश में तो माइनस दिखा रहा है, तो गया कहाँ, गया किधर, क्या लॉस हुआ या चोरी हो गया या नुकसान हो गया, क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा।
1: सही, बिल्कुल सही
0: है ना। तो
1: ये सारी चीजें हाँ मैटर करते बहुत, हाँ, मत बहुत छोटी छोटी इन्वेंटरी आपकी।
0: हाँ क्योंकि मैंने ना यहाँ इसी कतर में ना नाजे में मैंने ना प्रूफ किया इस चीज को, लेकिन एक बंदे ने खैर अल्लाह हिदायत दे टिश्यू की जैसा मेरे को यूज करके ना डस्टबिन में थ्रो कर दिया था। तो एक है ना अबू समरा में एक है ना रेस्टोरेंट ओपन हुआ था, तो मेरा एक 2 साल पहले कुछ काफी बैलेंस मेरा हिल गया था कंपनी से। अच्छा, तो अच्छा। कंपनी ने लॉन्ग लीव आने के बाद कंपनी ने मेरे को बोला वापस चले जाओ या नहीं तो आप रिलीज हो गए। तो ऐसी वाया कनेक्ट में बंदा कनेक्ट हो गया, तो उसने मुझे बहुत मतलब ऐसे से मतलब सपने दिखाए ना कि मेरा होटल है, रेस्टोरेंट है, मैंने टेक ओवर कर लिया है और एक तारीख से खुलना है और मैं 27 तारीख से उसके पास गया। तो बोला भाई स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे होगा, मतलब कोई टेंशन नहीं लो, कोई टेंशन नहीं लो। मैं बंदे को लेकर आया अलतिया में और जो हमारी रिक्वायरमेंट थी ना स्टाफ की, सैंडविच मेकर, जूस मेकर, टी मेकर और पराठा मेकर और किचन हेल्पर, किचन क्लीनर और कुक, वो सारे फॉर्मेट बनाकर 20 से 25 उसकी फोटोकॉपी लगा के मेरा मोबाइल नंबर डाल के मेंशन करके अलतिया में जगह जगह हमने पोस्टर लगा दिए। और उसी दिन है ना सब बंदे जमा होना शुरू हो गए और स्टाफ जमा हुआ 10 से 12 लोग का होटल चल पड़ा। लेकिन आफ्टर 3 मंथ बाद है ना, आफ्टर 3 मंथ बाद जो मेरे से वादा किया था, जो मेरी सैलरी इंक्रीमेंट का था, वो एकदम से मतलब अगेंस्ट हो गया, एकदम से अगेंस्ट, क्योंकि उसने सब सीख लिया, उसको जो चाहिए सब मिल गया था उसको। तो मैंने भी है ना उससे किनारा कशी कर लिया। फिर मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हुआ कि कंपनी ने कॉल बैक किया कि प्रोजेक्ट आ गया कि यू कैन ज्वाइन अगेन, नो प्रॉब्लम, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं फिर वहां से वापस कम बैक किया वापस से। फायदा उठाते हैं, तो इसके लिए आप उसमें कितने माहिर, कितने आपके पास टैलेंट है ना, कि आपका अगर बैलेंस मिल जाए वो आप अपने आप को किस तरह खड़े कर सकते हो, तो वो आपके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है, और एकदम मतलब मजबूत दिल, हर एक बिजनेसमैन को मजबूत दिल होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और शहजादा जी एक चीज हमेशा याद रखिए, लोग आपसे प्लेटफॉर्म छीन सकते हैं लेकिन आपका टैलेंट नहीं, आपका जो टैलेंट, आपकी स्किल्स है वो नहीं छीन सकते, कहीं और नजर आएंगे। ये बात घबराना नहीं चाहिए।
0: और आज है ना वो चीजें पता चलती है वाया वाया कि वो चीज नहीं हो रही है, जो बिजनेस पहले था ना जब सलीम भाई थे वो अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे पास एक नई टीम जमा थी, ना किसी को ऑर्डर लेने का तरीका पता था या किसी को बाहर के हॉर्न मारेगा तो कस्टमर
1: स्टाफ भी, हाँ, ये बहुत

0: मैटर करता है कि आपका स्टाफ किस तरह से ट्रेंड है, वो जानता है कस्टमर डीलिंग उसे आती है नहीं आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने रेस्टोरेंट खोल दिया, आपने मैनेजर बिठा दिया, वर्बली सब चीजें नहीं होती इसमें बहुत ज्यादा.
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हाँ ये सारी चीज इतना मतलब टफ था और इतना चैलेंज बड़ा था ना, तो हमने हाँ डर के लेकिन है ना, बस कभी अफसोस होता है ना यार ऐसे लोग भी है.
0: बट पता है मुझे क्या लग रहा है शहजादा जी, आप जैसे जैसे मुझसे बात करते गए, एक आपकी आवाज में एक स्पार्क था. स्पार्क कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि आप बहुत ज्यादा इंथू है, मोटिवेटेड है, जोश है आपका. आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस, इस तरह का कुछ आप करना चाहते हैं, और वो आपकी बातों से मुझे, मैंने तो मुझे तो नहीं पता था, बट आई कैन जस्ट फील कि कि आप जो है वो इतने, और ये चीज चाहिए बिजनेस के लिए. तो कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर अच्छी स्टडी करने के बाद आप बिजनेस जरूर स्टार्ट कीजिएगा किसी के साथ अच्छे सुपरविजन में. अगेन आई रिपीट, बहुत अच्छा सा सब रिसर्च करने के बाद, जस्ट टेक लॉट ऑफ इनफ टाइम, उसके बाद शुरू कीजिएगा. डोंट प्लंज लाइक दैट, एकदम से लोग कूद पड़ते हैं, बिजनेस शुरू कर देते हैं. बिजनेस के लिए लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, दैट इज नॉट, वो भी मैंडेटरी है लेकिन वो फर्स्ट उसमें नहीं आता. बिजनेस शुरू करने के लिए बिजनेस सेंस होना बहुत जरूरी है पहला. वो आपको रिसर्च और इन सब चीजों से आता है समझ में. अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, देन स्टेप बैक, पीछे चले जाइए. डोंट जस्ट वेस्ट योर मनी लाइक दैट.
1: एक आखिरी बात, दो बिजनेसमैन है ना, दो कार्टून शूज लेके मार्केट में उतरते हैं, एक का है ना 50 रुपए का एक शूज बेचना है, तो दूसरा भी है ना वो 50 रुपए में ही बेच रहा है. 50 में लिया, लेकिन जो बेच रहा है उसने 48 में लिया था, वो 50 में बेच रहा है, वो 2 रुपए कमा रहा है. और ये जो 50 में बेच रहा है, तो अगला उससे सवाल करता है कि तेरे को प्रॉफिट क्या हुआ, तो प्रॉफिट रखा ही नहीं, तो जितने में लिया उतने में बेच रहा है, तो मेरे जो बोले जो कार्टून खाली हो गए ना, इसको मैं रद्दी में बेचूंगा, ये मेरा प्रॉफिट है.
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात होता है आपने भाई, एक एक चीज में प्रॉफिट आप ढूंढ सकते हैं. नाइस.
1: हाँ प्रॉफिट है तो हर जगह है ना. कॉन्फिडेंस मेन, कॉन्फिडेंस और टैलेंट दोनों ऐसा है कि कहीं भी बीच में होना, कितना भी बहुत लोग थे ना अपोजिशन, जितने भी आपके आसपास जितने भी रहेंगे, चाहे वो टी स्टॉल ले लो, चाहे कोई रेस्टोरेंट ले लो, तो आपको बीट करने की बहुत कोशिश करेंगे बहुत. और आप किसी से एडवाइस लेने जाते हैं ना, तो वो नेगेटिव बताएंगे, पूरा उल्टा ही बताएंगे, तभी सीधा कोई नहीं बताएगा.
0: आज यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे, इस रेडियो पे और इस शो में हम आप सबको सारी पॉजिटिव एडवाइसेस और सारी चीजें बताएंगे जो जो जनरल होंगे और बहुत सारे बिजनेसेस पर एप्लीकेबल भी होंगी. तो कभी आपके दिल में है कि मैं थोड़ा सा पैसा सेव कर लूं और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करूं,
1: इंशाल्लाह प्लान है. और मेरे पास एक नहीं, मेरे पास कई ऐसे मतलब स्पेशली देना रेस्टोरेंट को लेकर लिए, क्योंकि मैं इसमें ना एकदम से नहा चुका था, एकदम से ना उतर चुका हूँ. एक एक चीज का मैं कोटेशन और है ना प्रॉफिट है ना ऑन द स्पॉट कर सकता हूँ निकाल के, बट मेरे पास फाइनेंशियली है ना
0: परेशान मत हुई. आज के दौर में पता है बहुत इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आपके पास आइडिया यूनिक होना चाहिए. अब आइडिया सेल करना आपको आना चाहिए अपना, ये बहुत बड़ा बड़ा टैलेंट है. पैसों के लोगों के पास कमी नहीं, इन्वेस्टर्स बहुत हैं, तैयार भी इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आपका आइडिया कितना यूनिक है और कैसे आप सेल करते हैं, वो जो कितना यूएसपी, वो बहुत मैटर करती है.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: चलिए जी, आपके साथ लंबी बात ना हो जाए, मेरी और भी कॉलर्स हैं, वरना तो आपसे और भी ढेरों बातें करते हैं, पर जितना भी आपने बताया बहुत अच्छा बताया.
1: थैंक
0: यू जी, एंड वंस अगेन सॉरी माजरत कि कल हम आपसे नहीं जुड़ सके, आपको कॉल नहीं कर सके. चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे आप हमारे साथ जुड़ेंगे, और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज, बाय. ऑलराइट, आई थिंक अभी इस टॉपिक को ऑलमोस्ट कंक्लूड करने का टाइम है. आज मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया, आप माने या ना माने, मुझे आज बहुत मजा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये टॉपिक्स जो है मुझे बहुत एक्साइट करता है. आई डोंट नो व्हाई, लेकिन चलिए, आपने जिस तरह से मुझे बताया, मैं वाकई आई एम अमेज्ड टू सी के लोगों के पास जो है अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग बातें हैं, और कुछ ना कुछ हर किसी ने मुझे दिया है कि आप ये कर सकती हैं, आप ये कर सकती हैं, एंड दिस गोना बी द बेस्ट स्ट्रेटजी. एक और कॉलम मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग.
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. नूर जी हैं क्या?
2: जी जी, कहते हैं कि बिजनेस चले या ना चले,
0: हाँ,
2: ये तो मुकद्दर की बात है. हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है.
0: ये लाइन सही है
2: कमरे से उस पर.

0: दुकान भरा है कस्टमरों से, उसे बात करना तो सीखो। कुछ स्टाफ को तुमने रखा है अपनी दुकान में, उसे विश्वास करना तो सीखो। बिजनेस चलेगा, ये तो कहाँ से चल पाएगा।
1: विश्वास दिखाना जरूरी है।
0: इंडिया ने पूरे इंडिया को बिजनेस में अंबानी जी बहुत आगे है, और उस दुकान में खुद नहीं बैठता है, पर विश्वास रखा है इतना कि बस नुकसान नहीं होने देता। तो सबसे पहले इंसान को अपने आप में स्टाफ को रखता
1: है। जो बड़े बड़े जो होते हैं बिजनेसमैन, उन्होंने एक और स्ट्रेटेजी अपनाई है कि अपने एम्प्लॉइज को बिगाड़ दो, उनकी आदतें बिगाड़ दो। जो कहते हैं ना, आदतें बिगाड़ने का मतलब यह है कि उनको इतना भर दो, इतना उन्हें दे दिला दो, इतना उन्हें सिक्योर कर दो कि वो आपके 100% लॉयल हो जाएं। वो इधर उधर आपसे सीखा हुआ एक्सपीरियंस ना सेल करें, और ये करते हैं वो, इतना इंटैक्ट कर लेते हैं कि लोग उन्हीं के साथ जुड़े रहते हैं।
0: बिजनेस में तीन चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले, जैसे मैंने भी, मेरा बड़े भाई ने ऑटो पंचरी का बिजनेस किया, पर एक साल में उसने पूरा 10 साल का समय घुमा दिया। इंशाल्लाह बाद में फिर मैंने उसको भरोसा दी। बिजनेस में आप सोचेंगे यार ये मैंने लॉस चला गया, फायदा नहीं हुआ, तो फिर आप बिजनेस में, बिजनेस में सबसे पहले हॉट चाहिए। हॉट का मतलब है आपको हिम्मत। एक महीना नुकसान हो गया कोई बात नहीं, एक साल नुकसान हो गया कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा। अगर आप लगे रहोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका अजर जरूर देगा आपको। आप सोचेंगे चलो यार,
1: बिजनेस का मतलब ही ये है, प्रॉफिट भी होगा लॉस भी होगा।
0: तो बस बिजनेस में इंसान को सबसे पहले अपने आप को सबर करना बहुत जरूरी है। नुकसान होता होने का सबर का फल जरूर मिलता है, बस इतना कहना था। ऐसे तो कॉलर में तो लगभग 1.5 घंटे से मिला रहे हैं, पर कॉल जा रहे हैं, पर रिसीव नहीं हो रहा है।
1: होने नहीं, वही बात थी, थोड़ी सी लंबी हो जाती है। हालांकि हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा, अब सभी कॉलर्स खुद ही जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं और रख रहे हैं, कब भी किसी की थोड़ी लंबी हो जाए।
0: आपको 2 दिन में
1: जी,
0: संडे मंडे है बस आपका टाइम।
1: हाँ, संडे मंडे है मॉर्निंग,
0: भले आपको मालूम हो या ना हो।
1: हाँ,
0: आप तो आज ही बोल रहे थे कि बस आज लास्ट डे है।
1: नहीं, मतलब लास्ट डे आज नहीं, 31st तक तो है ही, तो ये तो है,
0: संडे मंडे है आपका टाइम। चले देखते हैं
1: इंशाल्लाह।
0: कब आ रहा है महावीर जी? कब आ रहा है
1: महावीर जी? आ रही है संडे मंडे।
0: चलो संडे मंडे फिर मिलते हैं। चलो दूसरे कॉलर लीजिए। और एक बात राज भाई से मेरा रिक्वेस्ट है, आप गेम में तो बहुत पार्टिसिपेट करते हो, पर मेरे को 6 महीने से मैं सुन रहा हूँ कभी भी इसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसा क्यों?
1: सिर्फ
0: गेम के लिए होता है वो?
1: किसमें?
0: अपना एडवाइस दे दो इसमें।
1: अच्छा, आप लिसनर से बोल रहे हैं? ओहो,
0: जी जी जी। राज भाई जो गेम विनर होता है ना हमेशा, इसमें पार्टिसिपेट नहीं होते, पर गेम में तो।
1: अरे अरे, रुक जाइए नूर जी, सबको आप इधर ही पार्टिसिपेट कर रहे थे, गेम में कौन आएगा? आप तो आते नहीं
0: हैं। मैं सोच रहा हूं कि इसमें
1: और मुझे आप बताइए, आप गेम में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते, बताइए जरा मुझे।
0: मैंने वो गेम में तो बस, मैं तो करता हूँ ना, कितने बार किया, 3-4 बार किया मैंने।
1: आप बहुत ही कम आते हैं गेम में, कोशिश कीजिए गेम में आ जाइए। ठीक है,
0: टाइम बहुत कम से रहता है। हां,
1: टाइम कम होता है। सोचिए, लोग कह रहे हैं गाने मुश्किल से 2 चल पाए, सोचिए गाने भी नहीं चल पाते हैं और हमारी बात ही चल रही होती है इतना, और गेम के लिए भी एकदम कम वक्त बचता है।
0: गाना सुनना तो बस 2 घंटे का म्यूजिक डाउनलोड करेंगे और सुनते रहेंगे, हम तो यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ बताने के लिए।
1: इसीलिए देखिए, ज्यादा ज्यादा हम बात ही कर रहे होते हैं, पर चलिए, हम कोशिश करिएगा कि आप गेम में भी जुड़े, और आज नहीं, अब संडे मंडे भी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। ऑलराइट, तो आज हमने बहुत खेला बिजनेस। वापस आएंगे तो मैं भी छोटी छोटी जो बातें वो आपके साथ शेयर करूंगी। एक छोटा सा यहाँ पे मैंडेटरी ब्रेक हम ले लें, वापस आएंगे तो इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, और आज का हमारा गेम भी होगा, तो आपको जुड़ना है। करना क्या है, 4434377 पर मुझे कॉल करना है, या फिर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर है 666-22107। यहाँ पर यूसुफ जी का मैसेज है, मैं बिना भूले जल्दी से ले लेती हूँ, सलाम का है और हैप्पी थर्सडे एंड वीकेंड, हैप्पी वीकेंड आपको भी। एंड नाजे जी, सही कहा एक लिसनर ने, आप जैसे ब्रिलियंट इंटेलेक्ट का बिजनेस तो कभी फेल ही नहीं हो सकता। ओहो ओहो, इतनी सारी तारीफ उसके साथ आगे कहते हैं, लेकिन इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन को मैं कहूँगा कि अच्छी बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाएं, अच्छी मार्केटिंग करें, थोड़े प्रोडक्ट में ऑफर्स रखें, थोड़े बिजनेस को वक्त दीजिए, और खूब मेहनत और सब्र, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। बहुत सारी आपने जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं वो सब कुछ डाल दिया और बता दिया कि हाँ,

0: ये बात तो है कि थोड़ा सा वक्त भी और मेहनत भी, सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, तभी तभी कुछ होता है. आज कॉमर्स एआई ऑफ सन चेंज द लोकेशन इमीडिएटली एज पीपल हैज ऑलरेडी जस्ट यू एंड स्टॉप्ड कम टू यू. Some people do not read SMS on morning shows. अरे भाई, I'm reading SMS CVJ. I try my best to read all the SMS. हालांकि मैं पूरी बात आपकी नहीं समझी, बट आपने जो भी कहा है, चलिए कुछ तो सोच के कहा ही होगा. अच्छा, मोहसिन हमारे साथ हैं. जी मैम, हमारी टाइमिंग सुबह ही होती है, बल्कि कोशिश करेंगे कि हम आपके साथ जुड़ें. अभी तो हम जॉब की वजह से ज़्यादातर सुबह ही, और मेरी समझ में फ्यूचर जॉब करो या बिजनेस जो भी करो पूरी ईमानदारी से, हाँ ये तो है, पूरे डेडिकेशन के साथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद वही हम सबकी कामयाबी है. यहाँ पर एक और मैसेज है, और ये मैसेज है, इनका नाम है वसीम. गुड मॉर्निंग कहते हैं, और कहते हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि आपकी ठीक ठाक मालूमात है. अच्छा, मतलब किस बारे में मेरी ठीक ठाक मालूमात? बिजनेस के बारे में. तो बिजनेस के बारे में तो इसलिए भी होगी क्योंकि मैंने पढ़ा है बिजनेस एज अ सब्जेक्ट, तो इसलिए शायद ठीक ठाक मालूमात है. वसीम, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया. इसके अलावा हमें मैसेज है, और इनका नाम हम चेक कर लेते हैं. इनका नाम के और बी लिखा हुआ है. गुड मॉर्निंग कहते हैं, और मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आप ये समझें कि आपके कस्टमर्स आपको छोड़कर दूसरी शॉप पे क्यों जा रहे हैं. अगर ये बात आप समझ आइडेंटिफाई कर सकती हैं तो आप कामयाब हैं. ये आपने बहुत अच्छी बात कही, और इसे कहते हैं ना रूट कॉज एनालिसिस. बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज. अगर आप अपना नाम भी बता देते तो बहुत ही अच्छी बात है. आई थिंक आपका कहीं ना कहीं ताल्लुक जो है वो मार्केटिंग बिजनेस इससे है. दैट्स हाउ यू वर रियली एबल कि आप हमें ये लिख पाए, बता पाए. और ये बात सच है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कहते हैं कस्टमर्स क्यों नहीं आ रहे, क्यों, मतलब ये नहीं जान पाते कि एक्चुअली क्या रूट कॉज हो सकता है. हो सकता है आपकी चाय बहुत अच्छी हो सकता है आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में कोई ना कमी हो, लेकिन आपके लिए मतलब आपकी शॉप ऐसी जगह हो जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल ही ना हो. अब ये एक बड़ा इशू है, लेकिन यहाँ पे किसी का जहन या दिमाग नहीं जा रहा. हम चाय की क्वालिटी पे बात कर रहे हैं, हम दूसरे बंदे की जो है वो कामयाबी देख के थोड़ा सा दिल छोटा कर रहे हैं, बट ये नहीं गौर कर रहे हैं कि हो सकता है ये भी एक बड़ा इशू हो. लोग इसलिए कतराते कह रहे हैं वहाँ पे तो पार्किंग नहीं मिलती, कहाँ गाड़ी लगाएंगे, क्या करेंगे. तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कई बार निगलेक्ट हो जाती हैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं व्हेन कम्स टू बिजनेस. वापस आऊँगी तो ये छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करूँगी. हो सकता है फ्यूचर में कभी आप बिजनेस करें और आपके काम आ जाए, लेकिन फिलहाल के लिए छोटा सा ब्रेक. And I'll be right back.
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

Alright guys, एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम और वेरी गुड मॉर्निंग. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नासिया आपके साथ 8:36 ऑन द क्लॉक. आज भर भर के बिजनेस की बात हुई है और आपने भी भर भर के स्ट्रैटेजीज जो है वो मुझे समझाई, मुझे बताई. और इतने सारे इतने जेनरस लोग, इतने काइंड लोग हैं कि क्या ही बोलूं मैं. कौन कहता है कि आज की दुनिया में काइंडनेस और जेनरोसिटी और ये सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं, ये वर्ज पे है? नहीं, मैं तो कहूँगी मौजूद है. आप आइए FM 107 पे. इतने कमाल के मेरे लिसनर्स हैं और सारे के सारे इतना मोटिवेट और इंस्पायर कर रहे हैं हम एक दूसरे को कि क्या बताएं. जैसे यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मैसेज है और ये मैसेज मुझे उस्मान ने भेजा है. सलाम कहते हैं और कहते हैं आई वॉन्ट शेयर समथिंग फॉर यू स्पेशली दैट आई एम लिविंग कतर इन नेक्स्ट वन मंथ फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. नाइस, माशाल्लाह. बट आई मस्ट से दैट इन माई लाइफ थ्रू आउट ऑफ मोस्ट आई लिसन टू यू. आई लव टू हियर यू ऑन डेली बेसिस द वे यू टॉक with respect and masumana andaz. Oh, thank you. It's amazing and you're really amazing. Keep smiling and stay healthy. I really wish I could meet you and learn from you how to talk so nicely. And I'm 100% sure

यू एंड बहुत शुक्रिया. हाँ कह रहे हैं कि आप प्लीज़ 5 मिनट निकालिएगा एंड प्लीज़ मुझसे मुलाकात कीजिए ज़रूर. जाने से पहले डेफिनेटली हम आपसे बिल्कुल चाहेंगे मिलना. आई विल जस्ट टेक योर नंबर और प्लीज़, और आप मुझे बताइए हाउ वी कैन मीट. ज़रूर मुलाकात करते हैं. अच्छा यहाँ पर एक और मैसेज है और ये मैसेज मैं नाम चेक कर लेती हूँ इनका. इनका नाम है बिन शफीक जी और कहते हैं वन ऑफ माई सजेशन इज़ दैट टर्न योर कॉम्पिटिटर्स वीकनेस इनटू योर अपॉर्चुनिटी. हाँ, उनकी वीकनेस को स्ट्रेंथ में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है. क्या अब हम आपको वीक में सिर्फ 2 दिन ही सुना करेंगे, ये किसने पूछा है मुझे. इन्होंने नाम नहीं लिखा. नहीं, आप मुझे रोज़ सुनेंगे बट आफ्टरनून में सुनेंगे. इट्स लाइक 1:30 ऑनवर्ड्स. आफ्टरनून में मैं आपके साथ रहूँगी तो वहाँ आपकी हमारी होगी बातचीत. यहाँ पे रविंद्र सिंह जी हैं यूए अबू धाबी से हमें सुनते हुए और हैप्पी वीकेंड कहते हुए. ओहो क्या बात है, बस यहीं से आना बाकी था एक मैसेज मुझे जो फाइनली आ चुका है. और सैयद खादिम हुसैन जी का मैसेज है, बहुत सारी दुआएं आदाब और सभी सुनने वालों को भी आपने सलाम कहा है. भाई कैसे हैं आप, और आज बहुत टाइम के बाद मैं आपका मैसेज देख रही हूँ. अच्छा, आज जिस टॉपिक पे बात हो रही थी वो था बिजनेस को लेकर. आज हमने पूछा यही था आपसे कि मान लीजिए कोई एक मेरा बिजनेस है, जैसे मैंने चाय की दुकान की बात की और वो बहुत ज़्यादा लो चल रहा है बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटिटिव. एक और चाय का बंदा आ गया सामने, उसकी शॉप बहुत अच्छी जा रही है और दैट्स हाउ मेरा बिजनेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी लो जा रहा है, तो कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जिन पर मुझे काम करना चाहिए जिससे कि मैं अपना बिजनेस वापस से रिवाइव कर सकूं. ये आज की मेरी सीन था, सिनेरियो था, सिचुएशन थी. एंड आई हैव सीन कि इतने सारे लोगों ने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें मुझे बताई. किसी ने कहा कि टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, टीम को मोटिवेट करना ज़रूरी है. कुछ लोगों ने कहा कि रीलोकेट कीजिए आप अपने बिजनेस को, दैट इज़ आल्सो वन थिंग. कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है अपने अखलाक पे काम कीजिए, जो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नो, जब आप किसी कस्टमर के साथ डील करते हैं तो डोंट कम फॉर अ प्रोडक्ट, दे कम फॉर एन एक्सपीरियंस. तो उनका जो सर्विस है, कस्टमर सर्विस है, वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है. ये बहुत सही. आपने ये भी मुझे बताया कि हमें और आपको समझना ये है कि प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है. जैसे कहा ना, रूट कॉज एनालिसिस हमें समझना, जो बिजनेस की लैंग्वेज में कहा जाता है, हमें ये समझना ज़रूरी है क्या प्राइस इशू है, क्या कॉम्पिटिटर इशू है, क्या प्रोडक्ट में कमी है, या फिर हमारा कुछ और ऐसी चीज़ है जो हम नहीं कर पा रहे. जैसे मैंने कहा कि क्या पार्किंग नहीं मिल रही है, या हो सकता है एम्बियंस हमारा बहुत पुराना लग रहा हो, क्या हम वैसा एस्थेटिक लुक दे पाएंगे नहीं, या सोशल मीडिया प्रेजेंस हमारी बहुत वीक है. देखिए आज का दौर वाकई ऐसा दौर है, डिजिटल वर्ल्ड है, जहाँ पे लोग सोशल मीडिया पे रहते ही रहते हैं, चाहे ना चाहे वो आपके एड्स देखते हैं. तो आपकी यूनिक सेलिंग जो स्ट्रैटेजी है वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, वो काम करती है. हम सिर्फ चाय बेच रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 25 इंटरनेशनल टी फ्लेवर्स जो हैं वो सर्व करते हैं. ये आपकी USP है, ये कहीं ना कहीं, या आप हम लाइव टी मेकिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी USP है. आपकी USP बहुत मैटर करती है, उसे क्रिएट करना पड़ता है. जैसे मैं बार बार कह रही हूँ कि लोग आज के टाइम में एक्सपीरियंसेस बाय करने आते हैं. फिर एक और मैंने चीज़ बताई, मेरे लिसनर ने भी यहाँ पे मुझे, शहजादा जी ने बताया अपने वर्ड में, जहाँ पे हम इसे बिजनेस टर्म में कहते हैं कि ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, से अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है. इसमें होता है कि आप अपने कॉम्पिटिशन को, जो कॉम्पिटिशन है उसे बीट मत कीजिए, बल्कि उसको इरेलीवेंट बना दीजिए, वो रेलिवेंट ही ना रहे. जैसे आपकी चाय बेचने की स्ट्रैटेजी अगर मैच नहीं करी, सो आप करके आ सकते हैं टी टेस्टिंग इवेंट्स. अब आप सिर्फ चाय बेचने तक महदूद नहीं रह गए, आप इवेंट्स भी करते हैं, आप एजुकेशनल वर्कशॉप्स भी रखते हैं. तो इस चीज़ों के आ जाने से क्या होता है कि एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर कस्टमर को एक नया मिलता है. अब आप सिर्फ टी शॉप नहीं है, एक सिर्फ चाय बेचने वाली दुकान नहीं है, आपकी जो टी शॉप है या जो भी आपका सेटअप है वो एक कंप्लीट एक्सपीरियंस दे रहा है. दैट्स हाउ इट बिकम्स वेरी कैची एंड वेरी अट्रैक्टिव, और लोग इसे पसंद भी करने लग जाते हैं. वहीं पर एक और मॉडल है जिस पर मैं बात करना चाहूँगी, और वो है AIDA मॉडल, जिसे कहते हैं अटेंशन प्लस इंटरेस्ट प्लस डिज़ायर एंड ऑफ कोर्स एक्शन. जब ये कंबाइन हो जाते हैं तब कस्टमर्स जो हैं वो आपके साथ इंटैक्ट हो जाते हैं. वहीं कस्टमर रिटेंशन स्ट्रैटेजीज पर तो वो सब काम करते ही हैं. मोस्ट ऑफ द टाइम हम और आप, जैसे हमने कहा भी पहले भी, नए नए कस्टमर्स नहीं आ रहे, लेकिन प्रॉफिट जो है वो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से ही आता है. यहाँ पर ये चीज़ मैंने एक बुक है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लॉयल्टी करके है, द लॉयल्टी समथिंग, मतलब उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से
ऑथर ने समझाया भी है और उसी टेक्निक के ऊपर बेस करके आपने देखा आज के टाइम में कितने सारे बिजनेसेस लॉयल्टी कार्ड्स दे रहे होते हैं, मेंबरशिप प्रोग्राम्स दे रहे होते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स दे रहे होते हैं, वीआईपी कस्टमर क्लब दे रहे होते हैं। ये सारी चीज़ है क्यों? सिर्फ और सिर्फ कस्टमर रिटेंशन।

0: स्ट्रैटेजी, ये आपके बने रहे। इस चीज़ को याद रखना, आज का टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ ऐड डालने का टाइम नहीं है, स्टोरीज क्रिएट करने का टाइम है। ये बंदा मेरे साथ 15 साल से मेरी शॉप पे जुड़ा है, उसकी छोटी सी स्टोरी आपने जो है वो सोशल मीडिया पे डाली, पता चला लोगों को 15 साल से इतना लॉयल कस्टमर है, कुछ तो बात खास है, लोग जुड़ना ऑटोमेटिकली शुरू कर जाते हैं। ऐसे तो बहुत कुछ है जो मैं बताती जाऊँ बट अब टाइम नहीं मेरे पास रहा ज़्यादा, तो बस मैं यही कहूँगी कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपना खुद का कुछ सेटअप क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक सही फॉर्मूला जो है वो ये, एक तो आपको सही तरीके से पूरी रिसर्च करनी है, राइट प्रोडक्ट आपके हाथ में हो, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग हो, टीम के साथ कोलैबोरेट करना, टीम का एक्सपीरियंस, टीम को अपने हक में रखना, जो भी है उन्हें मोटिवेट करते रहना, ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को कामयाब बनाती हैं। अगर आप कॉम्पिटिटर से बेहतर बनना चाहते हैं तो बेटर प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए आपको, आपको बेहतर स्ट्रैटेजी चाहिए, और वो स्ट्रैटेजी इन्हीं सारी चीजों से निकल कर आती है। वैसे तो बहुत कुछ है बट अपने पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो चलिए खैर कभी कभी और किसी और दिन हम इस टॉपिक को और फर्दर अगर कभी एक्सप्लोर कर सके तो व्हाई नॉट। फिलहाल अब हम बढ़ रहे हैं अपने गेम की तरफ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज प्लीज जितना प्यार आप जो है टॉपिक के साथ दिखाते हैं, थोड़ा सा गेम की तरफ भी आइएगा, है ना? तो गेम हमारा सिंपल रहता है, इतना कोई टफ तो है भी नहीं, इतना आसान है, टॉपिक पे बोलना ज्यादा टफ है मेरे हिसाब से, बट गेम काफी आसान है। कुछ वॉइसेस आपके लिए प्ले की जाती है, आपको पहचाननी है, और टाइम आपको बस मिलता है 30 seconds, तो 30 seconds में आप जितनी मैक्सिमम वॉइसेस पहचान लें। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिगरा चाहिए, दैट्स रियली रियली रियली कमेंटेबल, जो लोग जुड़ते हैं उनको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, स्पेशली जो गेम के लिए जुड़ते हैं, क्योंकि टॉपिक पे बात करना ठीक है आप कर लेते हैं, गेम में हार जीत जुड़ी है और ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि हर आदमी को बुरा तो लगता ही है, हारना कोई नहीं चाहता, इसीलिए लोग जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई ही नहीं करते। बट मैं यहाँ कहूँगी कि प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिए, गिव योर सेल्फ अ चांस, एक चांस तो दीजिए आप अपने आप को, यू नेवर नो आप कितना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। और होता भी है, कुछ लोग कहते हैं हमें तो कुछ नहीं आता बट 3-4-5 स्कोर करके जाते हैं, तो बस यहाँ पे आपको ट्राई करना है। नंबर है 666-22-107, हाई हेलो लिखकर आप मुझे भेजिए। अगर आप चाहते कि मैं आपको कॉल कर लूँ तो मैं कर लेती हूँ। अब जो भी मुझे यहाँ पे सलाम या हाय लिखेगा, मैं ये समझूंगी कि हाँ वो मेरे साथ अब गेम खेलना चाहता है। तो यहाँ पे सलाम आया है, सलाम सिस्टर लिखते हैं मोहम्मद अराफातुल इस्लाम जी, तो क्या मैं ये समझूं कि आप गेम खेलना चाहते हैं? तो मुझे बताइएगा प्लीज़। मुझे, मैं ये भी नहीं चाहती कि अगर आप बीच में बिजी हैं कुछ कर रहे हैं तो आपको डिस्टर्ब किया जाए, लेकिन अगर आप गेम खेलना चाहते हैं तो हाय हेलो लिख के, ये हुई ना बात। यहाँ पे सरफराज जी ने हमें हाय लिख कर भेज दिया है, जिसका एकदम साफ साफ मेरा ही मतलब ये निकाला है कि हाँ वो गेम खेलना चाहते हैं, बट उसके पहले मेरे साथ एक और कॉलर जुड़ना चाहते हैं, तो चलिए पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, ये तो इतनी जल्दी कोई बात मान लेना लाइफ में कितना अच्छा लगता है। आज ही मैंने कहा आज ही आपने कर लीजिए, आप भी नाइस,
1: आपकी बात मैंने बता दी तो हमारी बात आप भी मानेंगे।
0: चलिए, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने अपने आप को चांस दिया है जीतने का, ये बड़ी बात। चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करती हूँ, 30 seconds है आपके लिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: बगैर मेरी जिंदगी बुद्धुआ और ये जहां दो
3: पास। तो मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया कैजुअल वे में। अच्छा चल अपनी हॉबीज बता दे, लेकिन तेनु देख दे ही समझ गया सीगा कि बंदा तू करे बात के ऊपर। गड्डी रोको
0: पास।
4: और ये घटना 3-32 नाके से कुछ दूरी पर हुई थी। जज साहब, चित्रा सिनेमा की बाई तरफ।
0: एक और ट्राई कीजिए, एक और ट्राई कीजिए।
5: खाई खाई, और डॉक्टर भी आया था चेक करने के लिए, मैंने तो साफ कह दिया खांसी तो रुकी नहीं रही मेरी, फायदा क्या है? मैंने मिर्ची
0: कोई बात नहीं, जीरो नहीं होता है कभी, पता है आप हीरो हैं, हीरो हैं। कोशिश आपने की, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए यही हमेशा मैं अप्रिशिएट करती हूँ जो लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको बेहतर कर रहा है, आप बेहतर फील कर रहे हैं, हार भी सीख रहे हैं, है ना? चलो जी, बहुत ही जबरदस्त, नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, बाय। ऑलराइट, एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ जुड़ते हुए। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कौन है हमारे साथ?
6: जी मैं मकसूद अली, मकसूद अली।
0: मकसूद जी, कैसे हैं आप? खैरियत से?
6: अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, हैप्पी वीकेंड जी आपको भी। तो आपके साथ गेम स्टार्ट करूं मैं?
6: जी जी।
0: चलो जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
2: बगैर मेरी जिंदगी एक बुद्धुआ और ये जहां दो सख्त, पर उसके
0: सही, बिल्कुल सही,
3: मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया कैजुअल वे में।

0: अच्छा चल अपनी हॉबी बता दे।
1: और ये घटना तीन बत्ती नाके से कुछ दूरी पर हुई थी।
2: बिल्कुल सही।
3: हाँ हाँ खाई खाई और डॉक्टर भी आया था चेक करने के लिए।
2: बिल्कुल सही।
4: हाँ बाबूजी कहाँ जाओगे?
2: बिल्कुल सही। बिल्कुल सही।
5: एक दिन में भी करती हूँ मैं। अभी मैंने एक मुकेश छाबरा की फिल्म आ रही है आई थिंक, अभी टाइटल दिल बेचा रहा है। बजट नहीं था।
2: कौन कौन? फरा इज द राइट आंसर। फरा खान बिल्कुल सही। क्या पहचाना है आपने भाई, एक छोड़ के आपने 6 का स्कोर किया है। My God, just एक आपने मिस किया श्रीदेवी के बाद वाला। तो भाई सारे सही, अनुपम खेर, फरीदा जलाल, हेमा मालिनी, जया भादुरी एंड देन दिस फरा। क्या बात है मकसूद जी, आप तो बहुत ही बड़े चैंपियन निकले। मुझे नहीं आइडिया था कि आप इतनी सारी वॉइसेस और सारी आज नई प्ले हुई, आप सारी की सारी पहचानने में कामयाब हुए। अमेजिंग, बहुत अच्छा खेला आपने। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय। ऑलराइट, देखो कुछ लोगों को लगता भी नहीं है, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम कितने कमाल के प्लेयर हैं और वो साबित हो जाते हैं। तो बस कभी कभी अपनी लाइफ में ना अपने फियर को बीट करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये स्टेप अगर आप ले पाए तो बस आप कामयाब है, फिर आपको कौन हरा सकता है। यही सबसे बड़ा स्टेप है। हार जीत रिजल्ट मैटर ही नहीं करता। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। लेट्स गेट कनेक्टेड। आई थिंक दो के साथ कनेक्ट हो गए क्या, क्या एक के साथ कनेक्ट हुए हैं? ओके लेट्स सी। हेलो हेलो,
6: सलाम अलैकुम।
2: जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आपकी अम्मा ठीक हैं, अम्मी ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए बहुत खुशी हुई जान के, क्योंकि आपने बताया था लास्ट टू लास्ट वीक कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो चलिए अब जान के खुशी हुई कि वो खैरियत से हैं। तो सरफराज जी मेरे पास टाइम कम है, वरना मैं आपसे थोड़ा सा और खैरियत पूछती और बात करती, तो मैं स्ट्रेट वे आपके साथ गेम स्टार्ट कर दूँ क्या? चलिए जी, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
7: मुन्ना लेकिन इतने बड़े होटल में लाने की क्या जरूरत? अरे मुन्ना वो पूछ रहे हैं तुम क्या खाना खाओगे।
2: सही,
8: आप शायरी लिखते हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, आप हमारे लिए कुछ लिखेंगे? नहीं नहीं कुछ नहीं,
2: सॉरी।
8: कुछ
2: बिल्कुल सही,
9: मैं आज कुछ हालत में नहीं देख सकता। प्लीज डॉक्टर डू समथिंग। अगर आप कुछ नहीं कर सकते डॉक्टर, मैं इसे यूएसए ले जाऊंगा। आई हर्ड दे हैव अ क्योर फॉर दिस। डॉक्टर, यू हैव टू कम टू अ डिसीजन बिफोर इट्स टू लेट।
10: पास। ऐसा है पापा जी, सोलो डांस आइटम किया है मैंने, मुंबई से डांस मास्टर मंगाया, 1,40,000 रुपए दे के। बताओ ए सड़ा ऑर्केस्ट्रा, ए बस में भी आ सकता था, एसी टू टेयर ट्रेन की टिकट दे के बुलाया इनको। क्या हुआ?
11: पावी भाग गई।
2: पहचान पाए? ये भी पास। एक और ट्राई।
12: तुम लोग आगे पीछे चारों तरफ पोजीशन ले लो, और आदमी सबको बुलाओ, चल कांडे खाली कर। चलिए बाहर गेट पर ड्यूटी कीजिए, यहाँ जरूरत नहीं खाकी वर्दी का, वरना क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू?
2: ये वाला भी क्लियर नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आपने उर्मिला रवीना दो तो पहचाने है ना, दो ही पहचाने ना? तो पहचाने। चलिए कोई बात नहीं, दोनों नए थे और दोनों पहचाने में कामयाब हुए, बड़ी बात है भाई, अपने आप में बड़ी बात है। एंड थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कि आप जुड़े मेरे साथ, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआएं आपकी मदर के लिए और आपकी फैमिली के लिए हम सब की तरफ से। थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़। और राइट दोस्तों, अब यहाँ पर आइडली टाइम तो हो गया है कि मैं आपसे अब इजाज़त लेना शुरू कर दूँ, लेकिन उसके पहले कुछ और एक दो मैसेजेस भी हम ले लेते हैं। मुबीन बगदादी जी सलाम कहते हैं। देखिए मुबीन जी, आपने सलाम कहा है इतना लेट, अभी मुझे मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको कॉल पर लूँ, या आप खुद आना चाहते हैं तो प्लीज़ आइए, कॉल कर लीजिए आप हमें 4434377 पर। सलाम, और सभी सुनने वालों को सलाम कहते हैं, और इनका नाम है जावेद, जावेद अहमद जी। सो वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हुए नदीम जी, गुड मॉर्निंग कहते हैं, कैसी हैं मैडम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। और ये मैसेज हमें मिला है, इनका नाम है अली, थैंक यू सो मच। आज़ाद जी हमारे साथ गुड मॉर्निंग कहते हुए, थैंक यू सो मच। और ये प्यारा सा मैसेज है, इनका नाम हम चेक कर ले हैं, इनका नाम है उसामा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज का। और सलाम कहते हैं, और सभी सुनने वालों को सलाम कहा है हिशाम जी ने। सवाल

सलाम दोस्तों, अब टाइम हो गया है कि मैं आपसे इजाजत लूं इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह अब आपकी और मेरी मुलाकात होगी संडे में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कह सकती हूँ सुबह 6 बजे ही इंशाल्लाह। बट हाँ, 1 सितंबर से टाइमिंग्स चेंज होंगे और फिर मेरी और आपकी मुलाकात आफ्टरनून में होगी। लेकिन हाँ, आपको और मेरा सॉलिड वाला साथ रहना ही रहना चाहिए। तो बस इसी उम्मीद पर अब आपसे इजाज़त लेंगे। अपने वीकेंड को भरपूर तरीके से इंजॉय कीजिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतरी टेबल टेनिस प्लेयर मरियम अली के बारे में। मरियम अली कतर की नुमाया वीमेन टेबल टेनिस प्लेयर्स में शुमार होती हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और बेहतरीन परफॉर्मेंस से मुल्क का नाम बैन अवी सतह पर रोशन किया है। वो कतर की नेशनल टेबल टेनिस टीम का अहम हिस्सा हैं और मुसलसल अरब और गल्फ टूर्नामेंट्स में मुल्क की नुमाइंदगी करती आ रही हैं। मरियम अली की सबसे अहम कामयाबियों में अरब टेबल टेनिस चैंपियनशिप में

0: अहमद के साथ विमेंस डबल्स और टीम इवेंट में सिल्वर मेडल्स जीतना शामिल है। दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार टीम वर्क और बेहतरीन गेम का मुजाहरा करते हुए कतर के लिए यादगार नतायज हासिल किए। इस कामयाबी ने कतर की वुमेन्स टेबल टेनिस को नए मकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। इनफैक्ट इस साल के गल्फ गेम्स में भी मरियम अली ने अपनी सलाहियतों का सबूत दिया। उन्होंने मिक्स डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक और बैन अक्वामी कामयाबी अपने नाम की। मेडल उनकी मुसलसल मेहनत, डिसिप्लिन और बेहतरीन तैयारी का नतीजा था। दोस्तों, मरियम अली फिटनेस, फोकस और मुसलसल प्रैक्टिस पर यकीन रखती हैं। वह हर टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं और कतर के लिए मजीद मेडल्स जीतने का अजम रखती हैं। उनकी कामयाबियां कतर की नौजवान लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं और ये पैगाम देती हैं कि मेहनत और हौसले के जरिए हर मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
1: दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल मसला है, लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है, खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हों। ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में

0: रखी हो तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है, हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है। गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप। सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं। ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं। गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स को ऑन कर दें ताकि दूसरे लोग आपकी पोजीशन देख सकें। अगर आप सड़क पर हैं और गाड़ी साइड पे ले जाना मुमकिन ना हो तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल गाड़ी के पीछे 10 से 15 मीटर दूर रख दें और आप खुद सेफ जगह पर खड़े हो जाएं। इमरजेंसी नंबर 999 पर फौरन कॉल करें। ये मत भूलिए, आपकी जिंदगी किसी भी गाड़ी या ट्रैफिक से ज्यादा कीमती है। ड्राइव सेफ, सोचिए, समझिए और महफूज रहिए। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेमत की जो कि ना सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है बल्कि जिस्म, दिमाग और दिल को भी सुकून पहुंचाती है, और वो है हंसी यानी लाफिंग। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर शख्स किसी न किसी परेशानी, दबाव या मसरूफियत का शिकार है। ऐसे में अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी और हंसी के चंद लम्हे शामिल कर लें तो उसके हैरत अंगेज फवायद हासिल हो सकते हैं। जब हम दिल खोलकर हंसते हैं तो दिमाग ऐसे कुदरती कीमियाई मादे खारिज करता है जिन्हें एंडोर्फिन्स कहा जाता है। ये हमें खुशी, सुकून और इत्मीनान का एहसास दिलाते हैं। जब आप हंसते हैं तो जहनी दबाव कम हो जाता है, जिस्म के मसल्स का तनाव कम होता है, सांस गहरी होती है और जिस्म को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है यानी बेहतर अंदाज में होती है, दिल कुछ देर के लिए मौसर तरीके से काम करता है। कई माहिरीन हंसी को कुदरती स्ट्रेस रिलीफ भी कहते हैं। हंसने से दिमाग का मुस्बत अंदाज़े फिक्र मजबूत होता है। जब इंसान खुश होता है तो मसाइल का बेहतर अंदाज में सामना कर सकता है, फैसले निस्बतन बेहतर करता है और दूसरों के साथ उनका रवैया भी खुशगवार रहता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि दिल खोलकर चंद मिनट हंसने के बाद इंसान ज्यादा पुरसुकून महसूस करता है क्योंकि जिस्म में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स कम होने लगते हैं। तो लिसनर्स, मुस्कुराहट मुफ्त है मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये ना सिर्फ आपको खुश रखती है बल्कि दूसरों के दिल भी जीत लेती है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान, और उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, मजे में होंगे। हदीस टू हैबिट की एक और एपिसोड लेके मैं हाजिर हो गई हूं, और आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं इसके बारे में आपको बताते हैं कि ये क्या है। आज हमारी गुफ्तगू का जो टॉपिक है वो है वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल और वक्त में बरकत। अक्सर हम सब एक जुमला बहुत ज्यादा बोलते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है, मैं बहुत मसरूफ हूँ, पता ही नहीं चलता दिन कहाँ गुजर जाता है, बहुत सारे काम थे लेकिन कुछ भी मुकम्मल नहीं हुआ, है ना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग दिन भर में बेशुमार काम कर लेते हैं, इबादत भी कर लेते हैं, अपने घर वालों को वक्त भी दे देते हैं, अपनी सेहत का ख्याल भी रखते हैं और अपने पेशा वराना काम भी एहसन अंदाज में मुकम्मल कर लेते हैं, और दूसरी तरफ कुछ लोग पूरा दिन मसरूफ रहने के बावजूद रात को ये महसूस करते हैं कि उन्होंने कोई खास काम नहीं किया। ऐसा क्यों होता है? इसका ताल्लुक सिर्फ वक्त की मिकदार से नहीं है बल्कि वक्त की बरकत से है।

0: वजह मोहब्बत की कमी नहीं, वजह वक्त की कमी भी नहीं, वजह तवज्जो की कमी है। और यही वो जगह है जहां इस्लाम की तालीमात हमारी रहनुमाई करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिर्फ नमाज पढ़ना नहीं सिखाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताल्लुकात निभाना भी सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदान को वक्त देना सिखाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों का ख्याल रखना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीमारों की आयादत करना सिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों की बात सुनना सिखाया। यानी इस्लाम एक मुतवाजन जिंदगी सिखाता है, ऐसी जिंदगी जिसमें अल्लाह का हक भी हो और बंदों का हक भी। आज हम में से बहुत से लोग कामयाबी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, अगर कामयाबी हासिल करते करते हम अपनी नमाजें खो दें, अपने वालदेन से ताल्लुकात कमजोर कर लें, अपने बच्चों से दूर हो जाएं, अपनी सेहत खराब कर लें और दिल का सुकून खो दें, तो क्या ये वाकई कामयाबी है? इस्लाम का जवाब है नहीं। असल कामयाबी मुतवाजन कामयाबी है, ऐसी कामयाबी जिसमें दुनिया भी हो और आखिरत भी, काम भी हो और इबादत भी, तरक्की भी हो और सुकून भी। एक और अहम मसला जिसका हम सामना कर रहे हैं वो है बर्नआउट, यानी मुसलसल थकन और जज्बाती खालीपन। बास लोग सुबह से रात तक काम करते हैं, हफ्ते के 7 दिन मसरूफ रहते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है, उसे आराम भी चाहिए, रूहानी गजा भी चाहिए, खानदान भी चाहिए और अल्लाह से ताल्लुक भी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में तवाज़ुन की तालीम दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत भी करते थे और आराम भी फरमाते थे, रोजा भी रखते थे और अफ्तार भी करते थे, लोगों से मिलते भी थे और तन्हाई में अल्लाह से दुआएं भी करते थे। यही तवाज़ुन हमें भी सीखना है। अगर हम वाकई अपनी जिंदगी में अपने वक्त में बरकत चाहते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में चंद सवालात शामिल करने चाहिए। हर सुबह अपने आप से पूछें, आज का सबसे अहम काम क्या है। हर दोपहर पूछें, मैं अपनी तवज्जो कहाँ लगा रहा हूं। और हर रात पूछें, आज का दिन मुझे अल्लाह के करीब ले गया या दूर। ये 3 सवालात आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, क्योंकि कामयाब जिंदगी अचानक नहीं बनती, वो रोजाना के छोटे फैसलों से बनती है। एक नमाज वक्त पे अदा करना, एक फजूल सी वीडियो में वक्त बर्बाद ना करना, एक सफा कुरान पढ़ लेना, अगर वालदेन हयात हैं तो उन्हें फोन कर लेना, बच्चे की बात तवज्जो से सुन लेना, ये मामूली काम लगते हैं, लेकिन यही छोटे फैसले सालों बाद एक खूबसूरत जिंदगी बनाते हैं। और शायद वक्त का जो बरकत का राज है वो भी यही है। हर लम्हे को मीनिंग देना, हर दिन को मकसद देना और हर काम को अल्लाह की रजा से जोड़ देना, क्योंकि जब मकसद वाज़े हो जाता है तो वक्त जाया होना खत्म हो जाता है, और जब वक्त जाया होना कम हो जाता है तो जिंदगी में सुकून, तवाज़ुन और बरकत बढ़ने लगती है। हमारा मकसद इस हफ्ते ज्यादा काम करना नहीं है, हमारा मकसद बेहतर काम करना है। हमारा मकसद सिर्फ मसरूफ रहना नहीं है, हमारा मकसद अपने जिंदगी को बेहतर, ऐसे अपने वक्त को कुछ ऐसे कामों में सर्व करना है कि जो हमें दुनिया में भी फायदा दे और आखिरत में भी हमें उससे फायदा हासिल हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कहाँ से शुरू करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई अच्छी बात सुनते हैं, मुतासिर भी होते हैं, इरादा भी करते हैं, लेकिन दो तीन दिन के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। हम कहते हैं कि इंशाल्लाह कल से, अगले हफ्ते से जरा मसरूफियत कम हो जाए जब हालात बेहतर होंगे। लेकिन सच यह है कि जिंदगी कभी भी मुकम्मल तौर पर आपको फारिग नहीं होने देती। मसरूफियत खत्म नहीं होती, जिम्मेदारियां खत्म नहीं होती। इसलिए तब्दीली का बेहतरीन वक्त हमेशा आज और अभी होता है। और अच्छी खबर यह है कि आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने दिन के चंद मिनट बदलने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी दिनों से बनती है और दिन आदतों से बनते हैं। जरा सोचिए, अगर रोजाना सिर्फ 10 मिनट कुरान के लिए निकाले जाएं, तो एक साल में कितना वक्त बनता है? अगर रोजाना 15 मिनट कम मोबाइल इस्तेमाल किया जाए, तो साल भर में कितने घंटे बच सकते हैं? अगर रोजाना 5 मिनट अपने अमाल का जायजा लिया जाए, तो कितनी गलतियों की इसलाह हो सकती है? बड़ी तब्दीलियां छोटे कदमों से शुरू होती हैं। इसीलिए इस हफ्ते हमारा टारगेट कोई मुश्किल मंसूबा नहीं, बल्कि एक सादा, अमली और काबिले अमल रूटीन है। ऐसी रूटीन जिसे एक स्टूडेंट भी अपना सकता है, एक जॉब करने वाला भी, एक घरेलू खातून भी और एक रिटायर्ड शख्स भी। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। फर्ज करें दो लोग एक ही जगह खड़े, दोनों ने एक ही सिम जाना है। फर्क सिर्फ ये है कि एक रोजाना एक कदम आगे बढ़ता है और दूसरा वहीं खड़े रहता है। एक महीने बाद दोनों के दरमियान फर्क नुमाया हो जाएगा। एक साल बाद तो फर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा। जिंदगी भी इसी तरह काम करती है, रोजाना के छोटे कदम मुस्तकबिल बनाते हैं। इसीलिए इस हफ्ते हम परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करेंगे, सिर्फ बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। पहला कदम यह है कि रात को सोने से पहले अगले दिन के 3 अहम काम लिख लें। सिर्फ 3, 10 नहीं, 15 नहीं, सिर्फ 3। क्योंकि जब सब कुछ अहम होता है तो हकीकत में कुछ भी अहम नहीं होता। अपने आप से पूछें कि अगर कल मैं सिर्फ 3 काम मुकम्मल कर सकूं, तो वो कौन से होंगे। यह आदत आपके दिन को डायरेक्शन देगी। दूसरा कदम यह है कि अपनी सुबह का आगाज मोबाइल से नहीं, अल्लाह से करें। फजर के बाद चंद मिनट दुआ, जिक्र या कुरान के लिए रखें। अपने दिन में गैर मौजूदगी के लम्हात पैदा करें। जी हाँ, गैर मौजूदगी के लम्हात। ऐसे वक्त में आप जानबूझकर मोबाइल से दूर रहें। चौथा कदम यह है कि अपने शेड्यूल में खानदान के लिए वक्त लिखें। सिर्फ दिल में ना सोचें, लिखें। क्योंकि जो चीज हम लिख लेते हैं, उनकी अहमियत भी हमें ज्यादा महसूस होती है। एक और आदत जिसे हम भूल जाते हैं, वो है अपना मुहासबा। सोने से पहले 2 मिनट निकालें और खुद से 3 सवाल करें। आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैंने क्या गलत किया और मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। बस इतना ही। ये 2 मिनट आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद आगा बनाएंगे। आखिर में एक बात याद रखिए, अल्लाह ताला हमसे ये मुतालबा नहीं करते कि हम एक दिन में सब कुछ बदल दें। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएं। डियर लिसनर्स, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं, तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं, ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से

0: ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar। दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.
2: हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। स्टूडियो की घड़ी में 11:02
0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ।

0: बात बोल बोल कर कि आपने बस दिल तोड़ देता, मासूम सफा का दिल तोड़ा आपने।
1: या नहीं, ऐसा नहीं है, आप देखिए ऑन एयर मुझे आप ऐसे बात कर रही हैं कि बदनाम कर रही हैं आप मुझे।
0: एक वर्ड की कीमत तुम क्या जानो सरवर भाई, एक वर्ड ही तो था।
1: नहीं तो मैंने सुना ना आपने जो कहा, फिर मैंने कहा कि हाँ
0: अच्छा,
1: सही
0: है। अब वो सबको बता ही दे वो क्या वर्ड था और क्या था।
1: मैंने उस पे हामी भी भरी, हाँ उसके हवाले से भी बताएंगे।
0: मतलब जब मैं बता रही तब हामी नहीं भरी,
1: खासम खास दिन
0: है। सर्च करो, तुम सर्च करो, तुम गलत बोल रही हो।
1: कल का है ना खास दिन? हाँ कल का है बिल्कुल, इसके हवाले से हम बताने वाले हैं कि कल क्या खास होने वाला है। और भाई मुद्दा भी है आज के शो में आपके ही हवाले से, वही हम कुछ ट्रिविया वगैरह भी सफा आपके साथ शेयर करेंगी और गेम भी होना ही है, ये तो आपको पता ही है। और खूब धूम मचाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, दो घंटे एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। आइए सबसे पहले शुरुआत जैसे कि हम करते हैं वेदर के हवाले से जान लेते हैं कि क्या है
2: वेदर का हाल 107 दिनाल।
1: हाँ जी, तो क्या है वेदर का हाल सफा, जरा सा बता दीजिए।
0: देखो भाई जल्दी जल्दी चलते जाते हैं कि सरफ भाई ने भी कुछ बहुत अच्छी बड़ा दुख जो बहुत अच्छी अच्छी बातें शेयर करनी है। जब जब ये लफ्ज मेरे दिमाग में आएगा तब तक मेरे दिमाग में यही चलेगा सरफ भाई। अच्छा खैर चले, सरफ भाई को साइड पे रखते हैं, वैसे सरफ भाई को साइड पे रखा नहीं जा सकता, सरफ भाई मेन स्ट्रीम में ही रहते हैं हमेशा माशाल्लाह। तो भाई इस वक्त जो वेदर है, वेदर का हिसाब किताब कुछ ऐसा चल रहा है 41-42 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही वेदर है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस वक्त कहाँ हैं, मुझे तो यही दिखा रहा है हमारे एरिया में। और हाईएस्ट जो है टेम्परेचर जाएगा आज का 43 डिग्री सेल्सियस तक, लोएस्ट जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस तक। 43 डिग्री सेल्सियस तक हाईएस्ट जाएगा और लोएस्ट जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा हाँ, फील्स लाइक 49। देखो 53-50 से तो नीचे आई गया, फील्स लाइक 49 हो रहा है फिर भी, ठीक है। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि ह्यूमिडिटी जो है वो हमारे ऊपर बिल्कुल भी रहम ना खाते हुए बिल्कुल कल की तरह है, मतलब इट इज़ सिमिलर टू यस्टरडे, अराउंड 30% पर ह्यूमिडिटी है। हवाओं की रफ्तार इस वक्त जो है वो तकरीबन कहीं 8 से 11 किलोमीटर के दरमियान चल रही है। तो ज़रा मुझे मैसेज करके सरवर भाई और मुझे मैसेज करके बताएं कि आपको क्या लगता है, आप जहां पर इस वक्त हैं वहां पर हवाओं की रफ्तार क्या चल रही है। मैं इसलिए जानना चाह रही हूं कि भाई वीकेंड आया हुआ है और वीकेंड पे दिल करता है कि
1: वीकेंड आया हुआ है, कल हम बारिश का इंतजार करते रहे और जैसा कि रिपोर्ट में भी था तो उसके हवाले से भी यहां पर कुछ हम बात करेंगे।
0: बताओ वो कौन सा शख्स था इसने सही तरह दिल से दुआ नहीं की थी, ये उसी की वजह से हुआ, बड़ी सरसरी सी दुआ कर दी थी इन्होंने मुंह से।
1: शायद कुछ हुआ हो और हमें खबर ना मिली हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा कि कल कहीं कुछ बौछार बूंदा बांदी या बारिश का किसी ने एक्सपीरियंस किया है तो ये भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, नंबर आपको बताइए। तो आइए अब जान लेते हैं कि मजीद वेदर के हवाले से क्या कहा गया है हमसे। तो साहब कतर में कल बरोज जुमा 28 अगस्त 2026 की सुबह एक पिनम्ब्रल ल्यूनर एक्लिप्स देखने को मिलेगा। अब ये क्या है इसके हवाले से बात करते हैं। तो कतर सेंटर फॉर स्पेस एंड साइंसेस एंड एस्ट्रोनॉमी के सदर शेख सलमान बिन जाबर अल सानी ने बताया कि इस दौरान चांद जमीन के गहरे साए में नहीं बल्कि उसके किनारे वाले साए से गुजरेगा, साइड से, इसलिए चांद पर हल्की सी जो तारीकी है वो नजर आ सकती है, अंधेरा जो है वो नजर आएगा। उनके मुताबिक एक्लिप्स तकरीबन सुबह 4:23 के दरमियान होगा, इस टाइम से शुरू होगा और उसका असर जो है चांद गुरूब होने से पहले चंद मिनटों के लिए नजर आएगा। क्लियर है बात सफा?
0: हाँ।
1: शेख सलमान बिन जाबर अल सानी ने लोगों को तंबीह की है और ये बताया भी है कि भाई जितने भी ये जो वाकयात होते हैं हमारे एक्लिप्स वगैरह से या ये कह लीजिए कि फलकी वाकयात जो होते हैं, सोशल मीडिया पर इनके हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं, खबर जो हैं वो फॉल्स न्यूज़ जो हैं वो फैलाई जाती हैं, तो उन अफवाहों को बिल्कुल भी आप मत सुने, उनको आप अवॉइड करें और गलत अकीदों पर यकीन ना करें।
0: हाँ।
1: और सिर्फ मुस्तनद साइंसी मालूमात पर ही भरोसा करें और सही प्लेटफॉर्म से ही आप टेम्परेचर और मजीद न्यूज जो है वो हासिल किया करें। उन्होंने मौसम की पेशनगोई के बारे में भी कहा कि आमतौर पर 72 घंटों तक की फोरकास्ट जो है ज्यादा काबिल एतमाद होती है, यानी 72 आवर्स की, तो इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, जबकि इससे ज्यादा की जो मुद्दत है उसमें जितना भी प्रिडिक्शन वगैरह होता है वो उसकी जितनी भी कहना चाहिए दुरुस्ती होती है वो कम हो जाती है, इसलिए
0: सही
1: दूर अंदाज या दूर दराज मुद्दत की जो भी मौसमी हालात है वो लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए।

0: तो मुझे उसके बिना फिर मेरी आंख ही नहीं खुलती।
1: ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी।
2: हाँ मतलब बैड ब्लैक कॉफी, बैड ब्लैक हो गया था ये।
1: वो कौन सा, वो कौन सा विलन था लगता है?
2: गुलशन ग्रोवर, वही वही तो कह रहा हूँ। तो ये बैड ब्लैक कॉफी हो गई है तो
0: बिल्कुल।
2: अच्छा अब मसला ये है कि वो आपको मिलती कैसे है? मतलब आप पहले जाते हैं किचन में, बनाते हैं, वापस आके लेटते हैं और फिर ये दिखाते हैं कि ये मुझे सर्व करी गई है?
0: ना, मेरी वाइफ का जो टाइमिंग है वो मुझसे थोड़ी अलग है।
1: सही।
0: वो उनकी जो ड्यूटी स्टार्ट होती है वो बहुत है।
2: सारी वाइफ की टाइमिंग अलग होती है। भाई सुनो तो सारी वाइफ की टाइमिंग
0: अगर मैं ज्यादा थका हो। नहीं नहीं देखो इसमें इसमें हम दोनों एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं क्योंकि मुझे पता है काम, देखो वो भी काम करती है मैं भी काम करता हूँ तो इस चीज का थोड़ा मतलब रखना चाहिए।
1: आपके जैसे मियाँ जो है ना अल्लाह ताला सबको दे अच्छे अच्छे वाले अल्हम्दुलिल्लाह।
0: रात को ज्यादा काम किया तो इसको वजह से मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है नहीं उठ पा रहे तो ठीक है वो खुद को, अदरवाइज मैं खुद आराम से उठता हूँ कॉफी बनाता हूँ और कभी कभी मैं कॉफी एक दो सिप लिया सो गया फिर उसके बाद 15-20 मिनट के बाद आँख खुल रही है तो ऐसा हो जाता है समटाइम्स।
2: यार कॉफी पी के आप सो जाते हैं? वाह।
0: हाँ मैं आप कितनी भी हार्ड कॉफी दे दो मुझे मुझे नींद आती
2: है। कॉफी पी के सो जाते हैं कह रहे हैं?
1: मेरी शक्ल देखो मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। मुझे नींद इतनी प्यारी है ना।
0: ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है सरोज साहब, कई बार मतलब मोस्टली मेरे साथ ऐसा होता है। मैं
2: मुझे आश्चर्य क्यों हुआ ये सुनिए अब आप शुएब भाई। मेरी नींद वैसे ही 4-5 घंटे की है, आज इतना टाइम तो हो गया, 17 साल का हो गया हूँ मैं तो इतने टाइम से
1: उल्टा कर दें
2: 4-5 घंटे की नींद है और जब अगर कॉफी या चाय हो जाए तो फिर तो यार मतलब 3 घंटे पे चली जाती है वो नींद। ये
1: मेरी एक स्पेसिफिक कॉफी ब्रांड है सिर्फ उससे मेरी जना नींद उड़ती है वरना मैंने दुनिया की चाय कॉफी पीकर देखी है नहीं कुछ नहीं होता मुझे।
2: शुभ भाई आपके साथ भी ऐसा ही है क्या?
0: मैं तो रात को कॉफी पी के भी सो जाता हूँ।
2: चलिए यार ये तो
0: अच्छी है, मजाक साइड के मैं रात को कॉफी बनाता हूं।
2: नहीं नहीं यूजुअली क्या होता है मतलब एक जो दूध अगर आप गर्म पिए तो बताते हैं, बताते क्या है मैं पता ही, हम सब ने बच्चे क्यों सो जाते हैं उनको जब रात में फीड किया जाता है या बॉटल दी जाती है तो वो इसलिए सो जाते हैं। मगर अब हम लोग के ऊपर ये चीज़ असर करती है नहीं, मगर शुएब भाई के ऊपर तो कर रही है। मगर ये तो ब्लैक कॉफी पी रहे हैं दूध से कहीं तक मतलब ही नहीं है।
0: गड़बड़ कुछ नहीं है अल्लाह का शुक्र है मेरी नींद बहुत अच्छी है
2: माशाल्लाह
0: बहुत अच्छी है।
1: बहुत लकी हैं भाई, बहुत लकी हैं जिनको अच्छी नींद आती है। मुझे उन लोगों से जेलसी है, मुंह पे बोलती हूँ उन लोगों से जेलसी जिनको नींद अच्छी आती है।
0: पता है आपको ये जो जेलसी है ना बस इसी को खत्म कर लो कसम से। अगले दिन से आपको
2: नहीं, क्या शेर सुनाया, क्या शेर सुनाया भाई वाह ये लीजिए क्या कहने सफा?
1: जिन लोग नहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके पर मैं कहती हूँ बस भाई कुछ, जिन लोगों को बारिश मिल जाती है मुझे उनसे मसला है, जिन लोगों को अच्छी नींद आती है मुझे उनसे मसला है।
2: इसीलिए कतर में बारिश नहीं हुई कल आपने सही तो कह रहे चुप भाई सही कह रहे
0: आपने बोला कि 26-27 को बारिश होने वाली है। तो मैं अपने एक दोस्त के साथ घूम रहा था तो बोला यार देखो चांसेस है बारिश हो जाएगी ठीक है तब देखो इंशाल्लाह मौसम अच्छा हो जाएगा। अब कल रात को उसका मेरे पास मैसेज आया ना भाई ये बताओ तुम रिपोर्ट कौन सी देखते हो? मैं बोला क्या हो गया? अरे भाई साहब बारिश तो हुई नहीं गर्मी डबल हो गई।
1: असल में कहीं तो वही है क्योंकि
2: मैं भी कल शाम में यही सोच रहा था कि भाई रिपोर्ट में तो ही लिखा था और फिर रिपोर्ट हम लोग पहुंचाते भी हैं आगे तक तो लोग क्या नहीं,
1: मैं मानती हूँ कहीं तो वही होगी कहीं हाँ। तो क्यों? क्योंकि जब गर्मी होती है डबल बढ़ जाती है गर्मी
2: कुछ इलाकों में कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ होगा जो हमारी अभी तक
1: ह्यूमिडिटी जो है ना खबर में नहीं आया। जब ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और गर्मी जब जमीन की बढ़ जाती है क्योंकि वो हल्की बारिश होती है कहीं पर तो उसकी वजह से जमीन की गर्मी रिलीज होती है तो वो तो मुझे समझ में आ रहा
0: है। जब टीन एज में जब मैं अपने गांव में होता था तो तब बारिश जब होने से पहले बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती थी
1: हाँ।
0: तो बड़े बूढ़े कहा करते थे देखो इंशाल्लाह आज बारिश हो सकती थी और 90% बारिश हो जाती थी। लेकिन अब क्लाइमेट इतना चेंज हो गया कितनी भी गर्मी हो गया पता ही नहीं चलता। अब तो पता ही नहीं चलता।
2: हमने जो अभी बात करी वेदर के हवाले से भी तो उसमें हमें भी

0: यही बताया जा रहा है सबको कि भाई सिर्फ ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स पे देखें जहां सही खबर मिले, क्योंकि इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है जैसे कि आपने बताया शुएब भाई कि कुछ पता ही नहीं होता सुभानअल्लाह।
1: और बारिश का मामला तो अल्लाह ताला के हाथ में, इंसान कितना प्रिडिक्ट कर ले, इंसान सिर्फ सोच सकता है, दुआ कर सकता है, लेकिन वो तो अल्लाह ताला के हाथ में
0: और अल्लाह ताला बेहतर करने वाले हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शुएब भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि संडे में जो वीकेंड आप मनाएंगे वो अच्छा ही होगा। ऑलराइट
2: बिल्कुल,
0: आप भी ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी वीकेंड।
1: भाई शोएब भाई की बात सुनने के बाद हाँ। मुझे लग रहा है ब्लैक कॉफी तो बनाना सिखा ही दूं मैं अपने घर वालों को,
0: और मैंने अभी तक पता नहीं कितने साल से तो पी नहीं होगी। हेलो सलाम अलैकुम।
3: सलाम जनाब, सानू ब्लैक कॉफी बना रहे हो।
0: हम इन मैं इस इंतजार में
1: हूँ। हाँ कि भाई हमें तो मिल जाए, फिर हम बांटेंगे ना।
0: मैं तो आज सोच रहा हूँ कि सफा से कहेंगे भाई के बनाने के लिए ब्लैक
1: बनाती हो ना। नहीं, मुझे वही वाला ब्रांड चाहिए, मेरे को ब्रांडेड कॉफी चाहिए।
0: तो मंगा दिएगा ना। गाबा भाई कैसे हैं?
3: हाँ बढ़िया, उम्मीद करता हूँ कि और आप सफा जी और आप
0: मगर आवाज हल्की निकल रही। गाबा भाई नहीं नहीं ऐसे नहीं, क्या हो गया, सब ठीक है?
3: चलो जी हुण करो गल। जिस हिसाब से आपने स्टार्टिंग में सफा जी को तंग किया है ना
0: यार, मैंने कहा
3: ऊपर से और ऊपर से आप दोनों ने जिक्र किया जलापीनो चीज, फ्रेंच फ्राइज, उसके बाद बारिश का जिक्र, उसके बाद ब्लैक कॉफी का जिक्र।
0: यार ये सही कह रहे हैं, काफी बातें ऐसी थी, बातें कर दी।
1: कल किसी ने पकोड़ों का जिक्र किया था तो अभी तक मेरे दिमाग से वो पालक वाले और गोभी वाले पकोड़े ना जा रहे
3: कल से।
1: जी हाँ,
0: ये मैं तो खा भी चुका
1: हूँ, क्योंकि मेरा मसला है कि मैं जब कोई चीज बनाती हूँ ना, जो बनाने वाला होता है ना उसको खुद अपने खाने का मजा नहीं आता, बाकी सब चटखारे लेकर खा लेते हैं और मैं सड़ी हुई शक्ल बना के देख रहा हूँ, मजा नहीं आया।
3: नहीं सफा जी, चक्कर पता क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जैसे पराठे, ये दूसरों के हाथों के ही अच्छे लगते हैं, पराठे हो गए, पकौड़े हो गए।
0: अरे भाई क्या बात कर दी
1: भाई, मुझे तो सब कुछ दूसरों के हाथों का अच्छा लगता है।
0: यार क्या याद दिला दिया यार, हमारे प्रेम भाई यार, मैं तो कितने दिनों से मिला नहीं भाई, ठेले पे खड़े होके और वो जो पराठे बना के उन्होंने आलू के मुझे खिलाए, आज तक देखिए मेरे अंदर आलू दिख रहा है। प्रेम भाई ने मुझे इतने पराठे खिलाए, और वाकई ये हकीकत है, मतलब दूसरों के हाथ के पराठे स्पेशल, काफी चीजें ऐसी होती थी। हाँ। गाबा भाई ने जो इवन हमारे खैर घर पे ये भी कहा जाता था कि दूसरों के घर की तो दाल रोटी भी अच्छी लगती है, तो टेस्ट क्योंकि बदलता है
1: ना, वो शामी कबाब के मामले में और ये अपने पकोड़ों के मामले अम्मा याद आ जाती है, फिर मैं भर भर के सिर्फ रोती
0: अम्मा के हाथ का तो सभी अच्छा लगता है। गावा भाई सही कह रहा हूँ ना?
3: बिल्कुल बिल्कुल जी।
0: तो क्या
3: सफा जी, ये सर्वर भाई एसी के टेम्परेचर में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है ना?
1: बिल्कुल भी नहीं भाई।
3: और जी बिल्कुल नहीं है, तो आपका पेशेंस लेवल देखिए मैडम, सल्यूट है जी आपको।
1: मैं अगर आप
0: तुम लड़वाने आए हो या बात करने आए हो?
1: गावा भाई सच बता रही हूँ, जो जैकेट मैं पहनती हूँ ना, उस जैकेट का अपना वजन कम से कम 5 kg है, तो सोचो वो कितनी हैवी जैकेट होगी।
0: नहीं मगर मुझे इस वक्त गर्मी लग रही है स्टूडियो में, क्या तुमने कुछ किया है?
1: भाई क्या बोल दिया आपने भाई,
0: कुछ करके आई थी आप,
1: ये जरा क्यों बता दिया
0: इस आदमी को। अच्छा चलिए, तो गाबा भाई क्या कहते हैं, वीकेंड आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला करे कि अच्छा गुजरे। तो क्या करते हैं सबसे पहला काम सुबह उठते ही?
3: सुबह उठ के सर्वर भाई सबसे पहले कुछ भी किए हुए पानी पीना होता है जी।
0: ओके ओहो।
3: हाँ बिल्कुल, उठ के विदाउट ब्रश किए हुए जो पानी बंदा सुबह पीता है ना सर्वर भाई, सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो पानी अंदर जाता है ना बंदे के, मेरे ख्याल से उससे बड़ी दवाई कोई नहीं है।
1: अच्छा आप बड़े लकी हैं कि आपको वो पानी आप पी लेते हैं, मैं अगर पीना तो मुझे नौजिया होना शुरू होता है पानी पीकर।
0: नहीं और काफी लोगों को याद भी नहीं रहता एक्चुअली,
1: पता नहीं क्या मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है, मुझे खाली पानी गले में अड़ता है, मेरे गले में अड़ता
3: है। सपा जी आप पीते कौन सा हो, ठंडे वाला गुनगुना पानी?
1: नॉर्मल, हमारे घर में ठंडे पानी का रिवाज नहीं है, हम ना कुछ नहीं, हमारे घर में वही रूम टेम्परेचर वाला पानी चलता है, लेकिन मसला मेरे साथ है कि मैं अगर जब तक उसके अंदर, बेशक वो कोई मुझे नहीं पता क्या मसला है, बस वो खाली पानी नहीं उतरता गले से।
3: एक छोटी सी सुजेशन हो सकता है मैडम, काम कर जाए।
1: बताएं
3: आप कोशिश करें आगे से, जो भी अभी आप पानी पीते हैं ना, जो 15-20 रियाल की बोतल आती है ना आपने

0: हाँ जी वो ट्राई करना कांच की बोतल में जो पानी।
1: ओके ओके ओके ओके ओके ठीक है। महंगा पानी भी महंगा वो अमीरों वाले शॉप
0: नेचुरली
2: मैं समझ गया गावा भाई क्या कहना चाह रहे हैं। वो एक साइकोलॉजिकल असर भी होता है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा बट इफ यू गो बैक लाइक अभी भी इवन अभी भी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती थी याद होगा गावा आपको कि वो कांच के बॉटल्स में आना शुरू हुई थी याद है आपको ताकि उनकी हाँ शिद्दत और बढ़े और देख के और ज्यादा दिल चाहे कि ये ठंडा और ये मशरूम मैं पीऊं।
1: मैंने एक चीज ट्राई की थी मुझे नहीं पता कितने लोगों ने की होगी कि वो जो ना नेट पर ना ऑनलाइन कुछ वाटर बॉटल्स आ रही थी खाली वाटर बॉटल जैसे बच्चों की स्कूल वाली होती है उनके ऊपर ना कुछ टैब्स लगते थे जो के पानी जब आप पीते हो ना तो वो सिर्फ फ्रेग्रेंस देते हैं जैसे हम लोग एयर फ्रेशनर नहीं होता वैसे तो वो मुझसे पी ली जाती थी जबकि वो वही पानी जा रहा है उसके अंदर
2: वो असर हो गया
1: खाली पानी नहीं पिया जा रहा वो बस एक फ्रेग्रेंस चाहिए उसके अंदर। अब वो चाहे आप मिला दो कुछ भी उसके अंदर लेमन डाल दो कुछ फ्रेश कुकम्बर डाल दो वो पी लिया जाएगा लेकिन खाली पानी नहीं पिया जाएगा पता नहीं क्यों।
0: नहीं सफा जी मैं वो आपको क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखिए साइकोलॉजिकल तो आपने बात कर दी
1: हाँ।
0: उसके टेस्ट का भी मैडम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क रहता है।
1: वो जो स्प्रिंग वाटर टाइप आप चीज बोल रहे हैं ना वो वाकई में है वो जो एल्कलाइन वाला पानी होता है वो वाकई में है मैं आपकी बात मानती हूँ 100% है वो जो नॉर्मल।
2: अच्छा गावा भाई अगर सुबह उठ के हम नारियल पानी पिए तो कैसा है
0: सर्वर भाई उससे अच्छी तो चीज ही नहीं है कोई वो तो बहुत जबरदस्त चीज है सर्वर भाई
2: मगर ये है कि फ्रेश हो और मतलब असल हो असली हो
1: कैन वाला ना हो
2: असली हो। अब हम किसी का नाम नहीं ले रहे कौन क्या बेच रहा है असली होना चाहिए असली होना चाहिए क्या बात है भाई। तो अच्छा पानी पी लिया अब उसके बाद मतलब हम
0: उसके बाद
2: मैं ज्यादा नहीं जानना चाह रहा मैं समझ गया पानी पीने के बाद क्या होगा मतलब यूजुअली दुनिया भी काम में हाँ
0: सर्वर भाई फ्रेश फ्रेश होके बस चाय हाँ। चाहिए स्टील के गिलास
2: यही तो है
0: चाहिए ही चाहिए
2: स्टील के गिलास में। यार हमारे पंजाबी लोग जो है ना लस्सी और चाय स्टील के गिलास में ही पीते हैं सही कहा बाबा भाई।
0: हाँ जी बिल्कुल
2: लस्सी भी सर्वर भाई पूरा वो लंबा वाला कद्दा जिसको कहते हैं
1: हाँ हाँ हाँ।
0: नहीं मैं सर्वर भाई मैं इतनी ज्यादा नहीं पी सकता मैं आपको सच बताऊं मगर मजा उसी में ही आता है सर्वर भाई स्टील के गिलास में।
2: अरे यार स्टील
0: या तांबे के बर्तन
2: या तांबे का ओए होए चंडीगढ़ में जो पी है मैंने 150 लीटर लस्सी वो आज तक चल रही मेरे साथ
0: क्या बात है। अच्छा सर्वर भाई एक बात और
2: जी
0: फिर कॉल लंबी हो जाएगी
2: जी जी जी।
0: आज शाम को तो कल तो हमारा है फेस्टिवल राखी का
2: ओके ओके ओके
0: जी
2: ओके।
0: तो आज शाम तो उसके लिए निकल जाएगी वीकेंड में मिठाई वगैरह लेनी है थोड़ा सामान सामून लेना है
2: ओके ओके चलिए फैमिली के साथ हैं आप एंजॉय कीजिए भाई
0: जी। और दूसरी बात ये आपके दोस्त हैं शाह जी जसविंदर सिंह काला जी
2: जसविंदर जी जी जी
0: जी जी तो नेक्स्ट वीक जा रहे हैं छुट्टी उन्होंने बोला था भी सर्वर भाई को मेरी तरफ से भी सलाम कर देना हो सकता है मेरे को टाइम लगे ना लगे
2: ओ, हाँ वो बिजी होते हैं इस वक्त तो बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी मैसेज पहुंचाने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और इंशाल्लाह आपका सफर भी अच्छा गुजरेगा और अभी के लिए देखते हैं अगर उनसे बात हो सकती है। चलिए भाई बहुत बहुत शुक्रिया हाँ गावा भाई जी
0: बिल्कुल सर्वर भाई वो आपको वो पर्सनली जानते हैं वो आपके घर आज नहीं आज से 15 साल पहले गए हैं आपका घर होता था उस टाइम द मॉल वाला सिग्नल है ना
2: जी जी उधर भी होता था
0: जी,
2: सही
0: उनके पास तो उस घर में वो गए हैं वही बेटर बताएंगे उन्होंने चाय भी पी है आपके घर में एक नहीं दो बार गए
2: ओके ओके ओके ओके
0: आप उस टाइम बहुत छोटे थे शायद
1: नाक सुड़कते हुए
2: वाले साहब से मिलने आए होंगे ऑब्वियसली
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छी थी उनके साथ दोस्ती
2: सही सही ओके
0: और सफा जी के मदर को भी अच्छी तरह से जानते हैं वो
1: माशाल्लाह
2: ये पूरी एक ही टीम हुआ करती
1: हमारे अम्मा अब्बा का ना बड़ा अच्छा और बहुत वाइड सर्कल था उस जमाने में कतर बड़ा छोटा सा था
2: अब माशाल्लाह क्योंकि जाहिर बात है वास्ट हो गया है तो लोग भी बढ़ गए। एनी हाउ बहुत बहुत शुक्रिया गावा भाई हैप्पी वीकेंड और हमारी सबकी तरफ से आप ख्याल भी रखें और सबको हमारी तरफ से पूछिएगा और बहुत
0: जी, मेरी तरफ से भी गोपी रिया फुल्लानू
2: हैप्पी वीकेंड भाई थैंक यू सो मच
1: सर्वर भाई गावा भाई की एक बात मुझे अभी अभी यूं करके ख्याल है आप कभी छोटे भी थे
2: क्यों नहीं रहा होगा यार
1: मतलब
2: ये बात अलग है कि छोटा भी प्यारा था मैं
1: माइड
2: आज भी प्यारा हूँ मैं किसी का तो प्यारा हुई इससे पहले कि मैं प्यारा हो जाऊं तो भाई वीकेंड की वाइब को और भी हाई करते हुए वाजिद खान और लव झुंझुआ एंजॉय कीजिए सोने दे रख रहे आज भी गाने की बीट सफा क्या

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूर हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ

ट्रैवल प्रोसीजर्स कुछ ही सेकंड्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ सिटीजन्स और रेसिडेंट्स ही नहीं बल्कि उन बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जिनकी हाइट 130 सेंटीमीटर से ज्यादा है। साथ ही व्हीलचेयर्स यूजर्स, सीनियर सिटीजन्स और पर्सन विद डिसेबिलिटीज भी इस सर्विस का आसानी से फायदा उठा सकते हैं। इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
1: अपने शरई मसाइल के हल, रोजमर्रा जिंदगी से मुतालिक दीनी रहनुमाई, अहले इल्म के मुदल्लल जवाबात और मुफीद इल्मी गुफ्तगु सुनने के लिए समात कीजिए नूरे इस्लाम। तरतीब व पेशकश फुरकान शाहिद कासमी, हर जुमा शाम 4 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
2: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप,
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
3: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड, RJ सरवर मिर्जा और RJ सफा के साथ।

0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड विद सफा एंड सर्वर। और बड़ा दुख दीजो, पहले सर्वर भाई थे सिर्फ, और अब जो है उसकी लिस्ट में गाबा भाई भी शामिल हो गए। गाबा भाई, आपने इनको याद दिला दिया कि एसी मैंने कम किया था, मैंने इनको बताया बगैर कम किया था, अभी फिर 12 पे टेम्परेचर कर आ गया आदमी। मुझे ना वो, मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा, मैं ना वो आर्कटिक चली जाती हूँ, वो ज्यादा अच्छा था मेरे लिए। कम से कम मुझे ये तो होगा कि मैं आर्कटिक में बैठी हूँ, मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं है। चलो खैर है, खैर है, खैर है, चलो भाई क्या ही कर सकते हैं, यही कह सकते हैं, कोई बात नहीं,
1: आप मैं करने भी नहीं दूंगा।
0: अस्तग़फ़ुरल्लाह, अस्तग़फ़ुरल्लाह। अच्छा भाई, चलो भाई अब अपने फ्रंट ट्रिविया की तरफ आ जाते हैं। तो भाई मेरे पास आज फ्रंट ट्रिविया ये है कि आपको ये बात तो पता है कि भाई अर्थ की सरफेस का 70% से ज्यादा हिस्सा जो है ना वो पानी से कवर्ड है कि नहीं है?
1: बिल्कुल है।
0: अच्छी क्लास अगर पढ़ी होती बचपन में तो पता होता सर
1: हमारी बॉडी का भी, अर्थ और बॉडी दोनों की हालत यही है।
0: अच्छा भाई देखें, इसीलिए हमारे प्लैनेट पर बीचेस और ओशंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। देखें एक और इंटरेस्टिंग बात ये कि हर बीच सिर्फ सफ़ेद या गोल्डन नहीं होता, जैसे हम कहते हैं ना हाय हाय क्या तो रेत है गोल्डन कलर की या खाकी रंग की। दुनिया में पिंक, ग्रीन और हत्ता के पर्पल सैंड वाले बीचेस भी मौजूद हैं। वो ब्लैक बीच वाला तो मेरे ख्याल से वो शाहरुख खान और काजोल के गाने की वजह से मशहूर हो ही गया था, लेकिन लोगों को ये भी बहुत कम पता है कि पिंक, ग्रीन और हत्ता के पर्पल सैंड्स वाले बीचेस भी मौजूद हैं। और अब एक और ज़बरदस्ती बात मैं आपको बता दूं कि बीचेस के मामले में पता है कौन सा मुल्क ज़्यादा नोन है? ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से ज़्यादा बीचेस हैं। ऑस्ट्रेलिया पूरा पूरा एक अलग कॉन्टिनेंट है भाई। अगर आप रोज़ एक नए बीच विजिट करते हैं ना, एक नया बीच ऑस्ट्रेलिया जाकर, तो भाई ऑस्ट्रेलिया के तमाम बीचेस एक्सप्लोर करने में आपको तकरीबन 27 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बीचेस हॉपिंग का प्लान बनाया जा सकता है। सरवर भाई क्या कहते हैं?
1: भाई वाह क्या बात है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया
0: अभी बनाएंगे तो रिटायरमेंट तक तो चलेगा,
1: खास है। तो चलिए भाई अब आ जाते हैं मैसेजेस की जानिब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, हैप्पी वीकेंड आपको और मैडम को। कौन है? निहाल है हमारे साथ। ओके यूसुफ भाई आ गए हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, सफा जी और सरवर भाई कैसे हैं आप दोनों? होप वेल, वेलकम टू सन एंड साउंड। दिल से देसी यूसुफ खान, हैप्पी थर्सडे मॉर्निंग कहते हैं और हैप्पी वीकेंड भी कहते हैं सबको। बहुत बहुत शुक्रिया।

0: तो भाई आपको भी हैप्पी वीकेंड और हैप्पी थर्सडे। जसविंदर साजी का यहाँ पर मैसेज है, हाँ जी सवा मैडम जी,
1: जी जी
0: टुमारो उनका फेस्टिवल है, बताते हैं रक्षाबंधन है और टुमारो सर्वर जी नहीं मिलेंगे कह रहे आज ही इनको
1: अच्छा मैं समझ गई,
0: पैसे ले लो
1: नहीं वो कह रहे हैं कल छुप जाएंगे।
0: हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, नाम तो सुना होगा थोड़ा सा।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: क्या शेर बोला है, क्या शेर बोला
0: राहुल
2: नो वो ऐसा नहीं है, मालूम है क्या बोला,
0: ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई इतनी अच्छी आवाज तो जावेद बाजवा जी की ही हो सकती है और वो हमारे साथ कनेक्टेड है। कैसे हैं जावेद भाई, खैरियत
2: कैसी है मेरी बहन सबा और कैसे है मेरे भाई सब?
0: अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है और यही उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला।
2: मैं भी बिल्कुल शुक्र परवरदिगार का। सबा बहन मैंने देखे आपका नाम पहले लिया ताकि कोई ऑब्जेक्शन ना लगे,
1: आपने जो है ना अपने आप को बचा लिया क्योंकि आज मेरी लिस्ट बहुत लंबी, मैं आज टॉक्सिक औरत बनी हुई हूँ, टॉक्सिक औरत। मैंने आज गाबा भाई को भी लिस्ट में डाल दिया है, आज जो है मैंने सरभ भाई को भी लिस्ट में, सरभ भाई तो होते ही होते हैं, आज गाबा भाई ऐड हो गए,
0: जावेद भाई बच गए, मगर इतनी अच्छी बात करके
1: सोच समझ के आए जावेद भाई, सोच समझ के।
0: जावेद भाई कैसे हैं जावेद भाई और कैसा रहा अभी तक का दिन और कहाँ हैं अभी, सारी बातें बताइए मुझे आप।
2: इस वक्त मैं दुकान रोड पे हूँ और दिन बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा गुजर रहा है
0: माशाल्लाह,
2: और मुझे जरा शाम को ट्रैवल भी करना है तो बहुत अच्छा गुजर रहा।
0: छुट्टी अब जा रहे हैं आप, जब छुट्टियाँ खत्म हो गई सबकी?
2: नहीं छुट्टी तो मैं नेक्स्ट मंथ जाऊंगा,
0: कुछ अभी काम से जा रहे
2: हैं। हाँ मतलब आपको पता आना जाना जरा चलते ही रहते मेरा।
0: हाँ ओके ओके ओके ओके,
1: बड़े लोग okay. बड़े लोग देखो ये
0: नहीं ड्यूटी के,
1: ड्यूटी कॉल्स,
0: ड्यूटी कॉल होगी ये, आई अंडरस्टैंड,
1: ऐसी ड्यूटी मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी घूमनी है दुनिया
0: जावेद भाई
2: देखिए बात सबा हाँ? बहन एक मैं बात करूंगा, देखिए ड्यूटी तो माशाल्लाह सभी निभाते हैं लेकिन जहन नसीब के सर्वर भाई के साथ बैठना और वक्त गुजारना
1: और फ्रीज होना और अल्लाह माफ करे सर्द खाने में बैठना,
0: बात तो सुनो, कह रहे बात तो सुनो यार, अभी आगे आगे मेरी हल्की कर देंगे ये मुझे पता है
2: नहीं, आप हल्के हो ही नहीं सकते किसी तरह
1: मैं भी यही बोलने वाली थी
0: अच्छा ये भी अच्छा है, चलिए फिर सर ये बताइए कि अब वीकेंड का तो आपका जैसे भी ऑफ रहता हो ड्यूटी को अंजाम देते हुए, मगर छुट्टी होती तो है, वो छुट्टी वाले दिन जावेद भाई सबसे पहला काम क्या होता है?
2: छुट्टी वाले दिन हस्बे मामूल मतलब है कि जब सुबह नमाज के बाद लेटते हैं तो सबसे पहले उठ के शावर लेके जो मैं करता हूँ बावजू होके सबसे पहले मैं कॉर्नफ्लेक्स खाता हूँ
0: बावजू होके कॉर्नफ्लेक्स खाते
1: वाह
0: चलिए अच्छा, तो ये हमेशा से चल रहा है, ये हमेशा से कितना टाइम हो गया इसको अदा करते हुए?
2: ये रूटीन से चल रहा है, हर फ्राइडे को ऐसे चलेगा।
0: ओके मगर अगर मैं पूछना चाहूँ कि कितने साल हो गए या कितना टाइम हो गया इस चीज को करते हुए?
2: मेरे ख्याल से आप कह भी ले तो तकरीबन 21-22 साल तो हो ही गए।
1: अच्छा ये इनका ताल्लुक ही कुछ ऐसे प्रोफेशन से है माशाल्लाह से कि आप लोगों को तो सिखाई ही रूटीन जाती है ना, मेरे अब्बा खुद ऐसे सेक्टर में थे कि वो कहते थे हमें तो सिखाया ही जाता है कि अपने आप को पहली चीज़ तो अपने आप को प्रायोरिटी दो और फिर एक स्केड्यूल के साथ चलो। मैंने खुद ये चीज़ देखी है, नोट की है, मेरे अब्बा सुबह 8 बजे मतलब सुबह 7 बजे तो वो उठ जाते थे, 7-6 बजे वो उठ जाते, परफेक्ट उनका टाइम था, 8 बजे पिन पॉइंट उनकी आवाज आती थी नाश्ता, पिन पॉइंट घड़ी देखे बगैर।
0: तो ये जो है नाश्ते की शुरुआत होती है जावेद भाई, मतलब मैदा खोलने के लिए खाया जाता है कॉर्नफ्लेक्स या यही नाश्ता होता है, इसके आगे भी कुछ होता है?
2: आपकी बातों का मुझ पर इतना असरात हो रहे हैं कि मैं उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करूं
0: यार छुट्टी वाले दिन तो ठीक है कॉर्नफ्लेक्स हो गए बेचारे, अब उसके बाद पराठा पाए नांद नहारी बिरयानी।
1: ये माशाल्लाह से जो है ना फिट फाड़ रहने वाले इंसान है ये, वो वाले
0: बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मेरी तारीफ करी,
1: नहीं आपकी नहीं, मैं जावेद भाई का बोल रही हूँ लाइफस्टाइल इनका
2: नहीं होता।
0: हाँ जावेद भाई
2: होता क्या है कि मतलब कि सुबह फजर के बाद अगर वैसे तो मतलब अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे मैं उठ जाता हूँ रूटीन पे, ओके, वो रात को मैं 11 बजे लेटा हूँ, 12 बजे लेटा हूँ, 1:30 बजे लेटा हूँ, वट एवर इट इज, 3:30 बजे उठ जाना हर हाल में। वैसे भी सरवर भाई आपको पहले ही बताए थे मेरी नींद बहुत ज्यादा नहीं है, 4.5 इतनी ही मेरी नींद है। अगर मैं इससे ज्यादा सोऊंगा तो आई फील टायर्ड, मुझे लगता है मैं जैसे बीमार हूँ आज,
0: थकने लग जाते हैं।
1: ये होता है, ये ह्यूमन साइकल।
0: अच्छा, और आप तो ऐसे थक रहे हैं, सफा सोते सोते थक जाती है बेचारी के, 13 घंटे के, 14 घंटे के, 16 घंटे उसके।
1: आओ जरा मेरे जूते में पांव रखो, पता चलेगा तुम्हें।
0: बहुत थक गए हम, थोड़ा सा और सो लेते हैं।
1: अच्छा, कभी कभी जिंदगी मौका देती तो वाकई में ऐसा होता है, जब आप पूरा दिन सोते हो ना तो आप ऐसे उठते हो बावले से कि आपने पता नहीं पत्थर तोड़े।
0: अब जावेद भाई तो इस बारे में जानते ही नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि शॉर्ट नैप है ये, तो नैप ही हुई 3 घंटे की नींद, तो जावेद भाई नैप हुई, ये स्लीप तो हुई नहीं कैसे भी करके। बहरहाल अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अच्छा, ये जो आपने बताया आज शाम की रवानगी, वापसी कब है?
2: ये तकरीबन 3 दिन लग जाएंगे।
0: 3 दिन, अल्लाह ताला खैर से लेके जाए, खैर से आपको वापस लाए, ये हमारी दुआ भी
1: है। जब तक ही वापस आएंगे तब तक चीज चेंज हो चुकी होंगी
0: चीजें। नहीं,
1: सितंबर में वापस आएंगे? नहीं, सितंबर से पहले वापस आ जाएंगे।
0: आप 30-31 को तो होंगे इंशाल्लाह वापसी, या
2: आपके शोज का मतलब ये जो
0: पहली सितंबर से इंशाल्लाह।
2: टाइमिंग क्या है आपकी?
0: सफा तो सुबह मिलेंगी आपको मॉर्निंग में, और मैं दोपहर में मिलूंगा।
2: तो नहीं, सुबह तो मतलब definitely I will try to do my best, वो तो हो सकता है।
0: चलिए ठीक है
2: इंशाल्लाह।
0: तो चलिए साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज तो भाई जुमेरात है, थोड़े वाइब्स हाई करते हुए कुछ तो गुनगुना दिए जावेद भाई जाते जाते।
2: मिलता नहीं तेरा निशान, ओके जुदा अब मैं कहा, तू है कहा, मैं कहा तेरे खानों में,
0: खोया
2: रहता हूँ मेरे सरवर भाई जान।
0: भाई विकेट बना दिया हमारा, और बहुत ही जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिए, खैरियत से जाइए, खैरियत से आइए इंशाल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। ओके ओके ओके जावेद भाई, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, अल्लाह हाफिज। तो भाई ये सब चल रहा है, देखिए वीकेंड चल रहा है, और यहाँ पर वीकेंड की वाइब्स भी बन रही हैं। जावेद भाई भी अदा करके गए अभी अभी आप लोगों के मैसेजेस और कॉल। सफा क्या कहती है, कॉल मैसेज?
1: मैसेज वालों को भी देख लें भाई, मैसेज वाले
0: पहले मैसेज और फिर इनका कॉल लेते हैं। हम आए भी नहीं और शो चालू हो गया। ओ माई गॉड, मोहम्मद अशफाक। सफा हाउ डेयर यू?
1: अशफाक भाई मैं बता रही हूँ, इस आदमी ने आज शो शुरू होने से पहले से पंगा लिया हुआ है मुझसे। सर्वर भाई दूर बैठकर जो है ना, यूं हाथ की रेंज में ना आ जाना बस मेरी।
0: अच्छा, मगर ये तो कहा तो अशफाक भाई ने था मुझसे, क्या मतलब था?
1: नहीं, वो जब किसी के ऊपर गुस्सा होता है ना तो पड़ोसी भी कुछ कह देना तो उसके ऊपर गुस्सा होता है।
0: मैं भी हाजिर हूँ, सफा नूर डॉन कहते हैं। ये सही है, ये सही है।
1: छोटा डॉन
0: रोहेल है, MBB आ चुके हैं भाई आपके लिए, खासम खास मैसेजेस लेकर, वॉइस नोट लेकर। सफा तो सुन लीजिएगा जरूर, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। सर्वर जी, सफा जी, गुड आफ्टरनून आपको और तमाम लिसनर्स को।
1: आपको उर्दू में, मुझे अंग्रेजी में।
0: गुड आफ्टरनून, दोनों को बराबर बराबर कहते हैं। आपकी आवाज पाकिस्तान एंकर नादिर अली की तरह है, अतीक शाहनिया से। ये मेरी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है?
1: ठीक है, मैं समझ सकती हूँ।
0: ओके, मशगूल है, ये ले DP लगाई हुई जबरदस्त, और कहते हैं मशगूल नाम क्या है यार, आपका नाम क्या है ये तो बताते आप मुझे, मशगूल भाई। ये कौन है, मैं सफा से जानने की कोशिश करूंगा। नादिर साहब जो है, सर्वर भाई को अपनी जगह से।
1: अरे भाई,
0: नादिर अपना, नादिर
1: नादिर अली वो
0: अपना कॉमेडियन नादिर। ओके ओके, मेरी तो हरकतें भी उसकी तरह है, आप क्या बात
1: अभी, अभी मैं यही बोलने वाली थी,
0: खाली आवाज नहीं, मेरी हरकतें भी उसी की तरह है भाई।
1: अब तो बोला है तो मुझे शक्ल से भी मिल रहे हैं थोड़े थोड़े।
0: सर्वर भाई को अपनी जगह से कौन हिला सकता है, कह रहे हैं
1: क्रेन क्रेन
0: मोहम्मद भाई हमारे साथ।
1: ओके
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे हैं भाई?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, हमजा हैं शायद हमारे साथ।
3: जी बिल्कुल,
0: अहलन वसहलन। हमजा की आवाज नहीं निकल रही आजकल।
1: हमजा भाई ने बताया था ना, थोड़े परेशान चल रहे हैं।
3: नहीं नहीं, परेशान क्या चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रजा में राजी हैं, अल्लाह का एहसान है। वो असल में बात कुछ ऐसी होती है कि आपका शो शुरू होता है,
1: हाँ जी,
3: तो कुछ इंतजार के बाद वो कैसे पैमाने में पहुंच जाती है कि डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, वो निहारियां वो पाए भाई मेहरबानी है यार आपकी,
0: खाली बातों बातों की मेहरबानी है यार हमजा, मतलब कभी तो साथ में बैठिए और खूब मिलेगा रंग, जब मिल बैठेंगे दो यार आप मैं और दो तीन नांद की रोटियां, मजा अलग ही होने वाला है इस चीज का
3: भाई। भाई आप रेस्टोरेंट डिसाइड कर लो।
0: ओए, ओए, ओए, सफा दावत आ गई, रेडी हो?
1: नहीं आज मैंने वैसे ही दावत पे जाना है।
0: ओ, नहीं, वो तो हम सेट कर लेंगे ना, अभी वो बेचारा इतने पे ही हमजा यहाँ तक पहुंचे थे, रेस्टोरेंट डिसाइड कर लो।
3: दावत याद आ गई,
0: हाँ जी
3: दावत से एक बात याद आ गई, वो बंदा खाने के लिए बैठा तो ना उसने, आपको पता दावत में अक्सर ऐसा होता है जो मेज के बड़ी दावतें हो ना, यानी शादी वगैरह हो जाए,
0: ओके, ओके।
3: तो रोटियों के बंडल ला के रख देते
0: हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो बंदे के आगे रखा, बोला यार पागल है मैं इतना सारा खाना खाऊंगा। तो बोला यार भाई 40 रोटियां हैं। बोला मेरे को ऐसा लगता हूँ दो उठा लो ऊपर से।
1: ये सर भाई आपके बारे में
0: यार मैंने अभी एक और चीज करी थी, अब वो हम तो सामने होते तो मैं उनको एक्ट करके दिखाता, वो भी बहुत बढ़िया चीज है, मगर ये यार क्या याद दिला दिया शादियों का भाई, वाह वाह वाह, क्या डोंगे लूटे जाते हैं और क्या रोटियां उड़ती हैं हमारे यहाँ,
1: थैलियों में भरकर लेकर जाते हैं लोग खाना।
0: अच्छा हमदा ये बताइए, सबसे पहला काम छुट्टी वाले दिन, हाँ आवाज आ रही है हमदा?
3: जी जी आ रही आ रही है।
0: तो हेलो क्यों बोले बीच में आप?
1: हाय
3: नहीं हेलो नहीं बोला, सरवर भाई बोलने लगा था।
0: अच्छा, अच्छा,
3: आप बात करें मैं आपको बात बताता
0: नहीं हूं। जो आज का हमारा मौजू है कि सुबह उठते ही सबसे पहला काम छुट्टी वाले रोज क्या होता है?
3: छुट्टी वाले रोज मैंने भाई कभी छुट्टी की नहीं है, जब से होस्टल वाले काम करने लगा छुट्टी कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ओह वाओ,
1: मतलब वीकेंड भी नहीं?
3: नहीं
1: भाई, मशीन हो क्या,
0: ओवर टाइम करते होंगे।
1: मैंने कहा मशीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मशीन ही हूं।
0: हमारा सवाल ही फेल कर दिया।
1: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग?
3: बैठ, आपने आपने आगे कहा था ना कि नींद वाले बंदों से चिढ़ती हूँ, बारिश वाले बंदों से चिढ़ती हूँ, उससे कोई शेर याद आया हुआ था
0: की
3: ख्वाहिशें रहे तो अच्छा है, चांद अगर मुयसर हो जाए तो चांद चांद नहीं रहे।
0: वाह वाह वाह वाह, मेरी तरफ से सफाई है, शेर
1: दिल जले,
0: दोबारा सुन लो। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ तो खैर सवाल ही हमारा फेल कर दिया हमदा ने, अब क्या कर सकते हैं। तो
3: भाई असल में पता है क्या, हम लोग परदेश आते हैं, ठीक है, जो लोग विद फैमिली हैं उनको तो चलो जाना
0: छुट्टी चल जाती है। हाँ बैचलर्स को चाहते हैं कि भाई आज भी काम करके, और
3: जो बैचलर्स हैं यार आपको सही बात बताऊं कि हम लोगों का ना अक्सर मैंने लड़के देखे हैं, ठीक है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं और कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि यार अब परदेश आए हैं कमाने के लिए आए हैं, ठीक है यार छुट्टी घर में बैठ के क्या करेंगे, हद मार के 2 घंटे एक्सरसाइज सो लेंगे, उसके बाद फिर जब आंख नहीं लगनी, एक का शक्ल देखो दूसरे की शक्ल देखो, दिल ही नहीं करता।
0: चलिए साहब नहीं,
1: अच्छा ये एक और स्ट्रेटेजी है कि जब बंदा अकेला होता है ना दीवारें घर की काटने को आती हैं, ये एक बात है। हाँ
0: नहीं खैर ये हाँ। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह इससे बचाए मुझे और हम सबको, मैं तो इस चीज का आदी नहीं हूँ भाई, घर में अगर कोई नहीं है तो मैं घर में जाता ही नहीं हूँ एक्चुअली।
1: हमारे सरवर भाई का ये हाल है कि सुबह जब ये न्यूज के लिए आते हैं ना तो ऑफिस थोड़ा बहुत खाली होता है, सुबह सुबह का 1-2 घंटा खाली होता है, तो इनको इतना खाली लगता है की। हाँ जी क्या कहा था
3: वो एक शायर ने कहा था कि जिंदगी में सबसे ज्यादा तकलीफ देने वाली चीज जो है वो तन्हाई थी मेरी।
1: हाय हाय हाय हाय, तन्हाई थी मेरी, हाय हाय हाय, गालिब तो ना थे ये।
0: अब मेरी तारीफ कर रही थी।
1: हाँ इनको शोर की इतनी आदत है, मतलब इनको कंपनी की इतनी आदत है कि ये जो है ना फिर रेडियो हाई वॉल्यूम में ऑन कर लेते हैं कि कहते हैं मुझे मुझे घबराहट होती है सन्नाटे में।
0: हाँ बिल्कुल नहीं बैठ सकता।
1: मैंने कहा सरो भाई क्या सुनते रहते हो पूरा दिन, कहते हैं मुझे नहीं पता क्या चल रहा है लेकिन बस मुझे ना बैकग्राउंड चाहिए।
0: मैं यहाँ तक के अगर मतलब रूम में हूँ तो क्या तो एग्जॉस्ट चलना चाहिए या एसी,
1: या वो जो विंडो वाला एसी होता है,
0: आवाज होनी चाहिए एक्चुअली। खैर हमदा बहुत बहुत शुक्रिया भाई जुड़ने के लिए। हाँ कुछ कहना चाहते हो?
3: मैं ये बता रहा था, मैंने वैसे आपके जो निहारी और पाए वाला सीन है ना, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द छुट्टी जाने की सोच रहा हूँ, तो अल्लाह किया तो इंशाल्लाह सुबह जाते ही एक बार नाश्ता तो पाए या निहारी का करना है
0: इंशाल्लाह ताला, बिल्कुल करना है। और
1: अच्छा आप लोगों के पास ये सीन पार्ट है कि जैसे हमारे कराची में होता है ना कि हम लोग जो है ना वो कैन में डलवा कर सील करवा कर खाना ले आते हैं, نہاری وغیرہ آ جاتے
3: ہمارے کراچی سے مراد
0: حمزہ
1: واپس
0: واپس آتے آتے لیتے آنا یہی کہہ رہی ہیں واپس آتے

0: लेते हैं
1: अभी अभी मैं यही इसी पर आ रही थी मैंने कहा अगर आप लोगों के पास भी ये सहूलत है तो सरर भाई को जरा कराची की नहारी चकवाइए।
2: पहले अब मैं कंपनी तो नहीं बता सकता मगर आज से 10 साल पहले कुछ मुझे याद है कि वो यहाँ आते थे वो टेंथ
1: नहीं वो आते आते नहीं हमारे पास तो ये हिसाब
3: किताब है अभी भी चीजें सरर भाई
2: मतलब
3: अगर मैं बात करूं तो भाई हमारे उधर शॉपर में आता है और वो कहता है ना भाई है शॉपर डबल कर दे ऐसे घुमाने घुमाने जाना
1: अच्छा नहीं उसके अलावा ना अक्सर औकात जब कोई पाकिस्तान से आ रहा होता है ना जैसे मेरी अम्मा वगैरह भी जाती हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर है भाई मैं नाम क्या लूँ ब्रांड का तो नाम तो लेने से रही खैर वहाँ से वहाँ पे आप जाकर उनके पास निहारी का और मुख्तलिफ जो है ना वो सालन होते हैं वो बाकायदा प्रॉपरली कैन के अंदर सील होते हैं फ्रेश
3: आपको मजे की बात बताओ और उनकी जो मींस के डेट ऑफ एक्सपायरी वो 3 दिन की जाती है।
1: हाँ।
3: कि जो सालन आपका एक दिन में खराब हो सकता है वो 3 दिन में जाना आपका फ्रेश मिलेगा 3 दिन तक आपको।
1: हाँ।
3: वो मतलब बहुत दिमाग लगाया है नो डाउट मैं उनका जब उन्होंने स्टार्ट किया था मैंने उनकी पूरा प्रॉपर देखा था।
2: इतनी डिटेल में नहीं जाते भाई मुख्तसर ये कि आप जाए तो आप लेती आए और आप जा रहे हैं अंदर तो आप लेते आए और जो जो सुन रहा है वो लेता आए भाई दो दो डिब्बे पकड़ते लाना और इससे ज्यादा कोई मसला ही नहीं है। चलिए जी अच्छा ये उनका नाम बताए ब्रांड का नाम नहीं है ये उन साहब का नाम है हमजा तो भाई चलिए अब ये सबने सुनी लिया हमजा ने जो कहा है तो याद रखें इंशाल्लाह ताला सारे कराची वाले थैंक यू सो मच ओके हमजा बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखिए इंशाल्लाह संडे में दोबारा मुलाकात हो बात होगी थैंक यू सो मच हमजा हैप्पी वीकेंड And for now...

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए हम सबके 12 बज के सही 4 मिनट और अब आपके लिए खासम खास

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी.

0: सचेत। और क्या गाने गा रहा है यार ये आदमी भी।
1: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ।

0: बैक साथियों, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं फिल्म 107 पर सन एंड साउंड विद सफा एंड सर्वर.
1: अल्लाह तेरा शुक्र है, नाम याद रहा. मैंने कहा शायद ऐसा ना, नाम भूल गई सफा. मेरे
0: दिमाग में कुछ और ही आया था, लेकिन मैं पता नहीं कहां से यूं करके मौत को छू के टक से वापस
1: टक से वापस आ गई. तो भाई यहां पर आपका अपना प्रोग्राम चल रहा है, जहां पर अभी तक मौजू के हवाले से तो बहुत सारी बातचीत हो ही रही है. अब हमारे साथ एक कॉलर या पहले मैसेज
0: सफा कॉलर ले लिया जाए. कॉलर
1: एक कॉलर. मैसेज और कॉलर उसके साथ साथ. तो कौन है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु. खादिम हुसैन भाई हमारे साथ हैं. अच्छा, मैंने सुबह की भी मैसेज पढ़ दी, यहाँ से शुरू है अभी का मैसेज. कहते हैं, उल्फत भरी निगाह दिले वीरा में नूर भर देती है. खुदा ने मन पसंद लोगों में ये कमाल रखा है. ओए होए होए, अब सलाम करते हैं. हमें हमने पहला भी सलाम ले लिया, अभी का भी सलाम ले लिया. और सफा बहन और मोहम्मद सरवर मिर्जा भाई, ढेर सारी दुआओं के साथ आदाब. यहाँ पे भी पहला नाम आपका आ गया. देखिए आज तो ये मोहब्बत जो है अब मेरे भाइयों की
0: मोहब्बत की प्रेशर है
1: पीछे जाती चली जा रही है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम मिर्जा साहब, कैसे हैं? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं. मुदस्सर भाई हमारे साथ.
2: जी जी,
0: मुदस्सर भाई कैसे हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, बताओ आप कैसे हैं? ठीक है.
0: देखिए सरवर भाई के साथ बैठे हुए हम बड़े ही ठंडे, बर्फीले और आर्टिक में चल रहे हैं. अपना कलम ना लेकर आते हो?
2: आपको इस मौसम में भी ठंड लगता है तो इसका इलाज कोई नहीं है
0: भाई मेरे. मैं बता रही हूँ, 5 से 6 kg की मेरी सिर्फ जैकेट है. तो सोचो ये आदमी पता नहीं कौन से ही बर्फीले, पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये आदमी.
2: जैकेट भी सोच रहा है ना कि इतना गर्मी में आपको इतना ठंड लग रहा है, जैकेट काम नहीं कर रहा है.
0: सर्वर भाई भी ना,
1: इनका तो दिमागी काम नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है. ये जैकेट की क्या बात कर रहे हैं आप?
0: सर्वर भाई ना क्लास के उस गंदे बच्चे की तरह हैं जो अपना ना बैग लेकर आता है स्कूल और ना ही पेंसिल लेकर आता है.
1: मेरी तारीफें बढ़ती चली जा रही हैं. तो आइए मुदस्सर भाई से ही चल लेते हैं. मुदस्सर भाई, छुट्टी वाले दिन सबसे पहला काम क्या होता है? सुबह उठकर.
2: अच्छा,
0: देखो बंदे ने इतना सच, भाई इतना सच बोलने को नहीं कहा था. कुछ अच्छा दे देते, कुछ मोटिवेशनल दे देते.
2: नहीं, डेली रूटीन नहीं है ऐसा कि पहले मैं मोबाइल देखता हूँ, जो मैसेज में जाया होगा तो उसको रिप्लाई करूँ. फिर इसके बाद जाएगा तो वॉशरूम शावर लेगा, टूथपेस्ट करेगा, फिर इसके बाद पानी पिएगा.
1: अच्छा,
2: जो भाई ने बोला ना कि हम पहले जाएगा पानी पिएगा ना, तो पानी पीना तो पहले अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने मुंह को साफ करना भी सबसे अच्छी बात यही है.
1: अच्छा,
2: क्योंकि पूरा रात हम सोते रहे हो कि पहले ब्रश करना चाहिए, पहले इसके बाद पानी पियो, फिर तो सेहत के लिए फिर सबसे अच्छी बात यही है.
1: वाह वाह वाह, चलिए साहब ये भी अच्छी बात है, मगर ये भी हकीकत है कि मोबाइल सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल भी चेक हो रहा है आजकल. मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं भी ऐसा करता हूँ, मगर उसके पीछे रीज़न ये है कि कितने अलार्म जो है वो मिस हो गए या कितने मैसेज ज़रूरी आ गए, या सुबह उठ के सबसे पहला काम कुछ ऐसा याद दिलाने के लिए भी तो होता है.
0: मेरा मोबाइल के बारे में ये ख्याल है कि मेरा हाल ये होता है कि जब मैं ऑफिस पहुंच जाती हूं तो ऑफिस वालों के आकर मैसेज पढ़ती हूं, ऑफिस आकर के अच्छा ये वाला मामला है ये कर लेना आने से पहले. मैंने कहा अरे मैं तो पहुंच गई.
2: सफा जी आप तो बुद्धि हो गई हो ना, हम तो जवान है ना,
1: आप तो बुजुर्ग हैं ना.
0: हाँ, मैं बताती हूँ भाई, मेरे ऑफर मिलेंगे, ऑफर मिलेंगे.
1: होता है ऐसा, होता है
0: इंशाल्लाह जब ऑफर मिलेंगे
1: ऐसी उम्र में आके ऐसा होता है एक्चुअली. तो इसमें आपका मसला अलग है, सही कह रहे हैं मुदस्सर भाई. तो
0: कम से कम रोबोट लाइफ तो ना गुजार रहे हम.
1: मुदस्सर भाई क्या कहते हैं, गेम शुरू कर दिया जाए?
0: एक आंख खुली हुई, दूसरी आंख आधी खुली हुई और उससे मोबाइल देख रहे.
1: क्या कह रहे हैं?
2: शुरू करो.
1: आज हम 400 की स्पीड पे चल रहे हैं और बहुत आसान ही रखते हैं. 420 से आपने 410 जाना, 420 क्योंकि सफा बैठी थी तो मैंने कहा कि इस हिसाब से शुरू कर दिया जाए. 410 तक आपने वापस जाना है.
0: सर भाई आपने घर जाना है कि नहीं जाना है?
1: मुझे जाना है.
0: तो फिर बस ध्यान में रखें.
1: अच्छा, मुझे सर भाई कह रहे हैं मुझे भी
0: एक पीस में जाना है या
1: कह रहे हैं मुझे भी जाना जल्दी से
0: टेक में.
1: ओके, मैं घड़ी रेडी कर लेता हूँ. स्टॉप वॉच ये रही हमारी. चलिए साहब, 420 से 410 जाना है मैडी भाई को. ठीक है, रेडी है?
2: जी जी रेडी है.
1: ऑलराइट देन, आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: 420,
1: 419,
0: 418, 417,
1: 418, 419, 419, 419, 419, 419, 419, 419, 419, 419, 419, 419, 419,
0: 419,
1: 5 सेकंड में भी कर लेंगे आप जिस तरीके से आपने किया है, इसलिए मैंने जरा सा इसको इजी भी रखा था। चलिए बहुत जबरदस्त भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड मुदस्सिर भाई, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो ये थे मैडी भाई हमारे साथ, जो इस वक्त उल्टी गिनती में 7 सेकंड का रिकॉर्ड दर्ज कर गए हैं। अब देखते ये हैं कि आप क्या
0: तो
1: कर पाते हैं।
0: 7 दिन में भी ना कर पाऊं।
1: तो भाई हमारे साथ जुड़ जाइए और उल्टी गिनती का भी मजा लीजिए। करना क्या है आपने, हमें मैसेज करना है 666-22107 पे। अगर कॉल करनी है तो हमें बता दीजिए, हम कॉल भी कर लेंगे। और वहीं कॉल हमें अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो नंबर आपको बताइए 443-443-7। आइए यहाँ पर एक और चैंपियन। हेलो, सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
1: अहलन वसहलन, कौन है हमारे साथ?
3: सादिक बात कर रहा हूँ।
1: ओ सादिक भाई, चलिए ये हुई ना बात। अब माशाल्लाह से सादिक भाई की आमद हो रही है भाई डेली, जबकि बड़ी मुश्किलों से इन्होंने हमसे बात करना शुरू करी, देख के परख के कि ये इस लायक हैं कि इनसे बात करी ना करी जाए या ना करी जाए। तो सफा उन्होंने मुझे देखा तो बोले कि कर सकते हैं, हैं सादिक भाई?
3: जी जी सही बात है।
0: सादिक भाई इतने शरीफ आदमी, हर बात में जी जी बोल देंगे। उन्होंने सुना भी नहीं, उनको समझ में नहीं आया कि बात हुई क्या। सर के पास जहाज घूम गया ना, हाँ हाँ हाँ सही सही सही।
3: ओके, दोनों के लिए,
1: दोनों के लिए, दोनों के लिए, दोनों के लिए।
0: बड़े मासूम शख्स हैं बेचारे।
1: तो भाई रेडी उल्टी गिनती के लिए सादिक भाई?
3: जी जी इंशाल्लाह।
1: छुट्टी है कल?
3: जी कल छुट्टी है
1: इंशाल्लाह ताला। तो क्या करते हैं सुबह उठते ही? सबसे पहले
3: सोते हैं।
0: सबसे पहले उठते के साथ क्या करते हैं? सोते हैं।
1: बड़ा सच्चा आदमी है भाई ये, उठी नहीं
3: उठने के बाद दोबारा सोते हैं।
1: इतना सच्चा क्यों उठी नहीं रहा, मतलब उठने के बाद दोबारा सोते हैं?
3: देखते हैं अभी काफी टाइम है जुमा की नमाज में, तो दोबारा सो जाते हैं। अगर टाइम नहीं है तो
1: ये तो आपने अच्छा हुआ कि बात पूरी कर दी, वरना सफा के साथ तो ऐसा ही है कि
0: अच्छा अपना नाम लेना भूल जाते हो। कल रात को जब मैं कॉल कर रही थी तो फिर क्या सुबह उठ के मुझे कहते हो सफा सॉरी मैं जो हूँ ना वो मोबाइल जो है ना मैं सो गया था। चिंचन
1: कहाँ से आ गया चिंचन? ओके सो ये हम बढ़ते हैं आगे और 486 से 476 जाना है आपने। इसको थोड़ा और पका देता हूँ, एक दो मिनट पे सिम पे रख के थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा,
0: गल जाएगा। मीट टेंडराइजर भी डाल देना।
1: इतना आसान है यार, 486 से 476, 486 से 476।
3: 486
1: हाँ
0: 486
1: ठीक है, रेडी है? चलिए घड़ी सेट है।
3: एक मिनट 486 से 476
1: 10 पीछे जाना है सादिक भाई, कितनी बार कहलवाओगे?
0: सादिक भाई तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे हम लोग असल का कोई इनाम बांटेंगे सादिक भाई को।
3: हिंदी में तो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इंग्लिश में लंबा हो जाता है।
1: अच्छा चलिए ठीक है, तो आप उर्दू में कर लीजिए।
3: उर्दू हिंदी एक ही बात ही तो
1: है। चलिए ठीक है, तो रेडी है ना? आपका टाइम शुरू होता है अब।
3: 486, 485, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486, 486
0: अब
3: 46, 45, 44, 43, 44, 41, 484, 484, 484, 484, 684, 685.
0: नूडल खाते हुए हरकतें क्यों कर रहे थे आप अभी?
1: ये बताइए कि ये कितने

0: इसमें नंबर आप खा क्यों गए? सुबह नाश्ता नहीं किया था
1: सादिक कुछ भाई? भी नहीं खाया मैंने,
0: कुछ भी
1: बोला है
0: मैंने हमारे राजी भैया
2: मुझे तो समझ में आई थी,
0: मगर एक बात ये थी कि आखिर में ना चलो फिर भी छोड़ देते हैं, ये 76 पे रुक गए, 75 पे नहीं गए।
1: 75 तक जाना था,
0: 75 तक जाना था ना सादिक भाई,
2: ऐसा ना करीना।
0: ओके अगेन अगेन अगेन ओके रीसेट द वॉच प्लीज, ये मैं सफा को कह रहा था। चलिए तो 486 से 476 आपका टाइम शुरू होता है अब। 6 सेकंड में किया है भाई ने, क्या कहने यार। और इससे पहले
1: 6 सेकंड में किया था।
0: हाँ नहीं, अभी मुदस्सर भाई 7 सेकंड में करके गए, अब आपने भी 7 सेकंड में कर दिया है, तो इतना ज्यादा कैसे, क्या बात है भाई। चलिए साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया, बड़ा मजा आया, और देखते हैं अब आगे ये रिकॉर्ड कोई तोड़ पाता है या नहीं। हैप्पी वीकेंड सादिक भाई।
1: ठीक है जी,
0: थैंक यू, वालेकुम सलाम। हाँ जी, तो यहाँ पर उल्टी गिनती जो है वो जारी और सारी है, 666-221-07 पे आप मैसेज भी कर सकते हैं।
2: और भाई मैसेजेस हमारे पास हैं, मैसेजेस पढ़ लेती हूँ इससे पहले कि लोग नाराज होना शुरू हो जाएं। मुबीन भाई ने भी मैसेजेस किए हैं। मुबीन भाई, आपके मैसेजेस डीकोड करना ना मेरे लिए ऐसा है जैसे मैं क्या बोलूँ, एक नई डिग्री लेना। तो खैर जहाँ तक मुझे समझ में आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी मल्टीप्लाई और कौन से मीटर ये बोल रहे हैं रोज़ाना सफा जी, बस पता नहीं क्या सफा जी। अच्छा मस्जिद का बता रहे थे, कुछ नमाज वगैरह पढ़ने गए थे तो ठीक है। और कौन है हमारे साथ, लतीफ़ भाई। लतीफ़ भाई आपने मैसेज किया है वो भी वीडियो वाला, लोग वॉइस मैसेज करते हैं, उन्होंने वीडियो मैसेज किया है,
0: कुछ नज़ारे दिखाना चाह रहे होंगे।
2: नहीं वो खुद नज़र आ रहे हैं उसके अंदर। अच्छा एक और भाई हैं, ये कौन से नामालूम अफराद, पता नहीं कौन से भाई हैं, इनका लिखा हुआ है क्या, शिवा लिखा हुआ है और कह रहे हैं वाओ। अभी किसके ऊपर है वाओ? वाओ
0: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और कौन है हमारे साथ, इतनी प्यारी आवाज किसकी है भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ताना देने लगी थी, आपने मुझे रोक दिया सलाम करके, फिर बचत हो गई आपकी। हाँ अच्छी बात है, देखा ऐसे होते हैं अच्छे भाई। अच्छा मिठाई में क्या लेकर आए?
3: सैयद अली बात कर रहा हूँ।
0: सैयद अली
3: जी सर।
2: मैंने सैयद भाई मिठाई में क्या लेकर आए?
0: कौन से वाले? सैयद अली जान का दुश्मन हाय हाय, नहीं वो तो तैयब अली थे। ओके ये सैयद अली है, ठीक है। नहीं ये नहीं,
2: राइमिंग हो गया,
0: कह रहे नहीं नहीं नहीं
2: वो वाला नहीं।
0: सैयद भाई कैसे हैं और कैसी रही सुबह और अभी तक का सफर?
3: जबरदस्त, नींद सी आ रही थी, कॉफी पिया अभी।
0: ओए होए,
2: खाना खा लिया या खाना खाना है?
3: खा लिया।
2: हाँ खा लिया है तभी तो नींद आ रही है, खाली पेट इसको नींद आती है
0: तो फिर कॉफी पी ली ना इसी मारे के हजम भी हो जाए अच्छे से, ऐसे ही है। क्या खाया खाने में सैयद भाई?
3: पराठा खाया, अंडा खाया और आप ही के हाथ की बनी दाल थी वो खाई।
0: तो ये तो नाश्ता किया आपने, अभी खाने में कहाँ पहुंचे आप, ये तो नाश्ता हुआ, ये तो नाश्ता है। नाश्ता खाया, चलिए यार आप आए बाहर, आई कल छुट्टी है आपकी?
3: नहीं मंडे की छुट्टी होती है,
0: मंडे में होती है। सबसे पहले सुबह उठती कौन सा काम करते हैं?
3: बाल चेक करता हूँ।
0: मोबाइल या बाल, क्या बोले? मोबाइल देखता हूँ। ओके गुड, वेरी नाइस,
2: वेरी नाइस। मोबाइल देखने से आपको पता है कितनी डिस्टरबेंस होती है,
0: आंखें खुल जाती है ना?
2: नहीं
3: एक देखना पड़ता है ना, अलार्म मिस करना पड़ता है, जानबूझ के उठ के बंद करना पड़ता है, फिर सोना पड़ता है।
2: कितने तो अच्छी रूटीन बता रहे हैं।
0: नहीं सुनो तो कह रहे उठ के बंद करके फिर सोना पड़ता है।
2: अच्छा मैं आपको एक ट्रिविया बताऊं, मैं आपको एक ट्रिविया बताती हूं, एक एक एक फैक्ट है ये कि जब हम लोग मोबाइल का अलार्म बंद करते हैं ना तो वो जो 9 मिनट्स का टाइम होता है ना हमारा, ये कह लें 10 मिनट का टाइम होता है, इसके हम कहते हैं अभी 10 मिनट और हैं, 2 मिनट बाद उठता हूं, 10 मिनट बाद उठता हूं,
0: स्नूज़ टाइम होता है।
2: मजाक के अलावा उसके अंदर कभी कभी हमारा ब्रेन जो है, जो आपने कभी नोट किया है कि जब हम वापस से सोते हैं हमें ज्यादा डबल गहरी नींद आती है, आपको

0: पता है वो क्यों इतना, इट इज वेरी टॉक्सिक. पता है क्या होता है, हमारा ब्रेन इस डिल्यूजन में चला जाता है कि वापस से टाइम साइकिल शुरू हुआ है अभी, और उसकी वजह से हमें जो है वो डबल नींद आती है क्योंकि वो रीसेट हो जाता है.
1: मतलब हर बार रीसेट. तो जितनी बार उठो उतनी बार नाश्ता.
0: अल्लाह मैं क्या ही बोल रही थी. अरे आदमी क्या,
1: ये तो लाइफ सेट हो गई यार, ये तो लाइफ सेट हो गई. इसका भूख से कोई मतलब ही नहीं, पेट से कोई मतलब ही नहीं. अब जितनी बार उठ रहे उतनी बार नाश्ता हो रहा
0: है. वाह वाह
1: वाह वाह वाह. चलिए अब गेम में आगे बढ़ जाते हैं. सैयद अली साहब आपने 454 से 444 जाना है, सही है?
2: अरे मेरे नहीं होगा.
1: हो जाएगा, कोशिश करिए.
2: अच्छा
1: मोबाइल
0: कह रहे हैं. अच्छा कितने कितने मासूम है, कह रहे हैं. अच्छा ओके, अच्छा बोल रहे हैं तो मैं कर लेता हूँ.
1: और क्या, और जैसे सफा ने बताया हम कुछ ऐसा थोड़ी कोई
0: बात थोड़ी रहे कुछ हम किसी का ना कुछ जाएगा ना किसी ना हमारी जेब से जाना ना आपकी जेब से जाना.
1: चलिए ठीक है, 454 से 444
2: होगा. नहीं मैंने पहले होगा नहीं, मैं ट्राई करता हूँ.
1: अरे होगा होगा होगा होगा यार सैयद भाई, क्यों नहीं होगा. सैयद अली साहब चलिए रेडी हैं
2: जी.
1: इंग्लिश उर्दू किस में करेंगे?
2: उर्दू में.
1: उर्दू में ओके. आपका टाइम शुरू होता है अब.
2: 454 453 452 451 400
1: सही है सही है सही है
2: नहीं हो 450 449 448 447 446 445
0: ये क्या
2: हो गया ना.
1: ये एक रियल कौन देगा जो बचा है.
0: फेरिस्ट
1: में देखिए दोनों तरफ से देखी जाती है ना, तो नीचे से भी तो किसी ने टॉप करना है, वो कौन करेगा.
2: सर्विस भाई मैं आपकी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं आपको डेली सुनता हूँ. और
1: मेरा भाई कैसा, सैयद अली पे पैसा ही पैसा. अब दुआएं दुआएं आपको यार. और
2: किस्सा शेयर करना चाहता हूँ, मैं अभी आपको सुन रहा था, एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ. मैं कराची लैंड किया, मेरे कराची वाले दोस्त ने मुझे बोला कि यहाँ पे ना अल्लाह वाले बिरयानी वाले हैं तो उनकी बिरयानी बड़ी अच्छी होती है. मैंने कहा ओके. मैंने टिकट करवाई ट्रेन की पंजाब आने के लिए. उसने मुझे बिरयानी की इतनी तारीफें की और जब वो लेके आया तो वो चिकन पुलाव था.
0: तो आपको किसने कहा था पंजाब? मतलब आप कराची से पंजाब गए हैं बिरयानी खाने. वाह शैंपी वाह.
2: अरे नहीं,
1: इन्होंने फोन.
2: अरे नहीं मैं इराक से मेरी फ्लाइट थी कराची में.
0: सही.
2: तो दोस्तों के पास उतरा था, दोस्त कहते हैं इधर आओ हमारे पास कराची रुको एक दिन फिर जाना पंजाब. तो उन्होंने मुझे जब वापसी आया ना उन्होंने बोला जी अल्लाह वाले बड़ी अच्छी बिरयानी बनाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं बड़ा टेस्ट है वगैरह वगैरह. और जब मैं बिरयानी खोली वो बिरयानी नहीं थी पुलाव थी.
1: पुलाव था
0: ये. आप पंजाब की बात कर रहे हैं ना.
1: मुझे एक तो बार बार अल्लाह वालों पे मतलब जो उनका नाम
2: अल्लाह वाले
1: अल्लाह ज्यादा
0: ये कहाँ का बता रहे हैं. कराची का बता रहे हैं.
1: अल्लाह के नाम पे उन्होंने एक्चुअली अल्लाह के नाम पे खिला दिया सैयद भाई.
0: कराची में ये हुआ है.
1: उन्होंने अल्लाह के नाम पे खिलाना था उन्होंने खिला दिया.
0: अरे भाई ये तो स्कैम हो गया वो भी कराची में. वैसे बात बिल्कुल सही कही है सरवर भाई आपने. आपने बात बिल्कुल सही कही है.
1: बिरयानी तो वो थी जो उसके बाद आई जब तक आप जा चुके थे. और राइट यार अल्लाह ताला आपको खुश रखे.
0: ये बात आपने बिल्कुल सही कही है. जो इनके साथ ना प्रैंक हुआ है. प्रैंक
1: हो गया. खैर नहीं अपना अपना एक्सपीरियंस है और बिरयानी की जगह पुलाव खिलाना ये कोई ये नाइंसाफी है भाई.
0: नहीं देखें इन्होंने बात ये नहीं कि बिरयानी की जगह पुलाव खिला दिया गया. बात ये कि कराची में रहकर बिरयानी की जगह पुलाव खिला दिया गया भाई. अगर ये पंजाब में कहते ना ऐसा सीन हुआ तो मेरे दिल पे इतनी ज्यादा छुरियां ना चलती
1: जी.
2: और मैंने उसको बोला मैंने कहा यार ये तुमने बिरयानी का बोला था और पुलाव ले आए. वो अली भाई पता क्या है इनका ना पुलाव ज्यादा अच्छा है.
1: एक्चुअली क्या हुआ था मैं आपको बताऊं.
0: मैं बता रही हूं, ये इसका वाला सीन हो गया.
1: वो उस दिन वो पुलाव को प्रमोट करना था एक्चुअली ये था मसला. तो वो आप आ गए ताजे ताजे उसी वक्त देख खुली थी तो उन्होंने कहा भाई इन्हीं से बिस्मिल्लाह करी जाए.
2: तो अपना माइंड सेट कर लिया मैंने अपना माइंड प्रिपेयर कर लिया कि बिरयानी खाऊंगा. कराची का बड़ा नाम सुना है बिरयानी में टॉप है वगैरह वगैरह मैंने फुल रेडी कर लिया दिमाग।

0: चलिए साहब, कोई तो कराची वाला मेरे साथ था किस्सा सुनने के लिए फिलहाल।
1: आधी दुनिया का सफर करके हम कराची भागते हैं बिरयानी खाने, और इन्होंने बिरयानी हलीम सबका मजाक उड़ा दिया।
0: हर जगह सब कुछ हो सकता है,
1: हर जगह स्कैम हो रहा है,
0: पॉसिबिलिटी है
1: हर जगह। अब तो पहले तो मुझे सर्वर भाई के ऊपर यकीन ना था, फिर गाबा भाई ने भी अपनी कुछ बातें कर दी, और अब मुझे कराची वालों की बिरयानी के ऊपर शक होने लगा।
0: सैयद भाई का नाम अब लिस्ट में लिख लिया गया। सैयद भाई वीकेंड में बाहर नहीं निकलना।
2: थैंक यू
1: बता दिया।
0: चलिए ठीक है सैयद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, मोहब्बत है, दुआ।
2: कॉल उठा लिया करें यार, इतना कर लिया करें।
0: अरे सर,
1: ये सब सरो भाई की वजह से हो रहा है, इनकी तरफ मुंह हुआ है फोन का तो तभी हशर चल रहा है।
0: जरूर, वो नहीं, असल में लाइन बिजी होती है तो जो भी कॉल पहले होती है हम उसको उठा लेते हैं,
1: रैंडम कॉल पिकअप हो जाती है,
0: रैंडम कॉल पिकअप होती है, सही कहा सफा ने। मगर जरूर इंशाल्लाह ताला बात करते रहिए, जरूर जुड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ बात ना हो पाए तो सुनिए यहाँ ना बात हो पाए तो आप कहीं एहतमाम भी कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आ जाऊंगा, और वो भी नहीं कर पा रहे तो आई एक्सेप्ट कैश ऑल्सो।
1: सैयद भाई आपने जो ना सिर्फ मुझे नहीं,
0: इंशाल्लाह यार सता रहे थे हम आपको।
1: सैयद भाई आपने सिर्फ मुझे ट्रिगर नहीं किया कि मैं कराची से हूँ, आपने हमजा भाई को भी ट्रिगर कर दिया। हमजा कुकर का मैसेज आया कि भाई आपके दोस्तों ने ना आपके साथ प्रैंक किया है, वो कह रहे हैं कि भाई कराची की बिरयानी इधर भी मिलती है, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ कि उसमें बिरयानी है ना, वो बिरयानी
0: की
1: बहस
0: और हमजा से करी जाए, बताइए ये कोई छोटी बात है। चलिए भाई सैयद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हैप्पी वीकेंड, ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। हाँ
2: थैंक यू बस मुझे ना अपना वर्ड क्या कहते हैं मैसेज नंबर बता दीजिए जो मैं सेव कर सकूं।
0: इट्स 666-222-107, ये बहुत अच्छी बात है। अगर कभी मिस भी होती है तो आप हमें कह भी सकते हैं मैसेज करके कि भाई मिस हो गई प्लीज कर लो, तो मैं प्लीज मत लिखिएगा, ऑर्डर कीजिएगा, हुक्म कीजिएगा कि कॉल कर लो।
2: अरे नहीं नहीं भाई, छह छह छह एक बहन है,
0: 666-22-107 बहुत आसान।
2: ओके ओके
0: ठीक है, 666-222-107, मोस्ट वेलकम, हैप्पी वीकेंड, अल्लाह हाफिज।
1: देखो मजाक बन गया सफल भाई। अभी हमारे एक और भाई ने मैसेज किया, कहते हैं मुझे नहीं पता था कि कराची वाले पुलाव को बिरयानी कहते हैं। अरे भाई कराची आओ तो सही,
0: एक तो दिल पे ले,
1: एक तो जो ना ये जो दोस्त होते हैं ना इनके साथ, पता है दोस्तों के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाना चाहिए दोस्तों के साथ, दोस्त ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम देते हैं ना।
0: आपके साथ प्रैंक हो गया, क्या बात है साहब, पुलाव खिला दिएगा बिरयानी की जगह, यार ये भी कोई प्रैंक है यार, मेरे साथ करो तो समझ भी आता है, मैं पुलाव बिरयानी जो भी हो खींच दूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है उसके अंदर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम
0: अस्सलाम, सलाम वालेकुम। अब आपने जवाब देना है।
3: वालेकुम अस्सलाम,
0: सलाम वालेकुम। यही चलता रहेगा आज, अमीन भाई आ जाएंगे जब तक। आरिफ भाई
1: अमीन भाई भी आकर यही कहेंगे अस्सलाम वालेकुम।
0: लगा शुक्र हम बिल्कुल ठीक है। आरिफ भाई आप कैसे, खैरियत से?
3: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: चलिए साहब गेम खेलने के लिए रेडी?
3: रेडी।
0: चलिए तो आपने 427 से वापस जाना है 10, 417
3: 427 से 417।
0: जी
3: ओके
0: रेडी हैं, घड़ी सेट कर लेता हूँ।
3: रेडी
0: ओके देन, आपका टाइम शुरू होता है अब।
3: 427 427 425 425 424 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425 425
0: वाह वाह, क्या शेर सुनाया,
1: कितने कितने
0: क्या शेर सुनाया
1: भाई ने, सांस तक ना ली,
0: कोई तो मिला 6 सेकंड वाला आज, बहुत बढ़िया 6 सेकंड में कर दिया गुरु, ओ गुरु छा गए, टोको ताली।
1: दुनिया कभी खुश ना होती हम तो फिर भी कहेंगे 5
0: टोको ताली।
1: दुनिया कभी खुश ना होती हम तो फिर भी कहेंगे 5 सेकंड में क्यों ना किया
0: भाई। वाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलिए एक और चैंपियन हमें मिला, 7-7 सेकंड पे सब
3: जा रहे हैं। धुरंधर आएगा, क्या मुश्किल है, कोई धुरंधर आएगा वो 5 सेकंड में करके जाएगा
0: यार। होपफुली इंतजार ही रह गया, देखते हैं कि आज
1: ये पहला बंदा देखा जो अपनी फर्स्ट पोजीशन को साइड पे करते हुए कह रहा है कोई और आगे ले जाए।
0: वाह क्या बात है यार, ये बड़े दिल के लोग हैं और दावत वगैरह ऐसी कर देते हैं, मालूम अगर आप पूछेंगे भी नहीं आपको ऐसी बुला लिया जाएगा वीकेंड पे। अब देखो
3: कोई मसला नहीं है, आ जाइए।
1: देखा बोलने में क्या
3: था भाई, मैंने कल भी कहा था भाई के लिए पॉकेट खाली, कोई मसला नहीं।
0: मेरा भाई कैसा, अरे भाई में पैसा ही पैसा। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तक के चैंपियन आप हैं, हैप्पी वीकेंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए।

0: Era nagma na mi. क्या मसला है भाई? हाँ या ना? तो भाई एंजॉय कीजिए ये ट्रैक, बिल्कुल नया नया ताजा ताजा चूल्हे पे से उतरा हुआ अभी आपके लिए. सन एंड साउंड सुन रहे हैं आप.
1: इस आदमी को भूख लगी है, थोड़ा सा ब्रेक लो.
0: दिल से
1: देसी.

0: जाएंगे नहीं और कहां जाएंगे और हम तो रहते ही आप लोगों के इंतजार में तो भाई 11 बज के नहीं बल्कि 12 बज के 46 मिनट बड़ा अच्छा था मैसेज है यहाँ पर खान साहब का पूरा नाम क्या लिखते हैं ये नहीं मालूम खान लिखा हुआ यहाँ पर कहते हैं छुट्टी के दिन मेरा सबसे पहला काम बस सुकून से उठना मोबाइल देखना फिर सो जाना नहीं फिर सोचना फिर सोचना कि आज कोई जल्दी नहीं है ना काम की टेंशन ना अलार्म की फिक्र और अगर गलती से जल्दी आंख खुल जाए तो समझ लें मेरा जिस्म नहीं सिर्फ आंखें धोखा दे रही हैं फौरन दोबारा सो जाता हूँ और आखिर में इसी मौके के हवाले से एक शेर अर्ज है क्या बात है इरशाद कहिए सफा
1: इरशाद
0: कोई मजा नहीं दुनिया की किसी कोने में कोई मजा नहीं दुनिया के किसी कोने में
1: अच्छा
0: कोई मजा नहीं
1: कोने में नहीं जाओ ना फिर मिडल में रहो ना
0: के किसी कोने में जो मजा है नींद से उठकर दोबारा
1: सोने में आए हाय हाय हाय हाय दिल पे लग गई मेरे ठा करके
0: ये सफा के लिए आपने अच्छा शेर भेजा है जो उनको बड़ा पसंद आया है ये भी यही करती रहती है एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम हमारे पास खाएं हैदराबादी बिरयानी शाह गौज शादाब होटल अच्छा ओके प्रमोशन शुरू हो गया हैदराबाद का नाम बता के भेज रहे हैं यहाँ पे इमाद फहद अहमद कितने सारे डी हैं इनके पास यहाँ पे एक चैंपियन जाते जाते हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि कौन है हमारे साथ मेराज
2: बात कर रहा
0: हूँ मेराज कैसे हैं खैरियत से हैं चलिए गेम खेलने के लिए रेडी
2: जी बिल्कुल रेडी हम तो तकरीबन आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं
0: अच्छा
1: ये सब जो ना सर्वाइव
0: आइए आइए तो साहब चलिए 467 से आपने 457 जाना है
1: 77
0: ठीक है रेडी है चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब
1: कहाँ गए
0: नहीं वैसे अच्छा खेले और 7 सेकंड में पूरा किया जितना भी बचा कुचा था वो हम मान लेते हैं बढ़िया खेले भाई बढ़िया खेले 7 सेकंड ही रहा मगर तालियां आपके लिए जो निकले नहीं
2: शुक्रिया और हम आपसे एक क्विज करेंगे मैं वैसे नेपाल से बिलोंग कर रहा हूँ भाई
0: हाँ ओके
2: अभी जो करेंट सिचुएशन जो फ्लड हुई
1: हाँ।
0: आपने जब बात करी तो मैं इसी पे आने वाला था बिल्कुल मैं आप क्या सब खैरियत था
2: दुआ कीजिए और
0: जरूर
2: इंशाल्लाह जो हालात है वो हालात बेहतर हो
0: अल्लाह ताला
2: खैर
1: मुझे भी पता चला था कल तो मेरा भी अपना दिल ऐसे ही दहल गया था क्योंकि मैंने कुछ रील्स वगैरह ऐसी देखी थी तो मुझे बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हम सब सबकी दुआएं क्योंकि आखिर में है तो इंसानियत के नाते हम दुआ ही कर सकते हैं और जना अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला रखे
0: इंशाल्लाह ताला खैर होगी और सब अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच हैप्पी वीकेंड हैप्पी वीकेंड थैंक यू
1: नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं इसके अंदर इंसान बिकॉज देयर नेचुरल डिजास्टर्स तो इनको कहा नेचुरल डिजास्टर्स लिए जाता है क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ होता नहीं लेकिन इंसान के हाथ में एक चीज़ जरूर होती है कि इंसानियत के नाते वो एक दूसरे के लिए दुआ करें दुआ गो रहें और ऐसी सिचुएशन वही होती हैं जिनके अंदर इंसान हाथ उठा के अपने लिए दो दुआएं मांगता है दूसरों के लिए 4 मांग लिया करें क्योंकि फरिश्ते आपके लिए भी फिर आमीन कहते हैं उन्हीं दुआओं को लेकर
0: क्या बात है भाई तो चलिए अब क्योंकि अब हमारी महफिल जो है वो इख्तिताम को पहुंच गई है इख्तिताम को
1: गरारे करते हुए वो सुबह सुबह अब्बा फजूल के गरारे कर रहे होते हैं ना वही वाले
0: खादिम भाई हमारे साथ मुबीन भाई हमारे साथ सफा बहन सैयद अली हमारे साथ और यहाँ पर कॉल भी अब माजरत चाहते हैं क्योंकि इजाजत लेनी होगी अब से थोड़ी सी देर में आप सुनेंगे अमीन भाई को
1: वो आकर सलाम करेंगे अब
0: और वो आपको स्पोर्ट्स की खबरों से दुनिया भर की स्पोर्ट्स की
1: दो चार करेंगे
0: दो चार कर देंगे आपको वो तो 2 और 4 गोल किसकी तरफ से होंगे आपने देख लेना है फिलहाल हमें आज के लिए दे दीजिए इजाजत और
1: छाली निकला है सर भाई मुंह में बोल बोल चलो चलो
0: हमारी तो छुट्टी है अल्लाह ताला जिन जिन की छुट्टी है वो खैरियत से गुजारे और जिनकी आने वाली छुट्टी है वो भी खैरियत से गुजारे और
1: देखो छुट्टियां खुश होकर गुजारा करो भाई जिसको जैसे गुजारने हैं वैसे गुजारो ये फर्क नहीं पड़ता कि किसने कौन सा काम कम किया किसने कौन सा काम ज्यादा किया मेरा तो बस चले तो मैं तो छुट्टी के दिन कुछ भी ना करूं बस नहीं चलता ना ट्रेन

0: चलती है। तो चले सर,
1: आप वैसे ही कुछ कहाँ करती हैं छुट्टी वाले दिन, ये तो सब कहने वाली बातें हैं।
0: हाँ हाँ सरवर भाई, मेरी शक्ल देखकर सबको यही लगता है, पता नहीं क्यों बचपन से ही लगता है, मेरी चेहरे पे लिखा हुआ है ये।
1: नहीं मैंने तो देखा हुआ है ना, मैं तो जानता हूँ भाई, मैं तो जानू, मेरे तो काम ही यही है,
0: काम यही जग जग जग जग।
1: जी जी साहब, आया एक और 2.0 फीवर, लंबा कद फॉर एवर, आनंद राज आनंद एंड रुबाई, फिलहाल इस गाने के साथ छोड़े जा रहे हैं आप लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि सब लोग अपना ख्याल रखेंगे, दुआओं में हमें याद रखेंगे, जहां जहां जो जो परेशानी है वो तो है ही, इंशाल्लाह ताला खैर हो जाएगी और बेहतर ही होगा। बाकी ये है कि छुट्टी जिन जिनकी है उसको एंजॉय करें, आगे जिनकी भी छुट्टी आने वाली है वो उनको एंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए,
0: और सर भाई अगले दो दिन तक नजर नहीं आना, ठीक है, संडे को मुलाकात,
1: प्लीज बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल आप लोग मुझे जरूर याद रखिएगा, सफा की तो ऐसी कोई बात नहीं, सुनते रहिए FM 107
0: दिल से देसी।

0: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाज़त नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
0: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM

0: लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको।
1: टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए, फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। क्रिकेट हो,
1: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स 4 runs,
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में।
2: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी थर्सडे एट 1 PM,
2: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की।
3: हम भी वो हैं जो कभी किसी

0: हेलो,
1: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Sports Roundup
0: with our sports journalist Mohammad Amin. Sirf FM 107 par. Dil se desi.
3: Assalamualaikum दोस्तों, स्पोर्ट्स राउंड अप में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन और वक्त हो चला है स्पोर्ट्स के हवाले से चंद अपडेट्स, और क्या है वो अपडेट्स आप लोगों को शेयर करूंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा डेफिनेटली। लेकिन शुरू करने से पहले एक सवाल तो बनता है, क्विज तो बनता है दोस्तों, सो दैट आप लोगों को इन्वॉल्व करने का एक मौका मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का सवाल क्रिकेट से ही है और क्रिकेट का ही सवाल मैं पूछता हूँ, क्योंकि आप लोग क्रिकेट के काफ़ी ज्ञानी हैं और इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ जाते हैं क्रिकेट के किसी भी क्वेश्चन को जवाब देने के लिए। आप लोग जब मोबाइल ऑन कर लेते हैं एंड FM 107 को सुनते सुनते आप लोग टेक्स्ट करते हैं एंड दैट गिव्स अ रियली रियली गुड स्पोर्टी फीलिंग। सो आज का सवाल यह है कि इंडिया के सचिन तेंदुलकर, नाम तो सुना ही होगा आपने, इंडिया के सचिन तेंदुलकर ने कुल कितने सेंचुरीज यानी शतक, कुल कितने सेंचुरी स्कोर किया है। आपको ये सवाल का जवाब जो है बहुत आसान है, आप लोगों को पता होगा एंड यू नो कहते हैं कि ना फिंगर टिप्स में आप लोगों के पास स्टैटिस्टिक्स मौजूद हैं, तो वही फिंगर टिप्स में जो स्टैटिस्टिक्स हैं आप लोगों के पास और इस रिकॉर्ड के बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो तो 666-22-107 पर आप अपना जवाब भेज सकते हैं मुझे मोहम्मद अमीन को। और मैं इस प्रोग्राम से ख़त्म होने से थोड़े से पहले मैं आप लोगों के साथ इसी चर्चे पर बात करूंगा और आप लोगों का नाम भी ले लूंगा। नाम लिखना मत भूलिएगा, बिकॉज नाम व्हाट्स इन अ नेम नहीं बल्कि नाम इज इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द अपडेट्स एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑफ टुडे। अच्छा अब बात करते हैं, थोड़ा सा अपडेट दे ही रहा हूँ, जब क्रिकेट से ही मैंने सवाल पूछ लिया है, क्रिकेट से ही शुरू करते हैं। अभी जो कोलंबो में टेस्ट मैच जारी है दोस्तों, उस टेस्ट मैच में जो लाइव विन प्रोबेबिलिटी है मुझे देखने को मिल रहा है। अच्छा बता दूं कि श्रीलंका फॉलो ऑन पर ही है एंड श्रीलंका फॉलो ऑन करते करते 390 रन फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स और 137.3 ओवर जो है अभी जारी है एंड इसमें श्रीलंकन टीम हैज शोन दैट रेजिलियंस, हैज शोन दैट पावर एंड करेज कि इस मैच को बचाना है। लेकिन मुझे लगता था कि अगर ये मैच में आखिरी दिन है आज और आखिरी दिन में अगर श्रीलंका ने 200 रन की अगर अभी तो 177 रन की लीड है, मेरे ख्याल से 150 रन की अगर लीड लेकर अगर श्रीलंका डिक्लेयर कर देती है अपनी पारी को, तो मुझे लगता था नहीं कि इस मैच में श्रीलंका कुछ करके दिखा सकता था। लेकिन अब ये थर्ड सेशन है, आई डोंट नो कि श्रीलंका का क्या हदफ क्या है, व्हाट दे वांट टू अचीव फ्रॉम दिस मैच, आई रियली डोंट नो। 390 फॉर 8 और इस वक्त जो बल्लेबाज बैट कर रहे हैं वो सोनाल दिनुषा, ये पहले इनिंग्स में भी कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, नॉट आउट 103 एंड उनके साथ है लाहिरू कुमारा। अभी जो विकेट्स टोटल 8 गए हैं, 8 में से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बॉलर इंडिया के लिए है मानव सुथार, 3 विकेट 108 रन देकर, और रविंद्र जडेजा 2 विकेट, शरंस जैन जो है 1 विकेट, मोहम्मद सिराज 1 विकेट और प्रसिद्ध कृष्णा 1-1 विकेट, आई मीन उन्होंने 1-1 विकेट लेकर। लेकिन इंडिया को थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए हमने देखा है, इंडियन बॉलर्स रियली स्ट्रगल्ड, जहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने श्रीलंका को 290 पे यू नो ऑल आउट कर दिया था, वहीं पर अगर देखा जाए कि सेकेंड इनिंग्स में वी ऑल थॉट कि कोलंबो की विकेट में थोड़ा सा टर्न पेस सब कुछ होना है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड इनफैक्ट सेकेंड इनिंग्स जब शुरू हुए थे, हम सेकेंड इनिंग्स में इंडिया स्टार्टेड ऑफ वेल एंड श्रीलंका को 2 विकेट के नुकसान पर 63 पे खड़ा कर दिया था, लेकिन वहीं से ही

बहुत बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली संभाला एंड कामिंडू मेंडेस ने संभाला, पसिंदु सूर्यावंदरा ने संभाला 92, ही गॉट आउट टू मैन ऑफ सुथार, और वहीं कामिंडू मेंडेस जो है 55 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद सोनाल दिनुशा, ये एक नया बल्लेबाज हैं एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। आने वाले टाइम में ही कुड बिकम वन ऑफ द लीडिंग बैट्समैन, वन ऑफ द लीडिंग स्टार बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सो उन्होंने 103 रन अभी इस इनिंग्स में बनाकर नॉट आउट हैं एंड आई होप कि इस मैच में कुछ रिजल्ट्स होने चाहिए बिकॉज आई सी सम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ होने जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी थर्ड सेशन जारी है एंड इस मैच को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना सकते थे श्रीलंका के टीम मैनेजमेंट, लेकिन एनीवे वो मैच बचाने के चक्कर में है। एनीवे मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इन जो अपडेट है वो आप लोगों से शेयर करता हूँ। क्रिकेट की बातें हो रही है तो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच कब है वो आप लोगों को बता दूँ। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड आज मैच है एंड आज ये जो है डिलेड है बिकॉज ऑफ द रेन, और इस मैच में पाकिस्तान को कुछ कर दिखाना है बिकॉज पाकिस्तान इज ऑलरेडी आर वन डाउन इन द 3 टेस्ट मैच सीरीज। और सबसे जो अहम बात इस मैच को लेकर रहा है कि क्वेश्चन मार्क था कि बाबर आजम जो कप्तान दोबारा कप्तान बनाया गया उनको इस पाकिस्तान क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट टीम में, तो बाबर आजम का खेलना नहीं खेलना ये एक सवाल सबके यू नो वो था कि वेदर ही कैन बी इन टू द टीम और नॉट इन टू द टीम। फाइनली टीम मैनेजमेंट ने डिसाइड किया बाबर आजम बिकॉज उनके इंगली में चोट थी एंड दैट्स द रीज़न बाबर आजम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया था, लेकिन बाबर आजम इस टीम में टीम 11 में शामिल हैं। और इस मैच में अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है, डिलेड है, और ये मौसम जो है इंग्लैंड में इस वक्त अगस्त और सितंबर में मौसम थोड़ा सा 19-20 हमेशा से रहता हमेशा। सो एनीवे पाकिस्तान हैज़ टू यू नो रियली बैकअप एंड दे नीड टू विन दिस टेस्ट मैच अगर इस सीरीज़ को इस सीरीज़ में अगर वो रहना चाहते हैं, यानी इस सीरीज़ को थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव करना चाहते हैं तो पाकिस्तान रियली हैज़ टू प्ले वेल। अभी तो डिलेड है और आगे जाके देखते हैं कि क्या होता है। और एक और बात बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का जो सीरीज़ पिछले हफ्ते जो ख़त्म हुआ था उसमें एज यू ऑल नो कि सीरीज़ को इक्वलाइज कर दिया गया था एंड बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज़ को आपस में बांट लिया, चलो भाई तुमने एक जीत लिया मैंने भी एक जीत लिया, चलो ठीक है खुश रहो आबाद रहो। तो लेकिन ओवरऑल बांग्लादेश के परफॉर्मेंस पे सब खुश हैं, साउथ एशियन क्रिकेट का बोलबाला है एंड ओवरऑल आई बिलीव कि बांग्लादेश क्रिकेट हैज़ अ वे यू नो फॉरवर्ड टू सम ग्रेट मोमेंट्स इन द कमिंग फ्यूचर। और उनके जो क्रिकेट बोर्ड है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जहाँ पे तमीम है, तमीम इज़ अ फॉर्मर कैप्टन फॉर्मर बल्लेबाज है, उनके एक आई वुड से कि एक मार्गदर्शन उन्होंने दिया, एक हदफ सेट किया, एक गोल सेट किया, एक स्ट्रैटेजी बनाया कि अभी यू नो दे नीड टू बक अप, दे नीड टू रियली डू वेल इन ऑल फॉर्मेट्स, नॉट ओनली इज अ टेस्ट क्रिकेट बल्कि ODI में भी T20 में भी दे शुड रियली डू वेल। और यही हमें देखने को मिला है इन ऑस्ट्रेलिया, एक तारीखी जीत बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पिछले फर्स्ट टेस्ट मैच में दे वन द टेस्ट एंड पहली मर्तबा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के मैदान में हराने का जो एक अचीवमेंट है वो अचीवमेंट बांग्लादेश को मिला। लेकिन सेकेंड टेस्ट मैच में दे प्रूव्ड अ लिटिल वीक, आई मीन कमज़ोर दिखे एंड इस रिजल्ट एज अ रिजल्ट बड़ा एक लो स्कोरिंग फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग में लो स्कोरिंग स्कोर करके दे गॉट ऑल आउट एंड ऑस्ट्रेलिया को इस टेस्ट मैच में जीतने में कोई भी परेशानी नहीं हुई। और इसी टेस्ट मैच की बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि मिचेल स्टार्क जो उनके टॉप बोलर्स रहे हैं, मिचेल स्टार्क जो 10 विकेट लिए थे उन्होंने इस टेस्ट मैच में 10 विकेट ही बैग्ड एंड दैट टेस्ट मैच उनके लिए एक अचीवमेंट के तौर पर अगर देखा जाए तो ICC के जो टॉप बोलर्स का जो रिकॉर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेकर अब सबसे ऊपर है मिचेल स्टार्क। अब उन्होंने बुमरा को हटा दिया है, बुमरा वॉज द नंबर वन बोलर टिल देन एंड अभी द नंबर वन बोलर है ICC के सबसे टॉप बोलर्स की लिस्ट में मिचेल स्टार्क का नाम है। मिचेल स्टार्क बहुत ही कमाल का बोलर है एंड बाएं हाथ के उनके जो गेंदबाजी वो हमला हमने देखा है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले हिम ऑन अ टर्निंग ट्रैक ऑन अ टर्निंग ट्रैक बट ऑन अ ग्रास पिच और ऑन जिस पिच पे ज़्यादा बाउंस हो, ज़्यादा टर्न मिले और स्विंग मिले, सीम मिले, वहाँ पर मिचेल स्टार्क को खेलना नामुमकिन।

है। मूविंग ऑन टू फुटबॉल न्यूज और आज कतर स्टार्स लीग, दोस्तों कतर स्टार्स लीग का मैच आज है, ये सेकेंड राउंड मैच है, पिछले हफ्ते आगाज हुआ था कतर स्टार्स लीग का। और आज जो मैचेस हैं आपको बता दूं, अल गराफा का सामना होने जा रहा है शमाल का, और सेकेंड मैच में अल वक्रा विल होस्ट रयान क्लब। और रयान क्लब पिछले हफ्ते दे डिफीटेड लुसेल स्पोर्ट्स क्लब बाय 1-0, तो रयान के लिए ये एक इंपॉर्टेंट मैच इसलिए कि अगर ये मैच जीत ले तो दे वुड बी मेंटेनिंग देयर यू नो विनिंग स्ट्रीक इन कतर स्टार्स लीग। 2015 के बाद रयान क्लब ने कभी भी इस टूर्नामेंट को, इस लीग शील्ड को नहीं जीत पाया। दोस्तों यहां पर एक लेता हूं ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगा तो डेफिनेटली मोर फर्दर अपडेट्स। लेकिन ये सवाल जो आज का सवाल है वो आप लोगों के सामने दोहरा देता हूं। सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ द लीडिंग बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, सचिन तेंदुलकर के नाम पर कितने सेंचुरीज हैं? और ये आपको बताना है कितने सेंचुरीज, यानी ऑल फॉर्मेट्स में। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, इंडिया के सचिन तेंदुलकर के नाम कितने सेंचुरीज हैं आपको ये बताना है। 666-221-107 पर टेक्स्ट कीजिए, अपना नाम बताइए। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन, यू आर लिसनिंग टू स्पोर्ट्स राउंड अप एंड ऑन FM 107, दिल से देसी।

स्पोर्ट्स राउंड ऑफ, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। और ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल पूछा था और ये सवाल था सचिन तेंदुलकर के नाम कितने सेंचुरीज हैं ओवरऑल और हर फॉर्मेट को जोड़कर कितने सेंचुरीज हैं आप बता सकते हैं। 666-22-107 पर आपके नाम के साथ मैं अनाउंस कर दूंगा और वी विल डिस्कस ऑन सचिन तेंदुलकर सेंचुरीज। अच्छा, कतर स्टार्स लीग से हम अभी लेट्स मूव ऑन टू वर्ल्ड फुटबॉल पर। और वर्ल्ड फुटबॉल पर जो हमें देखने को मिल रहा है वोजीना को आप लोगों को याद होगा, वोजीना जो कमाल का गोल कीपिंग किया था इन द वर्ल्ड कप में। एंड वोजीना, वही वोजीना जिन्होंने वर्दे कापे वर्दे को वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेज तक भी पहुंचाया था। 40 साल का बंदा है, 40 ईयर ओल्ड, एंड एज इज जस्ट अ नंबर फॉर हिम। वोजीना पहले बस ड्राइवर था ट्रक चलाता था और सोचिए कि गोलकीपिंग में उन्होंने ये नाम कमा लिया एंड वर्ल्ड कप सेंसेशन। इस वर्ल्ड कप में तो सबसे बड़ा नाम है वोजीना। आई मीन किलियन एम्बापे और मेसी और रोनाल्डो को थोड़ा सा पीछे छोड़ दीजिए, तो न्यू कमर्स में और वो भी 40 ईयर में गोलकीपिंग करना ये एक बहुत बड़ी बात है। जो वोजीना चिले के क्लब हैं अब कोलो कोलो, उनमें उन्होंने साइन किया था एंड उन्होंने कल इस मैच में खेला, अपना आगाज किया एंड सबको उन्होंने मुतासिर किया। सेम टू सेम परफॉर्मेंस विच इज शोर इन वर्ल्ड कप। और वोजीना, एक्चुअली देखा जाए वोजीना उनका निकनेम है, असली नाम जो है जोसिमा रिवोरा डायस है। और जर्सी में वोजीना नाम लिखने पे क्लब के जो जो रेगुलेशंस है, जो टूर्नामेंट रेगुलेशंस है चिलियन लीग में, उन्होंने एतराज जताया था कि नहीं, नाम ही उनका ओरिजिनल नाम होनी चाहिए, तो वोजीना नाम जो है नहीं हो सकता वोजीना, क्योंकि उनका तो निकनेम है। तो एनीवे उनका नाम है जोसिमार इवोरा डायस। तो वोजीना का एक ज़बरदस्त शुरुआत इन चिलियन लीग। और एक और बता दूं, एक अब ट्रांसफर्स जो हैं, कुछ ट्रांसफर्स हो रहे हैं एंड ट्रांसफर्स में हम देख रहे हैं कि कौन किसने कितने रुपयों में या पैसों में लिया है। ये एक खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा एंड ये खिलाड़ी बड़ा ही यंग है, बड़ा ही टैलेंटेड है एंड हिज नेम इज अय्यूब बुदादी। अय्यूब बुदादी इज बेसिकली लील यानी फ्रांस के क्लब से खेल रहे थे लेकिन मैनचेस्टर सिटी ने उन्हें साइन कर लिया है बिकॉज मैनचेस्टर सिटी ऑलरेडी हैड सोल्ड स्पेन के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोड्री को बार्सिलोना में भेज दिया है एंड भेज दिया मतलब दे सेल्ड हिम ऑफ टू द क्लब, स्पेन के जो क्लब हैं उनमें उन्होंने सेल कर दिया बार्सिलोना को। तो वो जगह जो खाली है उस जगह में किन को लिया जाए, अब वहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने सोचा कि अय्यूब बुदादी को हम लेते हैं उनको इस सीज़न के लिए और मोरक्को के इस बेहतरीन मिडफील्डर को अपने जगह बना अपने इस टीम में जगह दें तो आई थिंक द मिडफील्ड विल बी स्ट्रेंथन। सो मैनचेस्टर सिटी ने थोड़ा सा आपको बता दूं कि 100 मिलियन यूरो, एक यंगस्टर टीनेज है 18-19 साल का ये नौजवान एंड ही हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मैनचेस्टर सिटी क्लब, वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब्स। और एक और अपडेट दे दूँ कि सैवियो जो उन्होंने डेब्यू किया और उनके डेब्यू में एक गोल भी किया है सैवियो, टॉटनहम हॉटस्पर के 4-time विनर्स ऑफ लीग कप एंड सैवियो स्कोर्स ऑन डेब्यू, टॉटनहम सेट अप लीग कप टाई विद टॉटनहम विद लिवरपूल। सो सैवियो ने एक ज़बरदस्त गोल किया पहली मरतबा खेलते हुए विद टॉटनहम। टॉटनहम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लब है, आई मीन इम्पॉर्टेंट नहीं मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लब है टॉटनहम हॉटस्पर। कई ऐसे यंग खिलाड़ियों को उन्होंने जगह देकर दोज यंग प्लेयर्स दे मेड रियली मार्क एन बाई प्लेइंग फॉर टॉटनहम हॉटस्पर। सो टॉटनहम हॉटस्पर के लिए सैवियो का गोल एंड वहाँ से सैवियो हैज कम इन टू द फोर्थ लाइट, इन टू द प्राइम फोर्थ लाइट। एंड अगर बात करूँ टर्किश लीग में, फनारबाचे ने लियों को चैंपियंस लीग में हरा दिया है। गोल्स फ्रॉम वेदर्थ मुरेखी एंड इंग्लिश डिफेंडर आर्ची ब्राउन हेल्प फनारबाचे। लियों को हराना मतलब बहुत बड़ी बात है। फनारबाचे ऑब्वियसली इज अ टॉप क्लब इन तुर्की, लेकिन अगर यूरोपी स्टैंडर्ड यूरोपी अगर उसकी बात करूँ तो लियों को हराना, लियों इज अ वेरी टॉप वन ऑफ द टॉप फ्रेंच क्लब हैं और कल उनको हराने के बाद फनारबाचे जो है क्वालिफाई कर गया फॉर द लीग फेज और ये एक बहुत बड़ी जीत है। अच्छा बता दूं कि टर्किश लीग में अभी हाल ही में मोहम्मद सलाह ज्वाइन किया एंड ट्राबनस्पोर एक क्लब है और ट्राबनस्पोर की पॉपुलरिटी स्काई रॉकेट हो गया, जहाँ पे ट्राबनस्पोर क्लब विजिट कर रहा है एंड वहीं पर ही सब कोई देखने के लिए आ रहे हैं मोहम्मद सलाह को देखने के लिए। कल ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था उस पर ना द क्लब इज़ विजिटिंग बुडापेस्ट यानी हंगेरी के दारुल हुकूमत, वहाँ पर सब लोग ट्राबनस्पोर के जर्सी लेके नहीं बल्कि लिवरपूल के जर्सी लेके पहुंचे हुए थे एयरपोर्ट पर। हालांकि मोहम्मद सलाह लिवरपूल को टाटा बाय बाय कर चुके हैं एंड आज भी

मोहम्मद सलाह इज अ बिग नेम एंड बिग नेम और ट्रैवल स्पोर्ट क्लब को कौन जानता था। ट्रैवल स्पोर्ट क्लब को सलाह ने एक नई लेवल तक ले जाने में काफ़ी अहम किरदार अदा कर रहा है। एंड पिछले दिनों उन्होंने मैच में गोल भी किया एंड ही इज़ इन द वेरी आई मीन क्वाइट राइट फॉर्म पर हैं। एंड उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि अगर ट्रैवल स्पोर्ट सही तरह से अगर लीग में परफॉर्म कर ले तो अगले बार हो सकता है कि यूएफए चैम्पियंस लीग के जो क्वालिफायर स्टेजेस हैं उस पर वो क्वालिफाई कर लें। तो दीज आर द ओपनिंग अपडेट्स फ्रॉम द वर्ल्ड फुटबॉल। अब देखते हैं कि टेनिस में क्या कुछ हो रहा है। ये सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स के बारे में आप लोगों को पता होगा दोस्तों, दोनों बहनें कमाल के खिलाड़ी थे एंड अभी तो इन ओवर द हिल हैं, 40-40 साल के ऊपर चले गए हैं एंड स्टिल आज भी वो जज्बा हमें देखने को मिल रहा है इन दोनों बहनों ने। कहते हैं कि हम लोग अभी भी खेलेंगे एंड खेलेंगे मतलब वी विल प्ले सीरियस टेनिस, नॉट इन जस्ट गली नुक्कड़ वाले टेनिस में। एंड यूएस ओपन में पहली मरतबा जो पिछले हफ्ते को हमें देखने को मिला, सेरेना विलियम्स ने कार्लोस अल्कराज के साथ मिक्स डबल्स में, हालांकि वो मैच वो हार गई, अदरवाइज देखा जाए कि जो स्पिरिट है, जो एंथुजियाज्म है, जो जज्बा हमें देखने को मिलता है, यही सीख हमें मिलता है कि नो एज इज़ जस्ट अ नंबर। आप खेलते रहिए, स्पोर्टिंग रहिए एंड यू शुड पार्टिसिपेट। आपको शिरकत करनी है हर इवेंट में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने बच्चों को भी कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो कतर में आप लोग भेजिए। स्पोर्ट्स इज़ अ एनर्जी, स्पोर्ट्स इज़ अ पॉजिटिव वाइब क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। और यहीं पर वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स को देखकर मुझे ये लगता है अब उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो डबल्स खेलेंगे साथ। एंड सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम्स विलियम्स की ये जो नो बहनें काफ़ी यू नो दे आर वेरी पॉपुलर, दे आर वेरी लेजेंडरी अगर देखा जाए तो। इस बार दे आर प्लेइंग इन द यूएस ओपन इन द डबल्स एंड वो भी एक वाइल्ड कार्ड मिलने के बाद दे विल बी इन टू द इवेंट जो कि उन्होंने पिछले अगर देखा जाए पिछले इवेंट में दे हैव वन इट ट्वाइस। सेरेना विलियम्स इसी जैसे मैंने कहा कि उन्होंने डिसाइड किया था इसी सीजन में कि शी वॉन्ट्स टू प्ले एंड वो खेलना चाहती हैं एंड वो विंबलडन में भी खेल चुकी हैं। और हालांकि इंजुरी इज समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बॉदर्ड सेरेना, लेकिन उसमें मतलब उनको लगता है कि नहीं नहीं हमें खेलना चाहिए एंड वी विल प्ले। आगे अगर पीछे की बात करूं तो इन्होंने 1999 सन 2009 में यूएस ओपन टाइटल्स अपने नाम किया एंड अगर देखा जाए कि कितने मर्तबा उन्होंने इस टोटल अगर विन और लॉस रिकॉर्ड अगर देखें 9 मर्तबा दे हैव प्लेड टुगेदर डबल्स खिलाड़ी के तौर पर, डबल्स जोड़ी के तौर पर। सो 27 टाइम्स उन्होंने जीता है एंड 7 टाइम्स दे लॉस्ट, बट आखिरी बार इन्होंने खेला है 2022 में और फर्स्ट राउंड में दे लॉस्ट। एनीवे बेस्ट ऑफ लक टू सेरेना एंड वीनस विलियम्स। वीनस विलियम्स और सेरेना विलियम्स को हमारे तरफ से हम हमेशा कहते हैं कि इस तरह के खिलाड़ी होनी चाहिए टू इंस्पायर, टू एनकरेज द यंगर जनरेशन जो टीवी के सामने बैठे रहते हैं, हाथ में मोबाइल लेके घूमते फिरते रहते हैं। एंड अक्सर मैं ये देखता हूँ कि द यंग जनरेशन इज सफरिंग द मोस्ट जस्ट बिकॉज कि आप स्पोर्ट्स को नहीं अपनाते हैं। स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है आज के डेट में कि देर इज़ अ रिसर्च गोइंग ऑन, देर इज़ एनालिसिस गोइंग ऑन, देर इज़ एवरीथिंग गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड कि किस तरह से रोका जाए इस महामारी को जिसको हम कहते हैं स्मार्टफोन को, और अपने बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे हटाया जाए। एंड ऑस्ट्रेलिया पहला मुल्क है जिन्होंने ये कानून जारी किया है एंड इस कानून के तहत 16 साल के नीचे किसी भी बच्चे को विल नॉट गेट द सोशल मीडिया एक्सेस एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सो इसीलिए सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स को देखिए, इस जोड़ी को देखिए, इस बहन को, इन दोनों बहनों को देखिए किस तरह से दे आर स्टिल सेल्फ मोटिवेटेड इनफ टू प्ले इन द हाइस्ट ऑर्डर ऑफ टेनिस और यूएस ओपन द लास्ट ग्रैंड स्लम ऑफ द सीजन, इसमें ये लोग आज भी खेलने के लिए तैयार हैं। एनीवे दिस इज व्हाट आई हैव टू शेयर विद द टेनिस एंड स्पोर्ट्स अपडेट। आप चलते हैं आज का जो सवाल था कि सचिन तेंदुलकर के नाम कितने सेंचुरीज हैं, और अब थोड़ा सा मोबाइल थोड़ा मैं टटोल लेता हूँ और देख लेता हूँ कि क्या क्या मैसेजेस आए हैं एंड लॉट ऑफ मैसेजेस हैव कम। शेख इरफान अल कासमी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, सही जवाब आपने दिया है। मुमताज़ आहमद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुमताज़, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। और
विराट कोहली के बारे में आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। अच्छा मैं बाद में पढ़ लूंगा।

इमरान कौन है? इमरान खान साहब भी सही जवाब उन्होंने दिया है। एंड एक और मोहम्मद इश्तियाक, उन्होंने सही जवाब नहीं दिया है। मैं आपको बता दूंगा क्यों नहीं दिया आपने यह सही जवाब। आपसे गलती कैसे हो सकती है? गलती हो सकती है, ऑब्वियसली वी आर ऑल ह्यूमंस, वी आर नॉट परफेक्ट। ओके, एंड कोई एक टाइप ऑलरेडी करना चालू कर दिया। खादिर अब्दुल हादी साहब, आप कुछ लिखना चाह रहे हैं? सवाल

आप थोड़ा सा जल्द करें सो दैट जल्दी से ये प्रोग्राम मैं ख़त्म करूं तो अगले जो हमारा होस्ट हैं अपने मेज़बान हैं उनको मैं आने की इजाज़त दूं। जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम, अभी भी अस्सलाम वालेकुम। एनीवे, आज का जो जवाब है और आज का जो सवाल था, सवाल मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सचिन तेंदुलकर, वन ऑफ द लीडिंग बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, उनके नाम पे कितने सेंचुरीज हैं एंड उनके नाम पर टोटल 100 सेंचुरीज यानी 100 सेंचुरीज हैं एंड ये कमाल का परफॉर्मर थे अपने टाइम में, 49 वनडे में और 51 टेस्ट क्रिकेट में, जो आज भी अटूट है यानी अनब्रोकन रिकॉर्ड है। मुमताज़, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ब्रेकअप दे दिया है 49 वनडे एंड 51 टेस्ट मैचेस, बहुत बहुत शुक्रिया। और किन्होंने दिया है सही सब जवाब, बहुत से लोगों ने सही दिया है 100, बट मुमताज़ आपने एकदम ब्रेकअप दिया है, इसके लिए तह दिल से शुक्रिया। और किसी ने भी इतना अच्छा, किसने लिखा है अभी, उस्मान साहब ने 100 सेंचुरीज, यानी सचिन तेंदुलकर है स्कोर्ड 51 टेस्ट सेंचुरीज एंड 49 ओडीआई सेंचुरीज, जो कि आज भी रिकॉर्ड है एंड इट्स अ मैसिव रिकॉर्ड जो कि मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ब्रेक हो सकता है, जस्ट लाइक सर डोनाल्ड ब्रैडमैन का 99.96 टेस्ट एवरेज, टेस्ट बैटिंग एवरेज। एनीवे, मिलते हैं अगले हफ्ते अगले इतवार को एंड तब तक के लिए बी स्पोर्टिंग, स्पोर्ट्स में जुड़े रहिए, अपने बच्चों को भेजिए एंड हमेशा जज्बा अपना जिंदा रखें। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक,
3: टाइम चेक, चेक चेक चेक टाइम चेक। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 1:30 यानी वक्त हो चला है।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
3: हाँ जी मेरी देसी ऑडियंस, क्या हाल चाल है? हैप्पी वाला वीकेंड आप सभी को। हाँ जी 3-2-1 कहते कहते मैं कहूंगी जल्दी से आ जाओ भाई हमारे एस्केप रूम की गलियों में, क्योंकि यहाँ पर एक तो वीकेंड सेलिब्रेट करने की खुशी है और दूसरी तरफ आज का नया चैलेंज। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं? आज हम जाएंगे एक टाइम मशीन के अंदर। यस, एक ऐसी टाइम मशीन जो हमें एक अलग ही एरा में ले जाने वाली है।

जहाँ से हमें पहले लगेगा कि बड़ा सुकून है, जहाँ पर बड़ा सुकून है, हर चीज़ इतनी खूबसूरत है, नॉस्टैल्जिक है, लेकिन उसके बाद लगेगा कि नहीं नहीं चलो भाई जल्दी भागना है, क्योंकि यहाँ फंस नहीं सकते, वीकेंड हफ्ते में बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो एंजॉय करना है अपनों के साथ. एग्जैक्टली आज के एस्केप रूम की सिचुएशन बस एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सामने आएगी. फिलहाल ये नंबर नोट करें, 666-22107, 666-22107. इस नंबर के जरिए हमारी बातचीत हम कंटिन्यूसली करने वाले हैं. तो अभी आप क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे म्यूजिक सुनकर और अपनी एनर्जी को बरकरार रखेंगे. एंजॉय द सॉन्ग, स्टे एफएम 107.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: Absolute cinema.
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: Yes, and now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता, और आज वीकेंड स्पेशल में एस्केप रूम में क्या है खास, तो आज हम किसी अंधेरी कोठरी की दीवारों में नहीं या जंगल में नहीं, बल्कि ये आपके जहन की एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जिसे हम आपकी यादों का कमरा कहते हैं। तो चलिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ इस सफर में निकलिए। हाँ, एक लंबी गहरी सांस लीजिए।

अंगीठी में आग सुलग रही है और सच कहूँ तो यहाँ बहुत सेफ महसूस हो रहा है, जैसे गुजरे हुए कल ने हमें गले लगा लिया हो। मगर ज़रा दीवारों की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्या आपने महसूस किया? आपके पैर भारी हो रहे हैं, जैसे आप गाढ़े शहद में चल रहे हैं। ये पुराने अच्छे दिनों की मिठास एक जाल है। अगर हम यहाँ ज़्यादा देर रुके तो हम भी इन दीवारों पर टंगी बस एक धुंधली तस्वीर बनकर रह जाएंगे। इस कैद से बाहर निकलने के लिए हमें समझना होगा कि हमारा दिमाग गुजरे हुए कल से इतनी मोहब्बत क्यों करता है। वेल, इस कमरे का माहौल इतना भारी क्यों है, हम यही सोच रहे हैं। दरअसल हम वो एहसास महसूस कर रहे हैं जैसे 17th सेंचुरी में एक लिटरल बीमारी माना जाता था। हाँ, डॉक्टर सोचते थे कि जो सिपाही है यानी कि सोल्जर्स सिर्फ घर की याद में ना बीमार पड़ रहे हैं। ओहो हो, आज हमें पता है कि ये एक बिटर स्वीट जज्बात है, पुराने सुख को याद करने की खुशी है और उस पल के गुजर जाने का गम भी है कि नहीं। चलो इसी बात पे क्लू नंबर 1 आपके सामने आता है, जरा ध्यान से सोचिए समझिए और सही जवाब दीजिएगा। तो क्लू नंबर 1 है कि मैं एक बिटर स्वीट फीलिंग हूँ, एक खट्टी मीठी फीलिंग हूँ। मेरा नाम 2 ग्रीक शब्दों से बना है, नॉस्टोस जिसका मतलब है घर वापसी और एल्गोस जिसका मतलब है दर्द। मैं उस बीते हुए वक्त में लौटने की तड़प हूँ जो अब जा चुका है। तो मैं क्या हूँ? घबराइए नहीं, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, ठीक है? और आपके लिए ऑप्शंस हैं नॉस्टैल्जिया, मेमोरी या फिर टाइम ट्रैप। तो क्या हो सकता है इनमें से सही जवाब? क्लू नंबर 1 एक बार फिर से आपके लिए मैं दोहराऊंगी कि मैं एक बिटर स्वीट फीलिंग हूँ, मेरा नाम 2 ग्रीक शब्दों से बना है, नॉस्टोस जिसका मतलब है घर वापसी और एल्गोस जिसका मतलब है दर्द। मैं उस बीते हुए वक्त में लौटने की तड़प हूँ जो अब जा चुका है। तो बताइए मैं क्या हूँ? आपके ऑप्शंस हैं नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, टाइम ट्रैप। बताएं सही जवाब 6622107, 6622107 पर अपने नाम के साथ। एंड लेट मी सी कि ये पहला पड़ाव आप में से कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं या पार कर पाते हैं। और अभी के लिए अरिजीत सिंह की आवाज में ये वीकेंड वाइब वाला गाना, आई एम श्योर यू गोना लव इट। तो भाई वॉल्यूम बढ़ा लो, फर्स्ट क्लास सॉन्ग है ये। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107, दिल से दी।
1: यस जनाब, वेलकम वेलकम वेलकम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और आज के एस्केप रूम की सिचुएशन बहुत खूबसूरत है क्योंकि हम अपने यादों के कैद खाने में कैद हैं। मतलब ये खूबसूरत कैद खाना है, यहाँ पर कोई ऐसा ऐसी बात नहीं है जिसे लेकर हम घबरा जाएं, लेकिन हाँ, हम टाइम मशीन के ज़रिए अपने पुराने किसी दौर में चले गए। अब उस पुराने दौर से निकलना भी ज़रूरी है, भले हमें कितना भी कम्फर्टेबल लग रहा हो। तो चारों तरफ हमें लेवेंडर की खुशबू आ रही है और मतलब एक कोजी फीलिंग है, जो अंगीठी है उसमें आग सुलग रही है, तो यहाँ बड़ा सेफ महसूस हो रहा है। लेकिन हमारे जो पैर हैं ना, जब हम चल रहे हैं तो बड़े भारी लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम किसी गाढ़े शहद या यूँ कहें हनी के ऊपर चल रहे हैं। देखो, जाहिर सी बात है कि जब हम पुराने दौर में जाते हैं, अपनी यादों को ताज़ा करते हैं, तो वो चीज़ बड़ी खूबसूरत होती है, लेकिन एक कहते ना खट्टी मीठी फीलिंग होती है। अब क्लू नंबर वन इसी बात पे हमें सॉल्व करना है। तो मैं एक खट्टी मीठी या बिटर स्वीट फीलिंग हूँ। मेरा नाम दो ग्रीक शब्दों से बना है, नॉस्टोस जिसका मतलब है घर वापसी और अल्गोस जिसका मतलब है दर्द। मैं उस बीते हुए वक्त में लौटने की तड़प हूँ जो अब जा चुका है। तो मैं क्या हूँ? मैंने आपको ऑप्शंस दिए, नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, टाइम ट्रैप। इन तीनों में से क्या सही जवाब होगा? नॉस्टैल्जिया, मेमोरीज, टाइम ट्रैप। आइए देखिए हमारे लिसनर्स ने, जिन्होंने हमें सही जवाब देने की कोशिश की है, कौन कौन है जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है। ओहो, काफ़ी लंबी लिस्ट आ गई है हमारे सामने, और कुछ लोगों ने टाइम ट्रैप तक लिखा है, कुछ ने मतलब तीनों ही ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हम सही जवाब की तरफ सीधा रुख करेंगे। तो सही जवाब है नॉस्टैल्जिया। यस, जोरदार तालियां हमारे उन सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने सही जवाब दिया। भाई, नॉस्टैल्जिया ही वो वर्ड है हम कितने बार अपने शोज में, अपनी चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। वो दिन जो जिंदगी के सबसे सुकून भरे दिन थे, वो यादें जहाँ बार बार जाने का दिल करता है, नॉस्टैल्जिया। ठीक है, और जिन्होंने हमें सही जवाब दिए हैं, आइए जरा उनके नाम देख लेते हैं। सो मोहम्मद यूसुफ खान है हमारे साथ, असद ने बिल्कुल हमें सही जवाब दिया है, मुदस्सिर रिहान ने हमें सही जवाब दिया है, साधु तफरीदी ने हमें सही जवाब दिया, मिस्टर खान ने हमें सही जवाब दिया है, और कौन है जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है, काशिफ, काशिफ ने भी हमें सही जवाब दिया है, और ये जनाब क्या, इनका नाम क्या है भाई, आरिफ, आरिफ ने हमें सही जवाब दिया है, अफजल ने हमें सही जवाब दिया है, मोहम्मद अनादिल। सो अ बिग शाउट आउट तो हमारे सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने पहला पड़ाव पार कर लिया। अब चलें उस जगह पे थोड़ा आगे बढ़ें, तो आपको दिखेगा कोने में एक बहुत ही बड़ी सी घड़ी टंगी हुई है, ठीक है, टिक टिक कर रही है, लेकिन उसकी जो सुइयां है ना, वो पीछे की तरफ भाग रही हैं। ओए होए, ये नई चीज़ हमें देखने को मिल रही है। हम सिर्फ पुराने वक्त की अच्छी बातें ही क्यों याद रखते हैं, कभी आपने सोचा है? हम उस दौर के दांत के दर्द या कड़ाके की ठंड को क्यों भूल जाते हैं? वेल, साइकोलॉजिस्ट इसे रोजी रेट्रोस्पेक्शन कहते हैं। हमारा दिमाग एक फिल्टर की तरह काम करता है जो बुरी यादों को धो देता है और सिर्फ सुनहरी यादें पीछे छोड़ देता है, ताकि हमें जब भी कुछ अच्छा याद आए तो हम खुश हों, है कि नहीं? सो क्लू नंबर टू यही है, आपको सॉल्व करना है। जब आप पास्ट को हकीकत से कहीं ज़्यादा बेहतर समझ कर याद करते हैं, तो आप उसे डैश, यानी कि एक ब्लैंक है, आप उसे डैश कलर्ड ग्लासेस से देख रहे होते हैं। उस फूल का नाम क्या है जो हमारी यादों के इस रंग को दर्शाता है? चलिए मैं आपको तीन ऑप्शंस दूंगी कि जब हम यादों के बारे में, उसकी खूबसूरती के बारे में सोचते हैं, तो वो कौन सा रंग है या वो कौन सा फूल है जो हमारी यादों को दर्शाता है। पीस लिलीज, सनफ्लावर या रोज, इन तीनों में से कौन सा फूल है, कौन सा फ्लावर है? पीस लिलीज, सनफ्लावर या रोज, क्लू नंबर टू सॉल्व कीजिए। 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब दीजिए। जब कोई पास्ट को हकीकत से कहीं ज़्यादा बेहतर समझकर याद करता है, तो उसे डैश कलर्ड ग्लासेस से देख रहे होते हैं। उस फूल का नाम क्या है जो हमारी यादों के इस रंग को दर्शाता है, प्रेजेंट करता है हमारे दिमाग में? हाँ, क्या है वो फूल, कौन सा वो फूल है? पीस लिलीज है, सनफ्लावर है या रोज है? सही जवाब दो 666-22-66-22-107 पर अपने नाम के साथ। और अभी जनाब म्यूजिकल ब्रेक का वक्त है, इंजॉय करते हैं म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद देखते हैं कि आप में से कितने लोग दूसरे पड़ाव को पार कर पाते हैं. सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक। Yes, and now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी एफ अमिता। इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे हुए हैं दोपहर के 2:02। ये वक्त वो होता है जहाँ पर दो दो एक साथ आते हैं। यू कैन मेक अ विश कि आज हम अपनी सुनहरी यादों के इस खूबसूरत जाल से एस्केप कर पाए, वरना वीकेंड हाथ से निकल जाएगा।
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी।
1: यह जनाब बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का और FM 107 पर मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। और एस्केप रूम में आज अपनी खूबसूरत सुनहरी यादों में कैद हो गए हम। हाँ जी, एक टाइम मशीन के ज़रिए हम एक बड़े ही ऐसे एरा में पहुँचे, एक ऐसे वक्त में पहुँचे जहाँ हर चीज़ हमको बड़ी अच्छी लग रही है, दिल बड़ा खुश हो रहा है हमारा। तो हमें यहाँ से खुशी तो मिल रही है, लेकिन हम हमेशा के लिए वहाँ कैद नहीं हो सकते, हमको निकलना होगा वरना वीकेंड हाथ से निकल जाएगा। वेल, क्लू नंबर वन हम सब ने सॉल्व किया, सही जवाब था नॉस्टैल्जिया। अब क्लू नंबर टू की तरफ हमने रुख किया और एक सवाल भी हमारे जहन में आया कि हम जब भी पुरानी यादों की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम अच्छी यादों का ही जिक्र करते हैं। हम दांत के दर्द का या फिर ऐसी कड़ाके की ठंड जो हमें बिल्कुल हमारी हड्डियों को भी कपा दी हो, उसकी बातें हम लोग बहुत रेयर करते हैं। कुछ लोग करते हैं बट मोस्टली नहीं होती हैं, सिर्फ खूबसूरत अच्छी यादों की बात होती है। तो क्लू नंबर टू आपके लिए था कि जब आप पास्ट को हकीकत से कहीं ज़्यादा बेहतर समझकर याद करते हैं तो आप उसे डैश कलर्ड ग्लासेस से देख रहे होते हैं। कौन सा कलर का ग्लास है जिसके ज़रिए आप उसे देख रहे होते हैं, उस फूल का नाम क्या है जो हमारी यादों के इस रंग को दर्शाता है, ये फूल कौन सा है, कौन सा ऐसा फूल है जो हमारी यादों को खूबसूरत दिखाता है। मैंने आपको ऑप्शंस दिए, पीस लिलीज, सनफ्लावर और रोज़। ज़्यादातर लोगों ने पीस लिलीज लिखे, फिर कुछ ने सनफ्लावर लिखा और कुछ ने रोज़ लिखकर हमें जवाब दिए हैं। तो चलिए अब हम सही जवाब की तरफ रुख करते हैं। तो ये सनफ्लावर तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, पीस लिलीज नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो सही जवाब इज रोज। भाई जोरदार ताली दो जिन्होंने भी गुलाब रोज लिखा है ना, बिल्कुल सही लिखा है। जब मैं आपको ये क्लू दे उसके पहले मैंने जिक्र किया था एक साइकोलॉजी जो इस फीलिंग को यानी अच्छी फीलिंग को, हमारी पुरानी यादों की फीलिंग को जो एक टर्म देते हैं रोजी रेट्रोस्पेक्शन, तब मैंने जिक्र किया था रोजी, उससे आपको समझ जाना चाहिए था कि ये कौन से कलर का ग्लास है। हाँ चलो कोई नहीं, अब जिन्होंने सही जवाब दिए उनके नाम लेना तो बनता है। आइए ज़रा हम अपने लिसनर्स की लिस्ट निकालें जिन्होंने हमें सही जवाब दिया है, कोशिश की है सही जवाब देने की। हमारे एक लिसनर हैं, उन्होंने जवाब तो गलत दिया है लेकिन हमारे शो की तारीफ की और कहते हैं कि आपकी आवाज़ माधुरी दीक्षित से भी मिलती है। चले शुक्र है आपने ये कॉम्प्लीमेंट दिया क्योंकि माधुरी दीक्षित मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या कहूँ मैं आपको। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमारे सारे लिसनर्स जो बात बात पे यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा और प्यारा हमें कहते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, है कि नहीं। काशिफ ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, दूसरा जवाब ये नहीं दे पा रहे हैं। और मिस्टर खान ने हमें सही जवाब दिया है, बहुत ही कम लोग हैं जिन्होंने रोज़ लिखा है। आदिल ने सही जवाब दिया है, मोहम्मद और अफजल ने सही जवाब दिया है। सो कंग्रेचुलेशन जिन्होंने रोज़ लिखा है, उन्होंने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अलर्ट होना पड़ेगा हमको क्योंकि अब माहौल बदल रहा है। जैसे हमने सही जवाब दिया रोज़, ये वेलवेट के जो पर्दे हमारे आसपास थे अब हमारे चारों तरफ सिमटने लगे हैं। ओहो हो, जैसे हमें हमेशा के लिए इस टाइम कैप्सूल में सील कर देंगे। बड़ी मुश्किल का सामना हमें करना पड़ सकता है और एग्जिट डोर भी इनविजिबल हो गया है, हमें दिखाई ही नहीं दे रहा, बस पर्दे ही पर्दे दिखाई दे रहे हैं, खूबसूरत वेलवेट के पर्दे हैं और ये सिमटना शुरू हो चुके हैं और कुछ और हमें नहीं दिख रहा कि जिसके जरिए हम यहाँ से बाहर निकल सकें। लेकिन ये एग्जिट डोर हमें तब दिखेगा जब आप इन पुरानी फोटोज़ को देखना छोड़ दोगे। हाँ, तो ये पुरानी फ़ोटो से अपनी नज़र हटाओ, ठीक है, और अपने हाथों को देखो। हम बीते हुए कल में नहीं रह सकते, ठीक है, और हम अभी आने वाले कल में पहुँचे भी नहीं हैं। तो ज़िंदगी सिर्फ एक ही जगह मुमकिन है। चलिए इसी बात पे क्लू नंबर 3 आपके सामने। मैं वो हूँ जो पास्ट का उल्टा हूँ। मैं अभी हूँ, राइट नाउ हूँ, और इस टाइम कैप्सूल से बचने के लिए आपको इसमें कदम रखना होगा। ये कौन सी चीज़ है जिस पर आपको कदम रखना होगा? चलिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ। आपको कदम रखना होगा परसों में, या फिर आने वाले कल में, या फिर आज यानी प्रेजेंट में। बताएं क्या सही जवाब होगा। मैं वो हूँ जो पास्ट का उल्टा हूँ, मैं अभी हूँ, राइट नाउ हूँ, इस टाइम कैप्सूल से बचने के लिए आपको इसमें कदम रखना होगा। किस में कदम रखना होगा? आपको परसों में कदम रखना है, आने वाले कल में कदम रखना है, या फिर आज प्रेजेंट पर कदम रखना है? गिव मी द राइट आंसर 6622107, 6622107 पर अपने नाम के साथ, एंड लेट्स सी कि आज इस टाइम कैप्सूल से आप बाहर निकल पाते हैं या नहीं।
0: Welcome to the world of...
1: और अभी हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, क्योंकि म्यूजिक हमारी एनर्जी को बरकरार रखता है और सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है कि नहीं। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: हाँ जी, तो मेरी देसी ऑडियंस, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। और एफएम 107 पर एस्केप रूम की गलियों में आज हम घूम रहे हैं, और आज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं है हमारे लिए, लेकिन ये सिचुएशन जितना सुकून दे रही है हमको, उतना ही हमारे जहन में ये बात आ रही है कि हमको इससे बाहर निकलना है। टाइम मशीन के ज़रिए एक हम ऐसे फेज़ में अपनी ज़िंदगी के पहुंच चुके हैं जहां पर हम उस जगह को नहीं पहचान रहे, लेकिन उस सुकून को महसूस कर सकते हैं। सब कुछ बदला बदला सा है, पुराने लोगों की तस्वीरें, जो 100 साल पुरानी तस्वीरें हैं दीवारों पर लगी हैं, अंगीठी में आग जल रही है, सब कुछ बड़ा कोजी है, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि एक भारीपन भी महसूस हो रहा है, जो होता ही है जब हम खूबसूरत पुरानी यादों में चले जाते हैं। और यहाँ से बाहर निकलने का एक ही जरिया है, 3 क्लूज को सॉल्व करना है, 3 पड़ाव को पार करना है। 2 पड़ाव हमने पार कर लिए। पहले क्लू नंबर 1 का सही जवाब था नॉस्टैल्जिया, क्लू नंबर 2 का सही जवाब था रोज, और क्लू नंबर 3 पर हम आए हैं अभी। यहाँ ये सिचुएशन ऐसी है कि जो जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहाँ पर सारे मोटे मोटे बड़े बड़े से वेलवेट के पर्दे थे, वो सब अब ना सिमटना शुरू हो चुके हैं। अब हमें कुछ और चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्या करें, एग्जिट डोर ही नहीं दिख रहा। मतलब पहले तो सिचुएशन में हमें दिख जाता था, अब हमें दिख ही नहीं रहा, तो क्या किया जाए? क्लू नंबर 3 को सॉल्व किया जाए। अब ध्यान से सुने, ठीक है, मैं वो हूँ जो पास्ट का उल्टा है, ठीक है, मैं वो हूँ जो पास्ट का उल्टा है, मैं अभी हूँ, राइट नाउ हूँ, और इस टाइम कैप्सूल से बचने के लिए आपको मुझ में कदम रखना होगा। मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए कि हमें किस चीज़ पर कदम रखना है। हमको परसों पर कदम रखना है, आने वाले कल पर कदम रखना है, या फिर आज पर कदम रखना है। किस चीज़ पर कदम रखना है, सोचें, समझ कर सही जवाब दें। 6622107 6622107 पर अपने नाम के साथ, एंड लेट मी सी कि आप में से कितने लोग होते हैं जो ये आखिरी मुकाम को पूरा कर पाते हैं, आखिरी पड़ाव को पार कर पाते हैं, और इस खूबसूरत यादों की कैद से, इस खूबसूरत टाइम मशीन से बाहर निकल पाते हैं। Exactly. जब यादें होती हैं तो उनके प्यार के चक्कर में ही हम वहां फंसे हुए हैं। बट फिलहाल के लिए छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद आपकी हमारी मुलाकात। स्टे ट्यून्ड टू एफएम 107।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो.
1: Yes, now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी फरमीता और हमारे एस्केप रूम का आखिरी पड़ाव चल रहा है जनाब. क्या चैलेंज है, मतलब एक खूबसूरत यादों की एक जगह जहाँ पर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रही है, लेकिन फिर भी हमें वहाँ से निकलना पड़ेगा, है कि नहीं? ये खुशी हम ज़्यादा देर महसूस नहीं कर सकते. वाला आज की सिचुएशन, टाइम मशीन के जरिए हम एक खूबसूरत एरा में पहुंच गए जहां जिंदगी बड़ी सुकून वाली लग रही थी, लेकिन भारीपन भी साथ में था. यानी कि इस चैलेंज से जितना हमें खुशी मिल रही थी उतना ही चैलेंजिंग है अब यहां से बाहर निकलना. यस, सो क्लू नंबर वन हम सब ने सॉल्व किया, सही जवाब था नॉस्टैल्जिया. क्लू नंबर टू का सही जवाब रोज, और क्लू नंबर थ्री पर हम आए हैं. अब एग्जिट डोर हमें नहीं दिख रहा है, हम जिस कमरे में हैं वहाँ वेलवेट के मोटे मोटे पर्दे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े पर्दे, अब वो आपस में सिमट रहे हैं. और एग्जिट डोर विजिबल तब होगा जब हम क्लू नंबर थ्री का सही जवाब देंगे. हम बीते हुए कल में नहीं रह सकते, ये हमको जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा, और हम अभी आने वाले कल में पहुँच भी नहीं सकते. तो ज़िंदगी सिर्फ एक ही जगह मुमकिन है, वो जगह कौन सी, आइए क्लू नंबर थ्री की तरफ रुख करते हैं. मैं वो हूँ जो पास्ट का उल्टा हूँ, मैं राइट नाउ अभी हूँ. इस टाइम कैप्सूल से बचने के लिए आपको इसमें कदम रखना होगा, और ऑप्शन मैंने आपको दिए. आपको कदम रखना होगा परसों पर, आपको कदम रखना होगा आने वाले कल पर, और आपको कदम रखना होगा आज यानी प्रेजेंट पर. तो किस जगह पे आप कदम रखेंगे? सो हमारे लिसनर्स ने कुछ ने लिखा है कि आने वाले कल पर हम कदम रखेंगे. ओके, आई शुड टेल यू दैट्स द रॉन्ग आंसर. कुछ ने लिखा है परसों पर कदम रख सकते हैं अमिता, क्योंकि वो भी एक सेफ ऑप्शन है. सेफ ऑप्शन है, लेकिन इस जगह के लिए वो सही ऑप्शन नहीं है. तो अभी सही ऑप्शन है कि आपको रखना होगा कदम आज पर यानी प्रेजेंट पर. जोरदार तालियां भाई, जोरदार तालियां हमारे उन सारे लिसनर्स के लिए जिन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया. आइए जरा उनके नाम देखें. उनके नाम है मोहम्मद, आदिल, अफजल, सादत, अफरीदी ने हमें सही जवाब दिया है, मनदीप ने हमें सही जवाब दिया है, असद ने सही जवाब दिया है, काशिफ ने सही जवाब दिया है, और मोहम्मद कलफान ने सही जवाब दिया है, मिस्टर खान ने सही जवाब दिया है. क्या बात है. तो आपने ये करने के बाद, सही जवाब देकर ये प्रूफ कर दिया है कि आप टाइम ट्रैवलर हैं, और आपने सही जवाब देकर वीकेंड के सारे दरवाजे खोल दिए, टाइम मशीन से आप वापस आ गए और अब अपनी असल दुनिया में इंजॉय कर रहे हैं, है कि नहीं? चलो बहुत सारी मुबारका. लेकिन अभी असली टाइम ट्रैवलर कौन है जो कि आज का लकी विनर है, आइए ज़रा उनका नाम ले लेते हैं. उनका नाम है मिस्टर खान. मुबारका मुबारका, क्या बात है, कमाल कर दिया आपने, वेरी नाइस. बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी मोहब्बत आपके लिए कि आपने नॉन स्टॉप हमें सही जवाब दिए, और जल्दी जल्दी सही जवाब दिए, और आज के आप लकी विनर बन चुके हैं. पर हमारे सारे लिसनर्स जिन्होंने हमें सही जवाब दिए और कुछ ने गलत जवाब भी दिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हमारे साथ बने रहे, तो आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. और इसी बात पे जनाब अब वक्त है अमिता के जाने का, क्योंकि अगले हफ्ते भी एक नया चैलेंज लेकर आना है. फिलहाल तो वीकेंड एंजॉय करो, अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, और ज़्यादा धूप में मत निकलना, वरना मैं नहीं कह सकती, रंग उड़ सकता है और गर्मी भी लग सकती है. ठीक है, चलो अभी वीकेंड एंजॉय कीजिएगा, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी मीनवाइल जुड़ जाइएगा. FM 107 सोशल मीडिया पर हर जगह अवेलेबल है, और अपनी आरजे अमिता को भी आप सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं. और अभी जाते जाते कहना तो बनता है, हम हेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. आय हाय हाय, क्या शानदार गाना. रेडियो सेट्स का वॉल्यूम बढ़ाओ भाई, बड़ा मज़ेदार है. अजरार की आवाज़, अफगान जलेबी. स्टे ट्यून टू FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 Time check.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, बर्थडे कैसा दिन होता है जो हर किसी के लिए स्पेशल होता है। केक्स, डेकोरेशंस, गिफ्ट्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन। भाई, बर्थडे की खुशियां बड़ी यादगार होती हैं, बहुत अच्छे लम्हे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक बर्थडे पार्टी के बाद कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है? भाई, प्लास्टिक डेकोरेशंस हो गई, डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गई, एक्स्ट्रा खाना हो गया, रैपिंग पेपर्स हो गए, पार्टी आइटम्स जो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं। अच्छा, खुशी मनाने का एक अलग तरीका है। खुशी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा एनवायरमेंट को भी कंसिडर कर लें तो भाई सेलिब्रेशन और भी मीनिंगफुल बन सकता है। तो भाई, आज हम बात करने जा रहे हैं इको स्विच में इको फ्रेंडली बर्थडे के बारे में, यानी बर्थडे सेलिब्रेशन जो खुशी भी दें और नेचर का भी ख्याल रखें। पहले तो प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं ना। देखें साथियों, बर्थडे पार्टीज में अक्सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वेस्ट को बढ़ावा देती हैं। जैसे कि कह लिया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स और कटलरीज, ये तो बड़ी मेन चीज है। प्लास्टिक बलून्स और डेकोरेशंस, गिफ्ट रैपिंग्स का एक्स्ट्रा वेस्ट, जरूरत से ज्यादा खाना बना लेना या ऑर्डर कर लेना, डिस्पोजेबल पार्टी आइटम्स जो दोबारा यूज ही नहीं होते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि भाई एक दिन की पार्टी तो है, क्या ही कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब हम हर रोज दुनिया भर में हजारों सेलिब्रेशंस होते हुए देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये कोई छोटी सी मामूली सी बात रह जाती है? या आपको ये लगता है कि भाई ये अगर हजारों लोग एक ही दिन में बर्थडे मना रहे हैं तो वेस्ट क्रिएट कर सकती है? अच्छा, अच्छी बात यह है कि बर्थडे को इको फ्रेंडली बनाने के लिए खुशी और फन को कम करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी स्मार्ट सी प्लानिंग चाहिए होती है। देखें, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन इसका ये है। अगर मैं आपको बताऊं कि इको फ्रेंडली बर्थडे के लिए आप कौन से सिंपल आइडियाज अपना सकते हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देती हूं। रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करें। हर साल नए प्लास्टिक डेकोरेशंस खरीदने के बजाय रीयूजेबल बैनर्स, फैब्रिक डेकोरेशंस या लाइट्स यूज की जा सकती हैं। इन्हें दोबारा डिफरेंट ओकेजंस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये डिजिटल इनविटेशंस चूज करें ना। पेपर इनविटेशन कार्ड की जगह वो पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी, इसकी जगह आप डिजिटल इनविटेशंस भेजें। ये इजी भी होते हैं, पेपर भी कम वेस्ट होता है और क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। अच्छा, सिंपल फूड प्लानिंग करें। बर्थडे पार्टी के लिए उतना ही खाना प्रिपेयर करें जितना जरूरत हो। अगर खाना बच जाए तो उसे प्रॉपर्ली स्टोर करें, या सबसे बड़ी बात है कि आप जरूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचाने का इंतजाम करें। आपकी बर्थडे है भाई, सेलिब्रेट करें उसे अच्छे तरीके से, मीनिंगफुल वे से। इको फ्रेंडली गिफ्ट्स दें। गिफ्ट्स के लिए रीयूजेबल बैग्स यूज करें या ऐसे गिफ्ट्स चूज करें जो यूजफुल भी हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। प्लांट्स हो गई, बुक्स हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए या क्रिएटिव गिफ्ट्स भी यादगार हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्पोजेबल आइटम्स को अवॉइड करें। जहां मुमकिन हो घर के रीयूजेबल प्लेट्स, ग्लासेस और कटलरी यूज करें ना, इससे पार्टी का वेस्ट भी काफी कम हो जाता है। अच्छा, अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दी जाए तो साथियों, आजकल बहुत सारी फैमिलीज अपनी बर्थडे को क्रिएटिव इको फ्रेंडली बना रही हैं। कुछ लोग आउटडोर पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहां डेकोरेशन बड़ी सिंपल और मिनिमम होती है। कुछ फैमिलीज रीयूजेबल बर्थडे बैनर्स संभाल कर रख लेती हैं और हर साल दोबारा उसी को यूज करती हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई बर्थडे सिर्फ गिफ्ट लेने का नाम नहीं होता बल्कि शेयरिंग और काइंडनेस का भी दिन होता है। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे अपने बर्थडे पर एक्स्ट्रा गिफ्ट्स की जगह बुक्स डोनेट करते हैं या प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसी सेलिब्रेशन सिर्फ यादगार नहीं होती बल्कि एक पॉजिटिव मैसेज भी देती है। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि अगले बर्थडे सेलिब्रेशन में एक इको फ्रेंडली चेंज जरूर ट्राई करें। चाहे वो रीयूजेबल डेकोरेशंस हो, खाने का वेस्ट कम हो या डिजिटल इनविटेशंस भेजे जाएं तो। और हाँ, हमें जरूर बताइएगा आपके ख्याल में बर्थडे पार्टी की सबसे जरूरी चीज क्या होती है, केक, डेकोरेशन, गिफ्ट्स या फैमिली और फ्रेंड्स का साथ। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, सबसे खूबसूरत सेलिब्रेशन वो होती है जहाँ खुशी भी हो और नेचर के लिए जिम्मेदारी भी। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे खुद का मुहासबा करने के बारे में। मुहासबे का मतलब है अपनी जिंदगी और अपने अमाल का जायजा लेना। ये एक ऐसी आदत है जो इंसान को बेहतर बनाती है और उसे अपनी गलतियों को सीखने का मौका देती है। अक्सर हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं लेकिन अपनी तरफ तवज्जो नहीं देते, जबकि असल कामयाबी ये है कि इंसान अपनी इस्लाह पर फोकस करे। रोजाना का छोटा सा मुहासबा हमें ये समझाने में मदद देता है कि हमने क्या अच्छा किया और कहाँ बेहतरी की जरूरत है। ये आदत इंसान को प्रोग्रेसिव बनाती है और उसे स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद देती है। आज का अमल ये है कि दिन के एंड पर 2 मिनट निकाल कर अपने आज के दिन का जायजा लें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
2: One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
2: One step to 2030.
3: और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है, क्या हमारे कल्चर्स और वैल्यूज मुस्तकबिल में वैसे ही रहेंगे? कहने को तो ये सवाल अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सबको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर भी करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कल्चर और वैल्यूज हम आज फॉलो करते हैं, क्या वो 20 से 30 साल बाद भी वैसे ही होंगी? या टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से सब कुछ बदल जाएगा? देखिए, कल्चर सिर्फ कपड़ों, खानों और लैंग्वेजेस का नाम नहीं है। कल्चर हमारी सोच, हमारे रवैये और हमारी जिंदगी जीने के तरीके का भी नाम है। और वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन एक बात जो हिस्ट्री ने हमें जरूर सिखाई है, दुनिया का कोई भी कल्चर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज से 20 साल पहले लोग फैमिली गैदरिंग्स में घंटों बैठकर बातें करते थे। आज अक्सर फैमिली एक ही कमरे में होती है लेकिन हर शख्स अपने फोन स्क्रीन में बिजी नजर आता है। कम्युनिकेशन आज पहले से ज्यादा फास्ट है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इमोशनल कनेक्शन पहले जैसा कहाँ रहा? क्या अगले चंद सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी हमारी डेली लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएंगे कि शायद वो हमारे रिश्तों को भी तब्दील कर दें? जवाब है, हो सकता है, ये मुमकिन है। देखिए, आप जानते हैं कि फैमिली वैल्यूज हैं क्या। हमारी सोसाइटीज में फैमिली को हमेशा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, एल्डर्स की इज्जत, फैमिली सपोर्ट हमारे कल्चर का एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन मॉडर्न लाइफ का प्रेशर, बिजी स्केड्यूल्स और ग्लोबल मोबिलिटी की वजह से फैमिली स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो रहे हैं। आज बहुत से लोग एजुकेशन और जॉब

0: ये दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं. सवाल ये है कि क्या फिजिकल डिस्टेंस इमोशनल डिस्टेंस भी बन जाते हैं या टेक्नोलॉजी फैमिली बॉन्ड को और मजबूत करती है. बहुत से लोगों का ये मानना भी है. देखिए आज एक टीनेजर दोहा में बैठकर वही म्यूजिक सुनता है जो लंदन में या न्यूयॉर्क में रहकर कोई सुन रहा है. सोशल मीडिया ने कल्चर्स को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड किया है. इसका फायदा ये है कि हम दूसरे सोसाइटीज के तौर तरीकों को सीख भी रहे हैं. लंदन में किस तरह का कल्चर है, कैसा म्यूजिक है, कैसे कपड़े हैं, कैसे ट्रेंड है, आज हम यहाँ दोहा में बैठकर सब कुछ फॉलो कर रहे हैं. क्या फ्यूचर में भी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व रह पाएगी? क्या दुनिया एक ग्लोबल कल्चर की तरफ बढ़ जाएगी? ये सवाल बड़ा सवाल है. कौन कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जो आपको लगता है कि कभी पुराने नहीं होंगे? चलिए जब तक आप सोच रहे हैं एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ. कुछ कल्चर्स हमारे और आपकी जिंदगी का ऐसा बुनियादी हिस्सा है जिन्हें हमें और आपको बदलने भी नहीं देना चाहिए. अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल्चर तो चेंज हो सकता है, फैशन चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, लेकिन वैल्यूज ऐसे होते हैं जो हर जनरेशन में कीमती रहते हैं और इन्हें रहना भी चाहिए. जैसे सच बोलना, रिस्पेक्ट देना, काइंडनेस, ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. मैं कहूंगी ये वो वैल्यूज हैं जो शायद फ्यूचर में भी लोगों को जरूर रिक्वायर्ड होंगे, चाहे दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए. जैसे हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्यूचर जनरेशन का नजरिया थोड़ा सा हमसे मुख्तलिफ है. हर जनरेशन अपने वैल्यूज और अपनी प्रायोरिटीज साथ लेकर आती है. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए स्टेबिलिटी और सिंप्लिसिटी बड़ी अहमियत रखती थी. हमारे पेरेंट्स के लिए हार्ड वर्क और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अहमियत रखती थी. लेकिन आज की जनरेशन के लिए फ्रीडम, इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंस रखती हैं. और मुमकिन है कि कल की जनरेशन डिजिटल एथिक्स, मेंटल वेलबींग और सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे. यानी वैल्यूज ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं. अब सोचने वाली बात ये है कि क्या हम कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं और साथ ही चेंज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल. क्योंकि हर जनरेशन को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो अपने माजी से क्या साथ लेकर चलेगा और मुस्तकबिल के लिए क्या नया क्रिएट करेगा. देखिए, कल्चर दरिया की तरह होता है. उसका पानी हमेशा बहता रहता है और शायद बदलता भी रहता है, लेकिन उसकी बुनियादी पहचान कायम रहती है. इसी तरह टेक्नोलॉजी और वक्त के साथ हमारा लाइफस्टाइल बदल सकता है, बदल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा, वैल्यूज, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, इंसानियत, ये बड़ी कीमती हैं. ये ना बदलने चाहिए और हमें और आपको इन्हें और स्ट्रॉन्गली अपनी फैमिली में इनकलकेट करने की ज़रूरत है. हमें बच्चों को और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में स्ट्रॉन्गली बताने की ज़रूरत है. कैसे, ये आप बेहतर तरीके से डिसाइड करेंगे. फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इस सेगमेंट से इजाजत दीजिए. देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी. One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। आज हम ऐसे मसले की बात करेंगे जो कि हमारी प्लेटों में जो हम खा रहे होते हैं खामोशी से ज़्यादा हो रहा होता है, यानी वो खाने जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, जो कि फैक्ट्री में तैयार होते हैं, जिनमें

0: रंग, खुशबू, फ्लेवर्स और केमिकल शामिल होते हैं। ये हमारे खाने हमारे जिस्म को कई सालों में शदीद नुकसान पहुंचाते हैं, मगर हम में से ज़्यादा अफराद जो हैं वो इन्हें रोज़ाना खाते हैं। ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हैं, ये असल खुराक से बहुत मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि इसमें मशीनी प्रोसेसिंग होती है, इनमें मसनूई अज्जा शामिल किए जाते हैं और इनका मकसद ये है कि उन खानों को ज़्यादा मज़ेदार, देर पा और जल्द तैयार होने वाली खुराक बनाया जा सके। इसमें फ़ास्ट फूड है या जो फ्लेवर्ड मशरूबात हैं, एनर्जी ड्रिंक्स इसमें आती हैं, इसी तरह जो चिप्स है या निम्को है वो हो सकता है, प्रोसेस्ड मीट है वो हमें देखना है कि क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसी तरह ये जो प्रोसेस्ड फूड है वो हमारा वज़न ज़्यादा करते चले जाते हैं, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ख़राब कर सकते हैं, दिल के मसाइल हमारे सामने आ सकते हैं, शुगर और इंसुलिन का तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है और कैंसर भी इसमें बहुत ज़्यादा इम्कान आते हैं, क्योंकि इसमें मसनूई रंग इस्तेमाल किया जाता है, खुशबू ज़्यादा डाली जाती है, प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और लिसंस, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हमें देखना है। जैसे ही आप कोई पैकेट ख़रीदते हैं तो इंग्रेडिएंट्स पर ज़रूर देखिए, स्टेबलाइजर्स हैं, इमल्सिफायर्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, फूड कलर्स हैं और इस तरह हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, इस तरह की चीज़ें जो हैं आप ज़रूर देखिए। तो इससे बच हम ऐसे सकते हैं कि घर का सादा खाना सबसे बेहतरीन है, बाज़ार के जो बिस्किट हैं वो आप कम कर दीजिए, उसकी जगह खजूर और जो नट्स हैं और इस तरह आप उसमें अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय आप पानी इस्तेमाल कीजिए, लीमू पानी इस्तेमाल कीजिए, सिनेमन टी या फिर जिंजर टी आप शामिल कर सकते हैं अपनी ग़िज़ा में। और बच्चों के लंच बॉक्सेस में ख़ास तौर पर ध्यान रखिए जो प्रोसेस्ड फूड हैं वो ना जाएं, जैसे चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं और जूस जो हैं वो अगर देना चाहें तो कभी कभार दिए जा सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी खुराक है वो 70-80% जो है हमें कुदरती खुराक हमें लेनी है, जैसे कि दालें, सब्जियां, अंडे, फल और इसी तरह से हमें अपनी खुराक में इन्हें शामिल करना है। बीमारियां एक दिन में नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे जिस्म को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कमज़ोर करते चले जाते हैं, और अगर आज हम उनका इस्तेमाल 30-40% कम कर दें तो फिर बहुत सारे मसाइल जैसे कि मोटापा है, शुगर है, डायबिटीज़ है, जैसे दिल के मसाइल हैं, हमारा मेंटल हेल्थ है, वो भी हम उस तमाम जो मसाइल हैं उनसे दूर रह सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
1: Qatar National Health Strategy, Health for All, FM 107, Dil Se Desi.

करती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नियमत की जो कि ना सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है बल्कि जिस्म, दिमाग और दिल को भी सुकून पहुंचाती है, और वो है हंसी यानी लाफिंग। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर शख्स किसी न किसी परेशानी, दबाव या मसरूफियत का शिकार है। ऐसे में अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी और हंसी के चंद लम्हे शामिल कर लें तो उसके हैरत अंगेज फवायद हासिल हो सकते हैं। जब हम दिल खोलकर हंसते हैं तो दिमाग ऐसे कुदरती कीमियाई मादे खारिज करता है जिन्हें एंडोर्फिन्स कहा जाता है। ये हमें खुशी, सुकून और इत्मीनान का एहसास दिलाते हैं। जब आप हंसते हैं तो जहनी दबाव कम हो जाता है, जिस्म के मसल्स का तनाव कम होता है, सांस गहरी होती है और जिस्म को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है यानी बेहतर अंदाज में होती है, दिल कुछ देर के लिए मौसर तरीके से काम करता है। कई माहिरीन हंसी को कुदरती स्ट्रेस रिलीफ भी कहते हैं। हंसने से दिमाग का मुस्बत अंदाज फिक्र मजबूत होता है। जब इंसान खुश होता है तो मसाइल का बेहतर अंदाज में सामना कर सकता है, फैसले निस्बतन बेहतर करता है और दूसरों के साथ उनका रवैया भी खुशगवार रहता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि दिल खोलकर चंद मिनट हंसने के बाद इंसान ज्यादा पुरसकून महसूस करता है क्योंकि जिस्म में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स कम होने लगते हैं। तो लिसनर्स, मुस्कुराहट मुफ्त है मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये ना सिर्फ आपको खुश रखती है बल्कि दूसरों के दिल भी जीत लेती है।
3: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन इकराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। सभी इकराम, आज हम एक अजीम खुलुक पर गुफ्तगू करेंगे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अंसार के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा तो आपने उन्हें दिया, उन्होंने फिर मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दिया, यहाँ तक कि जो माल आपके पास था वो ख़त्म हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास मौजूद सब कुछ दे चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर मेरे पास माल हो तो मैं उसे तुमसे हरगिज़ बचा कर नहीं रखूँगा। ताहम याद रखो

0: इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र सबसे बड़ी नेमतों में से है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज हमें फौरन चाहिए, फौरी कामयाबी, फौरी दौलत, फौरी शोहरत। जब कोई मुश्किल आती है तो इंसान फिर जल्द मायूस हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि अपने इज्जत नफ्स की हिफाजत करो, लोगों से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा करो, जो मिला है उस पर कनात करो, और आजमाइश आए तो सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: FM 107 Time Check.
1: भाई मैं दोजख में जाऊंगा अगर ये कह दूं कि आज का दिन अच्छा नहीं है। कैसे कह सकता हूं यार, थर्सडे का दिन है, वीकेंड है, आज का दिन तो लाजमी अच्छा होता ही है और टाइम भी बिल्कुल परफेक्ट है। 4:01 और ये वो शो जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने चलते हैं। इस्तकबाल आप सभी का FM 107 के शो में।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का और ये शो द रिक्वेस्ट शो जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने चलते हैं। नंबर नोट कर लो 6662107 6662107। ये वो चाबी है जो आपके अपने मर्जी के गाने की चाबी या कहें गाने के ताले जो है वो खोल सकती है। बस 6662107 घुमा दो, कॉल ना लगाना। ये अंगूठे का काम है इसमें, इसमें आपको पूरे हाथ का काम भी नहीं लेना, कोई उंगली का। हाँ ये अलग बात है कि कुछ लोग होते हैं ना, वो बूढ़े बूढ़े से लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आ रहा था भैया टाइप कैसे करें, तो कीबोर्ड पे वो इंडेक्स फिंगर से काम लेते हैं। एक हाथ मोबाइल और एक हाथ में, फिर आता भी अब्बा जब्बा जब्बा ही है मैसेज।

0: कुछ यूनिक सा आता भी नहीं, ऐसा नहीं लगता कि कोई कुछ लिख रहे हैं वो, ऐसा लगता है कि वो उन्होंने गाली देने की कोशिश करी है लेकिन कुछ और आ गया अपने पास मैसेज। तो 4:03 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, अब बात कर लेते हैं थीम की। तो जो नए लोग हैं उनको बता दें, ये है द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपकी अपनी मर्जी के गाने चलते हैं बेस्ड ऑन द थीम कि आज की थीम क्या है। आज सिंगर के गाने प्ले होंगे, आज एक्टर के गाने प्ले होंगे, एक्ट्रेसेस के गाने प्ले होंगे, 90s के गाने चलेंगे या फिर नए जमाने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम तय करते हैं, लेकिन इनमें से आज कुछ ज़्यादा तय करने की ज़रूरत नहीं है। आज क्योंकि थर्सडे है, थोड़ा माहौल अच्छा बनाना है, इसलिए हाई बीट के लेटेस्ट हिट गाने, थोड़े ऐसे भी हो सकते हैं, थोड़े मोड़े स्लो या यू नो मोहब्बत वाले रोमांटिक सॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन हाई बीट के सॉन्ग लेटेस्ट हिट, यानी कि 2022-2020 के बाद के 21-22-23-24-25-26 भी ख़त्म होने को आया। तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो लेटेस्ट बहुत लोगों को पसंद हैं, लोग रेगुलर बेसिस पे इसे सुनते रहते हैं। मैं कुछ आपको यू नो ऑप्शन दे सकता हूँ, जैसे जवान मूवी का चले या ट्रैक है, उसके अलावा सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की का गाना है तुमसे बेहतर, है ना, फिर उसके बाद क्रू का गाना नैना बहुत अच्छा था, शो मी द ठम का ये भी गाना है, व्हाट झूम का ये भी आया था, और वो जिसमें मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई नहीं थी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें रणवीर और आलिया भट्ट है, है ना। तो ओवरऑल बहुत से ऐसे गाने हैं, कर गई चुल है ना, थोड़ा सा पुराना ज़रूर है, अब तो वो वाला हो गया कि यार कर गई चुल भी थोड़ा पुराना हो गया, अब ऐसा लगता है 90s का गाना हो गया भाई, इतनी तेज़ी से इतने सारे गाने आ जाते हैं पता नहीं चलता। क्वीन का गाना है, पठान का अगर गाना सुनना चाहते हैं, फिर ये जवानी है दीवानी का ट्रैक, वो थोड़ा सा पुराना हो जाएगा, लेकिन कोशिश करें 21-22-23-24-25 लेटेस्ट हिट अगर गाना आप सुनना चाहते हैं तो 666-22-107। तो चलिए शुरू करते हैं और आपके मैसेज से सबसे पहले शुरू करेंगे।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
0: हाँ जी, किसने किसने अपनी जिद कर ली है, और सबसे पहले शाम भाई का मैसेज है, सलाम का, वालेकुम अस्सलाम, और अस्सलाम वालेकुम भाई, सैयारा प्लीज, सैयारा का सैयारा गाना सुनना है, कौन सा सुनना है सैयारा, ऐसे तो बहुत से गाने हैं उनके, सैयारा तू तो बदला नहीं है वो तो सुनना है, सैयारा वो भी एक अलग ही भाई, बहुत ज्यादा पैसे कमाए थे लेकिन इसने सैयारा ने बहुत ही ज्यादा, सैयारा जो है मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल जाए, वैसे मिल जाएगा, ये क्या है कि नाम का मसला हो जाता है, सैयारा में SAIY है या SAY है ये एक अलग मसला है भाई साहब, ढूंढना है ना, टाइपिंग करना, सैया दिख गया है मुझे सैयारा तो यहाँ से दिख जाना चाहिए अब, डब्लू नहीं और आया कुछ यारा, देखा एक कोई गाना आया है SAIWAY, लेकिन डबल ए लगा के देख लेता हूँ मैं, हाँ डबल ए से आ गया है। अब कौन सा ट्रैक सुनना है ये आपको बताना पड़ेगा, सैयारा का सैयारा या फिर एक गाना था, एक था टाइगर का भी, अब बताओ कौन सा सुनना है, एक था टाइगर, हालांकि थोड़ा पुराना है, थोड़ा ज़्यादा ही पुराना है, 2012 का ट्रैक है वो, सैयारा का 2025 का ट्रैक फीमेल वर्जन है हमारे पास, और फिर यही फीमेल वर्जन अपन प्ले कर सकते हैं। तो पहला गाना अपने को मिल गया है, और ये रिक्वेस्ट किस भाई की है अपन देख लेते हैं, नाम रजमजान का नाम है, शायद मैं गलत कर पढ़ रहा हूँ तो माजरत मेरा भाई, बाकी मैसेज देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, टाइम भी बिल्कुल परफेक्ट है, और क्यों नहीं सैलरी जो आने वाली, आए हाय ये चेहरे की चमक यहीं से बनती है वो कहते हैं ना, वो पता नहीं क्या होता है, गल्फ जाता है अगला आदमी, इतनी धूप इतनी गर्मी होती है, लोग काले नहीं पड़ते, पता नहीं क्यों काले नहीं पड़ते, उल्टा गोरे हो जाते हैं, वो सैलरी की चमक है बाबू और ऊपर से थर्सडे आ जाए तो डबल चमक हो जाती है बिना फेशियल के, बिना रगड़म रगड़ाई के, बिना मुल्तानी मिट्टी के इंसान चमक रहा होता नहीं अच्छा सच बताओ, मुल्तानी मिट्टी किसने किसने लगाई है किन्ने लगाई है, बहुत लोग लगाते थे भाई, पता नहीं कहाँ किसने एक बार बता दिया होगा कि मुल्तानी मिट्टी से इंसान गोरा होता है, ले भाई गर्दन से लेकर मुंह तक सब पपड़ी पपड़ी हो रही होती थी, लोग लगाते थे यार दवा के चल खैर हम गाने की तरफ आते हैं, इधर उधर नहीं आएंगे। शेख इरफान अल कासमी ने ये मैसेज लिखा था, और उसके अलावा खादिम भाई का मैसेज,

अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, हैप्पी वीकेंड, गुड इवनिंग मेरा भाई। फिर दिलबर भाई का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई। सॉन्ग नेम ये वाला सॉन्ग नहीं प्ले हो सकता दिलबर भाई, लफ्ज़ों का थोड़ा कद्र करना जो है वो सीखा हुआ है अपन लोगों ने, तो इसलिए नहीं प्ले कर सकते। अस्सलाम वालेकुम भाई, हाउ आर यू। मैं बहुत अच्छा, हीरो भाई आप सुना कैसे हैं। अरुण अच्छा एंड लिटिल सिस नोरा है भाई, आई एम अल्बेटर, इंग्लिश चले भाई। आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे हैं, मसला मेरे ही साथ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं क्या है ना, मैं 12वीं के बाद मैं इंग्लिश पढ़ नहीं पाया भाई, और आपने जो मैसेज लिखा है इंग्लिश में वो PhD लेवल की है भाई, इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। है ना, मैं 12वीं के बाद मैं BA हिंदी ले लिया था मैंने। प्लीज प्लीज थोड़ा रहम करो भाई, PhD वाली मत लिखो। बाकी हम कोशिश पूरी करेंगे समझने की। आज न जन जमित्रत दूर, अच्छा हाँ ये भी एक गाना था बहुत ही बेहतरीन, रोटियां पकाए नाले मेरे गहने गाई, ओहो गहरा हुआ सलाम। पहले सारी मर्जी की चीज़ें लिख ली, फिर मोहम्मद फैजान को समझ में आया सलाम तो कर ही लेता हूँ वैसे। वालेकुम अस्सलाम। बाकी नाजा नाजा मैं ये गाना मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग नाम है। सबसे पहले ये शुरू कर देते हैं, पहले कम से कम इतना तो शुरू हो जाए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक गाना हम लेकर आएंगे। 666-22-107 यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी के गाने आने चाहिए, रिक्वेस्ट करते रहिए दिल से दही।

श्रेया घोषाल की आवाज में सैयारा मूवी का ये ट्रैक FM 107 पे सुना आपने हबीबी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। फिलहाल 4:12 स्टूडियो की घड़ी में जल्दी जल्दी बाकी के 3 गाने प्ले करते हैं और वो गाना मिल गया है जो पावधारिया का रिक्वेस्ट किया था एक भाई ने, तो 3 ये गाने अपने पास आ गए हैं। सबसे पहला गाना जो प्ले होगा वो पावधारिया का यही गाना है और ये रिक्वेस्ट किया था फैजान साहब ने रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद जो गाना होगा वो होगा तेरा फितूर जब से चढ़ गया है। किसी की याद में इंसान ये लिखता है और ये सुनना भी चाहता है। अशफाक मियां बनना चाहते होंगे नहीं, ठीक है। एहसान अली ने जो रिक्वेस्ट किया है वो गाना चलाना भी रिक्वेस्ट पे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये गाना असल में 2017 का बहुत ही ज़्यादा हिट सॉन्ग था और ये इतना हिट था कि 4 से 5 साल तक लगातार इसे लोगों ने सुना। एंड दिस सॉन्ग इज कामधेलन का काला चश्मा जचदा है। ये भी एक मसला है कि यार देखना पड़ेगा, ये वही वाला है कि किसी और ने गा दिया हो पता चला नहीं, तो हाँ ये वही वाला तीसरे नंबर पे है। ये तीसरे नंबर पे बीए हिंदी से रहा होगा लेकिन मैथ ठीक ठाक थी मेरी, हाँ प्लस माइनस पूरा आता था मुझे। फिलहाल सबसे पहले पावधारिया का ये गाना फैजान भाई के रिक्वेस्ट पे सुनते हैं और बाकी के जो रिक्वेस्ट हैं उस पर भी जरा वार्तालाप कर ली जाए। हिंदी देखो, देखा मैंने कहा था बीए से हिंदी किया जॉक्स। फिर सैम भाई ने कहा प्लीज प्ले चटनी सॉन्ग फ्रॉम धमाल 4। ये कौन कौन से सॉन्ग सुन रहे हो यार सैम भाई, ठीक तो हो। एक था टाइगर प्लीज सैयारा, अच्छा ये भी बहुत अच्छा गाना था एक टाइगर, अगर ये मुझे मिल जाता तो मैं ये प्ले करूँगा। फिर एक और ये गाना था और बहुत ही गजब का किसी ने कहा था अरिजीत सिंह का मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ये दर्द भरा सॉन्ग पता नहीं यार, कभी भी ना कोई सॉन्ग ऐसे होते हैं जो कितने भी ज़्यादा लिखावट से दर्दनाक भले हों, उस गाने के मायने हों, उसमें बहुत ही भयंकर वीडियो हो कि अरे यार बड़ा दिल दुख गया, लेकिन उसको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। और अरिजीत का पछताओगे वो वैसा ही गाना है, सुनने में आता है मज़ा, वीडियो देख लो तो तकलीफ होती है। तो वो गाना भी अपन प्ले करेंगे, लिस्ट हम तैयार कर रहे हैं। बाकी आपकी लिस्ट प्लेलिस्ट कैसी है वो आपके मैसेज करने पर ही पता चलेगी मुझे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ 666-22107 पे मैसेज भेजते रहो।

काम ढिलों की आवाज में गाना FM 107 पे काला चश्मा। हबीबी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। FM 107 पे एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का। 4:27 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और ये लाजवाब गाने आज का दिन ना बना दे, वीकेंड ना बना दे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यार कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहे होगे यार, बहुत दिनों से गर्मी चल रही है, इंसान रात को निकल नहीं रहा है, दोपहर में निकल नहीं रहा, तो क्या ऐसा लग रहा है कि कल थोड़ा मौसम ठीक ठाक रहेगा, निकलने वाला है? वैसे अभी तक है नहीं, मुझे याद है करीब पिछले हफ्ते कौन सा दिन था, मंगलवार ट्यूसडे का दिन था शायद, उस दिन मौसम सही था, मुझे लगा अब सही होएगा, क्योंकि मैं कहीं कहीं पढ़ भी रहा था कि मौसम अब धीरे धीरे सही होगा, बारिश की चांसेस है, बादल दिख रहे होंगे, तो मेरे को लगा यार हाँ हो सकता है। लेकिन अभी परसों हम क्रिकेट खेल के आए भाई साहब, जो जान निकली है भाई, ऐसा लग रहा था आत्मा सामने से कहेगी अरे चले भैया। वो तो अच्छा है रूह से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन रहता है कि अरे अभी रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, थोड़ा और रुक जाओ, लेकिन जान जो है वो एकदम से निकल जाती है। तो रात में थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इंसान जिंदा रह पाएगा, लेकिन कार के अंदर तो कहीं कुछ प्लानिंग वगैरह है, कहीं कुछ जा सकते हैं, बीच की तरफ जो जा रहे हैं तो भी वो भी बताया कि हाँ यार नहीं फजील भाई, बीच की तरफ जा सकते हो, वहाँ जिंदा रह सकते हैं, अपन शहर में तो जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि शहर में मुझे पता है कि ह्यूमिडिटी जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो जो सड़क से गर्मी निकल रही होती है ना उसी में इंसान की आधी जान निकल जाती है। ऐसा लगता है कि धूप से तो फिर भी हम जिंदा रह लेंगे, शाम को ज़्यादा मौत आती है। खैर बाकी अपन मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और लोगों के गाने भी बजाते हैं। बीप्राक और अरिजीत सिंह की आवाज़ में अगला गाना आ रहा है, और ये रिक्वेस्ट किया था रेहान साहब ने, और दिस सॉन्ग इज़ पछताओगे, बहुत ही उम्दा ये गाना है। बाकी फिर सेकंड सॉन्ग आ रहा है मोहित चौहान और तरन्नुम मलिक की आवाज़ में संयारा, और ये गाना है एक था टाइगर मूवी का ट्रैक। फिर उसके बाद आतिफ असलम की आवाज़ में सुनना चाहते हैं भाई कि कदीते हस बोल, हुसैन भाई की रिक्वेस्ट पे ये गाना है। और एक था टाइगर वाले कौन थे, नाम सलमान खान, अच्छा सलमान खान वाला लिखा है, नाम नहीं लिखा है इन्होंने, भाई नाम लिख दो तो मैं नाम भी ले लूँ आपका, क्योंकि आपने नाम नहीं लिखा है। बाकी आपका दूसरे नंबर पे सॉन्ग जो है वो आ रहा है। ये तीन गाने हो गए, फिर मुझे नहीं लगता कि वक्त इतना बचेगा कि अपन और भी गेम जो है और गाने प्ले कर सके, लेकिन गेम हो जाएगा और वो है पहचान कौन। 10 किलोमीटर भागे भाई, अच्छा वेदर है आपके हिसाब से, अच्छा वेदर है भाई, दाढ़ी कितनी खतरनाक बना ली है यार। यार मुझे ना वो एक तो थे कहाँ पर थे यार, मेरे को नाम तो याद है मुझे, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, अगर मैं दूर दूर से पहुँचा दूँ लोगों तक बात तो पहुँच जाएगी। अमेरिका में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, फिर इनको वहाँ पर रहने नहीं दिया गया था, फिर ये अपने इंडिया आ गए थे, है ना। हाँ हाँ वो आपने नाम लिख दिया उसी की उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। और वो ना नागपुर में भी उनका बहुत बड़ा बढ़िया सा हिसाब किताब है, अब तो नहीं है वो इस दुनिया में, लेकिन वो वहाँ रहते थे। फिर एक और जगह है पुणे में, वहाँ पर भी वो उनका ऐसा घर अभी भी बना हुआ है, जिनको पता उनको पता है किसकी बात कर रहा हूँ मैं बाकी इनके बहुत से अलग अलग जगह पे लोग फैंस जो हैं अभी भी मौजूद हैं। बिल्कुल वही लग रहा है, दाढ़ी इतनी बड़ी कर ली है आपने। बाकी इनका कहना है कि भाई अच्छा ये जो है इनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी है, आशुतोष इनका नाम है, और ये बहुत रनिंग करते हैं भाई, मतलब इस धूप में भी ये ऐसा नहीं है कि 2 किलोमीटर दौड़ लें और घर चले जाए, नहीं भाई 10 किलोमीटर, और ये भी है कि डेली इनको दौड़ना है, बगैर दौड़े इनका दिल मानता ही नहीं है। कुछ दिन पहले कई न्यूज़पेपर में, मेरे ख्याल में 2 साल हो गया, न्यूज़पेपर में इनकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी थी और एफएम 107 पे भी आ चुके हैं ये। 10 किलोमीटर से कम दौड़ते ही नहीं है भाई, इनका ये है कि 10 किलोमीटर तब जब इतनी गर्मी है, मौसम अच्छा हो जाएगा तो 50 किलोमीटर, ये है कि वो वाली बात होती है ना कि अरे इतना कम खाना लाए हो, इतना तो मेरे दांतों में फंस जाता है तो इनका वही है कि अरे 10 किलोमीटर ये तो कुछ नहीं है भाई साहब, सर्दी आने दीजिए, 50 किलोमीटर फिर 10 की तो बात ही नहीं होती है। बाकी और मैसेज पे बढ़ते हैं, ये है मैसेज हुसैन साहब का, ओ मचा दो धूम लगा दो, और मचा दो धूम लगा दो, बना दो माहौल, कहाँ पे खेलते हो भाई? भाई अलग अलग जगह पे, कभी अलग ग्राउंड, कभी अलग ग्राउंड, कभी कतर में एक जगह है, कतर फाउंडेशन का ग्राउंड है उधर, फिर UDST, अपना कहीं भी जहाँ पर मैच मिल जाए, हम भूखे लोग हैं, वो वाला होता ना कि बारबेक्यू कहाँ फ्री में मिल रहा है, हाँ चल रहे वो है कि क्रिकेट कहाँ फ्री में मिल रहा है, चलो चलो। खैर फ्री में नहीं, इस पर कभी और टिप्पणी की जाएगी। बाकी मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, और

हुसैन भाई, आपकी रिक्वेस्ट पे जो गाना आपने कहा है नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान, ये बहुत पुराना है, शाहिद कपूर वाला, लेकिन सुनना चाहते हैं ओ रोमियो का ट्रैक। और रोमियो का ट्रैक अगर मिल जाएगा तो चलाएंगे, मुझे नहीं लगता कि ये गाना ओ रोमियो का मौजूद होगा। फिर उसके बाद आरिफ भाई क्या कहते हैं, भाई आप अपना कोई पसंदीदा सॉन्ग बताइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके लिए। ये रहा नहीं जाता आरिफ भाई ने, अरे भाई आप अपनी मर्जी का गाना बताओ यार। मैं अगर ये कर दिया ना कि मैंने अपनी मर्जी से गाना प्ले कर दिया, सामने कोड़ा लेकर तैयार बैठा हुआ आदमी। देखो ये कोड़ा मैन जो है ना, वो मैं ऐसा सरकैज़म में इस्तेमाल करता हूँ। असल में कोड़ा मैन कौन है, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, अभी पोगो आ रहा है ठीक है। इनकी रिक्वेस्ट है, हमारा प्यार हमारा अमर रहेगा। भाई इतना पुराना गाना, मैं अमर नहीं रह पाऊंगा फिर ठीक है। मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं चांदनी आतिफ असलम का मूवी ट्यूबलाइट, अगर मुझे ये गाना मिल जाता है तो प्ले करूंगा, लेकिन बाकी तीन गाने हमारे पास ऑलरेडी तैयार हैं। कोशिश करेंगे कि इन सारों में से एक तो कोई गाना जो है आखिर में जाते जाते ही सही, लेकिन प्ले जरूर करूं। फिलहाल बी प्राक और अरिजीत सिंह की आवाज में पछताओगे, आपके लिए दिल से देसी।

0: सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

तो मैं इंसान अच्छा हूँ, वरना तीन दिन पहले आतिफ असलम को प्ले किया था मैंने। अरे मतलब उनके गाने प्ले किए थे यार, हर एक बात पे आ जाते हो। फिलहाल 4:46 हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त आ गया है कि पछताओगे के बाद बाकी के गाने सही आ रहा और कर दी तो हंस बोलिए सब प्ले करने के बाद। अब गेम पहचान कौन की तरफ हल्लू हल्लू बढ़ता हुआ, तो बाकी लोगों की रिक्वेस्ट देखो यार प्ले नहीं हो पाई माजरत के साथ, क्या करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, टाइम निकल जाता है और आप लेट हो जाते हैं। बाकी जो मैसेज दौड़ के लिए करा था, गुड टू हियर यू फजल भाई, कीप गोइंग अमेजिंग वर्क, आई एम लिसनिंग कॉज आई एम गोइंग टू नाइट शिफ्ट। ओके मेरा भाई, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आपके लिए एक मैसेज आया है, कहते हैं क्या फ़ायदा इतना दौड़ के जब रनिंग खत्म होने के बाद पता चले कि घर से 20 किलोमीटर दूर है और फिर कैब करके घर वापस आना पड़े। रेहान साहब, इंसान जो है इस दुनिया में गलती के लिए ही आया है, बहुत पाप किए हैं मैंने भी, इतना ज्यादा पापी आदमी तो मैं नहीं हूं यार। अगले आदमी को अप्रिशिएट करो भाई, ये गलत बात है यार। लेकिन वैसे ये मेरा सवाल है भी यार आशुतोष भाई, इतनी दूर दौड़ने के बाद वापस कैसे, फिर से दौड़ के वापस या 5 किलोमीटर उधर 5 किलोमीटर वापस, ऐसा वाला 10 किलोमीटर, ये भी एक सवाल है भाई। बाकी उस्मान भाई ने रिक्वेस्ट किया, उस्मान भाई सॉरी, आसिफ भाई आपको बड़ा वाला सॉरी, दिल दिया गल्ला, तो देखो मैं कसम से मैं जिद पे आ गया, दिल दिया गल्ला काहे के लिए यार, कितनी बार सुनोगे, कितनी बार प्ले हो चुका है। कहते हैं आपका नाम भी रजिस्टर में चढ़ा दिया, कौन सा वाला रजिस्टर, ये कोड़े मैन वाले में या फिर वो वाले में कि ये आदमी जिस दिन मिल गया उस दिन इसको जो है मुलाकात करवा देंगे 72 लोग। लेट्स चेंज द टॉपिक दोस्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम फजल भाई, कैसे हो, हैप्पी वीकेंड। प्लीज मैं चाहता हूँ आज आपकी पसंद का कोई सॉन्ग। यार मैं किसी दिन अगर ये कर गया ना फैयाज भाई, सामने कोड़ा लेके जो आदमी बैठा है वो मुझे कोड़े से मारेगा। और मालूम है कोड़ा तो कोड़ा भाई, वो अलग से एक तो चमड़े का कोड़ा है भाई, चमड़े का कोड़ा और कड़वा तेल लेकर बैठता है वो आदमी, सटाक से लगेगी और फिर कोड़ा खराब भी नहीं होगा, लंबा चलेगा। ठीक है, तो मैं 3 महीने में एक दिन भी यूज जो है वो नहीं होने दिया है, एक दिन होने वाला था वो तो यूसुफ भाई ने बचा लिया मुझे। तो मैं बच गया था। फिर उसके बाद और वो देखो एक और मैसेज आ रहा है, वो भी कांटे वाला कोड़ा लिखा हुआ है आसिफ आलम ने, कांटे वाला नहीं है भाई, वो कोड़ा बहुत जोर लगता है, खून खराब

0: नहीं कर सकते, कोड़ा मारिए निशान पड़े बस, और तेल लगा तो निशान भी नहीं पड़ता, तो मैं सबूत लेकर जा भी नहीं सकता ना
1: कि मेरे को मारा इन्होंने,
0: मैं ये भी नहीं कर सकता फिर मैं तो बहुत बच के रहता हूँ, अपने मर्जी का गाना नहीं प्ले करूंगा। अदिल भाई ने सलाम लिखा, वालेकुम अस्सलाम। अब जल्दी से मैसेज की तरफ आते हैं, सॉरी गेम की तरफ आते हैं, क्योंकि मैसेज अभी और भी हैं, कई मैसेज छूट जाएंगे, माजरत मेरा भाई। जिनके मैसेज छूट गए हैं भाई, तुम लोग कोड़ा ना तैयार कर लेना, किसी दिन पता चला कि अरे इससे बच गए, दूसरों से खा गए वैसे आज के बाद मेरे पास सिर्फ दो दिन है कि मैं ये रिक्वेस्ट शो जो है उसमें आऊंगा, लेकिन फिर उसके बाद 6 से 7 अपनी शाम की टाइमिंग हो जाएगी, और शाम को 6 से 7 अपन मिलेंगे अनप्लग्ड इवनिंग में, जहां पर एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक पर फिर भरपूर बातें करेंगे, उस पर कॉल पर भी बातें होंगी, व्हाट्सएप पर भी बातें होंगी, और खत का जमाना जो खत्म हो गया वो एक बार फिर से वापस आएगा। इनको याद है, उनको याद है कि खत का जमाना भी हम लेकर आए थे इसी FM 107 पे, यहां पर आप खत लिखा करते थे, वो खत एक बार फिर से वापस आएगा। लेकिन आज की बात कर लेते हैं, पहचान कौन की बात कर लेते हैं। पहचान कौन एक ऐसा गेम जहां पर आपको गाने सुनाता हूं, और ये बीच से कहीं से भी लिरिक्स जो है वो काट के मैं गाना सुनाता हूं, और आपको गाने का नाम बताना होता है या फिर हुक बताना होता है। तो आज का जो 3 गाना है वो तीनों का तीनों ऐसा नए जमाने का गाना है। अभी आप बताओ कौन सा वाला आपको पता है, ठीक है। सबसे पहला जो पहचान कौन का गाना आ रहा है वो है ये।

देखिए होता क्या है कि आज वीकेंड है, मजे का माहौल है, आपकी मर्जी के गाने प्ले हो गए, लेकिन क्या है कि ऊपर वाला जो है कहीं ना कहीं एक चीज ऐसी रख देता है कि आपको खुशी की वैल्यू ज्यादा करनी पड़े, फिर खुशी की वैल्यू बढ़ जाए। तो ऐसे में मैंने आज जानबूझ के टफ गाने टफ गाने रखे हुए हैं। तो अब आप टेंशन में रहेंगे बाकी पूरा जो तीन दिन का वीकेंड चलेगा ना, थर्सडे फ्राइडे संडे, कि यार पहचान नहीं पाया, यार गलती हो गई मुझसे, गाना मैंने सुना नहीं, तो मैं जानबूझ के टफ ले गया हूँ। तो जब चार चीजें अच्छी हो रही हो तो एक तो कुछ टफ हो, एक तो जिंदगी में जो है परेशानी आए, आप भी अपनी मर्जी का कोड़ा तैयार करो। गाने का नाम बताना है और मुझे पता है कई लोग इस गाने को चश्मे बद्दूर कहेंगे, लेकिन ये गाना वो नहीं है। सबसे पहले जो फंसे वो रेहान साहब ही फंसे इसमें। और सबसे पहली रैंकिंग क्या है उस पर नजर डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, गुड इवनिंग। चलिए क्रिकेट, अरे इकबाल साहब कह रहे हैं क्रिकेट के लिए, अरे क्रिकेट कहाँ यार, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है और अब मैंने दूसरी टीम ज्वाइन कर ली है भाई दवे। हाँ भाई, फलक ने सबसे पहली रैंकिंग हासिल कर ली है आज के इस गेम में। और फिर एक बन, अच्छा ठीक है, वो मैं सोचा बैन लिखा हुआ है इन्होंने। जीशान ने बिल्कुल सही जवाब बताया, दूसरी रैंकिंग हमें मिल गई। और हुसैन भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया, तीन रैंकिंग तो बिल्कुल सही, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमें मिल गए। इलियास भाई चौथे नंबर पे हैं सही जवाब के साथ, हिशाम भाई ने सही जवाब दिया है, आसिफ ने सही जवाब दिया, वो मूवी का नाम भी पता है, खिलाड़ी तो हैं यार। फैयाज भाई भी कहते हैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये वर्ड ज़रूर इस यू नो गाने में इस्तेमाल किया गया। इमरान खान ने लेट रिप्लाई, आई एम ऑन ड्राइव, कोई मसला नहीं है भाई, इंसान को सिस्टम में रहना चाहिए, सिस्टम से बाहर नहीं। तो आपने सही जवाब तो दे दिया, थोड़ा लेट हो गया, कोई नहीं, इमरान का सही जवाब। मोहम्मद आसिफ ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही उम्दा। फिर उसके बाद ये कौन शख्स है, मंदीप साहब ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अच्छा एक और मैसेज आया है, इनने कहा है भाई कोड़े से याद आया कि मैं मुंबई में रहता था, करीबन 10-15 साल पहले की बात है, तो कुछ लोग आते थे पैसे मांगने वाले, तो वो अपने आप को कोड़े से मारते थे, बहुत तेज आवाज आती थी। अरे हाँ ये जल्लाद वहीं से तो लाया गया भाई, हाँ इंडिया से हायरिंग हुई है वीजा देके। सैलरी इस बात पे बनती है कि कितने कोड़े मार, आरजे ने क्या गलती करी है, कितने कोड़े मारना है। बाकी ये बात तो सही है, इंसान जो है इतनी तेज कोड़े की आवाज आती थी डर जाता था, तो डर में पैसा देते, ले भाई कितना रुपया कुछ ले ले भाई। लेकिन ये जो हमारे वाले हैं ना, ये वो वाले हैं कि दूसरों को मार रहा है, खुद को नहीं। अलग अलग है बाकी। तो ये गाना एक बार फिर से सुनो, देखो क्या है, आप लोगों की बातों में इंसान आगे निकल आता है। वेल, काफी लोगों ने सही जवाब बताया है और गाने का नाम है तितली, जो कि गोपी सुंदर और चिन्मयी श्रीपदा ने गाया है।

एक भाई ने सिर्फ ये लिखा है कहीं दूर गाना पहचानूं अब तो ठीक है, कहीं दूर भी मैं मान नहीं लेता क्योंकि इसमें लाइन है भी है ना। लेकिन अब दूसरे सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं पहचान कौन के इस गेम में, और दूसरा सॉन्ग है ये।

फलक एजहार के बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि नंबर वन पे आ जाएं, और आज वो वक्त आ गया कि नंबर वन पे आ भी गए हैं, और दो गाने बिल्कुल सही टाइम पे और जल्दी बताएं। फलक एजहार के पहले नंबर पे हैं, फिर उसके बाद मैसेज है किसका, हुसैन भाई गलत जवाब है आपका। हुसैन भाई आपने अगर सही जवाब दिया होता तो दूसरे नंबर पे होते, लेकिन अभी आसिफ आलम दूसरे नंबर पे आ गए हैं, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब बताया है। उसके अलावा ये बिल्कुल मूवी का या हीरोइन का नाम सही है, इलियास ने भी सही जवाब बताया है, हिशाम ने सही बताया है, फिर रेहान ने गलत बताया है। रेहान भाई क्या हो गया यार। फिर जीशान ने सही बताया, एक और शख्स है इनका नाम आसिफ, मोहम्मद आसिफ, ये दूसरे वाले आसिफ है, उन्होंने सही बताया। इमरान खान ने, इमरान भाई स्पेलिंग गलत हो गई लेकिन ठीक है, मैं जज्बात को भी नंबर दे रहा हूँ आज। आसिफ ने बिल्कुल सही जवाब बताया है, और ज़रा फिर से सुना दे। ओके।

अशफाक भाई ने पहला अल्फाबेट जो है वो गलत लिख दिया, बाकी सही जवाब है। तो दोस्तों इस गाने का जवाब मैं अलग तरीके से बताना चाहूँ, मोस्टली लोगों ने सही जवाब बताया और गाने का नाम वो है जब बच्चा स्कूल से आता है और देखता है अम्मी घर पे नहीं।

तो ये गाना है यमी यमी और टेसी और श्रेया घोषाल ने इस गाने को गाया है। बाकी अब तीसरे गाने की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा गाना पहचानिए और ये तो भयंकर आसान है यार, मतलब भज्जर वाली बात है, भज्जर आसान है।

पास। गाने का नाम बताओ 666-22107 पे। और फाइनली बहुत दिनों बाद फलक एसआर के पहले नंबर पे आ गए रैंकिंग में, क्या बात है, बहुत ही उम्दा। फिर एक गलत जवाब की वजह से दूसरे जो रैंकिंग पे आ सकते थे वो नहीं आ पाए, इनका नाम है जीशान कि आ गए नहीं यार, हाँ सॉरी दूसरे नंबर पे आ गए, क्योंकि पहली लाइन मैंने आपकी जो पहला आंसर है ना वो गलत पढ़ लिया था, लेकिन दूसरी रैंकिंग पे आ गए, क्या बात है जीशान भाई, बहुत ही उम्दा। फिर उसके बाद तीसरी रैंकिंग भी तय हो गई है और मुझे लगता है कि नहीं यार फयाज भाई, यार आपका नाम आ जाता थोड़ा लेट कर दिया। हुसैन क्या कहते हैं, हुसैन पहला अगर आप सही जवाब बताते तो मैं सोच सकता था, लेकिन सॉरी पहला तो आपने बताया, दूसरा नहीं बताया, हाँ दूसरा नहीं बताया, माजरत। फिर एक और शख्स है, इनका नाम है मोहम्मद आसिफ, और आसिफ ने पहला सही बताया, दूसरा ऑडियो में अगर बताया तो पता नहीं क्योंकि मैंने ऑडियो तो नहीं सुना है अभी, लेकिन कोई मसला नहीं है भाई, आप पीछे रह गए। इलियास कहीं तीसरे पे तो नहीं आ गए, अरे क्या बात है इलियास भाई आ गए तीसरे पे, अरे मुबारक हो इलियास साहब। देखो दो लोगों ने गलत जवाब दिया इस वजह से तीसरे नंबर पे आ गए, बाकी हुसैन ने, इलियास ने, इमरान ने सही जवाब दिया। यार थोड़ा और जल्दी कर देते हैं, इमरान भाई पहले नंबर पे आ जाते। बाकी फिर एक और ये मैसेज किस भाई का है, मंदीप ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत ही गजब का खेल का मुजाहरा करते हुए। इसी के साथ मोहम्मद अशफाक ने भी सही जवाब दिया है, रेहान साहब ने भी सही जवाब दिया है, हिशाम ने भी खेल का मुजाहरा सही किया है, और दिलबर ने कहा है कि अरे दिल तो हमारा बड़ा सही जवाब। पुराने खिलाड़ी भी इस गेम में आते हुए, और जीशान ने कहा है अरे हम हैं ना इधर ही। फयाज भाई ने थम्स अप ओके, और इमरान ने कहा है कि पुराने चावल हैं थोड़ा बस कार चला रहे हैं। गाने का नाम है बहुत ही फेमस बेनी दयाल और शेफाली का गाया।

0: Ewa Bottomizdil.
1: ये हमारा कोड़े वाला जो आदमी है ना, उसका भी दिल, उसको पता है मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामने बैठा हुआ है कि मारूंगा मैं तो इसको अगर गलती कर दिया इसने, तो कोड़े वाले आदमी से मैं बचा हुआ हूँ दोस्तों। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को हैप्पी वीकेंड कहो, कहो कि एंजॉय करो फजील भाई, सारा टेंशन दूर रखो। ये टेंशन में कुछ नहीं रखा इंसान की, इंसान का असली जो कोड़ा है ना भाई, जो जिंदगी में लग रहा है वो टेंशन ही है, वो सोच में ही है। फजील भाई कोई टेंशन मत लिया करो, ये लिख दो भाई। और टेंशन किस बात की पता है कि यार स्कोर नहीं हो रहा है क्रिकेट में। बहुत दिन हो गए, बाकी 4:59 और इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात संडे को, संडे को शाम के एग्जैक्ट 4 बजे, संडे और मंडे आपको 4 बजे मैं मिलूंगा, उसके बाद फिर ट्यूसडे, संडे और मंडे, हाँ फिर ट्यूसडे से अपन 1 सितंबर से मिलेंगे आपको एग्जैक्ट शाम के 6 बजे अनप्लग्ड इवनिंग के शो में। तब तक अपना खास ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: अरे टाइम टूम का बेरा को नहीं भाई, मैं न्यू कर रहा था आलिया वीकेंड। 5:01 हो गए, मतलब 2 मिनट हो गए।

शाबाश शाबाश जो जो आ गए हैं व्हाट्सएप पे 666-2107 नंबर है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे भाई बहनों को, मैं FM 107 पे आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर हूँ जी। लट काट देंगे, बिल्कुल मौसम बना देंगे, जमा जह जोड़ा देंगे। तो आज ऑब्वियसली वीकेंड शुरू हो गया, थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि मुझे कहानी नहीं ढूंढनी होती। आपको क्या लगता है मैं वीकेंड के इसलिए खुश होंगे छुट्टी मिल गई? नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये होता है मेरे लिए बिल्कुल स्कूल की तरह से। तो मुझे दो दिन कहानी नहीं ढूंढनी होती, संडे की पहले से ढूंढ के रख लेता हूं। सो आई एम वेरी कंटेंटेड। तो मेरी खुशी जो है वो इसलिए नहीं कि छुट्टी है, वो इसलिए कि चलो पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी।

तो इसलिए ये मैं आपको रीजन बता दूं, ढोल बजाने का भी यही रीजन होता है. ओके तो व्हाट्सएप 666-22107 रिजवान भाई वालेकुम अस्सलाम. और मैसेज क्या है, मलिक वकास साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, क्या हाल है, हैप्पी वीकेंड, गुड इवनिंग. बाकी कल वाली स्टोरी ने मेमोरी रिफ्रेश करा दी, क्योंकि 2011-17 तक मैं साउथ इंडियन कंपनी दुकान में जॉब करता था, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी कल. उस फ्लाइट में हमारी कंपनी के दो स्टाफ ट्रैवल कर रहे थे दोहा टू कोचिन. अच्छा, ओ बाप रे. और आपने जो स्टोरी सुनाई, सेम उन्होंने किस्सा सुनाया था हमें, लेकिन डिटेल में बताया सारे फ्यूल और वेदर एक्सेट्रा. वो दोनों बताते हैं कि हमने ऑलमोस्ट जहन बना लिया था कि अब नहीं बचेंगे, गॉड नोन बेटर. और 6 महीने बाद एक्सीडेंट. अच्छा, ओके, ड्यू टू दिस प्लेन इंसिडेंट. लेकिन बाद में वापस आए, लेकिन बाद में उसको फ्लाइट फोबिया हो गया था, वो बंदा अपने हिसाब किताब के लिए जान करके वापस चला गया. अरे यार, हाँ मैं वही सोचा था, मैंने कहा कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने वो फ्लाइट बोर्ड की होगी जो कोचिंग की तरफ गई होगी. बस थैंक यू सो मच फॉर दिस. काशिफ भाई वालेकुम अस्सलाम, जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम, हैप्पी वीकेंड. आसिफ भाई लिखते हैं वालेकुम अस्सलाम, अरे सिक्योरिटी गार्ड कहाँ चले गए थे छोड़ के, वो बुलावा आया था मालिक. फलक साहब कहते हैं वालेकुम सलाम, हैप्पी वीकेंड. और एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, बढ़िया दिलवर भाई, क्या हाल है भाई के. और एक मैसेज आया है, अस्सलाम वालेकुम भाई, हम 4 बजे से ही आ गए, मैसेज देख लीजिए मेरा भाई, बहुत सारा प्यार भाई को. रियान भाई कैसे, क्या चल रहा है, 4 बजे से कैसे आ गया जब. कादिम साहब वालेकुम अस्सलाम, गुड इवनिंग. और इकरम साहब वालेकुम अस्सलाम लिखते हैं, गुड इवनिंग भाई, देखो कौन आया, चॉकलेट भाई कहते हैं मुझे, चॉकलेट हीरो लगता होगा. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं भी आ लिया मेरा भाई, क्या चल रहा है मोहम्मद आसिफ भाई, क्या चल रहा है. और मज़े ले लो वीकेंड के, कैसे हो भाई, मिस यू. आज किधर की फ़्लाइट है, नहीं भाई आज किधर की भी फ़्लाइट नहीं, बताता हूँ आज क्या है. और करण भाई वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, हाउ आर यू डूइंग टुडे. और सैयद हसन साहब ने मैसेज किया है, कल पहली मरतबा मैसेज किया था, दूसरे मैसेज, लॉन्ग लिव कबीर भाई, भाई और यू ऑल्सो लॉन्ग लिव मेरी जान. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, और बहुत सारा प्यार भाई को, हसन रज़ा साहब को. इनके बाद हिशाम साहब वालेकुम अस्सलाम, अमार साहब वालेकुम अस्सलाम, और आसिफ असलम साहब को वालेकुम अस्सलाम, सबको कह दिया मैंने बढ़िया तरीके से. हम भी आ गए भाई, क्या हाल है भाई के. हुसैन भाई बढ़िया चल रहा मेरा भाई. और एक और मैसेज आ लिया भाई, ये हैं हैदर भाई, हैदर भाई वालेकुम अस्सलाम. उस्मान औरंगजेब साहब, और ये दिन ही नहीं गुजरता आपके बगैर मेरा भाई. भाई को ए इनकी प्लेट, इनके टेबल पे लगाओ 2 बड़ी रोटी नारी भाई, और कुछ खाएंगे हैदर भाई. और एक और मैसेज भाई, 4 बजे आपके इंतज़ार में थे, और फजील भाई को सुन लिया, दिन बन गया आपका भी. हसन रजा को बोलें, एक मैसेज आया है साकिब भाई का, वो कह रहे हैं खादिम साहब को बोलें भाई की ट्रीट दे दो. अरे खादिम भाई ट्रीट दे दो यार, यहाँ मैसेज आ रहे हैं अब. और आगे लिखा है सैयद हसन रजा को बोलें कि सिगरेट कम करें. और लिखा है लव फ्रॉम साकिब. साकिब भाई आप ज़्यादा हिटलर गिरी नहीं कर रहे. और एक मैसेज है बताइए, और फज्जू भाई का भी तो मुन्ना भाई होता है प्रोग्राम, मैं समझा नहीं. और क्या, एक रोटी मेरी भी लगा दो, एक रोटी इनकी भी लगा दो दिलबर भाई की, हल्की सी सेक देना, हल्की सी सेक देना. एक और मैसेज है, कल वाली कहानी भेज दें कबीर भाई. कल वाली कहानी आपको नहीं मिली, क्या बात करो यार, कल वाली कहानी तो मैंने सबको भेजी है भाई. ऐसा फॉल्ट तो मेरे सिस्टम में हो ही नहीं सकता भाई. फिर भी चलो हो गया होगा तो कोई बात नहीं भाई, भेज देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. ये 3 रोटी कह रही हैं सऊदी अरब, सऊदी अरब कैसे भिजवाएं हम आपको 3 रोटी, मजाक चल देखो. मोहसिन भाई कह रहे हैं सऊदी अरब तक भिजवा दो भाई, ठंडी हो जाएगी. खादिम भाई ये लूपर ग्रुप है, ये लूपर ग्रुप क्या होता है अब. और एक मैसेज है भाई, 1 चिकन और 2 रोटी मेरी भी. ढाबा ही खोल लेता हूँ ना मैं, आइडिया वैसे बुरा नहीं है काशिफ भाई, ढाबा खोलने का आइडिया बुरा नहीं है. एक और आए मेरी प्लेट लगवा देंगे, अभी सबकी प्लेट लगवाता हूँ इस भाई. फजील भाई क्या हम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा था. फजील भाई कोड़े कर रहे, क्या कर रहे थे, कोड़े कोड़े कर रहे थे हम. आसिफ भाई एक तो आप ना मेरे, ये मेरे साथ और दिल्ली वालों के साथ रहना बंद करो, मैं आपको बताऊं, ठीक है. प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम है. एक मैसेज भाई, 1 पतली रोटी और 1 दाल मांस है भाई. शुभाग भाई वालेकुम अस्सलाम. अच्छा मैं बता दूँ आज की कहानी क्या है. तो आज जिस शख्स की मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ रहे हैं आप, मगर फिर भी आप इसको नहीं जानते. यही है भाई कहानी के बारे में, मतलब आज इसकी बात कर रहा हूं, इसको आप जानते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, लेकिन फिर भी आप इस बंदे को बिल्कुल नहीं जानते. और आज मैं उसी की कहानी आपको सुनाने वाला हूं, ठीक है. तो 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलना भाई, 666-22107.

0: 107 पे, और जिस हिसाब से मामला चल रहा है भाई, ढाबा खोलना पड़ेगा. क्या है साकिब भाई और सैयद हसन रजा लोफर ग्रुप, ये लोफर ग्रुप क्या है, अब किधर बना हुआ है ये? क्या मेरे लिए मटन चॉप्स के साथ मंदी राइस और उसके ऊपर नहारी के 2-3 पीस मारकर, ज्यादा लाड में नहीं आ रहे लोग. यहाँ आदमी जो है नूडल खा के आया है आज जल्दबाजी में, और इनको नहारी खानी है. नहीं दूंगा. छोटू सबके टेबल से प्लेट खींच ले बेटा, जब तक कहानी नहीं सुनेंगे ना कुछ नहीं मिलेगा. गुड इवनिंग कबीर भाई, आई एम प्रेजेंट हियर. हाँ उठा लो, उठा ले सबकी, हाँ उठा ले टेबल से. मिलते हैं 11 मिनट 2 सेकंड के बाद, फिर बात होगी. ठीक है, जाना नहीं आपने, नहारी लगा दो.
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का अहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं. आइए समाअत कीजिए शाम के अजगार FM 107 पर.

अभी भी प्लेटें लगवा रहे हैं ना, दो तंदूरी रोटी एक चिकन कढ़ाई लगा देना प्लीज। ये अरबाज भाई कह रहे हैं कि भाई भाई टॉक्सिक मूवी नॉट गुड। हीरो भाई वही मैं कह रहा हूँ लोगों से। दुर्गा नैन साहब वालेकुम अस्सलाम, और हम तो फैन है आपके अशोक भाई। अशोक भाई नहीं यार, भाई बोलो यार, फैन वैन यार बहुत भारी वर्ड है यार, उसमें गैप आ जाता है। भाईचारा ऑन टॉप मेरी जान। वाली वक्त सब कह रहे हैं FM सुनना ही मैंने शुरू किया था जब आप मॉर्निंग में शो करते थे, और एक मैसेज आया वो तो है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत सारा प्यार भाई को। ये वकील भाई ने मैसेज किया है। और हुसैन भाई क्या पूछ रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है, ये बताओ आपकी टाइमिंग। भाई 1 सितंबर से टाइमिंग चेंज हो जाएगी, सुबह की टाइमिंग हो जाएगी 6 बजे वाली। आई नो ये खबर मतलब मुझे देते हुए खुद को भी तकलीफ हो रही है, मगर दैट इज जस्ट अ फैक्ट। 3-3 महीने का रहता भाई हमारे यहाँ, ड्यूटी चेंज होती है भाई। क्या ड्यूटी खाली खली वली बाहर में जाके वीकेंड एंजॉय करते हैं। ओके क्या क्या आप हो टॉक्सिक मूवी? भाई मैं क्यों टॉक्सिक मूवी होता? नहीं भाई मैं कहीं नहीं हूँ। और एक भाई कह रहे हैं कि भाई ना करो भाई, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बॉस ने बोला करने का तो करने का भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, ठीक हो गया आप, ड्राइविंग स्टार्ट हो गया, अटेंडेंस लगा दो भाई, बहुत सारा प्यार। क्या ये जो है सैम भाई, सैम भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक हो गया, चलो। और एक मैसेज है भाई, टाइमिंग चेंज मत करो वकील भाई।

मेरे हाथ में सच में नहीं है मेरी जान, मैं तो शाम में ही रहूं हमेशा। टॉक्सिक मूवी में जो सॉन्ग है ना वो आपने गाया है। हाँ हाँ सही जा रहे हो। मैंने तो ये सारी फरमा दी, कहेंगे ये इमरान हाशमी सर को देख के करवाना चाहिए था ये मूवी। हाँ मतलब मूवी भाई, मूवी में कोई भी किसी को पीट रहा है भाई, कोई भी किसी को पीट रहा है अपनी मर्जी से भाई, बढ़िया तरीके से। वैसे भाई आपका शो का थीम सॉन्ग का वॉइस क्या आपका है? जी भाई ये जो थीम सॉन्ग है मेरी आवाज़ है, ये हैंडसअप होगी सबकी तलाशी, ऐसा कोई ना जो बच पाए, बाकी मैंने गाया भाई। और कबीर भाई बहुत दिन बाद आपका डायलॉग ये सुना था। थैंक यू। मॉर्निंग शो कैसे सुनूं, 1 PM से 1 PM ड्यूटी है। आई नो यार, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ भाई, आई रियली विश के नहीं होता ऐसा, बट दैट्स हाउ इट इज़, कुछ कर नहीं सकता भाई। मेरे इंडियन सर्वर भाई ने लगा दी। सर्वर भाई, अरे सर्वर भाई भी तो आ गए ना, 3 महीने से मॉर्निंग शो सुना नहीं है। वालेकुम अस्सलाम तनवीर भाई, अब सुन लेना है। भाई का बोलने का मतलब ये है कि अच्छा अब ज़रा मैं शुरू करता हूँ आज का जो किस्सा है। देखो जैसे मैंने कहा कि आज जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बंदे के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, मगर फिर भी इस बंदे की कहानी आप नहीं जानते हैं। और जब कहानी जान लेंगे ना तो आपका नज़रिया इसे देखने का पूरा बदल जाएगा। कहानी थोड़ी सी अलग है, इट्स अबाउट वन ह्यूमन, ठीक है? तो आई होप कि आप तैयार हैं, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली समथिंग एल्स, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ। ओके सबसे पहले तो हम डिस्क्लेमर देते हैं, कहानी का मकसद किसी की जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है, कहानी किसी किस्म के एजेंडे प्रोपेगेंडे को प्रमोट नहीं करती है, FM 107 किसी भी किस्म के सुपरस्टिशन को ना तो बढ़ावा देता ना ही कभी देगा। लेकिन अब वक्त है उस किस्से का जो एकदम असली है और उतना ही ज्यादा वियर्ड है। वियर्ड नहीं है मगर होगा जब आप जानेंगे मैं किसकी कहानी सुना रहा हूं, ठीक है? तो जरा वॉल्यूम बढ़ा वाली जॉय। तो मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, और आज का जो किस्सा है मैं इसको बिल्कुल शुरू से सुनाऊंगा, बिल्कुल शुरू से जड़ से। तो मैं आपको आज का किस्सा सुनाने के लिए ले चलता हूं कई साल पीछे, इन द ईयर 1987, सिलिकॉन वैली। दरअसल हो ये रहा था कि दुनिया भर में कंप्यूटर्स लोगों के हत्थे चढ़ रहे थे, सबके सब जिनके पास पैसा था वो कंप्यूटर्स अपने घर पर ला रहे थे, और बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए अब कंप्यूटर्स पे आ रही थी धीरे धीरे। दिस वॉज स्टिल द टाइम जब अभी स्लोली प्रोग्रेस कर रही थी टेक्नोलॉजी। ऐसे में एक बंदा जॉन मैकेफी 12 लाइन का एक कोड लिख रहा था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि पर्सनल कंप्यूटर दुनिया में बढ़ रहे हैं, और उसने ये भी नोटिस कर लिया था कि साथ में वायरसेस भी बढ़ रहे हैं। तो पहला IBM का ब्रेन वायरस जो PC वायरस था, फ्लॉपी डिस्क, याद है आपको फ्लॉपी हुआ करती थी, एक CD एक फ्लॉपी, तो फ्लॉपी डिस्क के जरिए वो वायरस फैल रहा था। और जॉन मैकेफी ने, क्योंकि वो प्रोग्रामर थे, तो लॉकहीड कंपनी के साथ काम करके उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया था। और उन्होंने जब देखा कि भाई दुनिया में जरूरत पड़ रही है वायरस को भगाने की, तो वो कूद गए मैदान में। और जॉन मैकेफी ने इस बीच अपनी नौकरी से वक्त निकालकर एक डिटेक्शन प्रोग्राम बनाया, लिखना शुरू किया, और उसको नाम दिया वायरस स्कैन। अभी तक नाम सिर्फ यही था इसका, मगर जब इसके बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया तो कोई बंदा इस बारे में सोच ही नहीं रहा था। हफ्ते भर के अंदर कंपनीज पीछे पड़ गई उनके, और कुछ महीनों में जॉन मैकेफी, उन्होंने लॉकहीड जिस कंपनी के साथ थे उसको कर दिया टाटा बाय बाय, और अपनी खुद की सॉफ्टवेयर कंपनी खोलकर सॉफ्टवेयर बेचना शुरू कर दिया फुल टाइम। जॉन मैकेफी ने 1989 में एक इंटरव्यू में दुनिया को कुछ बताया। उसने बोला कि टेक्नोलॉजी आ रही है, दुनिया में अलग अलग कंपनीज हैं, और अलग अलग कंपनीज जो कंप्यूटर्स पे आ रही हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि वायरस उन्हें फाइनेंशियली बर्बाद कर सकता है, और मैं हूं उसका सोल्यूशन। लोगों में क्या हुआ, डर पैदा हो गया, क्योंकि कंप्यूटर बहुत नई चीज थी। और नतीजा क्या निकला, 1990 तक जॉन मैकेफी ने एंटीवायरस बना लिया, मैकेफी एंटीवायरस, जो हम सब ने कभी ना कभी यूज किया है अगर कंप्यूटर और लैपटॉप चलाया है। और उस टाइम पे उन्होंने जनरेट किए $5 मिलियन सालाना, और उसके अगले हर 6 महीने, सिर्फ 6 महीने नहीं, हर 6 महीने में ये रेवेन्यू डबल होता गया, और जॉन मैकेफी बन गए सिलिकॉन वैली के

इताज बादशाह। पर इसमें एक दिक्कत थी, जॉन मैकेफी अलग टाइप का बंदा था, उसे ये बोर्ड मीटिंग बहुत बुरी लगती थी यार, कहां सूट वूट पहन के बैठूंगा, पकाते हैं ये लोग। और वो कंप्लेन करता रहता था अपने दोस्तों से, कहता रहता था यार ये शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स, लॉयर्स, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी यार। जॉन मैकेफी वो बंदा था जो कई बार रिजेक्ट हुआ था अपनी जिंदगी में, और अजीब अजीब तरीके से, कभी नशे की हालत में इंटरव्यू देने चला गया, कभी बॉस के घर में जाकर वहीं पे अपना रिश्तेदारी शुरू करनी चाहिए, तो बहुत सारे किस्से उसके साथ हो चुके थे। कुल मिला के जॉन मैकेफी को कॉर्पोरेट लाइफ पसंद नहीं थी, उसका दम घुटता था कॉर्पोरेट लाइफ में, बोर होता था वो कि हर रोज जाओ, हर रोज मीटिंग, ये करो, आज का एजेंडा ये है, और वो पक रहा था अंदर से। 1993 में जॉन मैकेफी ने डिसाइड किया कि भाई मेरे से नहीं हो ये बोर्ड मीटिंग, उसने कैश आउट कर लिया, अपने कंपनी के जितने भी शेयर थे सारे के सारे बेच डाले, और बदले में उसे मिले $100 मिलियन, जो किला उसने खुद इतनी मेहनत से जो एम्पायर बनाया था, उस एम्पायर को अपना नाम देके खुद ही उस एम्पायर से बाहर निकल गया। वजह, बोरियत, बोर हो गया था। इस वक्त जॉन मैकेफी 48 साल के थे, 48 years old, एकदम आजाद अमीर परिंदा जिस पे कोई बंदिश नहीं थी, और उसने जो करना था वो कर लिया था। अब उसने सोचा कि अब मुझे सुकून आ जाएगा क्योंकि मैं बाहर आ गया हूं ना कॉर्पोरेट लाइफ से, मेरे पास बैंक बैलेंस भी है, $100 मिलियन पड़े, अब तो कुछ तो सुकून आएगा। तो उसने शुरू किया, प्लेन सीख लिया, लाइट वाला प्लेन उड़ाने लगा, उसमें घूमता था, पहाड़ों पे जाके गहरी गहरी सोच में डूबने लगा, मेडिटेशन किया, योगा किया, मगर अंदर से उसका दिल जो है वो सुकून पा ही नहीं रहा है, शांति आ ही नहीं रही है, उसका मन अभी भी, उसका दिल बेचैन है। He's confused कि मैं क्या करूं। साल 2008 जब आया तो अपने आप को सुकून देते देते इतना खर्चा कर चुका था जॉन मैकेफी कि उसके पास महज $4 मिलियन बचे थे आउट ऑफ $100 मिलियन। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है लेकिन उसकी नजर से देखेंगे तो सिर्फ ही लगेगा, जिस इंसान के पास $100 मिलियन हो उसका, उसने कुछ खास नहीं किया, खर्च करता गया करता गया करता गया करता गया और 4 मिलियन पे आ गया। और वो ये मानता था कि सरकार जो है वो ऐसी है, ये वैसी है, सारे के सारे पैरासाइट हैं, और वो कहता था कि मैं किसी के अंदर काम नहीं करूंगा, कोई भी मुझे अपना एम्प्लॉय नहीं बना सकता, मैं किसी के हिसाब से किसी के टाइम के मुताबिक नहीं चलूंगा। नतीजा ये हुआ कि 2009 में जॉन मैकेफी ने जहाज पे सवार होकर फैसला किया कि जरा जरा घूम के आते हैं, तो वो बिलीज चला गया। बिलीज एक खूबसूरत जगह है, वहां पे कोई टैक्सेशन नहीं भरना पड़ेगा, कोई रूल नहीं होगा, सिर्फ टर्कोइज रंग का पानी और सफेद सफेद रेत, आराम से रहूंगा तब शायद सुकून आ जाएगा। ये सुकून खरीदने के लिए जॉन मैकेफी ने यहां पर जाकर एक बीच साइड विला तक खरीद लिया, उसके बाद एक जंगल कंपाउंड भी खरीद लिया ऑरेंज वॉक नाम की जगह पे, और थोड़ा शोशेबाजी करने के लिए हथियारबंद बॉडीगार्ड्स भी खरीद लिए, लोकल गुंडों को भी हायर कर लिया कि लोकल लोगों में भी दहशत बनी रहे, और साथ में बनाई एक मेकशिफ्ट लैब, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर ये सारा 4 मिलियन खर्च हो गया तो मेरे तो गले में आ जाएगा सब कुछ, तो उसने डिसाइड किया एक लैब बनाऊंगा और हर्बल एंटीबायोटिक्स बायोटिक्स बनाऊंगा ताकि मैं जंगल में जो कीड़े बीमारी फैलाते हैं उनको मिटा सकूं। अब क्योंकि इसने लोकल गुंडे हायर किए थे तो इसका दबदबा बना हुआ था, पैसे और डर से इसने लॉयल्टी खरीदने की कोशिश करी थी, जितने भी वहां के लोग थे जो जानते नहीं थे वो यही कहते थे कि भाई वो देखा है वो बड़ा सा विला, एक मिलियनेयर पागल अमेरिकी आया हुआ है, वो अजीब सा ही है वो। और जॉन मैकेफी यही चाहता था, वो तो चाहता था लोग बात करें, वो दिन में अपने लाइट से प्लेन को उड़ाता था इधर से उधर, और रात में करता था बॉन्ड फायर पार्टीज, और चारों तरफ ऑटोमेटिक हथियार रखे होते थे और लोग दहशत में नाच रहे होते थे क्योंकि जॉन मैकेफी की पार्टी है, नाचोगे कैसे नहीं।

जोश खरोश में उसने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी भी खोली जिसका नाम उसने कोरम एक्स रखा, अपने एक्सपेरिमेंट्स को बेचने के लिए, जो उसे खुद भी पता था कि ये काम करेंगे नहीं। मगर ये इतना सब कुछ करने के बाद भी अंदर से जो उसके दिल से उसकी लड़ाई चल रही थी वो जारी थी। तो अपने आप से लड़ रहा था वो, और ये अपने आप से लड़ने की जो उसकी जद्दोजहद थी, जो लड़ाई चल रही थी, इसका नतीजा ये हुआ कि वो बाहर से बहुत चिड़चिड़ा हो गया, लड़ाई करने लगा, या अकड़ू किस्म का हो गया। कभी सड़क पे चलते चलते किसी को कुछ बोल दिया साइड ऑफ, और किसी लोकल गुंडे से लड़ लिया, पड़ोसी से बहस कर ली, एंड वो अलग जोन में चला गया था। मतलब उसको देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि ये जॉन मैकेफी जिसने एंटीवायरस बनाया ये वो बंदा है। नहीं यार, ये नहीं हो सकता, वैसा हो गया था। अप्रैल की 30 तारीख आई, साल था 2012, और इतने पंगे ले लिए थे उसने कि गैंग्स जितनी थी इस एरिया की, और काफी सारी थी बाय द वे, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया कि सर यहां पे इलीगल काम चलता है। तो पुलिस वालों ने सीधा कंपाउंड पे हमला बोल दिया, जॉन मैकेफी के इस विला में पहुंच गए, ऑफिसर्स ने टैक्टिकल वेपन्स निकाले, सारे स्टाफ को घेर लिया। इनफैक्ट जॉन मैकेफी ने 12 कुत्ते भी पाले थे, वो जो भौंक रहे थे उनको भी पुलिस वालों ने बख्शा नहीं, और जितना भी सामान था वो सीज कर लिया। मगर पकड़ने का फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। जॉन मैकेफी बहुत ही तेज बुद्धि वाला आदमी था, उस पर कोई केस बना ही नहीं, सिर्फ एक केस बना अनलाइसेंस्ड फायरआर्म का, एक हथियार का लाइसेंस नहीं था उसके पास, बस जेल में डाल दिया। लेकिन उसको इस केस पे जेल में एक रात बिताने को कहा उससे, वो एक रात भी सुकून से नहीं बिता पा रहा था। जॉन मैकेफी जब जेल में था तो उसे एक बंदा वहां से जाता हुआ दिखा, एक जो थानेदार होता वहीं से जा रहा था, उसने बोला सर सर सर सिगरेट चाहिए सर सिगरेट, और वो डर रहा था क्योंकि है तो ये कैदी, लेकिन ये कैदी भी जॉन मैकेफी है, मतलब ये कैसा आदमी है। और वो उसको डांट भी नहीं पा रहा था, गया बाद में जगह नहीं मिलेगी सिगरेट, वो भी नहीं बोल पा रहा था। उसने बोला नहीं सिगरेट अलाउड नहीं है, मना किया गया, साहब ने मना किया है। जॉन मैकेफी उसने अपनी जेब में हाथ डाला, $100 निकाले, $100, और उसके पास दिए, उससे कहा सर ये $100 में तो आएगी ना सिगरेट सर, कोशिश कीजिए ना, $100 में कोशिश हो जाएगी सर, ट्राई कीजिए। और $100 देके उसने एक सिगरेट ली, एक। अगली सुबह वादे के मुताबिक उसे छोड़ दिया गया, पर ये जो रात में वो जेल में बंद रहा, कहीं ना कहीं उसके दिल में और दिमाग में जैसे किसी ने एक बटन दबा दिया हो, एक स्विच ऑन कर दिया हो। वो जब घर वापस किया तो बहुत डरा हुआ था, उसने अपने घर के आसपास ट्रिप वायर्स, लैंड माइंस सब लगा दिए, और जब सोता था तो तकिए के नीचे बंदूक रख के सोने लगा। दूसरी जगह उसका पड़ोसी जो था जॉन मैकेफी का, उसका नाम था ग्रेगरी। ग्रेगरी भाई साहब बहुत पैसे वाला बंदा था, 52 साल का था, 52 years old, ये फ्लोरिडा का एक्सपर्ट था, फ्लोरिडा से आया था यहाँ पे जिंदगी सुकून से बिताने के लिए। लेकिन इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि ये पड़ोसी बना जॉन मैकेफी का। जॉन मैकेफी ने 9 कुत्ते पाले थे सिर्फ बाहर की तरफ रखने के लिए, हिफाजत के लिए, और वो रात भर भौंकते रहते थे। जॉन मैकेफी को लेकर लोग कंप्लेन करते थे कि उसके जो ये डॉग्स हैं, जो कुत्ते उसने पाले हैं, ये टूरिस्ट को भी काट लेते हैं, काबू में नहीं रहते हैं। और पड़ोसी ग्रेगरी ने एक दिन उससे रहा नहीं किया और उसने बोला ए क्या नाम है तुम्हारा, जॉन नाम है ना तुम्हारा, इनको ज़रा कंट्रोल में रखो अपने ये पालतू कुत्तों को, वरना फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। एंड ग्रेगरी को पता नहीं था कि वो किससे बात कर रहा है। 9 नवंबर 2012 मैकेफी जो था वो उठा और अपने विला के आसपास घूम रहा था, और उसने देखा कि आज जो उसके कुत्ते हैं वो भौंक नहीं रहे। अच्छा, वो बैकयार्ड में गया तो उसने देखा कि 9 में से 4 जो हैं वो हांफ रहे हैं, बुरी तरह से हांफ रहे हैं, और वो नहीं बचे, तड़प रहे थे। तो उसने अपने स्टाफ से कहा कि इनको गोली मार दो कि इनको

तड़पन ना हो जाता। और फिर मैकेफी का दिमाग खराब हो गया। उसने अपनी पिस्टल लोड करी और कंपाउंड के इर्द गिर्द घूमने लगा। सोचा था किसने मारा होगा, किसने मारा होगा इन्हें, कार्टल वाले, बाहर के गुंडे तो आ नहीं सकते, ये पड़ोसी ग्रेगरी कौन हो सकता है। 24 घंटे वो सिर्फ यही सोचता रहा। और फिर रात को एक गोली की आवाज सुनाई दी। बाकी जो आसपास के लोग थे उन्हें लगा, कह रहे यहां पे तो बीच पे लोग पार्टी वार्टी करते हैं, फायर क्रैकर्स होंगे, ऐसी कुछ होगा, लोगों ने इग्नोर कर दिया। लेकिन फिर अगले ही दिन जो हाउसकीपर थी ग्रेगरी की, यानी जॉन मैकेफी का जो पड़ोसी था, उसने देखा कि विला के फ्लोर पे औंधे मुंह पड़ा हुआ था ग्रेगरी, पेट के बल और खून का पूरा पूल बना हुआ था। उसके सर के पीछे 9mm की गोली मारी गई थी। उसका लैपटॉप, उसका फोन मिसिंग था। सब के सब शॉक्ड थे, पर शॉक्ड नहीं भी थे। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और वो सीधा पहुंचे जॉन मैकेफी के दरबार में, सो कॉल्ड विला में। मगर जब वो पहुंचे तो वो वहां पे था ही नहीं। जॉन मैकेफी को आगे का पता था क्या होने वाला है। उसे पता था कि वो मारे या ना मारे, लेकिन अगर आसपास कुछ होगा तो वही पकड़ा जाएगा, और इस बार तो उसने खुद ही मारा था। तो जॉन मैकेफी अपनी होने वाली सो कॉल्ड, जिससे उसने वादे किए थे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, समांथा, उसको लेके वो वहां से निकल गया और जंगलों में चला गया। ऑफिसर्स आसपास विला में ढूंढ रहे थे और जॉन मैकेफी कैंपिंग कर रहा था जंगल में आराम से। उसे शहर का चप्पा चप्पा पता था। अमेरिकी होने के बाद भी ही न्यू कि कहां से कहां पे जाना है, किसके घर जा सकता हूं, कहां पे हाइड आउट है, कितने सेफ हाउसेस मुझे बनाने हैं, हर जगह का उसे पता था। पुलिस ढूंढ रही थी, पुलिस डॉग्स लेकर, हेलीकॉप्टर्स लेकर हर जगह रेड पे रेड मार रही थी, लेकिन जॉन गायब था। जॉन दरअसल दूर, जैसे फिल्मी स्टाइल होता है, एक कॉन्क्रीट का बंकर बना के उसके अंदर बैठा हुआ था और पुराना एक टीवी शो देख रहा था जिसका नाम था कास्टवे। इसमें वो देख रहा था कि बंदे किस तरीके से सरवाइव करते हैं जंगल के अंदर, और कैंड बीन्स खाते खाते देख रहा था, हाँ यार ऐसे कुछ करते हैं। और समांथा जो उसके साथ थी उसे बोल रहा था, अरे सुनो पेड़ पे घर बनाया गया, और हंसते हंसते बात कर रहा था, लाइक ही डिडंट केयर एट ऑल। वो शहर छोड़ के, कंट्री छोड़ के भाग नहीं सकता था, सारे के सारे एग्जिट्स ब्लॉक कर दिए गए थे, सब जगह से पुलिस उसे ढूंढ रही थी, मगर वो मस्त बंकर में था, पिक्चर देख रहा था। 14 नवंबर 2012 रात में मैकेफी चढ़ा एक छोटी सी फिशिंग बोट पे, ये कोस्ट लाइन थी, सदरन कोस्ट लाइन, और वहां पे कैप्टन के हाथ में थमाए $2,000 और बोला 2,000 और दूंगा, मुझे क्रॉस करवाओ पूरा बॉर्डर और मुझे ग्वाटेमाला पहुंचाओ, मेरे पास कोई पासपोर्ट नहीं है। सुबह के 3 बजे वो लैंड कर चुका था एक बीच पर जो कि पोर्टो बेरियोस के नाम से जाना जाता है। जॉन और समांथा वहां पर उतरे और सीधा जंगल की तरफ गए, जंगल से भागे, उनको बाइक दिलवाई गई और फिर उसने रॉयल होटल में नकली नाम के साथ चेक इन किया। 72 घंटों के बाद अब जाके जॉन मैकेफी को चैन की सांस आई। दूसरी तरफ उसका एक किया हुआ काम इंटरनेशनल खबर बन चुका था। अगर कोई और उस पड़ोसी को मारता ग्रेगरी को तो शायद ये खबर इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जो जॉन मैकेफी ने नाम अपने पीछे बनाया था और उसके बाद ये किया, इस वजह से ये खबर का इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा था। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि लोग छाप रहे हैं उसके बारे में और छापना बंद करवाना पड़ेगा। फिर उसने सोचा, नहीं छापना बंद नहीं कराना पड़ेगा, छपवाने की तो जरूरत है। जॉन मैकेफी ने सोचा कि क्यों ना मैं अखबार वालों को और मैगजीन वालों को ही खरीद लूं। उसने वाइस करके एक मैगजीन थी, उसके लोगों को ईमेल भेजे, और क्योंकि वो खुद पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, हैकर था, खुद एक एंटीवायरस बना चुका था, तो उसे पता था कैसे खेलना है, तो एक बहुत ही अलग किस्म का

सोच रहा था कि अपनी लोकेशन को फेक करके बता देगा, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, इंटरव्यू उसने दे दिया है और इंटरव्यू में थोड़ी सी सफाई दे देगा। ही वॉज प्लानिंग टू प्ले इट आउट, मगर ये जो चीज थी ये उसके ऊपर पड़ गई। एक हैकर ने सीधा जॉन को मैसेज किया और हैकर ने लिखा, जॉन, मिस्टर जॉन मैकेफी, मुझे पता लग गया तुम कौन हो। दरअसल जो फोटो था उसके अंदर एक EXIF डेटा होता है। आप कोई भी अगर किसी को फोटो भेजेंगे तो उसका एक मेटा डेटा होता है, उसमें GPS मेटा डेटा उस टाइम पे उसने डिटेक्ट किया और उसे पता लग गया कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। सारी इंटेलिजेंस एजेंसी पीछे पड़ गई। 5 दिसंबर 2012 को 24 दिन बाद ग्वाटेमाला पुलिस ने रेड मारी। उस वक्त मैकेफी अपने लॉयर से लॉबी में बैठ के मजे से बातें कर रहा था। ग्वाटेमालन फोर्स उसे पकड़ के ले गई, उस पर चार्जेस लगाए गए और जॉन मैकेफी फंस गया। 6 दिसंबर 2012 जॉन मैकेफी की हालत खराब हो गई। डिटेंशन सेंटर में जब उसके पास लोग आए बात करने के लिए तो वो जमीन पे पड़ा तड़प रहा था। गार्ड्स पैनिक कर गए, एम्बुलेंस बुलाई गई, न्यूज ब्रेक हुई, जॉन मैकेफी को हार्ट अटैक आया है और पूरी की पूरी सरकार हिल गई, क्योंकि ऐसे कैसे हार्ट अटैक आ गया हमारी निगरानी में, हम इसे पकड़ के लेके आए, ये तो हमारा बंदा भी नहीं है। और वो उसे डिपोर्ट करने वाले थे वापस बिलीस में जहां पे उसका केस चल रहा था, पर अभी हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल ले गए, वहां पर रिपोर्टर्स पहुंचे और जॉन मैकेफी आराम से हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ था, ऑक्सीजन ट्यूब लगाए हुए और अपने आप के लिए जोरदार तालियां बजा रहा था क्योंकि उसने ऑस्कर वाली परफॉर्मेंस दी थी तड़पने की। डॉक्टर्स ने 48 घंटे के बाद कहा कि कुछ खास डैमेज नहीं है, ही इज ओके, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया था। और जॉन स्माइल कर रहा था मन ही मन में। उसने हाइपर वेंटिलेशन किया था, अपनी सांस को बहुत देर तक रोक लिया था कि वो तड़पने लग जाए। और ये जो टाइम उसने खरीदा, इस बीच उसके वकीलों ने इमरजेंसी अपील फाइल करी और ग्वाटेमालन सरकार डर गई। उन्हें भेजना था उसे पुलिस में और उसे भेज दिया वापस USA। जॉन मैकेफी ने चेस का गेम खेला पूरी की पूरी कंट्री के साथ। 12 दिसंबर 2012 मायामी एयरपोर्ट पर जहाज उतरा और उस जहाज में से उतरा एक बहुत ही बुरी हालत में, बड़ी हुई दाढ़ी में, दो कंट्रीज को चेकमेट देने वाला बंदा जॉन मैकेफी, जिसका टिकट का किराया भी उसी कंट्री ने दिया जिसने उसे पकड़ा था। FBI ने पूछताछ करी, मगर पूछताछ किस बात की, उसका तो कोई USA में केस ही नहीं है। जनवरी 2013 पोर्टलैंड ऑरेगन, जॉन मैकेफी ने समंथा को बुलाकर जेनिस नाम की एक लड़की से शादी कर ली। जेनिस 30 साल की थी और एक रेंटेड कॉन्डो में रहने लगा। जिंदगी को नॉर्मल दिखाने के लिए उसने बहुत कोशिश करी कि पब्लिक मान जाए कि मैं ठीक हूं। वॉक कर रहा है, जिम कर रहा है, गाने सुन रहा है, जबरदस्ती के ड्रामे कर रहा था जॉन मैकेफी। ये ड्रामे करते करते करते 4 महीने बाद इससे भी बोर हो गया वो। और जॉन मैकेफी की प्रॉब्लम ही ये थी कि वो बहुत जल्दी बोर हो जाता था, बहुत जल्दी। कितनी भी इंटरेस्टिंग चीज दे दी जाए जॉन मैकेफी को, ही विल गेट बोर्ड। और 4 महीने में नौटंकियां कर करके बोर हो गया वो। फिर से बैठ गया कंप्यूटर पर। अब कंप्यूटर पर बैठ के उसे एक दिमाग में कीड़ा आया और उसने एक वायरल वीडियो बनाया। और वीडियो का टाइटल जानते हैं क्या था? हाउ टू अनइंस्टॉल मैकेफी एंटीवायरस। मतलब जो एंटीवायरस उसने खुद बनाया है उसको अनइंस्टॉल कैसे करें, इसका वीडियो उसने यूट्यूब पर डाला। लेकिन यह कोई प्रोसेस बताने का तरीका नहीं था, ये एक डार्क कॉमेडी थी जिसमें उसके इर्द गिर्द लड़कियां थी और उसके हाथ में हथियार थे। वो अपनी ही कंपनी का दबा के मजाक बना रहा था और इस वीडियो ने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज जनरेट करे। 2016 में जॉन मैकेफी ने यह तक कह दिया कि मैं प्रेसिडेंशियल रन के लिए आगे आ रहा हूं। उसने नाम दे दिया पार्टी को, साइबर पार्टी।
और बोल दिया कि कोई टैक्स

0: नहीं होगा मेरे राज में, हर एक चीज एनक्रिप्टेड होगी। वोट उसको एक नहीं आया, एक बंदे ने भी उसको वोट नहीं किया, मगर क्या मिला उसे, जो उसे चाहिए था। उसे वोट थोड़ी चाहिए था, यह भी एक थिएट्रिकल था, यह भी एक ड्रामा था। जॉन मैकेफी को मिली हेडलाइंस, पूरी की पूरी हेडलाइंस वही ले गया। जीतने वाले से ज्यादा हारने वाले जॉन मैकेफी के किस्से अखबारों में छापे गए। ये सब एक थिएटर था उसके लिए। 2018 में जब वो ये सब करके भी बोर हो गया तो क्रिप्टो करेंसी की तरफ चला गया, बिटकॉइन, इथेरियम। अब लोगों को फ्यूचर बताने लगा, और यहां पे वो सही था। इस टाइम जो ले रहा था वो पैसे वाला बन रहा था, मगर जॉन मैकेफी को अभी घर नहीं चाहिए था। जॉन मैकेफी को ऐसा रास्ता चाहिए था जहां पे वो खड़ा रहे और कभी भी भाग सके। तो उसने क्या किया, जॉन मैकेफी ने एक 75 फीट की 75 फीट की का इनफैक्ट एक यॉट खरीदा, और उस यॉट में सैटेलाइट इंटरनेट लगवाया, उसमें कई सारे हथियार रखे, और जेनिस अपनी बीवी के साथ डिसाइड किया अब मैं इसी में रहूंगा। एक पंगा था, उसने टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया। जमाने हो गए, 2010 से लेकर 8 सालों तक एक चवन्नी नहीं दी उसने आईआरएस वालों को, और ये चोरी भी है। लेकिन वो बोला कि इंटरव्यू में, क्या मुझे पता है ये, और ये सही बात है, गलत क्या है इसमें। मगर सही बात गलत बात तो कोई और डिसाइड करेगा ना। जनवरी 2019 एक ज्यूरी, एक फेडरल ज्यूरी ने डिसाइड किया कि ये कहीं पे भी जी रहा हो इस पे केस तो बनाते हैं, और उन्होंने उस पे केस बनाया। 8 काउंट्स ऑफ टैक्स इवेशन का, टैक्स से भागने का केस बना। सालों की सजा उसे सुनाई जा चुकी थी, मगर सजा सुनाने के लिए जॉन मैकेफी था ही नहीं, वो तो यॉट पे मच्छियां पकड़ रहा था। और उसे जब पता लगा एक सोर्स से, तो उसने यॉट को चालू किया और वहां से भाग गया। अच्छा, सिर्फ भागा नहीं, जॉन मैकेफी ने रस्ते में जाते जाते फोटोज अपलोड करी, हाथों में राइफल के साथ डेक पे खड़े खड़े, और नीचे कैप्शन भी डाला अपने फेसबुक अकाउंट पे, और नीचे लिखा, आज मैं जा रहा हूं मजे करने करेबियन, मैं चला। 18 महीने तक उसने ये टॉम एंड जेरी वाला खेल खेला, वो भी सामने से। समुद्र के रास्ते वो घूम रहा था, कभी क्यूबा, कभी डोमिनिकन रिपब्लिक, कभी बहामास, कभी वेनेजुएला, हर दिन चेंज, और हर जगह पे जाके ट्वीट पे ट्वीट, कभी हाथों में कैश, कभी क्रिप्टो करेंसी, कभी कुछ, कभी डबल बॉडी अपने ऑडिशन के लिए डाल दिया कि मुझे अपने हम शक्ल की तलाश है, कोई है क्या, और ये सब लिखने लगा वो। उसके लिए एयरपोर्ट जाना अभी ऐसा था कि बस वो एयरपोर्ट पे एक आम आदमी को भी दिख जाए तो वो भी इसे पकड़वा दे, कमर्शियल फ्लाइट तो भूल ही जाओ। मगर वो शोर मचाए जा रहा था, छुप नहीं हो रहा था, जैसे आम क्रिमिनल्स करते हैं जो छुप जाते हैं, ये उसके ठीक उल्टा कर रहा था। दिस वॉज अ साइकोलॉजिकल प्लान कि अगर मैं चुप हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, ये उसके दिमाग में बैठ गया था, और मुझे शांति से कोई पकड़ लेगा तो मेरे बारे में दुनिया बात नहीं करेगी, तो क्यों ना मैं अपने बारे में खुद ही इतनी बात कर लूं कि मुझे पकड़ने वाला भी सोचे कि यार इसको पकड़े कैसे, क्या ये सच कह रहा है कि झूठ बोल रहा है। इट्स अ वेरी वियर्ड साइकोलॉजिकल गेम। उसने इस बीच 2 मिलियन फॉलोअर्स जमा कर लिए थे, 2 मिलियन फॉलोअर्स, लाइव इंटरव्यूज हर जगह, सब कुछ, नॉर्वे में जाके प्रैंक कर रहा है लोगों को, लेकिन वहां पे भी उसको अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। अपने आप प्रैंक करता था और कहता था, अरे उफ, मुझे पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ये देखो, और ये वीडियोज बना के वो एक नहीं 3-4 कंट्रीज को चिढ़ा रहा था। जुलाई की 4 तारीख आई 2019, और पोर्टो प्लाता, डोमिनिकन रिपब्लिक, मैकेफी ने अपनी यॉट को डॉक पे लगाया तेल भरने के लिए, लेकिन वहां पे किसी ने उसे देख लिया। लोकल अथॉरिटीज को टिप मिली थी उसके बारे में, इंटरपोल ने अलर्ट कर रखा था, एंड उसे वहां से रिटेन कर लिया गया, जॉन और जेनिस दोनों को। इलीगल फायर आर्म्स की वजह से। 4 शॉटगन्स और 3 हैंडगन्स उसके पास मिली, जो कि काफी थी उसे एक छोटे से केस में फंसाने के लिए। मगर जॉन मैकेफी कोई आम बंदा नहीं था, जैसे मैंने कहा कि सामने से बैटिंग करने वाला बंदा था वो, सामने से। ये कहने की बजाय कि सर ये मेरे हथियार नहीं है, सर मैं तो जानते ही नहीं, सर ये पता नहीं कहां से आ गया, सर मेरी इंटेंशन नहीं है, ही डिसाइडेड टू नेगोशिएट कैश एक्सचेंज। एनी कला थी उसके अंदर कि उसे पता था कि मैं नीचे वालों से नहीं सीधा ऊपर वालों से बात करूंगा, अगर 5 में से 4 ईमानदार निकले तो एक तो होगा जिसमें खोट आएगा। और उसकी ट्रिक ना जाने हर बार कैसे काम करती थी। और जॉन इस बार भी डोमिनिकन रिपब्लिक की तरफ से आजाद कर दिया गया एंड वॉक्ड फ्री। लेट 2019 में मैकेफी ने सोचा कि अब जरा उम्र हो रही है तो ईस्टर्न यूरोप चलते हैं, और वहां पे जाके अजीब और गरीब वीडियो डालता था अपने सेफ हाउस के, आज मैंने ये कर लिया, आज मैंने वो कर लिया। और वो अचानक से वीडियो डालते डालते फिर कागजों के फोटो डालने लगा और धुंधले फोटोज अपलोड करने लगा, जिसमें शायद वो किसी का नाम लेना चाहता था लेकिन उसने किसी का नाम लिया नहीं। ये ब्लफ था, थ्रेट था, धमकी थी, क्या था कोई नहीं जानता। मगर अक्टूबर 2020 जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस लग चुके थे, जॉन ने कुछ ऐसा किया जो उसके कैरेक्टर के बिल्कुल बाहर था। जॉन ने भागना छोड़ दिया, उसने एक अपार्टमेंट लिया बार्सिलोना में, स्पेन में, और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता था। बार्सिलोना एल्प्रो एयरपोर्ट की तरफ वो जाना चाहता था, इस्तांबुल की तरफ निकलना चाहता था, लेकिन चेक इन के टाइम पे पासपोर्ट स्कैन किया गया और नकली पासपोर्ट के बाद भी वो पकड़ा गया। उसे अरेस्ट किया गया और लगा कि द गेम इज ओवर। जून 2021 23 तारीख, 75 साल का हो चुका था जॉन मैकेफी, पर दिमाग उसका अभी भी वही 25-30 साल वाला था। 8 महीनों से बंद था, गन्स नहीं, गैजेट्स नहीं, इंजीनियरिंग नहीं, बस एक इंसान जो 4 दीवारी में कैद था। वो अपने लॉयर्स के थ्रू ट्वीट करा रहा था। एक ट्वीट में उसने अपने लॉयर से कहलवाया कि लिखो, मैं यहाँ पे खुश हूँ, मेरा कोई दोस्त बाहर तो नहीं लेकिन अंदर मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और हैरान मत होना कि मैं यहाँ से भी गायब हो जाऊँ तो। फिर अगले ट्वीट में उसने लिखा कि नहीं डरिए मत, मैं अपने आप को मारूंगा नहीं, पर मैं बाहर जरूर आऊंगा। कोर्ट समझ नहीं पा रहा था ये आदमी करना क्या चाहता है। उस पे सारे के सारे दबाव लगाए गए, फ्रॉड चार्जेस, मैन्युपुलेटिंग क्रिप्टो प्राइसेस, सारे के सारे चार्जेस। मगर अभी भी कंफ्यूजन थी कि ये अंदर बैठे बैठे भी खुश कैसे है। जैनिस जो थी वो चुप थी, उनकी जो बीवी थी, जून 23 तारीख 2021 को 1 बजे स्पेनिश कोर्ट ने साइन कर दिया था कि भाई इसको जो है हम 1 घंटे में सीधा यूएस के हाथ में दे रहे हैं, बहुत हो गया इसका, अब उसे कस्टडी में रखा जाएगा और भेज दिया जाएगा कुछ दिनों बाद। उसने जेल से जैनिस को कॉल किया और कहा कि शाम में मिलते हैं 7 बजे, या फिर मैं तुम्हें कॉल करके जरूर बताऊंगा। मगर जब शाम में कॉल नहीं आई तो जैनिस डर गई और पता ही लगा कि जेल में ही जॉन मैकेफी की जान चली गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट में चेक किया गया लेकिन पता ही लगा कि किसी किस्म का ड्रग और कुछ भी नहीं लिया गया। ही जस्ट डाइड एट 7:23 PM। मगर यहां पे कहानी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि बताया गया कि एफिक्सिएशन से लगातार शायद लटक के जैसे उसने अपने आप को मारा, जो भी है, मगर नोबडी वांट्स टू बिलीव। और सबको अभी भी ये लगता है कि कुछ तो बीच में मिसिंग है। क्या उसके पास कुछ फाइल्स थी लोगों की, क्या ये उसका कोई फाइनल थिएट्रिकल था, कुछ फाइनल एक्ट है कि उसने अपनी डेथ को फेक कर लिया, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इतनी आसानी से उछला जाएगा. इवन जेनिस जो उनकी वाइफ, उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने आप को मारने जैसा इंसान है ही नहीं. बहुत महीनों तक स्पेनिश मॉर्ग में उसे रखा गया, उसकी बॉडी को. उसके दुनिया से जाने के बाद भी कहानी उसकी चलती रही. वो आदमी जिसने अपने डर को प्रॉफिट में बदला, कानून से लड़ा, दुनिया को एंटीवायरस दिया और ये कहता रहा कि मैं एक दिन शेर की तरह जीना पसंद करूंगा बजाय इसके मैं हजारों साल भेड़ की तरह जीऊं. अब जॉन मैकेफी बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है. मैं इसका कोई फैन नहीं हूं, आई एम नॉट हिज ऑन हिज साइड, बट आई स्टिल बिलीव कि यार कुछ तो ये आखिरी में खेल गया है जो दुनिया के समझ में नहीं आया है. और शायद मैं अगले साल कुछ कहानी सुना रहा हूं तो शायद तब कुछ अपडेट आ जाए. यू नेवर नो, इट्स जस्ट अ वेरी वियर्ड वियर्ड स्टोरी. लेकिन ये सुनने के बाद ये कहना कि ये वही बंदा है जिसने दुनिया को एंटीवायरस दिया है साउंड्स वेरी स्मॉल. 666-22-107 नंबर है. ये किस्सा आपके वाले, मुझे बताइएगा कैसा लगा. 666-22-107 और अबजान का वक्त है. इंशाल्लाह इसके बाद मिलते हैं और आप जरूर मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा. एंड स्टे ट्यून्ड.
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में मगरिब की अजान का वक्त हो गया है. अल्लाहु अकबर.

0: और जितनी नेकियां कमा सके कमा लीजिए, इसलिए कि मौत किसी भी लम्हे आ सकती है। इंसान को चाहिए कि अपने गुनाहों की अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करे और तौबा की उम्मीद पर कोई गुनाह मत करे। न जाने कौन सी घड़ी आखिरी हो और जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह ताला सबको सच्ची तौबा करने और नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए।
1: पैगाम ऑन FM 107।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

हाँ जी, मैं कह रहा था हैप्पी वीकेंड. और जो कहानी सुनी आपने बता दिया कैसी लगी. आई नो कि आज की कहानी जो है वो लोगों को एंटीवायरस से याद है, लेकिन मैंने कहा था बंदा पता होगा लेकिन बंदे के बारे में नहीं पता होगा, है ना. आड़ी साधु

हैप्पी वीकेंड। और 6:09 हो गए हैं। आपको वो टाइम याद है जब हार्डी संधू का मुकाबला होता था गुरु रंधावा से, फिर हार्डी संधू जो थोड़े से अलग फील्ड में चले गए थे, बीच बीच में वापस आते रहते हैं, दो तीन कश्तियों में सवार रहता ही आदमी, पर ठीक है, बढ़िया है, गाते बहुत बढ़िया है।

0: तो सवासी तो आप देंगे भाई कहानी सुनने के बाद. मैसेज क्या है मुझे अरबाज भाई लिखते हैं, भाई माशाल्लाह सर कहानी तो बहुत अच्छी थी. जो उसने नाटक किया था वो मुझे सलमान खान की मूवी के क्या था गई, इसमें मौत को छुके वापस. हाँ वो तो उसने जानबूझ किया भाई. कलाकार आदमी था वो. और ये कह रहे हैं अब्दुल करीम भाई कि अगर पैसा नहीं होता तो क्या होता. भाई देखो पैसे के साथ साथ दिमाग भी था. अगर मुझे ऐसा लगता है कि पैसा और दिमाग दोनों एक साथ जुड़ जाए बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है भाई, काफी खतरनाक. मोहसिन भाई कह रहे हैं मुझे कहानी समझ में ही नहीं आ पाई सिग्नल की वजह से, मैं दोबारा सुनूंगा. दोबारा सुनना भाई. एक मैसेज कबीर भाई डोंट वरी मेरी भी सुबह ड्यूटी स्टार्ट हो रही है क्योंकि स्कूल चालू होने वाला है 6 AM. मेरा भाई सुनो भाई को बहुत सारा प्यार. और एक मैसेज है यार आयरन मैन आगे लिखा है वीकेंड आपके बगैर कैसे गुजरता है ये हम ही जानते हैं. मेरा भाई आपकी मोहब्बत है यार, ये आपकी मोहब्बत है मेरी जान. बहुत बहुत शुक्रिया यादव भाई, बहुत प्यार आपको. मैं आपको दिल लगा के भेज रहा हूँ मेरी जान. और एक मैसेज है नाइस स्टोरी काशिफ भाई, जजाकल्ला मेरे भाई. और फिर एक मैसेज किया है मुझे आसिफ भाई ने. आसिफ भाई क्या कह रहे हैं, आसिफ भाई कह रहे हैं कि मूवी उन्होंने देखी थी शायद इसी में बनी हुई है, जंगल जोन मैकफी 2022 में आई थी. मैंने देखी नहीं भाई मूवी, ना मैंने सर्च किया इस पर कि मूवी है कि नहीं. बाकी हमारी बहन है आसरा, उन्होंने लिखा है कि इट इज़ ट्रूली एंड हाईली कमेंडेबल कि कैसे आपको आप स्टोरीज ढूंढ कर लाते हैं. कोई सोच भी नहीं सकता कि एक बेसिक सा एंटीवायरस जो लिटरली हर कोई यूज़ करता है उसके पीछे ऐसा बंदा था और वैसा जैसा वो था वो खुद एक वायरस था. डैम अच्छी लाइन है, एंटीवायरस बनाने वाला खुद भी एक वायरस था. आगे लिखती है बेहतरीन नरेशन ब्रो, टू गुड. थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत. और नुसरत बहन ने मैसेज किया है, वो लिखती हैं ही इज़ गुड इंटेलिजेंट और इतना कॉन्फिडेंट, काश ये अच्छी फील्ड में होता, स्टोरी नरेटिंग एज यूजुअल सुपर्ब. फील्ड में ये सही था मगर ये बोर हो जाता था पता है. और ये कई सारे लोगों के साथ हैं, हम में से भी आधे दर्जन लोग होंगे जो बोर हो जाते हैं, बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं भाई, बहुत जल्दी. फॉर एग्जांपल मैं नहीं बैठ सकता भाई मीटिंगों में, मेरे बस का नहीं है, मेरे से लोग नहीं बर्दाश्त होते. अगर चार जानने वाले भी बैठ जाएं बीच में ना तो मैं नहीं कर पाऊंगा बात, मैं बोर हो जाऊंगा एक पॉइंट के बाद. कह रहे यार छोड़ दो यार अकेले जाओ यार, दैट कम्स इन माई हार्ट. पर वो ये ना कि बोरियत हो रही है और उसमें पैसा आपके पास भरपूर है, वो बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, वो बहुत डेंजर लुक है. और एक मैसेज है सर हमारे पास तो ना पैसा है और ना दिमाग है हमारे पास. अरे दिमाग तो है माशाल्लाह, पैसे का क्या आ जाएगा भाई, हाथों का मेल है अरवाज भाई, कैसी बात कर दी. हैदराबाद लिखते हैं वायरस ना वायरस, वायरस ने वायरस बनाया था. करेक्ट. क्या आज की स्टोरी नहीं सुन सका मैं, आई विल सेंड यू, नो प्रॉब्लम ब्रो, नॉट ए प्रॉब्लम. वैसे कबीर भाई पूरी स्टोरी नहीं सुन सका, स्टार्टिंग में सुनी थी, भेज दो भाई लास्ट में थ्रिलिंग. इरफान भाई जरूर मिलेगी आपको स्टोरी. और अगर आप लोग कॉल करना चाहें तो 4434377 नंबर है, 4434377. और लिखा है मनी प्लस इंटेलिजेंस टू मच डेंजरस, यासिफ भाई लिखा है. करेक्ट भाई, वही इसके साथ था, एक तो बुद्धिमान ऊपर से बोर होने वाला बेचैन आदमी. ये पता है वो था, ये जयंती था उस टाइम का, ये 1980s का जयंती था, ये इसकी अटेंशन स्पैन बहुत कम था, ये 10 मिनट ज़्यादा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता ये. उस्मान औरंगज़ेब साहब वालेकुम अस्सलाम भाई. और आसिफ भाई लुक की तारीफ कर रहे हैं, अरे थैंक यू सो मच मेरे भाई, नया लुक लिया आपके भाई ने मेरी जान, ऐसी थोड़ी. और एक मैसेज भाई मेरे हाथों क्या भाई, मेरे हाथों मेल तो है पर पैसा नहीं है, कयामुद्दीन साहब कह रहे हैं. और एक मैसेज है भाई क्या है, कभी बोरिंग स्टोरी भी सुने हर दफ़ा इंटरेस्टिंग होती है क्या भाई. बोरिंग स्टोरी मैं आपको सच्ची एक बात बताऊं, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप मेरी तारीफ करें उसामा भाई, पर मैं आपको एक आज फैक्ट बताता हूं ठीक है. एक कहानी ढूंढने के लिए ना कम से कम नहीं तो 8-9 कहानियों से होकर गुजरना पड़ता है ठीक है. कुछ कहानी ऐसी होती है कि आपको शुरुआत में जैसे जब मैं तैयार कर रहा होता हूं तो शुरुआत में अच्छी लग रही होती है, एंड में आते आते मैं खुद ही पढ़ के बोर हो जाता हूं. आप समझ रहे हैं, मतलब मैंने 5-6 घंटे लगा दिए कहानी पे और मैं खुद ही पढ़ के बोर हो गया कि यार मजा नहीं आ रहा. ऐसे 2-3 कहानियों के गुजरने के बाद 4थी 5वीं होती है जहां पे लगता है आहा यहां है फ्लेवर, एंड समटाइम्स ये पहली बार ही मिल जाती है तो वो लक का भी खेल है. तो या भाई इसलिए बोर कहानी आपको मैं मिलने दूंगा नहीं, वो बात और है कि बोर लग जाए तो बात दूसरी है, पर मैं कोशिश करूंगा कोई कहानी बोलने लगे, दैट इज ऑल आई वांट टू से. चौधरी कबीर लगता था पहले, चौधरी कबीर लगता था पहले मतलब क्या है इसका. और लिखा है भाई हाई भाई प्लीज सेंड, हाँ कहानी दूंगा ना भाई. एक मैसेज सर ऐसी कहानी कभी सुनाओ ना कि 4 दिन तो मैं रूम से ना निकलूं डर की वजह से. बस भाई अच्छा ठीक है. और वैसे आप लव स्टोरी क्यों नहीं सुना देते हैं. उस्मान औरंगज़ेब साहब इसका जवाब पता है पब्लिक देगी. अच्छा आप लोग बता दीजिए उस्मान भाई ने ये सवाल पूछा है मैं लव स्टोरी क्यों नहीं सुनाता, इज एनी बडी कैन रिप्लाई. मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं लव स्टोरी। चलो मैं सुना दूंगा, मुझे बता दो आज, मुझे वोट दे दो कितनों को लव स्टोरी सुननी है ऑनेस्टली। चलो मैं सुना भी दूंगा, ठीक है, लेट मी नो। कोई है लव स्टोरी वाला? उसमें भाई दिक्कत क्या है, लव स्टोरी ना सुनाने में आपको मसाला नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं आप, मुझे खुद नहीं मजा आता भाई। मैं सुना दूंगा पर लोग बोलेंगे लव स्टोरी सुननी है, देन आई विल फाइंड अ लव स्टोरी फॉर श्योर। अगर सुननी है तो बोलो, मैं संडे को लव स्टोरी सुनाता हूँ। और बोलो, वकील साहब कह रहे हैं यही सब ठीक है। कह रहे यही सब ठीक है भाई, उस तरफ नहीं जाना, कह रहे लव स्टोरी मतलब रेडियो ऑफ। मैं एग्जैक्टली आई नो दिस, आई नो जैदी भाई भी ये कह रहे ना, मुझे पता है भाई नहीं सुननी इन्हें, क्योंकि कबीर भाई को लव पसंद नहीं, लव पसंद है लेकिन वो कहानियाँ सुनाने में ना भाई मेरे को वो करंट किक नहीं मिलती, समझ रहे हो। और मैं से सैयद रजा भाई कहते हैं आई लिसन द कम्प्लीट स्टोरी, ऑसम स्टोरी, पूरी सुनने के बाद फैसले पे पहुंचा हूँ कि जॉन मैकफी मुझे आगे बोल नहीं सकता भाई, लेकिन आपके सुनाने का स्टाइल हेड्स ऑफ। मुझे तो जॉन मैकफी पे शक है भाई, वो कहीं गया नहीं है। हसन रजा भाई और आगे लिखते हैं भाई, नो नीड, वी नीड थ्रिलिंग एंड हॉरर स्टोरीज। ओके, नसीम भाई कहते हैं कबीर भाई को लव से एलर्जी। अरे भाई एलर्जी एलर्जी नहीं यार, वो नसीम भाई किक नहीं मिलती भाई। एक लव स्टोरी है मेरे पास, भेजो कौन सी लव स्टोरी है, कि भाई नहीं चाहिए लव स्टोरी। आधी पब्लिक आरिफ भाई भी कह रहे हैं नहीं चाहिए लव स्टोरी। ओके वेरी गुड, अगर चाहिए होगी तो मैं सुना दूंगा। आपसे तो चल रही है भाई गाड़ी मेरी भी। मतलब कबीर भाई कहानी का बेस्ट और माशाल्लाह आपकी वॉइस भी, लव स्टोरी के ज़माना नहीं है, नो लव नो टेंशन, टेंशन फ्री रहो यार। गनी भाई भी कह रहे हैं, और एक मैसेज है जो प्यार पूरा ना हुआ हो। अमित भाई कह रहे हैं ऐसी कहानी सुना दो दर्द वाली, मोहब्बत पूरी ना हुई हो, आशिक ने कहा अरे मैं मर जाऊँगा। और एक है आजकल हॉरर स्टोरी नहीं सुना रहे, हॉरर स्टोरी सुनाई थी मैंने इरफानुद्दीन साहब पिछले हफ्ते, अभी संडे को सुना दूंगा। चलो मेरा बर्थडे भी है संडे को, मेरे बर्थडे के दिन चलो हॉरर सुनाते हैं, ठीक है। सलमान भाई वालेकुम अस्सलाम, और एक मैसेज आया है वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। मेरे कहने का मतलब ये भाई हर दफ़ा इंटरेस्टिंग। हाँ मैम, अरे मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बुराई कर रहे हैं, समझे नहीं आप। उसमें भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बोरिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि उसको ढूंढने में इतना टाइम लग जाता है। अच्छा मैं पहले चौधरी का भी लगता था, ठीक है भाई। वैसे लव स्टोरी अगर सुनानी है सर, FIR हमारी क्या आ जाती, गाड़ी चला रही हो तो गाड़ी में हमें, मैं समझा नहीं कि क्या क्या क्या भूल गए। और एक भाई कह रहे हैं भाई लव स्टोरी ढूंढिए जिसमें हॉरर हो। अरे यार कह रहे ऐसी लव स्टोरी सुनाओ जिसमें हॉरर हो, दुल्हन भाग जाओ उसमें वाली सुनाओ कि वाई हॉरर स्टोरी ऑन योर बर्थडे। भाई सोच रहा हूँ मैं, अच्छी मिल गई तो साँ भाई ऐसी, मतलब पब्लिक का मन कर रहा है। एक पार्टी तो बनती है बर्थडे की, क्या पार्टी करें भाई ये बताओ, सड़ी गर्मी पड़ रही है बार। और ये कह नहीं नहीं नहीं भाई नहीं चाहिए, हमारी लाइफ में क्या कम स्टोरीज है तो यहाँ पे लव स्टोरी सुनूँ, शादी के बाद डेली नई स्टोरी बनती है भाई। ठीक है डर डर नहीं नहीं सुना रहे। एडवांस में हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई, जजाक अल्लाह भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सर। नहीं नहीं लव स्टोरी नहीं आएगी कुल मिला के, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी सुननी है। एक लव स्टोरी मैंने सुनाई थी पता है, पर वो भी मेडिकल स्टोरी थी, उसमें लव स्टोरी ही थी बट इट वॉज अ मेडिकल स्टोरी। किसी दिन दूंगा तो सही सरप्राइज, बढ़िया वाला एकदम है, ऐसी स्टोरी होगी हम लोग भाई ये क्या सुना दी। बट मेरा क्योंकि बर्थडे है संडे को, तो आई विल ट्राई कि कोई बढ़िया सी कहानी हो कि आपको मजा आए, तो यार ये क्या सुना दिया भाई, ये क्या था ऐसा वाला करने का, ठीक है। बाकी 666-22107 में दोहा वाला कबीर FM 107 पे। एंड यार बहुत टाइम से जो है ना ये नहीं चला भाई, फील चाहिए भाई, फील के लिए गाना है। अ वेरी वेरी हैप्पी वीकेंड, 6:19 बाय द क्लॉक।
1: मन देवे ना तू भड़क रहे छोरी, बिजली जी सा कड़क रहा छोरी,
0: गिरी कमांड और यो हनी सिंह,
1: तमण बामण कजियाला।
0: हां भाई बढ़िया चल रहा भाई,
1: रोक दे दिल की
0: धड़कन। अरे मैं नू कर रहा था WhatsApp पे मैसेज घाल दो,
1: चढ़ता सिलवा दियो सूट चुमे।

हाँ भाई घुमा दूं गाड़ी। वैसे तो अभी तो गाड़ी घूमे भी ना भाई, वीकेंड में ऐसी ऐसा जाम लगता है बढ़िया आला। एक मैसेज आया भाई, सर मैं कह रहा हूँ कि लव स्टोरी नहीं सुनाना क्योंकि फिर मैं भाग जाना है वापस पाकिस्तान गम की वजह से। अरे अरवाज भाई चम्मच पहले रसगुल्ला, ये मैसेज किया रियान भाई। रियान में पता है चम्मच पे ले रसगुल्ला जो लाइन है वो भाई जिस तरीके से बोली है बहुत ख़ास बात है। और एक मैसेज है, ये मुझे जो मैसेज किया है उसाम भाई जिनका आप नाम ले रहे हैं ना, मैं उन्हीं का इंटर्न था भाई और वो मेरे पड़ोसी हैं दिल्ली में, समझ रहे हैं आप। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, आई थिंक 3 साल भाई। एक मैसेज है एडवांस में, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैसेज है मोहसिन भाई का, कह रहे हैं मच्छी पकड़ने जा रहा हूँ वीकेंड पे, ज़रूर। कीड़े पकड़ने जाते, घर में मक्खियाँ हो गई थी भाई कुछ दिनों पहले, उन्हें मैं उससे क्या कहते हैं उसको, या फिर भूलिया उसका नाम बताओ मैं, अरे वो करंट वाला जो बल्ला होता है उससे नहीं मार पा रहा था मैं, आप मच्छी पकड़ने की बात कर रहे हैं। एक वैसे हम तो अगर पहुँचाए ट्रैफिक छोड़ के, आपका सही है भाई, सॉलिड मामला है, सब ने बिल्कुल तौबा पढ़ ली है, कह रहे हैं हमें लव स्टोरी नहीं चाहिए भाई, नहीं मिलेगी, डोंट वरी। नहीं सुना रहे भाई, डरो नहीं। हॉरर तो ये है कि लव स्टोरी सुना दूं मैं, समझ रहे हैं आप। और जरा मौसम का हाल बता दूं, तो अभी कतर मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने वॉर्न किया है कि भाई देखो मौसम थोड़ा सा नहीं काफी बदलेगा, काफी मिस्टी और फॉगी कंडीशंस होने वाली हैं वीकेंड पर, धूल मट्टी उड़ेगी, आपको लगेगा ओ बादल तो नहीं है, पर वो बादल नहीं होंगे। टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री से 43 डिग्री की रेंज में रहने वाला है, 33 to 43 डिग्री सेल्सियस, और हवाएं जो है वो चलेंगी ठीक ठाक है, हवाओं की रफ्तार ज्यादा नहीं है, मगर इस वीकेंड पर धूल मिट्टी ज़्यादा रहेगी मुकाबले बाकी दिनों के। तो इन चीज़ों के लिए ज़रा तैयार रहिए, जो लोग बीचेस वगैरह पे जाने का प्लान कर रहे हैं, स्पेशली जिनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, अगर मेरी तरह आपको साइनस है तो भाई क्यों जा रहे हो, घर बैठो बाद में चले जाना। एक मैसेज, सर पुरानी किताबें खुल जाएंगी लव स्टोरी की वजह से, अरबाज भाई नई कहानी लिखूँ ना फिर, ब्याह कर लो ब्याह भाई, वो वाला गाना बजा दो, कौन सा वाला भाई कौन सा वाला। और एक मैसेज मुझे वॉइस नोट आया भाई, अभी सुनूंगा वॉइस नोट में, टेंशन मत लिया करो आप, बिल्कुल बेफिक्र रहो। बाकी 666-22-107 नंबर है, आपको याद है ना वीकेंड पे हम कौन सा गाना बजाते हैं, याद है कि नहीं पहले बताओ भाई। उसमें हम साथ में करते हैं, वो गाना साथ में गाया जाता है, हमारा रिचुअल है वो। बताता हूँ कौन सा वाला है, किधर गया ये किधर, अरे किधर चला गया भाई, ढूंढने पर मुझे गाना मिलता ही नहीं है, मिल गया। हाँ तो भाई क्या मैसेज है, क्या सीरियल, हाँ सीरियल किले वाली कहानी सुनाऊंगा मैं, मेरा प्लान है मुझे भाई, कोई इंडोर फिशिंग स्पॉट बता दें ड्यू टू वेदर। भाई इंडोर फिशिंग कहाँ से बता, ये नहीं बताओ सामा भाई, ये बहुत ही टेक्निकल सवाल पूछ लिए आपने मुझसे। और क्या है, अच्छा डांडा सुनना चाह रहे हैं हम, इसके बाद डांडा भी चला देंगे, चलो पहले डांडा ही चलाते हैं। डांडा भाई गंगा हमारे डांडा भाई, इसमें भाई एक लाइन है जिसके सब फैन है, बेटी चाहे दुश्मन की हो मारे घर महफूज मिलेगी, भाई लाइन है यार। डांडा न्योली वाला स्ट्रेट फ्रॉम हरियाणा, हाँ जी

हाँ जी, तो क्या है कि अभी तो पहले वो चलेगा सिद्धू मूसेवाला, अभी चलाने वाला, मुझे पता है बहुत सारे अभी पंजाबी भाई आ गए सारे के सारे, मैं लीटू अब आ चुके हैं, तो भाई साथ में देखो अगला गाना पहले चलाऊंगा उसके बाद में बात करूंगा आज कौन कौन से इंटरनेशनल डिन मार्क्ड है, ठीक है भाई, बड़े आला चला रहे हैं साथ में, ओहो करी जाएगी, ठीक है, ये वीकेंड का हमारा रिचुअल है, गाना ये चलाते चलाते हैं भाई हम। हाँ भाई छोटू दाब दे भाई बटन, भाई साथ में होगा ये गाना, सीधी बात है, यो है भाई वॉटर पार्क वाला गाना बढ़िया वाला, ठीक है, आ जाओ जी सारे आ जाओ भाई साहब, डीजे वाली फील करा देंगे पूरी, हाँ भाई वॉल्यूम सीधा 22 पे भाई, साथ में हाँ,

हाँ जी भाई साहब मजा आ गया तो स्टूडियो में नाच लिया भाई, कहते वाटर पार्क वाली फील ले ली, दिल्ली में चला करता था भाई ये गाना अप्पू घर में ऊपर से पानी गिर रहा है ये चल रहा गाना फील है। बल्कि पता ये सैड गाना है, ये लिरिक्स पर ध्यान दिया कभी आपने, इसके सैड गाना है भाई, दिल जला के रोशन किया मैं ता तेरिया रावण हूँ भाई, सैड बात है ये लेकिन लोग बताओ किसी दुख में नाच रहे अच्छी बात थोड़ी है, नाचे थे क्या आप, कितनी कितनी बुरी बात है, ऐसा नहीं करते।

0: भाई तो मैसेज किया वकील भाई ने, वकील भाई पूछ रहे हैं कि क्या आप स्टूडियो में अकेले हैं? हाँ जी मैं कल्ला कल्ला होता हूँ स्टूडियो में इस टाइम, तो एक मैसेज है भाई प्ले वन सॉन्ग बीते लम्हे। अरे भाई वो क्या है काशिफ भाई, मैं बचा जाता देखो क्या है, बहुत सैड गाना हो जाएगा यार, समझ रहे हो? अभी फील है वीकेंड आली भाई और बॉस मेरी गुद्दी पकड़ लेंगे, समझ रहे हैं आप, इसलिए मैं चला नहीं पाऊंगा भाई। बीते लम्हे बहुत ही सैड हो गया भाई। एक मैसेज है भाई फर्स्ट से आप भाई, मैं पहली तारीख से सुबह 6 बजे आया करूँगा, बार बार मुझे याद दिला के मेरा भी खून जला रहे हो, सुबह के 6 बजे से 8 बजे तक मेरी जान। और एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम यासिन मुल्ला साहब और तबस्सुम, मैंने मैसेज किया अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ जॉन मैकेफी, नेवर रेड और थॉट के एंटीवायरस बनाने वाला इतना येड़ा भी हो सकता है। आगे लिखते हैं लेकिन एक बात समझ आई, पैसा हो तो कुछ भी पॉसिबल है, आई मिस्ड सम पार्ट्स बट इट फील्स मिस्टीरियस एंड आई ऑल्सो डोंट बिलीव ही हैज एक्चुअली डाइड, सेम ईयर बहन, हाई फाइव ऑन दैट, हाई फाइव। और एक मैसेज है जी कह रहे भाई बीते लम्हे संडे को चलवा, मेरे बर्थडे पे चलाओ बीते लम्हे, ठीक है ये कोई बात होती है? एक मैसेज आ रहा है अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू मॉर्निंग भाई, अरे भाई वालेकुम अस्सलाम, ये डीपी भाई ने मैसेज किया। ओके तो आज कुछ इंटरनेशनल दिन है जो मार्क्ड किए गए हैं, आज का दिन जो है 27 अगस्त, आज है बर्गर डे, आज है भाई बढ़िया वाला बर्गर दे, आई डोंट नो इफ यू हैव ट्राइड, यहाँ पे तो लोगों ने रहते रहते बड़े फैंसी फैंसी बर्गर खाए हैं, क्या किसी ने वो वाला बर्गर खाया जो ठेले पे मिलता है, उस बर्गर के साथ वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा उसे सेक देते हैं, समझ रहे, थोड़ा सा कड़क कर देते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, और उसके बीच में होती है भाई आलू की बढ़िया सी टिक्की, एक एक दो मोटी वाइट वाली प्याज होती है और उनकी अपनी बनाई हुई चटनी होती है, वो आपने खा लिया ना भाई, ये जो 35 रियाल में बर्गर खरीदते हो ना भूल जाओगे भाई उसको, 25-35 जो भी है भूल जाओगे, मैं बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कितने लोगों ने इसे ट्राई किया, आई एम प्रीटी श्योर कि अपने अपने मुल्कों में तो कहीं ना कहीं आपने खाया होगा, ठेले वाले बर्गर का जो फील है ना वो आपको आ ही नहीं सकता, यहाँ पे तो न जाने कौन कौन से उसमें सॉस डाल लें, कुजौन डाल दो, फुजौन डाल दो, पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं उसके अंदर, लेकिन वो जो सिका हुआ बर्गर होता ना वो भाई बन को सेकते हैं, हल्का सा कुरकुरा सा कर देते हैं, बीच में आलू की टिक्की बढ़िया आली, और भाई उस पर 2 सफ़ेद प्याज और उनकी स्पेशल चटनी, अरे भैया यार क्या है? मैंने खुद को याद दिला के दिक्कत पैदा कर दी, बताइए ये खुद को याद दिला के, एक भाई मुझे ये देखो माज भाई कुछ, माज भाई यार, माज भाई कह रहे हैं वड़ा पाव, अब इन्हें कौन बताया वड़ा पाव नहीं है वो माज भाई यार कभी दिल्ली चलो आप, मैं आपको बिगाड़ के लेके आता हूँ, बहुत सुधरे हुए आप वड़ा पाव नहीं है माज भाई, उसमें क्या करते हैं जो बर्गर का बन है ना, है ना, तो ऊपर नीचे जो बन है उसको सेकते हैं थोड़ा सा, वो भी तवे पे, ठीक है, बढ़िया उसको सेक देते हैं, थोड़ा सा तेल में हो जाता है, थोड़ा सा नहीं अच्छा खासा हो जाता है भाई, और उसको थोड़ा सा कुरकुरा कर देते हैं और फिर बीच में आलू की टिक्की डालते हैं और तबाही मच जाती है भाई, कतई भाई, अब मैं नहीं बोल पाऊंगा इस बारे में, आपको कोई मत पूछना। एक भाई कह रहे हैं भाई बर्गर या बर्गर, हाँ अंग्रेजी में अंग्रेजी वाले तो यही है बर्गर, इट्स बर्गर, डोंट, बर्गर क्या होता है बर्गर, एक में से भाई बस रुलाओगे क्या क्या दिल्ली नहीं लेकर जाना भाई किसी को भी क्यों क्या हो गया? कयामुद्दीन सब कह रहे हैं भाई आप लाके दोगे नहीं सिर्फ याद दिला रहे हो, भाई मैं खुद में क्या बताऊं यार उसको, और पता है उस बर्गर को कैसे खाना पड़ता है, मेरे गले में पानी आ गया, तो उस बर्गर को खाने का तरीका है, उसको ना पहले आपको टिश्यू पेपर में पकड़ना पड़ेगा, उसको थोड़ा सा दबाना पड़ेगा तो तेल थोड़ा सा जज्ब होगा उसमें, और जो बचा हुआ रहेगा ना उसको आपको खाना है, और धीरे धीरे खाना है, धीरे धीरे रोक नहीं पाएंगे आप खुद को, लेकिन उसको आपको फिर धीरे धीरे खाना है, दिक्कत हो जाएगी, मैसेज पढ़ देता हूँ क्या, हमारे गाँव में तो सर ऐसा क्या बर्गर मिलता है डबल लोड के अंदर डाल के देते हैं सबके लिए, वो भी लड़ाई करनी पड़ती है, क्यों ऐसा क्या उसमें ऐसा क्या होता है भाई? और ये कह रहे हैं भाई बहुत खाया है वो, हाँ मैं कह रहा हूँ ना खाया होगा बहुत, बहुतों ने ट्राई किया है, और रियान भाई कह रहे हैं ओए क्या याद दिला दिया जालिमो आपके चक्कर में मुझे याद आ गया, ये माज भाई को सर कॉल कीजिए, दिक्कत में आ गया बता मुझे, अब ये बर्गर नहीं मिलेगा तो, अब मैं तड़प गया भाई, अब मैं छुट्टी पर जाऊँगा ना दिल्ली, यही खाऊंगा मैं, गले लग जाऊँगा उसके, क्या भाई तू मुझे बर्गर खिला, उस टाइम तो इज्जत की नहीं उसकी बेचारे की, अब यहाँ के याद आ रहा है कॉल कर रहे हैं भाई साहब अस्सलाम वालेकुम,
1: अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल भाई?
0: भाई बहुत बुरे हाल हो गए माज भाई, ये जो बात हो गई ना बर्गर, ये गलत बात छिड़ गई है मैंने
1: आपके सर बुरे हाल नहीं हुए, मैं भी ऑफिस से निकला हूँ,
0: हाँ
1: मेरे साथ मेरे मैनेजर साहब है,
0: अच्छा
1: बांग्लादेश से,
0: हाँ हाँ
1: रोनी नाम है इनका,
0: अच्छा
1: आपको सुन रहे हैं,
0: रोनी भाई को प्यार बताइए,
1: सलाम करो,
0: वालेकुम सलाम, हाँ क्या क्या क्या कह रहे हैं रोनी भाई, क्या कह रहे हैं?
1: तो रानी भाई तो पहले भी बोल रहे हैं कि अभी तुम घर नहीं छोड़ो मेरे को, तुम मेरे को लेके चलो, बड़ा पाव खाएंगे बर्गर खाएंगे बोल रहे ठीक है। दूसरा फिर मैं रानी भाई को बोला कि भाई अब ये सब तो ऐसा है, तुम्हारे पास क्या मिलता है बर्गर में? तो रानी भाई के अल्फाज सुनो, रानी भाई सुनो, बर्गर में क्या मिलता है?
2: मिलता है अंडा फ्राई करके डालता है और कुछ आलू जैसा पाव नहीं, मतलब बड़ा नहीं है, आलू को चकना जैसा कुछ बनाएगा।
0: अच्छा,
2: देन उसमें
0: टमाटर है यार, मत करो रोनी भाई यार, ऑलरेडी यहाँ परेशानी चल रही है, आप तो जाके खा लोगे अभी बड़ा, वो मैं क्या करूँगा? मुझे
1: बोला भाई रोनी से बात कर लो, रोनी भाई से, रोनी भाई को अभी खाना है बर्गर।
0: रोहानी भाई ने दिक्कत पैदा कर दी, रोहानी भाई ने दिक्कत पैदा कर दी, मैंने तो पहली परेशानी पैदा की थी, इन्होंने उसको बढ़ा दिया, इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी। वैसे पता है
1: अब
0: नहीं नहीं आप खाइए भाई, मेरी तरफ से भी एक एक्स्ट्रा खा लो, पेट भरने के बाद भी गले तक खाओ आज रोहानी भाई, बढ़िया वाला ठीक है, यही कहना चाहता हूँ मैं। बाकी हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, अमाज भाई वो आपने खाया नहीं भाई, अब फैंसी रह गए, आपको मैं ले चलता हूँ दिल्ली के भी, चलो मेरे साथ
1: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
0: दम नहीं है आपको इंशाल्लाह, ये सरवर भाई वाला इंशाल्लाह, मैं समझ गया ठीक है, कभी कभी घर पे ही बनाएंगे, ट्राई करते हैं ठीक है मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों को, बहुत प्यार, ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और एक मैसेज है भाई, भाई ये रिक्वेस्ट आर नहीं चल रहा, एक मैसेज है भाई, आज मैं भी सर ठेला देखूँगा कहाँ पे बर्गर। भाई मैंने यार अब पता है ये बात छेड़ के मैंने अपने आप को बेचैन कर लिया है दिक्कत में डाल लिया, एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम, क्या बंटा है?
0: क्या हाल है बंटा है? क्या बच्चे क्या हो रहा है?
3: क्या बोलते बनता है? फिर आज तो वीकेंड है बनता है, कुछ ऑर्डर करूंगा तुम्हारे, तुम आवाज करो बस।
0: भाई जो चीज चाहिए ना भाई वो ऑर्डर होगी नहीं, यहाँ मिलती को नहीं भाई।
3: अरे भाई बोलो, अपन मंगवा देंगे भाई तुम्हारे लिए, इंडिया से बड़ी बात है भाई, बोलो ना भाई।
0: ये जो चीज जो मैंने बताई हुई है ना ये बिल्कुल वैसी है कि वहाँ आपको खड़े रहना है, प्रेजेंट रहना है इन टाइम, उसके बाद ही खाने का मजा है भाई इसको।
3: अरे भाई जोगिंदर का नाम चलता है भाई
0: वाह वाह क्या बात है मुंबई वालों, आई डोंट नो मुंबई में मिलता है ये वाला बर्गर? नहीं मिलता,
3: मिलता है ना भाई, क्या नहीं मिलता है भाई, सब चीज मिलता है भाई, मुंबई बोले तो सपनों का शहर है भाई, हर चीज मिलता है उधर, तुम सिर्फ आवाज कर रहे हो क्या?
0: मुंबई के बारे में कहावत है, या तो बंदा अखबार में आता है या अखबार बिछा के सोता है
3: ओ भाई मेरे, ओ भाई ये इतनी बेइज्जती मत करो भाई, समझ रहे हो तुम्हारे को और भी कोई सुन
0: भाई ये तो इज्जत कर रहा हूँ भाई मैं,
3: भाई ये क्या पेपर बिछा के सो रहे, कोई कोई कुछ नहीं भाई, चटाई बिछा के सोते भाई, पेपर बिछा के नहीं
0: ये कहावत के तौर पे तो कितना खूबसूरत साउंड किया ना, है ना, लगाना पंचलाइन लगी एकदम
3: भाई, तुम्हारी कहावत के चक्कर में पब्लिक भड़क जाएगी, बाद में बोलना नहीं मेरे को।
0: अरे तमाम मुंबई वाला मेरे भाई लोग बहुत सारा प्यार, क्या
3: अरे अभी भाई अभी तुम टाल दे भाई, मतलब पहले बोल दिया अभी टाल दे तुम बात को
0: अरे मैंने नहीं किसी महान हस्ती ने कहा है भाई, मैंने तो सिर्फ फॉरवर्ड किया है मैसेज ऊपर,
3: वो महान हस्ती का नाम बताओ भाई जो पेपर बिछवा के सुलवा दिया
0: वो नहीं पता भाई, मैसेज के ऊपर फॉरवर्डेड लिखा हुआ है बस इतना जान लो ठीक है
3: भाई एक बात बोलू भाई तुम्हारे को मैं, ये जो आज तुम स्टोरी सुनाए ना भाई, ये मूवी अपन देख चुके भाई।
0: हाँ क्या क्या पब्लिक को बताओ क्या मूवी का नाम है मैकेफे की? को क्या
3: भाई द किंग ऑफ जंगल नाम है भाई,
0: किंग ऑफ जंगल नाम है मूवी का
3: द भाई।
0: अच्छा ठीक है यार, ये अच्छा बता दिया आपने, मैंने भी ढूंढी नहीं थी बट वेरी गुड ठीक है, तो ये तो जिसको देखना है वो देख लेगा भाई, बढ़िया सही है।
3: और भाई एक बात बोल लूं भाई,
0: बोलो भाई।
3: ये भाई बदला बदला सा लग रहा अपना भाई,
0: बदला बदला नया लुक दिख ले नया लुक ब्रो, करना पड़ता है ब्रो। हाँ ऐसा ही भाई, ये नंबर ले लो, ब्लॉक करके रखना इस नंबर को, जल्दी से बोलो दिल से देसी, जल्दी से फटाफट।
3: अरे मेरी जान दिल से देसी है।
0: वेरी गुड आसिफ भाई, हमारा नहीं तो कैसा हो आसिफ भाई जैसा हो
3: हमारा भाई कैसा, पैसा ही पैसा,
0: पैसा ही पैसा, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी आपसे
3: ओके भाई
0: ठीक है आसिफ भाई, अपना ख्याल रखिए, आए मैं आपको अलग से मैसेज करता हूँ,
3: बिल्कुल बिल्कुल
0: अलग से मैसेज करता हूँ मैं आपको, अपना ख्याल रखिएगा
3: ओके
0: भाई ओके मेरा भाई ठीक है। तो आसिफ भाई का एक मैसेज आया है कि क्या चटाई के मोहसिन भाई, व्हाट इज दिस? और आज तो कह रहे हैं बर्गर ने गड़बड़ कर दी, सही वकील साहब।

आज वो वाला दिन है, और आज है इंटरनेशनल लॉटरी डे, जो कभी मत करना लॉटरी पे, आज है इंटरनेशनल लॉटरी डे, और आज कुछ और भी खास दिन है, आज है क्रैब सूप डे, ओके और आज है टग ऑफ वॉर डे, टग ऑफ वॉर तो चली रही है, कोई कह रहा है सुबह आ जाओ, कोई कह रहा है शाम में आ जाओ, और एक मैसेज है, क्या कह रहे हैं, सारे डे आज ही हैं जी आसिफ भाई, ऐसी कुछ चल रहा है। कबीर भाई फ्राइडे का क्या प्लान है, एहतम अब्बास भाई, भाई फ्राइडे का क्या प्लान है मुझे खुद नहीं पता भाई, मैं इतनी लंबी प्लानिंग की मेरी औकात नहीं है भाई। ये मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, न्यूज़पेपर जिंदाबाद हैं, न्यूज़पेपर जिंदाबाद, मुझे लगता है जगाना पड़ेगा खादिम भाई को, भाई जगाने के लिए तो खादिम अब्दुल्लादी भाई, ये मैसेज है, सॉरी गाना है, एक मैसेज सर नेपाल, हाँ मैं उसके बारे में मैं अलग से बात करता हूँ, सिद्धू मूसेवाला, हाँ जी मिलदा जी में गाने दे उस पार्ट।

मुझसे वाले को सुन के वो लाइन याद आ गई, वो रफ्तार भाई ने एक ऐप में कही थी, माइक पे हूँ मुझसे आला वैसे रब शेर के थी। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर फोन सेवन पे, और मोहसिन भाई समझ गए, कह रहे हैं भागने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल भाई, भागने की तैयारी हो रही है। और एक भाई कहते हैं दिल खुश कर दिया भाई सिद्धू सुना के, थैंक यू मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड नो प्रॉब्लम रफीक भाई, जजाकल्ला। और बाकी तो जी अभी 6:10 हो चुके हैं, एक मैसेज है कि कबीर भाई हैव अ ब्लेस्ड एंड गुड वीकेंड, अराइव्ड एट होम। ठीक है मेरा भाई, मैं भी घर ते चला भाई, मैं भी अभी फिलहाल सोशल मीडिया हैंडल्स के बारे में बता दूँ, FM107 कतर, FM107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ गेट इन टच विद अस, और मुझसे भी जुड़ सकते हैं भाई, क्यों नहीं। सो मुझे ढूंढ सकते हैं टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, दोहा वाला कबीर के नाम से, KABIR, ठीक है, KABIR, मिल जाऊंगा मैं आपको अपने पुराने लुक में। सो वहाँ पे भी ज़रूर आइएगा। एंड फॉर नाउ दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, 7 बजे सुनेंगे आप न्यूज़ बुलेटिन, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी हैं। मां सलामा।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, बर्थडे एक ऐसा दिन होता है जो हर किसी के लिए स्पेशल होता है। केक्स, डेकोरेशंस, गिफ्ट्स,

फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन भाई, बर्थडे की खुशियाँ बड़ी यादगार होती हैं, बहुत अच्छे लम्हे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक बर्थडे पार्टी के बाद कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है भाई? प्लास्टिक डेकोरेशंस हो गई, डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गई, एक्स्ट्रा खाना हो गया, रैपिंग पेपर्स हो गए, पार्टी आइटम्स जो सिर्फ

0: एक अलग तरीका है खुशी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा एनवायरमेंट को भी कंसिडर कर लें तो भाई सेलिब्रेशन और भी मीनिंगफुल बन सकता है। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं इको स्विच में इको फ्रेंडली बर्थडे के बारे में, यानी बर्थडे सेलिब्रेशन जो खुशी भी दें और नेचर का भी ख्याल रखें। पहले तो प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं ना। देखें साथियों, बर्थडे पार्टीज में अक्सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वेस्ट को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि कह लिया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स और कटलरीज, ये तो बड़ी मेन चीज है। प्लास्टिक बलून्स और डेकोरेशंस, गिफ्ट रैपिंग्स का एक्स्ट्रा वेस्ट, जरूरत से ज्यादा खाना बना लेना या ऑर्डर कर लेना, डिस्पोजेबल पार्टी आइटम्स जो दोबारा यूज ही नहीं होते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि भाई एक दिन की पार्टी तो है, क्या ही कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब हम हर रोज दुनिया भर में हजारों सेलिब्रेशंस होते हुए देखते हैं तो क्या आपको लगता है कि ये कोई छोटी सी मामूली सी बात रह जाती है? या आपको ये लगता है कि भाई ये अगर हजारों लोग एक ही दिन में बर्थडे मना रहे हैं तो वेस्ट क्रिएट कर सकती है? अच्छा, अच्छी बात ये है कि बर्थडे को इको फ्रेंडली बनाने के लिए खुशी और फन को कम करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी स्मार्ट सी प्लानिंग चाहिए होती है। देखें, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन इसका ये है। अगर मैं आपको बताऊं कि इको फ्रेंडली बर्थडे के लिए आप कौन से सिंपल आइडियाज अपना सकते हैं तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देती हूँ। रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करें। हर साल नए प्लास्टिक डेकोरेशंस खरीदने के बजाय रीयूजेबल बैनर्स, फैब्रिक डेकोरेशंस या लाइट्स यूज की जा सकती हैं। इन्हें दोबारा डिफरेंट ओकेजंस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये डिजिटल इन्विटेशंस यूज करें ना। पेपर इन्विटेशन कार्ड की जगह वो पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी, इसकी जगह आप डिजिटल इन्विटेशंस भेजें। ये इजी भी होते हैं, पेपर भी कम वेस्ट होता है और क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। अच्छा, सिंपल फूड प्लानिंग करें। बर्थडे पार्टी के लिए उतना ही खाना प्रिपेयर करें जितना जरूरत हो। अगर खाना बच जाए तो उसे प्रॉपर्ली स्टोर करें, या सबसे बड़ी बात है कि आप जरूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचाने का इंतजाम करें। आपकी बर्थडे है भाई, सेलिब्रेट करें उसे अच्छे तरीके से, मीनिंगफुल वे से। इको फ्रेंडली गिफ्ट्स दें। गिफ्ट्स के लिए रीयूजेबल बैग्स यूज करें या ऐसे गिफ्ट्स चूज करें जो यूजफुल भी हों और लॉन्ग लास्टिंग भी हों। प्लांट्स हो गई, बुक्स हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए या क्रिएटिव गिफ्ट्स भी यादगार हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्पोजेबल आइटम्स को अवॉइड करें। जहां मुमकिन हो घर के रीयूजेबल प्लेट्स, ग्लासेस और कटलरी यूज करें ना, इससे पार्टी का वेस्ट भी काफी कम हो जाता है। अच्छा, अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दी जाए तो साथियों, आजकल बहुत सारी फैमिलीज अपनी बर्थडेज को क्रिएटिव इको फ्रेंडली बना रही हैं। कुछ लोग आउटडोर पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहां डेकोरेशन बड़ी सिंपल और मिनिमम होती है। कुछ फैमिलीज रीयूजेबल बर्थडे बैनर्स संभाल कर रख लेती हैं और हर साल दोबारा उसी को यूज करती हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई बर्थडे सिर्फ गिफ्ट लेने का नाम नहीं होता बल्कि शेयरिंग और काइंडनेस का भी दिन होता है। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे अपने बर्थडे पर एक्स्ट्रा गिफ्ट्स की जगह बुक्स डोनेट करते हैं या प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसी सेलिब्रेशन सिर्फ यादगार नहीं होती बल्कि एक पॉजिटिव मैसेज भी देती है। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि अगले बर्थडे सेलिब्रेशन में एक इको फ्रेंडली चेंज जरूर ट्राई करें, चाहे वो रीयूजेबल डेकोरेशंस हो, खाने का वेस्ट कम हो या डिजिटल इनविटेशंस भेजे जाएं तो। और हाँ, हमें जरूर बताइएगा आपके ख्याल में बर्थडे पार्टी की सबसे जरूरी चीज क्या होती है, केक, डेकोरेशन, गिफ्ट्स या फैमिली और फ्रेंड्स का साथ। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन एफएम 107। याद रखिए, सबसे खूबसूरत सेलिब्रेशन वो होती है जहाँ खुशी भी हो और नेचर के लिए जिम्मेदारी भी। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107। दिल से देश से
1: Maximum music, maximum fun. On FM 107, Dil Se Desi.

0: hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में इशा की अज़ान का वक्त हो गया है।

कल्चर हमारी सोच, हमारे रवैये और हमारी जिंदगी जीने के तरीके का भी नाम है। और वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन एक बात जो हिस्ट्री ने हमें जरूर सिखाई है, दुनिया का कोई भी कल्चर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज से 20 साल पहले लोग फैमिली गैदरिंग्स में घंटों बैठकर बातें करते थे। आज अक्सर फैमिली एक ही कमरे में होती है, लेकिन हर शख्स अपने फोन स्क्रीन में बिजी नजर आता है। कम्युनिकेशन आज पहले से ज्यादा फास्ट है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इमोशनल कनेक्शन पहले जैसा कहाँ रहा। क्या अगले चंद सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी हमारी डेली लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएंगे कि शायद वो हमारे रिश्तों को भी तब्दील कर दें? जवाब है, हो सकता है, ये मुमकिन है। देखिए, आप जानते हैं कि फैमिली वैल्यूज हैं क्या। हमारी सोसाइटीज में फैमिली को हमेशा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, एल्डर्स की इज्जत, फैमिली सपोर्ट हमारे कल्चर का एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन मॉडर्न लाइफ का प्रेशर, बिजी स्केड्यूल्स और ग्लोबल मोबिलिटी की वजह से फैमिली स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो रहे हैं। आज बहुत से लोग एजुकेशन और जॉब्स के लिए दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या फिजिकल डिस्टेंस इमोशनल डिस्टेंस भी बन जाते हैं, या टेक्नोलॉजी फैमिली बॉन्ड को और मजबूत करती है? बहुत से लोगों का ये मानना भी है। देखिए, आज एक टीनेजर दोहा में बैठकर वही म्यूजिक सुनता है जो लंदन में या न्यूयॉर्क में रहकर कोई सुन रहा है। सोशल मीडिया ने कल्चर्स को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड किया है। इसका फायदा ये है कि हम दूसरे सोसाइटीज के तौर तरीकों को सीख भी रहे हैं। लंदन में किस तरह का कल्चर है, कैसा म्यूजिक है, कैसे कपड़े हैं, कैसे ट्रेंड है, आज हम यहाँ दोहा में बैठकर सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। क्या फ्यूचर में भी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व रह पाएगी, या दुनिया एक ग्लोबल कल्चर की तरफ बढ़ जाएगी? ये सवाल बड़ा सवाल है। कौन कौन से ऐसे वैल्यूज हैं जो आपको लगता है कि कभी पुराने नहीं होंगे? चलिए, जब तक आप सोच रहे हैं, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ कल्चर्स हमारे और आपकी जिंदगी का ऐसा बुनियादी हिस्सा है जिन्हें हमें और आपको बदलने भी नहीं देना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल्चर तो चेंज हो सकता है, फैशन चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, लेकिन वैल्यूज ऐसे होते हैं जो हर जनरेशन में कीमती रहते हैं और इन्हें रहना भी चाहिए। जैसे सच बोलना, रिस्पेक्ट देना, काइंडनेस, ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहूंगी ये वो वैल्यूज हैं जो शायद फ्यूचर में भी लोगों को जरूर रिक्वायर्ड होंगे, चाहे दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए। जैसे हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्यूचर जनरेशन का नजरिया थोड़ा सा हमसे मुख्तलिफ है। हर जनरेशन अपने वैल्यूज और अपनी प्रायोरिटीज साथ लेकर आती है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए स्टेबिलिटी और सिंप्लिसिटी बड़ी अहमियत रखती थी। हमारे पेरेंट्स के लिए हार्ड वर्क और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अहमियत रखती थी। लेकिन आज की जनरेशन के लिए फ्रीडम, इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। और मुमकिन है कि कल की जनरेशन डिजिटल एथिक्स, मेंटल वेलबींग और सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। यानी वैल्यूज ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं और साथ ही चेंज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हर जनरेशन को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो अपने माजी से क्या साथ लेकर चलेगा और मुस्तकबिल के लिए क्या नया क्रिएट करेगा। देखिए, कल्चर दरिया की तरह होता है, उसका पानी हमेशा बहता रहता है और शायद बदलता भी रहता है, लेकिन उसकी बुनियादी पहचान कायम रहती है। इसी तरह टेक्नोलॉजी और वक्त के साथ हमारा लाइफस्टाइल बदल सकता है, बदल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा, वैल्यूज, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, इंसानियत, ये बड़ी कीमती हैं, ये ना बदलने चाहिए। और हमें और आपको इन्हें और स्ट्रॉन्गली अपनी फैमिली में इनकलकेट करने की ज़रूरत है। हमें बच्चों को और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में स्ट्रॉन्गली बताने की ज़रूरत है। कैसे, ये आप बेहतर तरीके से डिसाइड करेंगे। फिलहाल मुझे, यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इस सेगमेंट से इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी। One step to 22.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा

0: लेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं लेकिन इंसान की रूह आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं सुन्नी किराम आज हम एक अजीम खुलक पर गुफ्तगू करेंगे अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अंसार के कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा तो आपने उन्हें दिया उन्होंने फिर मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फिर दिया यहाँ तक कि जो माल आपके पास था वो ख़त्म हो गया जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास मौजूद सब कुछ दे चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अगर मेरे पास माल हो तो मैं उसे तुमसे हरगिज़ बचा कर नहीं रखूँगा ताहम याद रखो कि जो शख्स सवाल करने से बचने की कोशिश करता है अल्लाह ताला भी उसे सवाल करने से महफूज रखता है और जो शख्स बेनियाज होने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसे बेनियाज कर देता है और जो शख्स सब्र करने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी उसे सब्र अता करता है और किसी को भी सब्र से ज्यादा बेहतर और उससे ज्यादा बेपाया भलाई नहीं मिली इसे रिवायत किया है बुखारी और मुस्लिम ने सामिन कराम इस्लाम ने ज़रूरतमंद की मदद करने की बहुत तरगीब दी है लेकिन बिला ज़रूरत लोगों के सामने हाथ फैलाने की हौसला अफजाई नहीं की मोमिन की इज्जत यह है कि वह हत्तल इम्कान अपनी ज़रूरियात अल्लाह ताला से मांगे और अपनी मेहनत पर भरोसा करे तो पहला उसूल यह है कि सवाल से बचो फिर दूसरा उसूल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत में कि असल दौलत दिल की दौलत है जो शख्स बेनियाजी इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे बेनियाज कर देता है बाज़ लोगों के पास करोड़ों होते हैं फिर भी दिल मुतमईन नहीं होता और बाज़ लोग महदूद वसाइल के बावजूद खुश मुतमईन और शुक्रगुजार होते हैं तो दिल में कनात आ जाए वही हकीकी गिना है तीसरा उसूल है सब्र की मशक करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सब्र करने की कोशिश करता है अल्लाह ताला उसे सब्र अता फरमा देता है तो ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि सब्र कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अचानक इंसान में आ जाए सब्र की आदत डाली जाती है जब इंसान हर आजमाइश में अल्लाह ताला पर भरोसा करता है अपनी ज़बान को शिकायत से बचाता है और दिल को अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रखता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में सब्र पैदा फरमा देते हैं फिर आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सब्र सबसे बड़ी नेमत है किसी इंसान को सब्र से बेहतर और उससे ज्यादा वसी अतिया नहीं दिया गया यानी अगर इंसान के पास माल हो लेकिन सब्र ना हो तो वो माल भी उसे सुकून नहीं दे सकता अगर सेहत हो लेकिन सब्र ना हो तो मामूली बीमारी भी उसे बेचैन कर देती है अगर इल्म हो लेकिन सब्र ना हो तो वो इल्म भी फायदा नहीं देता इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र सबसे बड़ी नेमतों में से एक है आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज़ हमें फौरन चाहिए फौरी कामयाबी फौरी दौलत फौरी शोहरत जब कोई मुश्किल आती है तो इंसान फिर जल्द मायूस हो जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि अपने इज्जत नफ्स की हिफाजत करो लोगों से ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा करो जो मिला है उस पर कनात करो और आजमाइश आए तो सब्र करो अल्लाह ताला तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे सामिन ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर बरकत सुकून और कामयाबी पोशीदा है और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत मअस्सलामा
1: हर नबी की जिंदगी एक सबक है एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है उनकी कुर्बानियां सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है Stories of Prophets. Stories of Prophets. जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियाँ, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात, जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।

सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर एक बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी। आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mahvish Khan. Aaj hum baat karenge khud ka muhasba karne ke bare mein. मुहासबे का मतलब है अपनी जिंदगी और अपने अमाल का जायजा लेना। ये एक ऐसी आदत है जो इंसान को बेहतर बनाती है और उसे अपनी गलतियों को सीखने का मौका देती है। अक्सर हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं लेकिन अपनी तरफ तवज्जो नहीं देते, जबकि असल कामयाबी ये है कि इंसान अपनी इस्लाह पर फोकस करे। रोजाना का छोटा सा मुहासबा हमें ये समझाने में मदद देता है कि हमने क्या अच्छा किया और कहां बेहतरी की जरूरत है। ये आदत इंसान को प्रोग्रेसिव बनाती है और उसे स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद देती है। आज का अमल ये है कि दिन के एंड पर 2 मिनट निकाल कर अपने आज के दिन का जायजा लें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महवश के साथ।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: नगर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतरी टेबल टेनिस प्लेयर मरियम अली के बारे में। मरियम अली कतर की नुमाया वीमेन टेबल टेनिस प्लेयर्स में शुमार होती हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से मुल्क का नाम बैन अवी सतह पर रोशन किया है। वो कतर की नेशनल टेबल टेनिस टीम का अहम हिस्सा हैं और मुसलसल अरब और गल्फ टूर्नामेंट्स में मुल्क की नुमाइंदगी करती आ रही हैं। मरियम अली की सबसे अहम कामयाबियों में अरब टेबल टेनिस चैंपियनशिप में आया मोहम्मद के साथ विमेंस डबल्स और टीम इवेंट में सिल्वर मेडल्स जीतना शामिल है। दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार टीम वर्क और बेहतरीन गेम का मुजाहरा करते हुए कतर के लिए यादगार नतायज हासिल किए। इस कामयाबी ने कतर की वुमेन्स टेबल टेनिस को नए मकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। इनफैक्ट इस साल के गल्फ गेम्स में भी मरियम अली ने अपनी सलाहियतों का सबूत दिया। उन्होंने मिक्स डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक और बैन अवी कामयाबी अपने नाम की। मेडल उनकी मुसलसल मेहनत, डिसिप्लिन और बेहतरीन तैयारी का नतीजा था। दोस्तों मरियम अली फिटनेस, फोकस और मुसलसल प्रैक्टिस पर यकीन रखती हैं। वो हर टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं और कतर के लिए मजीद मेडल्स जीतने का अजम रखती हैं। उनकी कामयाबियां कतर की नौजवान लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं और ये पैगाम देती हैं कि मेहनत और हौसले के जरिए हर मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेमत की जो कि ना सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है बल्कि जिस्म, दिमाग और दिल को भी सुकून पहुंचाती है, और वो है हंसी यानी लाफिंग। आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में हर शख्स किसी न किसी परेशानी, दबाव या मसरूफियत का शिकार है। ऐसे में अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी और हंसी के चंद लम्हे शामिल कर लें तो उसके हैरत अंगेज फवायद हासिल हो सकते हैं। जब हम दिल खोलकर हंसते हैं तो दिमाग ऐसे कुदरती कीमियाई मादे खारिज करता है जिन्हें एंडोर्फिन्स कहा जाता है। ये हमें खुशी, सुकून और इत्मीनान का एहसास दिलाते हैं। जब आप हंसते हैं तो जहनी दबाव कम हो जाता है, जिस्म के मसल्स का तनाव कम होता है, सांस गहरी होती है और जिस्म को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है यानी बेहतर अंदाज में होती है, दिल कुछ देर के लिए मौसर तरीके से काम करता है। कई माहिरीन हंसी को कुदरती स्ट्रेस रिलीफ भी कहते हैं। हंसने से दिमाग का मुस्बत अंदाज फिक्र मजबूत होता है। जब इंसान खुश होता है तो मसाइल का बेहतर अंदाज में सामना कर सकता है, फैसले निस्बतन बेहतर करता है और दूसरों के साथ उनका रवैया भी खुशगवार रहता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि दिल खोलकर चंद मिनट हंसने के बाद इंसान ज्यादा पुरसकून महसूस करता है क्योंकि जिस्म में तनाव

0: और पैदा करने वाले हार्मोन्स कम होने लगते हैं। तो लिसनर्स, मुस्कुराहट मुफ्त है मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये ना सिर्फ आपको खुश रखती है बल्कि दूसरों के दिल भी जीत लेती है।
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: क्या आप इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं? क्या आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, आरजे नाजिया आपको लेकर जाएंगी एक नए सफर पे, जहां आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हो, इन्वेस्ट कतर ये है आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म। सुनिए शो इन्वेस्ट कतर, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी तरक्की।
1: हेलो एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड इन्वेस्ट कतर, जहां हम बात करते हैं फाइनेंस की, इन्वेस्टमेंट्स की और बिजनेसेस की। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं ऑन द टॉपिक कॉल्ड बजटिंग, सेविंग्स एंड ओवर स्पेंडिंग। इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बीच एक्सपर्ट मौजूद हैं, मिस्टर जैद। वी वुड लव टू वेलकम यू ऑन FM 107।
2: थैंक यू।
1: होप यू आर डूइंग गुड।
2: या, आई एम फाइन।
1: क्योंकि हमारा टॉपिक ही है बजटिंग, तो वी विल स्टार्ट विद दिस कि बजटिंग क्या है, ये एक आम इंसान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट और एसेंशियल है, एंड क्या बजटिंग की वजह से ही लेटर ऑन सेविंग्स मुमकिन है।
2: जी, हम शुरुआत करते हैं कि इंग्लिश में एक सेइंग है जिसे बोलते हैं, इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल।
1: वेरी वेल सर।
2: तो बेसिकली आप बजटिंग क्यों करते हो? आपको मालूम है, आपको अंदाजा है कि आपकी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या आपकी निजी जिंदगी हो, उसके अंदर आपको आने वाले खर्चों का एक अंदाजा होता है।
1: सही।
2: तो बजट क्या होता है? बजट बेसिकली आपके जो हिस्टोरिकल डेटा है, हिस्टोरिकल एक्सपेंसेस हो चुके हैं, बेसिकली उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए एक आप प्लान तैयार करते हो कि आने वाले दिनों में हमारा इतना खर्चा हो सकता है और हमारी आमदनी इतनी होगी। तो बस अब वही है, अब जब आपने जो एक खाका तैयार कर लिया है, अब उस पर आपको अमल करना है। तो जब आप अमल करेंगे तो सरप्राइजेस कम आएंगे जिंदगी में। तो ये मेरी समझ है इसके बारे में।
1: बहुत ही अच्छे, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने हमारी ऑडियंस को समझाया। अच्छा, हमारे जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, जिनकी बहुत लिमिटेड सैलरीज हैं, और उनकी सैलरी का बेसिकली जो मतलब है, इज ऑल अबाउट यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिलमेंट, तो ऐसे में वो किस तरह से बजटिंग करें इन ऑर्डर टू यू नो सेव मनी फॉर द फ्यूचर।
2: अब देखिए, जैसे यहाँ पे कतर की बात करी जाए, जैसे ब्लू कॉलर वर्कर्स स्पेशली सब कॉन्टिनेंट से आते हैं और ज्यादातर मतलब स्किल्ड लेबर्स, जैसे प्लम्बर्स हैं, मेसन्स हैं, तो इनका क्या है कि मतलब ये तो जनरली आइदर दे आर, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रीलांसर्स, तो उनका क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो इतनी नहीं होती हैं। उसके अलावा वो लोग क्या करते हैं कि मतलब एक तो उनको जो नॉर्मल जो वर्क है अपना, कहीं पे भी जो उनको जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो है जॉब्स मिलती हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है, वो तो नॉर्मल अपनी वो लाइफ चल रही है, उससे वो सेविंग्स कर रहे हैं या जो भी अपने घर का खर्चा चला रहे हैं। बात ही अगर वो उनको जो एक्सेस ज़रूरियात हैं वो पूरी करते हैं फ्रीलांसिंग से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारे मतलब हमारे बांग्लादेश के भाई हैं जो मैंने उनके देखा है कि ऑनलाइन उन लोगों ने जो है अपनी प्रोफाइल्स डाल रखी हैं, वेरिन यू नो पीपल कैन ऑर्डर प्लम्बर्स ऑनलाइन और स्किल्ड वर्कर्स ऑनलाइन, वेरिन दे आर प्रोवाइडिंग दे सर्विसेज।
1: ट्रू।
2: सो there are many ways wherein people can hustle, a side hustle is necessary, to even blue collars wo cheez zyada samajhte ho, in fact matlab jo white collars hain unse zyada wo guts rakhte hain ye sari cheezon mein jaane ke liye।
1: बहुत ही अच्छी बात कही आपने। अच्छा, एक चीज, एक टर्म जो है आजकल बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ डिपेंडेंसी आफ्टर रिटायरमेंट। इस टर्म को किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे?
2: देखिए, सेल्फ डिपेंडेंसी बस यही है, उसको उर्दू में कहें तो खुद मुख्तारी हो गई। अब जैसे कि इंसान की जो ज़िंदगी है ज़्यादा से ज़्यादा 65 साल जो भी तबीयी ज़िंदगी है, आप रिटायर कर जाते हो तकरीबन 55-60 साल। बहुत सारे लोग आजकल अर्ली रिटायरमेंट की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि दे वर्क

0: हार्ड यानी रिग्रेसली रिग्रेस हुआ करते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं आइदर लैंड में और नहीं तो घर बनाने में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि मतलब कोई भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड में कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ करना है कि वो डेवलप किस तरह से कर रहे हैं। मान लीजिए उन्होंने हॉस्टल बना दिया, अब उसमें बच्चों को रिहाइश के लिए दे दिया, अब इनकम जो है रेंटल इनकम जनरेट हो रही है। दूसरा तरीका है, मान लीजिए आपके पास जो है बिल्डिंग है, आपने जो है उसमें या तो बिजनेस कॉम्प्लेक्स खोल दिया, रेंट पे दुकानें देती, ठीक है, नहीं तो आपने किसी बैंक को दे दिया, एटीएम्स खोल दिए, मतलब छोटी छोटी जगहों पे आपने एटीएम्स खोल दिए। उसके अलावा नहीं तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल अपने पर्टिकुलर एरियाज में जहाँ पे उनको जगह नहीं मिलती है एक्सक्लूसिव, जहाँ पे वो टावर्स लगा सकें, तो वो क्या करते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टीज पे जो है वो लोग, अगर मान लीजिए आपकी बिल्डिंग ऊँची है तो वो उस पर जो है टावर्स लगा देते हैं। मतलब देर आर एन नंबर ऑफ एवेन्यूज वेयरिन यू कैन इन्वेस्ट एंड अर्न मनी। तो अब वो जनरेट आराम से मतलब हो सकता है कि अगर आप सही से प्लान कर रहे हैं, यहीं पे बात आ रही है प्लानिंग की। प्लानिंग मतलब बजटिंग है, आपने वो बजटिंग पहले ही अपनी लाइफ में 10-20 साल पहले कर रखी है राइट टाइम पे। सो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग।
1: बहुत ही अच्छा, फ्यूचरिस्टिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ओवर स्पेंडिंग इस टर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे देखते हैं? एंड सेकेंडली, कुछ लोगों को मैंने देखा है जो दिखावे के चक्कर में कर्ज लेते हैं, लोन ले लेते हैं, एंड दे ट्राई टू यू नो शो के हम भी कुछ हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का जो अमल है उसको क्या ओवर स्पेंडिंग के अंदर ही इंक्लूड किया जाए?
0: अब देखिए, ओवर स्पेंडिंग या कह लीजिए फजूल खर्ची, अब फजूल खर्ची का जो मतलब समझ लीजिए जो बग बाइट करता है स्पेशली पीपल जो हमारे यहाँ के लोग हैं, क्योंकि हमारे ही लोग ज़्यादा मद्देनज़र में हैं, वो यहाँ आते हैं, वो एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल को यूज़ टू हो जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, लोन्स लेते हैं, अच्छी फ्लैशी गाड़ियाँ ले लेते हैं, बड़े घर ले लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वन फाइन डे उनकी, जैसे मान लो जॉब चली जा रही है, दे आर बैक टू बेसिक्स, मान लीजिए उनके पास ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं, फिर वो सोचते हैं कि वो इंस्टॉलमेंट्स कैसे किसी दूसरे को ट्रांसफ़र करे जाएं। तो ये सारी चीज़ों के लिए इंसान को ये करना चाहिए कि आपको प्रैग्मेटिक होना पड़ेगा, मतलब जुझारू होना पड़ेगा कि आप ये सारी चीज़ों पर देखिए। यहाँ पर इंसान क्या करता है कि माशरे की मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है कि बड़ा घर ले लेता है कि हमारे यहाँ मेहमान आएंगे, हमें एक सोशल स्टेटस मेंटेन करना है और मतलब लोगों के नज़रिए में, बट वो जब वो गिरता है तो हाथ थामने वाले कम होते हैं।
1: What?
0: लेकिन उस वक्त में जिस टाइम वो ये सारी चीज़ें मतलब जो फजूल खर्ची कर रहा था, तो उस टाइम पे उस चीज का अंदाजा उसको नहीं था। तो प्रैक्टिकलिटी इसी में है कि सबसे पहले आप अपनी चादर देखेंगे और फ्यूचर प्लानिंग करें। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो है आपकी जो है क्या बोलते हैं पेड़ ऊपर से बहुत ही हरा भरा दिखाई दे, उसका तना बड़ा लंबा हो, शाखें बहुत बड़ी बड़ी हों। इम्पॉर्टेंट ये है कि इंसान वो ज्यादा मालदार है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और जिनको कहते हैं बूढ़े लोग, मतलब नूवो रिच ना बने, आप जो है वेल्दी बनने की कोशिश करें। मालदार नहीं अच्छी चीज है, वेल्दी बनने की कोशिश करें, वेल्थ जनरेट करें।
1: बहुत ही अच्छी बात, जबरदस्त, एक्सेलेंट, इंप्रेसिव। अच्छा, कुछ एक्सपेंसेस इस तरह के हैं जो सीजनल होते हैं, शादी है या कभी आपको कोई बड़ी चीज खरीदनी है, फॉर एग्जांपल आपकी जरूरत भी है, और कभी किसी तरह कोई मिसहैप या फिर कोई बीमारी, ऑल ऑफ सडन भी चीजें आ जाती हैं, तो उसके लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए? और एक चीज और, कुछ लोगों के लिए जो एसेंशियल खर्चे हैं वो दूसरों के लिए नॉन एसेंशियल है, तो कैसे इसको भी डिफरेंशिएट करें अपने लाइफ में?
0: पहला पार्ट के आपने क्या बोला था पहले?
1: सबसे पहले कि बहुत सारे सीजनल खर्चे निकल आते हैं, कुछ एक्सीडेंट्स या मिसहैप,
0: जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक इमरजेंसी फंड हमेशा होना चाहिए। जनरली यहाँ पे जो लोग हैं वो इमरजेंसी फंड रखते हैं, फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड आपकी जॉब चली गई, आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है, मार्केट डाउन है, तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू हैव अ प्लान बी। और फिर मतलब हदीस शरीफ से भी आता, अगर आप जहाँ पे आपकी चीजें सही नहीं हो पा रही हैं माश को लेकर, तो आप हिजरत कर जाएं, ठीक है, आप हिजरत कर जाएं। तो अब उस हिजरत करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब बात फंड की जहाँ बात आती है, तो फिर वो आपने पहले से जो प्लानिंग कर रखी है, आपने अपने कुछ पैसे बचा रखे हैं, उन्हीं पैसों के जरिए फिर आप अलग आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं।
1: सही,
0: ठीक है। अब दूसरी बात आ गई, जो नॉन एसेंशियल खर्चे हैं जो दूसरे के लिए जो है

0: एसेंशियल है, राइट? तो अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जिसके लिए एसेंशियल खर्चे ये होगा कि उसको हर हफ्ते जो है बाहर जाना है और बढ़िया जगह पे डिनर करना है,
1: आउटिंग,
0: और आउटिंग करनी है, जो कि बहुत मुश्किल होता है, मतलब उसको अवॉइड करना फैमिली में रहते हुए और यार दोस्तों के साथ उठने बैठने में. तो उनके लिए उन्होंने क्या करा है कि ऑल्दो ये नॉन एसेंशियल है इफ यू थिंक प्रैग्मेटिकली, बट उन्होंने एसेंशियल इसको बना लिया है माशरे के लिए. तब इसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको जो क्या बोलते हैं जो फ्रीक्वेंसी है उसको फ्रीक्वेंसी को कम करना पड़ेगा. उस जब फ्रीक्वेंसी को आप कम करेंगे धीरे धीरे धीरे धीरे आप अपना एक साइड बैकअप बनाते हुए चलें, ना कि आप मतलब फजूल खर्ची करें. ठीक है, तो बस यही.
1: अच्छा, बजटिंग में फैमिली को कैसे इन्वॉल्व करें?
0: बजटिंग में देखिए सबसे बेहतरीन तरीका फैमिली को इन्वॉल्व करने का ये है कि जो घर चलाती है वो एक लेडी होती है और उसका इन्वॉल्वमेंट मतलब बहुत ज़रूरी है. ज़्यादातर मर्द हजरात यही करते हैं कि वो पैसा कमाते हैं लेकिन वो पैसा ला के दे देते हैं अपनी अहलिया को, क्योंकि वो तो घर भी संभाल रही है, मतलब उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जॉब डिफाइन नहीं होती है एक लेडी की. तो आप उसको पहले इन्वॉल्व करें, बच्चों के अंदर वो सेविंग जो है ना हैबिट्स इंस्टिल करें, उनको आप जो है ये पिगी बैंक्स ला के दें कि ये बेटा आपके लिए है, और फिर मंथ में आप जो है जैसे एज अ बोनस उनको कोई ज़रूरत की चीज़ दिला रहे हैं, उनके अंदर ये चीज़ इंकलकेट कर रहे. फॉर एग्जांपल आप उनको एक छोटी सी पॉकेट मनी दे रहे हो, 5 रियाल दे रहे हो, तो उनके अंदर ये बताओ कि देखो बेटा आप 2 रियाल से कुछ कर लो, आप 3 रियाल बचा लो, जेब में रख लो, या आपके फ्यूचर में आप इससे कोई अच्छी चीज़ ले सकते हो. तो मतलब ये चीज़ें हमको अपने घरों में जो है तरबियत करना पड़ेगी, नहीं तो ख़ास तौर से खलीज वाले उनका ये है कि जब वो वापस अपने मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे बेचारे उनको सपोर्ट नहीं मिलता, सपोर्ट सिस्टम नहीं होता. तो बेहतर ये है कि वो अभी से सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना चालू करें और वो बच्चों को जो है सेल्फ सब्सिस्टेंट, जैसे आपने सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए वो तैयार करें, एक नया जनरेशन तैयार करें.
1: वेरी वेल सेड.
2: क्या आप इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं? क्या आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, आरजे नाजिया आपको लेकर जाएंगी एक नए सफर पे, जहां आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हो, इन्वेस्ट कतर ये है आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म. सुनिए शो इन्वेस्ट कतर, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी तरक्की.
1: अच्छा, कुछ लोगों के लिए बहुत अहम है कि वो बच्चों की फ्यूचर की जो एजुकेशन उसे प्लान करें, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, ये तो सवाल बहुत ही अहम सवाल है और हमारी अहलिया भी हमसे पूछती रहती हैं कि देखिए आजकल एजुकेशन कितनी महंगी हो गई है और इतनी एक्सक्लूसिव हो गई है, और फॉर एग्जांपल इवन कतर में भी जो ग्रेजुएशन की कॉस्ट है इट्स इन लाइक हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, यू नो इट्स नॉट ईजी, लाइक पर सेमेस्टर आप मे बी 40,000 दे रहे हो. तो to afford that you have to start saving now itself on a monthly basis. Say for example I have a daughter, you have decided that you want to make her a doctor or whatever the career plan is, so you can keep aside some money for her education or his education, and also different, like, you know, you need to budget out. Yeah,
1: ye bahut zaruri hai, and aap keh rahe hain ki pehle se hi
0: पहले तो ही करेंगे तभी आप, क्योंकि देखिए और अहम चीज क्या है कि सिर्फ सेविंग्स इसके लिए नहीं चाहिए, उसके साथ साथ आप बच्चे को एजुकेशन दे. देखिए मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, एजुकेशन आज के वक्त में इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है बनिस्बत के स्किल सेट. तो आप स्किल्स पे इन्वेस्ट करने की भी कोशिश करें, वो समझ लीजिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट है. एक तो आप सेविंग कर रहे हो एजुकेशन के साथ, बस साथ में आपको ये एक इन्वेस्टमेंट स्किल सेट डेवलप करने के लिए लाजिम डालना पड़ेगा बच्चों के ऊपर. नहीं तो एट द मोमेंट देर आर अ लॉट ऑफ एजुकेटेड पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयबल बेसिकली बिकॉज दे लैक द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस.
1: ट्रू, आज का टाइम नहीं है. अच्छा, मैंने बहुत सारी ऐसी सर्विसेज देखी हैं, ऐसे सर्विस क्लास हैं जो जिनकी जो जॉब्स हैं उनमें यूनिफॉर्म्स हों या फिर और जो टूल्स हैं उन पर खर्चा करना मैंडेटरी है ही, और उनको वो मंथली

0: भी खर्चे करने पड़ते, बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं, आपको बहुत अच्छा दिखना है, आपको अच्छा पहनना है, कुछ सर्टेन चीजों पर आपको खर्च करना ही करना है, जैसे जिम जाना आपके लिए कंपलसरी है, आपको एक अच्छा फिजिक दिखाना है या और भी आपके ग्रूमिंग है उन सब पे. तो इन चीजों को कैसे बैलेंस करें और उनका बजट भी ना बिगड़े और सेविंग्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो.
1: देखिए जैसे फॉर एग्जांपल
0: चार टिप्स देना चाहेंगे.
1: सबसे बड़ी टिप्स, हम एक दुनिया के बहुत ही मशहूर जाने माने नाम है जिनका नाम है वॉरेन बुफे, और उनका कहना यह है कि एक इंसान को सबसे पहले सेव करना चाहिए. सेविंग के पैसे आपने अलग निकाल दिए, बाकी जो बचे आपने उसमें बजटिंग करनी है कि आपके रोजमर्रा के खर्चे कितने निकल रहे हैं, ग्रूमिंग के कितने निकल रहे हैं, रिफॉर्म के कितने निकल रहे हैं, खाने पीने पे कितने निकल रहे हैं, आउटिंग पे कितने लगे, उसमें से भी आप बचाने की कोशिश करो. और मतलब मैंने मतलब अपनी जिंदगी में भी ऐसे लोग माशरे में देखे हैं जो वो इन चीजों पर अमल करते हैं. तो ये हमारा मतलब हमारी राय है,
0: ये राय है. अच्छा, आपके लिए बचत करना या सेविंग का क्या मकसद क्या है? क्योंकि ये लाइफ भी तो कुछ लोग कहते हैं कि इसको अच्छे से बिता रहे हैं और अभी हम बजटिंग ही करते चले गए और ओल्ड एज में आके तो हमें इन चीजों की भी जरूरत नहीं होगी. बेसिक सी चाहिए, खाना मिल जाए, जगह रहने को मिल जाए, दवाओं के पैसे मिल जाए, दैट्स इट. तो फिर क्या ऐसा लगता है कि पूरी लाइफ हमने तो कुछ अपने ऊपर खर्च ही नहीं किया, वी वर लाइक सिंपली सेविंग मनी?
1: नहीं, अब इसकी बात बता रहे हैं. देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं कि 6 दिन काम करते हैं, ठीक है, 1 दिन मिलता है एंजॉय करने के लिए, सही है कि नहीं? लेकिन 6 दिन मेहनत हो रही है, 6 दिन वो 6 दिन के पैसे जो जमा हो रहे हैं वो 1 दिन में खर्च हो रहे हैं, है कि नहीं?
0: बिल्कुल.
1: तो देखिए, अगर आप दीनी नजरिए से देखेंगे तो दीन ये कहता है, और कुरान में कई जगह पे ये कहा गया है कि खर्च करिए. मतलब ये नहीं कहा गया है कि मतलब फजूल खर्ची के लिए मना करा गया, लेकिन खर्च करने पर कहा गया है फजूल खर्ची मत करिए, खर्च करिए. बचाना बुरा नहीं है, बचाने में और एक बुखल में दोनों में फर्क है. मतलब बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन हमारे नबी ने भी कह दिया है, मतलब कि बखील, एक बखील इंसान हम में से नहीं है, ठीक है, लेकिन फजूल खर्ची भी आपको नहीं करनी. एज अ मुस्लिम यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, ओवर स्पेंडिंग आपको नहीं करनी. वो जो सेविंग इंसान आप कर रहा है, आपनी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपनी एक लाइफस्टाइल को कंफर्टेबल रखते हुए कर रहा है, मतलब आप स्टिंजीनेस से दूर रहें, आप एक मिडिल पाथ इख्तियार करें, स्टिंजीनेस से दूर रहें, और फिर वो जो थोड़ी बहुत आप सेविंग कर रहे हो वो आपके फ्यूचर के लिए काम आएगी. आप ये कह रहे हो कि मतलब हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करते हुए आपको साइड बाय साइड आपको एक साइड इनकम, नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? आप दूसरे के सामने आपको हाथ फैलाना पड़ेगा. और बुरे वक्त में कोई भी जल्दी काम नहीं आता. मान लिया आपके 50 दोस्तों का, मुश्किल से 1-2 ऐसे होंगे जो आपके सही हमदर्द होंगे, और वो असली चेहरे उसी वक्त दिखते हैं, और जिंदगी वो वक्त सीखने का होता है. और उस वक्त में आप ये समझ लीजिए, जो सेविंग जो थी आपकी, वो आपको उस जिल्लत से बचाती है. इस वजह से आप सेव कर रहे हैं. अब दवाइयों के भी पैसे, खुदा ना खास्ता बच्चे छोड़ के चले जाएं, अपने जो बच्चे हैं वो अपने मियां बीवी, मतलब अपने बीवी बच्चे में मस्त हैं या अपने स्पाउस के साथ मस्त हैं, और बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया. अगर बूढ़े माँ बाप के पास सेविंग्स नहीं है, वो कैसे सस्टेन करेंगे? अगर कोई अबैंडन कर रहा है, इंडिया में कितने केसेस हो रहे हैं, इवन जो बड़े बड़े रईस घराने में, सबसे बड़ा केस तो मतलब एक बहुत बड़े टाइकून है जो, जिन्होंने क्या किया कि अपनी जिंदगी रहते हुए उन्होंने सारी चीजें अपने बच्चे के नाम रख दी, और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा. और फाइनली क्या हुआ कि उस बेटे ने ही अपने बाप को घर से निकाल दिया, और वो बाप जो है एक एक पैसे का मोहताज है. तो वो आप ये सारी चीजें जो है, जो हमारा दीन है वो एक प्रैक्टिकल दीन है, और दीन हमारा जो है मतलब गमी का दीन नहीं है. हमारा दीन जो है फर्श वाला है, खुशियों वाला है, और वो सारी चीज़ों को जो है एक बैलेंस तरीके से, एक बैलेंस जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाता है, और वो ये सारी चीज़ें हमारे नबी दिखा के गए हैं.
0: बहुत अच्छी बात की, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी दिया आपने, इट्स रियली हार्ट टचिंग.
2: क्या आप इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान हैं? क्या आप ट्रेडिंग, शेयर मार्केट और फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में जानना चाहते हैं? तो तैयार हो जाइए, आरजे नाजिया आपको लेकर जाएंगी एक नए सफर पे, जहां आप अपने फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. चाहे आप नई शुरुआत कर रहे हो या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को समझना चाहते हो, इन्वेस्ट कतर ये है आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म.

0: सुनिए शो इन्वेस्ट कतर, आपका इन्वेस्टमेंट आपकी तरक्की।
1: आज हमने बजटिंग की बात की और इनिशियली आपने बताया कि बजटिंग के लिए प्लानिंग बहुत जरूरी है राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और जब आप बजटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सेविंग्स भी करते हो, दे यू बी एबल टू सेव सम मनी, जो कि इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सेविंग के बाद एक दूसरा इम्पोर्टेंट पहलू आता है इन्वेस्टमेंट्स। इसको किस तरह से जो है वो डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है?
2: देखिए, इन्वेस्टमेंट इंसान अगर करे तो वो रियल इन्वेस्टमेंट पे जो है फोकस करे। देखिए, हमारा बैकग्राउंड फाइनेंस का है तो हमने बहुत ही करीब से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग देखी है और मतलब वो हमारा मतलब एक पैशन था शुरुआती करियर में। बट उससे एक चीज मैंने सीखी है कि आप स्पेकुलेटिव बिजनेस में नहीं इन्वेस्टमेंट करें।
1: ओके,
2: स्पेशली फॉर एग्जांपल आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इंट्राडे में नहीं जाएं।
1: अच्छा,
2: आप उन शेयर्स को एक वक्त के लिए खरीद लें और खरीद के रखें और उनके ऊपर कैपिटल गेन कमाने की कोशिश करें। ये शेयर मार्केट से रिलेटेड हो गया। इंट्राडे ट्रेडिंग जो बेसिकली एक काइंड ऑफ गैम्बलिंग होती है, उस पे जनरली लोग उसमें बहुत ही मतलब वो एडिक्टिव होती है। सडनली लोगों को जो है एक छोटा सा प्रॉफिट होता है एंड दे स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड सडनली दे एंड अप लूजिंग देयर मनी। ठीक है, तो इवन चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दिस यू नो हाईली कॉम्प्लिकेटेड फील्ड्स, फाइनेंशियल फील्ड। अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो उसमें फाइनेंस फील्ड में तो अननेसेसरी उसमें नहीं जाएं। स्पेशली ये एडवाइस 60 प्लस लोगों के लिए है जो लोगों के पास इफ़राद पैसे होते हैं और वो उनके पास वक्त भी होता है, फिर वो चले जाते हैं शेयर मार्केट में बैठते हैं, ब्रोकर्स के पास बैठते हैं और अपनी कमाई को तहस नहस कर देते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप रियल इन्वेस्टमेंट करें, आप लैंड लें, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, आप बिल्डिंग्स बनाएं, आप लोगों के साथ जो अच्छे बिजनेस चल रहे हैं आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज में आप उसमें शिरकत करें, पार्टनरशिप करें, तो आप चीजों को रियल रखें। नाइदर ये कि आप एक बबल के पीछे जा रहे हो तो मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, मतलब जो जिसकी इंटेंसिक वैल्यू हो आप उसमें इन्वेस्ट करें, इन चीजों की इंटेंसिक वैल्यू आप उसमें। गोल्ड एक ऐसी चीज है।
1: गोल्ड बॉन्ड्स और यू आर सेइंग जस्ट
2: गोल्ड? गोल्ड नो,
1: प्रेशियस।
2: आप पूछो वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आप गोल्ड बॉन्ड्स में जा रहे हो या आप मान लो प्रेशियस मेटल्स में वो कर रहे हो, उसके लिए आपको एक स्पेशल नॉलेज चाहिए। यू नीड टू डू सम कोर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज डन।
1: Somebody else can also do on our behalf, like अपना portfolio दे दिया और वो
2: हमें। Yes, जी बिल्कुल सही करेंगे आप। देखिए बस, but देखिए यहाँ पे आपको जो for example fund managers होते हैं, जो HNI high net worth individuals जिसको इनको बोलते हैं, और specially western countries में बहुत ही organized है, बहुत ही organized है, wherein you know people have there are huge clients, you know they have taken money, you know these are rich people. They have their fund managers और ये बड़ी बड़ी बैंकों के साथ जो है ये उनको मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ब्लैक रॉक ग्रुप है, दुनिया का जाना माना नाम है, उसमें कितने HNIs का फंड्स उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन उसके लिए इंडिया में एज ए ले मैन उनके लिए क्या होता है कि म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स उन्हीं के लिए होती हैं जिन लोगों को फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज नहीं है। बट अगेन दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो मैं जनरली एक नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड के बंदे को SIPs सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स में मैं इन्वेस्ट करने के लिए ये कहूँगा कि अपना वो होमवर्क करे तभी करे,
1: अदरवाइज ना करे।
2: नहीं करे, बिल्कुल नहीं करे। सबसे बढ़िया है, मैं हमेशा सबसे हमेशा ये कहता हूँ कि भाई साहब आप ज़मीन खरीदो, आप फ्लैट्स लो, आप बिजनेस कॉम्प्लेक्स बनवाओ उस पर, आप फार्म हाउस लो, वहाँ पर चीज़ें स्टार्ट करो, चीज़ें रियल करो रखो, आप रियल रखो चीज़ें आपके सामने वो दिखें। तो मेरा मतलब मेरी जो अप्रोच है हमेशा मतलब एक क्लासिकल थिंकिंग ही की तरफ है, बजाय ये कि एक मॉडर्न अप्रोच रहे। जी
1: अच्छा, आपने शेयर मार्केट्स की तो बात की, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सेफ है?
2: म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और जनरली जो म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं उनके पास फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि एक्सपर्ट्स होते हैं, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो लोग जो है कुछ हद तक इन्वेस्ट करते हैं। वो कुछ बहुत सारी स्कीम्स होती हैं जिनके बारे में मशहूर होता है कि हाँ भाई ये रिटर्न दे रही हैं। आपको उसका अपना होमवर्क करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन लाइक हलाल कंप्लायंट शरिया कंप्लायंट स्कीम, वेर इन दोज स्कीम्स आर इन्वेस्टिंग ओनली इन शेयर्स विच आर यू नो हलाल कंप्लायंट, सो आप उनके अंदर इन्वेस्ट करें तो आपको हर चीज़ देखना, क्योंकि देखिए हम लोगों के साथ कुछ लिमिटेशंस हैं। जो लोग

0: इंटरेस्ट बेस चीज़ों को मतलब मानते हैं कि मतलब वो चीज़ें जायज़ नहीं हैं, तो उनको ये सारी चीज़ों पे जो है एक दकीक नज़र रखना पड़ेगी, तभी वो इन्वेस्ट करें। नहीं तो अगर आपके पास आपको इंटरेस्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो भाई आपके लिए प्रैग्मेटिक अप्रोच यही है कि आप FD में डाल लो। आप रेट ऑफ रिटर्न देखो ना कि FD पे कितना मिल रहा है, रिकरिंग डिपॉजिट पे कितना मिल रहा है, या आपको म्यूचुअल फंड कितना दे रहा है, 10% दे रहा है, मान लो FD आपको 7% दे रही है, आप अपनी मार्केट स्टडी करके देखो, तब जाके आप करो। बहुत सारे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जिनके लिए कोई इनहिबिशन नहीं है इंटरेस्ट को लेकर, वो FD डालते हैं, उनके घर के खर्चे FD के इंटरेस्ट से चल रहे हैं, उनके पास इतने अफराद पैसे पड़े हुए हैं कि वो FD का इंटरेस्ट आ रहा है, उसी से घर चल रहा है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सजेस्ट हमेशा यही करता हूँ, इसीलिए मेरे पास जो बेटर ऑप्शन वही है, आप रियल एसेट्स में यू इन्वेस्ट इन रियल एसेट्स।
1: बहुत ही अच्छी बात। अच्छा, हम बात लगातार कर रहे हैं बजटिंग की, हमने फीमेल्स को भी इसमें इंक्लूड किया,
0: बहुत बड़ा रोल है,
1: जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउ बच्चों को इनिशियली राइट फ्रॉम द बिगनिंग किस तरह से टिप्स देना स्टार्ट करना चाहिए, फैमिली में उनसे किस तरह से बात करनी चाहिए, जिससे वो मोर रिस्पॉन्सिबल हो टुवर्ड्स बजटिंग एंड देन लेटर ऑन सेविंग्स।
0: देखिए, आजकल के जो बच्चे हैं, हम लोगों के माँ बाप जो हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज की हम जिद करते थे तो हम लोगों की पिटाई हो जाती थी और वो चीज़ नहीं मिलती थी। हम लोगों के साथ जो हमारा जनरेशन, हमारे नीचे जो बच्चे आ रहे हैं, वो हम लोगों का क्या है कि हम लोग एक बहुत ही उनके साथ एक हल्का हाथ रखते हैं, और वो बच्चों को पैम्पर करते हैं कि भाई बेटा तुमको चिप्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मतलब दिस हैज़ बिकम नॉर्मल फॉर देम। उस नॉर्मल को हमें हटाना है कि नहीं बेटा, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मतलब ये रोज़मर्रा की इस्तेमाल के लिए नहीं है बेटा, जब आपको एंजॉय करना है, यू नीड टू हैव अ हैप्पी टाइम, समटाइम्स यू कैन हैव दैट गुड टाइम। तो वो चीज़ें हमको उनको समझाना अभी से, कि मतलब ये नहीं कि हम उनको सिल्वर स्पून दे रहे हैं, नहीं, वो बच्चों की तरबियत करना पड़ती है, ये नहीं कि आप बच्चों को से पाल लें, उनकी तरबियत कीजिए आप।
1: बकाया
0: जी,
1: बहुत ही अच्छी बात। Thank you so much for taking out this time and sharing such amazing insights and information. आप इस टॉपिक को किस तरह से कंक्लूड करना चाहेंगे?
0: बस हम कंक्लूड इसी तरह से कहेंगे कि मतलब ये फजूल खर्ची से बचें और बुखल से भी बचें, ठीक है, एक दरमियानी रास्ता रखें, और बहुत ज़्यादा अपनी इज्जत अपने हाथ, बहुत ज़्यादा लोगों में इतना ज़्यादा भी अपनी जो एंट्रीज है ना, एंट्रीज की थोड़ी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करें, तो आपकी इज्जत भी बनी रहेगी, आपके पैसे भी बचेंगे, सब कुछ सही चलेगा। तो प्लानिंग करके चलें हर चीज़, मतलब जो रिस्क ले रहे हैं,
1: कैलकुलेटेड रिस्क ने। बहुत ही अच्छी खूबसूरत बात, और इसी खूबसूरत बात के साथ दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए टॉपिक नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107 दिल से देसी, दिल से देसी।
3: Absolute cinema.
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
5: दोस्तों, ड्राइविंग के दौरान सीट बेल्ट पहनना आपकी हिफाजत को बढ़ाता है, और हाँ, सीट बेल्ट नहीं बांधने से आपको फाइंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैफिक के कानून का सीरियस वायलेशन है। सीट बेल्ट कार ड्राइवर्स के लिए फर्स्ट सेफ्टी लाइन है, क्योंकि ये आपकी हिफाजत करती है। FM 107 तमाम रोड यूजर्स से गुजारिश करता है कि वो अपनी जानो माल की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक कानून की तामील करें। याद रखिए कि ट्रैफिक सेफ्टी ऑफिशियल अथॉरिटीज और सोसाइटी के दरमियान मुश्तरका जिम्मेदारी है।
4: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम

0: कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: Careful what you wish for.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूर हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में आप सबका खैर मकदम है। बहुत ही एक अहम मौजू पर गुफ्तगू होने वाली है। इब्तिदा में सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि इस्लाम कठरे में खड़ा कोई ऐसा नज़रिया नहीं जिसे हम हर वक्त दिफाई अंदाज में बचाते फिरें। इस्लाम खुद अपने अंदर दलील रखता है, अकल से बात करता है, फितरत से हम आहंग हैं, इल्म की बात आई है, मंतिक की बात आई है और कायनात की हर निशानी को इंसान के सामने दलील बना कर रख देता है। यूं कहिए कि आसमान से ज़मीन तक, इंसान के अंदर से कायनात के बाहर तक हर तरफ निशानियां बिखरी हुई हैं। यहाँ तक के सबसे बड़ी बात तो ये कि इस्लाम सवाल को भी मना नहीं करता। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन भी अपने दिल में पैदा होने वाले वसवसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखते थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि कभी हमारे दिल में ऐसी बातें आती हैं जिन्हें ज़बान पर लाना भी बहुत भारी महसूस होता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? उन पर कुफर का फतवा नहीं लगाया, बल्कि जब उन्होंने बताया कि वो उन वसवसों को नापसंद करते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ भाई, यही तो ईमान की निशानी है। गोया दिल में सवाल पैदा होना या कोई शुबा अचानक आ जाना बज़ात खुद ईमान के खात्मे की दलील नहीं, लेकिन इस शुबे को दिल में पालना, उसे तहकीक के बग़ैर बढ़ने देना या शर्मिंदगी की वजह से सवाल न करना, ये नुकसानदेह हो सकता है। समझने का, इसलिए अगर कोई सवाल दिल में आए तो उसे दबाइए नहीं, पूछिए, सुनिए, समझिए, दलील तलाश कीजिए, क्योंकि सही सवाल अक्सर इंसान को सही इल्म तक पहुंचा देता है। समझने का, आज के इस प्रोग्राम में हम बाज़ मशहूर जो सवालात अमूमी तौर पर किए जाते हैं इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। पहला एक आम सवाल ये है कि अल्लाह ताला हमें इबादत का हुक्म क्यों देता है? क्या उसे हमारी नमाज, रोज़े और बंदगी की ज़रूरत है? जवाब इस सवाल का ये है कि पहली बात तो ये है कि लॉजिकली ये सवाल दुरुस्त ही नहीं। ज़रा सोचिए कि अगर पूरी इंसानियत नमाज पढ़ने लगे तो क्या अल्लाह की बादशाही में इजाफा हो जाएगा? क्या कायनात बड़ी हो जाएगी? क्या अल्लाह की कुदरत में कुछ और शामिल हो जाएगा? और अगर पूरी दुनिया इनकार कर दे तो क्या अल्लाह की सल्तनत घट जाएगी? क्या चांद, सूरज या आसमान की कोई कुव्वत कम हो जाएगी? हरगिज़ नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, इन तकफुरु अंतुम व मन फिल अर्द जमीअ फइन्नल्लाहा लगनीयुन हमीद। ये सूरह इब्राहिम की एक आयत का एक हिस्सा है। وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد। موسى نے کہا اگر تم اور روئے زمین کے سب لوگ کفر اختیار کر لو تب بھی اللہ بے نیاز اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ اگر تم اور روئے زمین کے سب لوگ کفر اختیار کر لو تب بھی اللہ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کے لائق ہے۔ قرآن ایک اور مقام پر کہتا ہے, इन तकफुरु फ़इन्नल्लाहा गनीयुन अन्कुम, अगर तुम कुफर करो तो अल्लाह तुमसे बेनियाज है। यानी हमारी इबादत अल्लाह की किसी कमी को पूरा नहीं करती, इबादत से हम खुद सवरते हैं, अल्लाह नहीं। फिर अल्लाह ताला ने इंसान की पूरी ज़िंदगी का बुनियादी मकसद भी वाज़े कर दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।

0: जरूरत है। नमाज से हमारा मकाम बुलंद होता है, रोजे से हमारा बातिन पाक होता है, जिक्र से हमारे दिल को जिंदगी मिलती है। इसलिए बंदगी दरअसल ये इंसान की असल शनाख्त है, और जब इंसान ये समझ लेता है कि मैं आब्द हूँ और मेरा रब बेनियाज बादशाह है, दत हुक्म से बढ़कर ताल्लुक बन जाती है, नमाज फर्ज से बढ़कर मुलाकात बन जाती है, दुआ मुतालबे से बढ़कर एतमाद बन जाती है, और ज़िंदगी पूरी की पूरी बंदगी के खूबसूरत सफ़र की शक्ल ले लेती है। और इसी के साथ सामिन इकराम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद दोबारा हमारे मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: जी सामने कराम, गुफ्तगू हो रही थी और हमने समझने की कोशिश की कि अल्लाह ताला हमारी इबादत का मोहताज नहीं और हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं। अब हमारा अगला सवाल यह है कि फिर इबादत का फ़ायदा किसको पहुंचता है, और अल्लाह ने हमें नमाज और ज़कात है जो दूसरे अहकाम क्यों दिए हैं। जवाब ये है कि हम अल्लाह की ज़मीन पर, अल्लाह के आसमान के नीचे और अल्लाह ही के बनाए हुए निज़ाम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस कायनात का एक अखलाकी और रूहानी कानून है। इंसान की हर इताअत इस निज़ाम में तामीर का काम करती है, और हर मासियत किसी न किसी दर्जे में फसाद का दरवाज़ा खोलती है। इसलिए अल्लाह ताला ये नहीं चाहता कि ज़मीन गुनाह, जुल्म, बेहयाई और फसाद से भर जाए। ज़रा गौर कीजिए, विवादात बज़ाहिर इंसान और उसके रब के दरमियान दिखाई देती हैं, उनके असरात भी आखिरकार इंसान और माशरे तक पहुँचते हैं। नमाज के बारे में कुरान क्या कहता है? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, यानी नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। तो नमाज अगर वह अपनी रूह के साथ अदा हो तो इंसान के किरदार को ही संवार देती है, और जब किरदार संवरता है तो उससे दूसरों को अमन मिलता है, जबान महफूज होती है, हाथ महफूज होते हैं और मामलात बेहतर होते हैं। रोज़े के बारे में फरमाया गया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो, और तकवा ये सिर्फ दिल की बात नहीं, दिल की कैफियत नहीं, आपके रवैये, आपके फैसलों, आपके मामलात और दूसरों के हुकूक में जाहिर होता है। इसी तरह ज़कात की तरफ देखें तो ज़कात के बारे में ये आया है खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा, उनके मालों से सदका लीजिए जिसके ज़रिए आप उन्हें पाक करें और उनका तज़किया करें। यानी ज़कात माल भी पाक करती है, दिल भी पाक करती है, और माशरे में ज़रूरतमंदों का हक भी पहुंचाती है। फिर हज की तरफ देखें, हज के बारे में ये आया लियशहदू मनाफिअ लहुम, ताकि वो अपने लिए फ़ायदे देखें। यानी इबादत में भी मनफात इंसान ही की तरफ लौटती है। समझ कराम, अगर हम वालिदैन के हुकूक, पड़ोसी के साथ हुस्न सुलूक, सिला रहमी, अमानत, अदल और रहम की तालीमात को देखें तो बात और भी वाज़ेह हो जाती है। दीन का पूरा निज़ाम दरअसल इंसान की इस्लाह और मुआशरे की तामीर का निज़ाम है। अल्लाह सबसे बेनियाज है। ज़रा सूरह फुरक़ान में इबादुर्रहमान की सिफ़ात को देखिए ना। इरशाद खुदावंदी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,

इबादुर्रहमान वो हैं जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं और जब जाहिल उनसे उलझते हैं तो सलामती की बात कहते हैं, कहते मा सलामा। फिर फाया والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، رب کے لیے راتیں سجدے اور قیام

0: jag han i sänga.
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर दिल से देसी
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन दोस्तों आज हम बात करेंगे कतरी टेबल टेनिस प्लेयर मरियम अली के बारे में मरियम अली कतर की नुमाया वीमेन टेबल टेनिस प्लेयर्स में शुमार होती हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस से मुल्क का नाम बैन अवी सतह पर रोशन किया है वो कतर की नेशनल टेबल टेनिस टीम का अहम हिस्सा हैं और मुसलसल अरब और गल्फ टूर्नामेंट्स में मुल्क की नुमाइंदगी करती आ रही हैं मरियम अली की सबसे अहम कामयाबियों में अरब टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में आया मोहम्मद के साथ विमेंस डबल्स और टीम इवेंट में सिल्वर मेडल्स जीतना शामिल है दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार टीम वर्क और बेहतरीन गेम का मुजाहरा करते हुए कतर के लिए यादगार नतायज हासिल किए इस कामयाबी ने कतर की वुमेन्स टेबल टेनिस को नए मकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया इनफैक्ट इस साल के गल्फ गेम्स में भी मरियम अली ने अपनी सलाहियतों का सबूत दिया उन्होंने मिक्स डबल्स इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर एक और बैन अवी कामयाबी अपने नाम की मेडल उनकी मुसलसल मेहनत डिसिप्लिन और बेहतरीन तैयारी का नतीजा था दोस्तों मरियम अली फिटनेस फोकस और मुसलसल प्रैक्टिस पर यकीन रखती हैं वो हर टूर्नामेंट में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करती हैं और कतर के लिए मजीद मेडल्स जीतने का अजम रखती हैं उनकी कामयाबियां कतर की नौजवान लड़कियों के लिए एक मिसाल हैं और ये पैगाम देती हैं कि मेहनत और हौसले के जरिए हर मैदान में कामयाबी हासिल की जा सकती है उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से

0: Number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
3: Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. टॉप 10 काउंटडाउन. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्विलेंस कैमराज आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए जहनी सुकून का बायस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। आपके सेफ और स्ट्रेस फ्री दिन की दुआ के साथ FM 107 हमेशा आपके साथ है।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन।

0: किराए पर,
1: माहिरीन किराए पर।
0: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड।
1: हेल्थ गाइड,
0: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक।
1: इलाज और एहतियात तक।
0: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
1: दिल से देसी।
0: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। लिसनर्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी नेमत की जो कि ना सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है बल्कि जिस्म, दिमाग और दिल को भी सुकून पहुंचाती है, और वो है हंसी यानी लाफिंग। आज की तेज़ रफ्तार जिंदगी में हर शख्स किसी न किसी परेशानी, दबाव या मसरूफियत का शिकार है। ऐसे में अगर हम अपनी जिंदगी में खुशी और हंसी के चंद लम्हे शामिल कर लें तो उसके हैरत अंगेज फवायद हासिल हो सकते हैं। जब हम दिल खोलकर हंसते हैं तो दिमाग ऐसे कुदरती कीमियाई मादे खारिज करता है जिन्हें एंडोर्फिन्स कहा जाता है। ये हमें खुशी, सुकून और इत्मीनान का एहसास दिलाते हैं। जब आप हंसते हैं तो जहनी दबाव कम हो जाता है, जिस्म के मसल्स का तनाव कम होता है, सांस गहरी होती है और जिस्म को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है यानी बेहतर अंदाज में होती है, दिल कुछ देर के लिए मौसर तरीके से काम करता है। कई माहरीन हंसी को कुदरती स्ट्रेस रिलीफ भी कहते हैं। हंसने से दिमाग का मुस्बत अंदाज फिक्र मजबूत होता है। जब इंसान खुश होता है तो मसाइल का बेहतर अंदाज में सामना कर सकता है, फैसले निस्बतन बेहतर करता है और दूसरों के साथ उनका रवैया भी खुशगवार रहता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि दिल खोलकर चंद मिनट हंसने के बाद इंसान ज्यादा पुरसकून महसूस करता है क्योंकि जिस्म में तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स कम होने लगते हैं। तो लिसनर्स, मुस्कुराहट मुफ्त है मगर उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। ये ना सिर्फ आपको खुश रखती है बल्कि दूसरों के दिल भी जीत लेती है।
0: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन
1: ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, बर्थडे कैसा दिन होता है जो हर किसी के लिए स्पेशल होता है। केक्स, डेकोरेशंस, गिफ्ट्स, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन। भाई, बर्थडे की खुशियां बड़ी यादगार होती हैं, बहुत अच्छे लम्हे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक बर्थडे पार्टी के बाद कितना सारा वेस्ट जनरेट होता है? भाई, प्लास्टिक डेकोरेशंस हो गई, डिस्पोजेबल प्लेट्स हो गई, एक्स्ट्रा खाना हो गया, रैपिंग पेपर्स हो गए, पार्टी आइटम्स जो सिर्फ एक ही बार यूज होते हैं। अच्छा, खुशी मनाने का एक अलग तरीका है। खुशी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा एनवायरमेंट को भी कंसिडर कर लें तो भाई सेलिब्रेशन और भी मीनिंगफुल बन सकता है।

0: भाई आज हम बात करने जा रहे हैं इको स्विच में इको फ्रेंडली बर्थडे के बारे में, यानी बर्थडे सेलिब्रेशंस जो खुशी भी दें और नेचर का भी ख्याल रखें। पहले तो प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं ना। देखें साथियों, बर्थडे पार्टीज में अक्सर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वेस्ट को बढ़ावा देती हैं, जैसे कि कह लिया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक प्लेट्स, कप्स और कटलरीज, ये तो बड़ी मेन चीज है। प्लास्टिक बलून्स और डेकोरेशंस, गिफ्ट रैपिंग्स का एक्स्ट्रा वेस्ट, जरूरत से ज्यादा खाना बना लेना या ऑर्डर कर लेना, डिस्पोजेबल पार्टी आइटम्स जो दोबारा यूज ही नहीं होते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि भाई एक दिन की पार्टी तो है, क्या ही कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब हम हर रोज दुनिया भर में हजारों सेलिब्रेशंस होते हुए देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये कोई छोटी सी मामूली सी बात रह जाती है? या आपको ये लगता है कि भाई ये अगर हजारों लोग एक ही दिन में बर्थडे मना रहे हैं तो वेस्ट क्रिएट कर सकती है? अच्छा, अच्छी बात यह है कि बर्थडे को इको फ्रेंडली बनाने के लिए खुशी और फन को कम करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ थोड़ी सी स्मार्ट सी प्लानिंग चाहिए होती है। देखें, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन इसका ये है। अगर मैं आपको बताऊं कि इको फ्रेंडली बर्थडे के लिए आप कौन से सिंपल आइडियाज अपना सकते हैं, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देती हूं। रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करें। हर साल नए प्लास्टिक डेकोरेशंस खरीदने की बजाय रीयूजेबल बैनर्स, फैब्रिक डेकोरेशंस या लाइट्स यूज की जा सकती हैं। इन्हें दोबारा डिफरेंट ओकेजंस पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी चीज ये डिजिटल इनविटेशंस चूज करें ना। पेपर इनविटेशन कार्ड की जगह वो पुरानी हो गई है, बहुत पुरानी, इसकी जगह आप डिजिटल इनविटेशंस भेजें। ये इजी भी होते हैं, पेपर भी कम वेस्ट होता है और क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है इसके अंदर। अच्छा, सिंपल फूड प्लानिंग करें। बर्थडे पार्टी के लिए उतना ही खाना प्रिपेयर करें जितना जरूरत हो। अगर खाना बच जाए तो उसे प्रॉपर्ली स्टोर करें, या सबसे बड़ी बात है कि आप जरूरतमंद लोगों तक उसे पहुंचाने का इंतजाम करें। आपकी बर्थडे है भाई, सेलिब्रेट करें उसे अच्छे तरीके से, मीनिंगफुल वे से। इको फ्रेंडली गिफ्ट्स दें। गिफ्ट्स के लिए रीयूजेबल बैग्स यूज करें या ऐसे गिफ्ट्स चूज करें जो यूजफुल भी हो और लॉन्ग लास्टिंग भी हो। प्लांट्स हो गई, बुक्स हो गए, एक्सपीरियंसेस हो गए या क्रिएटिव गिफ्ट्स भी यादगार हो सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिस्पोजेबल आइटम्स को अवॉइड करें। जहां मुमकिन हो घर के रीयूजेबल प्लेट्स, ग्लासेस और कटलरी यूज करें ना, इससे पार्टी का वेस्ट भी काफी कम हो जाता है। अच्छा, अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल दी जाए तो साथियों, आजकल बहुत सारी फैमिलीज अपनी बर्थडेज को क्रिएटिव इको फ्रेंडली बना रही हैं। कुछ लोग आउटडोर पिकनिक्स ऑर्गेनाइज करते हैं जहां डेकोरेशन बड़ी सिंपल और मिनिमम होती है। कुछ फैमिलीज रीयूजेबल बर्थडे बैनर्स संभाल कर रख लेती हैं और हर साल दोबारा उसी को यूज करती हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को ये सिखाते हैं कि भाई बर्थडे सिर्फ गिफ्ट लेने का नाम नहीं होता बल्कि शेयरिंग और काइंडनेस का भी दिन होता है। मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे अपने बर्थडे पर एक्स्ट्रा गिफ्ट्स की जगह बुक्स डोनेट करते हैं या प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसी सेलिब्रेशन सिर्फ यादगार नहीं होती बल्कि एक पॉजिटिव मैसेज भी देती है। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि अगले बर्थडे सेलिब्रेशन में एक इको फ्रेंडली चेंज जरूर ट्राई करें, चाहे वो रीयूजेबल डेकोरेशंस हो, खाने का वेस्ट कम हो या डिजिटल इनविटेशंस भेजे जाएं तो। और हाँ, हमें जरूर बताइएगा आपके ख्याल में बर्थडे पार्टी की सबसे जरूरी चीज क्या होती है, केक, डेकोरेशन, गिफ्ट्स या फैमिली और फ्रेंड्स का साथ। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन एफएम 107। याद रखिए, सबसे खूबसूरत सेलिब्रेशन वो होती है जहाँ खुशी भी हो और नेचर के लिए जिम्मेदारी भी। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। और सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे खुद का मुहासबा करने के बारे में। मुहासबे का मतलब है अपनी जिंदगी और अपने अमाल का जायजा लेना। ये एक ऐसी आदत है जो इंसान को बेहतर बनाती है और उसे अपनी गलतियों को सीखने का मौका देती है। अक्सर हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं लेकिन अपनी तरफ तवज्जो नहीं देते, जबकि असल कामयाबी ये है कि इंसान अपनी इस्लाह पर फोकस करे। रोजाना का छोटा सा मुहासबा हमें ये समझाने में मदद देता है कि हमने क्या अच्छा किया और कहाँ बेहतरी की जरूरत है। ये आदत इंसान को प्रोग्रेसिव बनाती है और उसे स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद देती है। आज का अमल ये है कि दिन के एंड पर 2 मिनट निकाल कर अपने आज के दिन का जायजा लें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
2: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप,
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
3: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
2: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
4: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
2: और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्या हमारे कल्चर्स और वैल्यूज मुस्तकबिल में वैसे ही रहेंगे? कहने को तो ये सवाल अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सबको कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर भी करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कल्चर और वैल्यूज हम आज फॉलो करते हैं क्या वो 20 से 30 साल बाद भी वैसे ही होंगी? या टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया और चेंजिंग लाइफस्टाइल की वजह से सब कुछ बदल जाएगा? देखिए, कल्चर सिर्फ कपड़ों, खानों और लैंग्वेजेस का नाम नहीं है। कल्चर हमारी सोच, हमारे रवैये और हमारी जिंदगी जीने के तरीके का भी नाम है। और वैल्यूज वो प्रिंसिपल्स हैं जो हमें बताते हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन एक बात जो हिस्ट्री ने हमें जरूर सिखाई है, दुनिया का कोई भी कल्चर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज से 20 साल पहले लोग फैमिली गैदरिंग्स में घंटों बैठकर बातें करते थे। आज अक्सर फैमिली एक ही कमरे में होती है लेकिन हर शख्स अपने फोन स्क्रीन में बिजी नजर आता है। कम्युनिकेशन आज पहले से ज्यादा फास्ट है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इमोशनल कनेक्शन पहले जैसा कहाँ रहा? क्या अगले चंद सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी हमारी डेली लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएंगे कि शायद वो हमारे रिश्तों को भी तब्दील कर दें? जवाब है हो सकता है, ये मुमकिन है। देखिए, आप जानते हैं कि फैमिली वैल्यूज हैं क्या। हमारी सोसाइटीज में फैमिली को हमेशा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, एल्डर्स की इज्जत, फैमिली सपोर्ट हमारे कल्चर का एक बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन मॉडर्न लाइफ का प्रेशर, बिजी स्केड्यूल्स और ग्लोबल मोबिलिटी की वजह से फैमिली स्ट्रक्चर्स भी चेंज हो रहे हैं। आज बहुत से लोग एजुकेशन और जॉब्स के लिए दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट हो जाते हैं। सवाल ये है कि क्या फिजिकल डिस्टेंस इमोशनल डिस्टेंस भी बन जाते हैं या टेक्नोलॉजी फैमिली बॉन्ड को और मजबूत करती है? बहुत से लोगों का ये मानना भी है। देखिए, आज एक टीनेजर दोहा में बैठकर वही म्यूजिक सुनता है जो लंदन में या न्यूयॉर्क में रहकर कोई सुन रहा है। सोशल मीडिया ने कल्चर्स को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कनेक्टेड किया है। इसका फायदा ये है कि हम दूसरे सोसाइटीज के तौर तरीकों को सीख भी रहे हैं। लंदन में किस तरह का कल्चर है, कैसा म्यूजिक है, कैसे कपड़े हैं, कैसे ट्रेंड है, आज हम यहाँ दोहा में बैठकर सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। क्या फ्यूचर में भी कल्चरल आइडेंटिटी प्रिजर्व रह पाएगी? क्या दुनिया एक ग्लोबल कल्चर की तरफ बढ़ जाएगी? ये सवाल बड़ा सवाल है।

0: से वैल्यूज हैं जो आपको लगता है कि कभी पुराने नहीं होंगे। चलिए जब तक आप सोच रहे हैं एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कुछ कल्चर्स हमारे और आपकी जिंदगी का ऐसा बुनियादी हिस्सा हैं जिन्हें हमें और आपको बदलने भी नहीं देना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल्चर तो चेंज हो सकता है, फैशन चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, लेकिन वैल्यूज ऐसे होते हैं जो हर जनरेशन में कीमती रहते हैं और इन्हें रहना भी चाहिए। जैसे सच बोलना, रिस्पेक्ट देना, काइंडनेस, ऑनेस्टी, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं कहूंगी ये वो वैल्यूज हैं जो शायद फ्यूचर में भी लोगों को जरूर रिक्वायर्ड होंगे, चाहे दुनिया कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए। जैसे हम लोग ये भी जानते हैं कि फ्यूचर जनरेशन का नजरिया थोड़ा सा हमसे मुख्तलिफ है। हर जनरेशन अपने वैल्यूज और अपनी प्रायोरिटीज साथ लेकर आती है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए स्टेबिलिटी और सिंप्लिसिटी बड़ी अहमियत रखती थी। हमारे पेरेंट्स के लिए हार्ड वर्क और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी अहमियत रखती थी, लेकिन आज की जनरेशन के लिए फ्रीडम, इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, ये चीज़ें इम्पोर्टेंस रखती हैं। और मुमकिन है कि कल की जनरेशन डिजिटल एथिक्स, मेंटल वेलबींग और सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे। यानी वैल्यूज ख़त्म तो नहीं हो रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं और साथ ही चेंज को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हर जनरेशन को ये फैसला करना पड़ेगा कि वो अपने माजी से क्या साथ लेकर चलेगा और मुस्तकबिल के लिए क्या नया क्रिएट करेगा। देखिए, कल्चर दरिया की तरह होता है, उसका पानी हमेशा बहता रहता है और शायद बदलता भी रहता है, लेकिन उसकी बुनियादी पहचान कायम रहती है। इसी तरह टेक्नोलॉजी और वक्त के साथ हमारा लाइफस्टाइल बदल सकता है, बदल रहा है, लेकिन जैसे मैंने कहा, वैल्यूज, रिस्पेक्ट, काइंडनेस, इंसानियत, ये बड़ी कीमती हैं, ये ना बदलने चाहिए। और हमें और आपको इन्हें और स्ट्रॉन्गली अपनी फैमिली में इनकलकेट करने की ज़रूरत है। हमें बच्चों को और ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में स्ट्रॉन्गली बताने की ज़रूरत है। कैसे, ये आप बेहतर तरीके से डिसाइड करेंगी। फिलहाल मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इस सेगमेंट से इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस।
3: आपको ईमेल आता है, डियर कस्टमर, आपका KYC एक्सपायर हो रहा है, लिंक पे क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वेद और ये है फ्रॉड अवेयरनेस। KYC यानी नो योर कस्टमर। तो कई दफा आपकी डिटेल्स कुछ बची रह जाती हैं, जिसके चक्कर में कई सारे इदारे आपको KYC के लिए ईमेल करते हैं। मेनली ये बैंक या फिर सिम नेटवर्क प्रोवाइडर की तरफ से आता है, लेकिन ये लिंक्स फेक होती हैं, बट आपको बिल्कुल भी फेक नहीं लगेंगी। ये रियल वेबसाइट्स की इतनी ज्यादा रेप्लिका होती हैं कि आप खुली आंखों से समझ नहीं पाएंगे, आपको काफी डिटेल में देखना पड़ता है। जैसे कि .qa की जगह qv हो सकता है। तो ऐसे स्कैम्स में क्या होता है, लिंक फेक होती है, आप डिटेल्स डाल और अकाउंट कंट्रोल स्कैमर के पास पहुंच जाता है। तो इसीलिए बैंक लिंक्स पे क्लिक मत करो। KYC सिर्फ ऑफिशियल ऐप ब्रांच से जाके कीजिए। SMS में स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर है, जो भी आपको SMS आया है या जो भी आपको ईमेल आया है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक या उनकी राइटिंग में थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल सकता है, तो समझ लो ये स्कैम का हिंट है। लेकिन आजकल स्कैमर भी समझदार हो गए हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो यूजिंग AI चैटबॉट्स। तो दोस्तों, KYC अपडेट करो, पर दिमाग अपडेट रख के, ऑफिशियल एप्स का इस्तेमाल करके या फिर बैंक की ब्रांचेस में विजिट करके।
2: सतर्क रहे, सावधान रहे। फ्रॉड अवेयरनेस
1: ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे मुबारक अल नईमी के बारे में। मुबारक अल नईमी कतर की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ियों में शुमार होती हैं और मुल्क की नुमाया फीमेल एथलीट्स में से एक हैं। उन्होंने कम उम्र से ही टेनिस का सफ़र शुरू किया और अपनी मेहनत, लगन और डिसिप्लिन की बदौलत कतर की नुमाइंदगी कई अहम मुकाबलों में की है। मुबारक ने मुख्तलिफ GCC, अरब और एशियन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने कीमती तजुर्बा हासिल किया और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। वो कतर की उन खिलाड़ियों में से हैं जो मुल्क में वीमेंस टेनिस को फ़रोग देने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। कतर टेनिस फेडरेशन की हिमायत और मुसलसल ट्रेनिंग की बदौलत मुबारक ने अपने गेम में काफ़ी बेहतरी पैदा की है। उनकी फिटनेस, फुटवर्क और कोर्ट पर कॉन्फिडेंस उनकी पहचान बन चुका है। वो हर टूर्नामेंट में बेहतर नतीज हासिल करने और अपनी रैंकिंग को मजबूत बनाने के लिए सख्त मेहनत करती हैं। मुबारक अल नईमी सिर्फ एक टेनिस प्लेयर ही नहीं बल्कि कतर की नौजवान लड़कियों के लिए एक मिसाल भी हैं। उनकी कामयाबियाँ ये साबित करती हैं कि मेहनत, हौसला और मुसलसल कोशिश से हर हदफ हासिल किया जा सकता है। आने वाले सालों में उम्मीद की जा रही है कि वो मजीद बैन अक्वामी सतह पर कतर का नाम रोशन करेंगी और नए खिलाड़ियों के लिए राह हमवार बनेंगी। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, एक बार फिर हम बेचैनी की वजूहात पर बात करेंगे कि वो क्या हैं। हमारे दिमाग में मौजूद बास कीमियाई मादों का तवासुन जब बिगड़ने लगता है तो बेचैनी पैदा हो सकती है। अगर ख़ानदान में किसी को एनजाइटी रही हो तो उसके इम्कान ज़्यादा हो सकते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जैसे थायराइड का मसला है, किसी को डायबिटीज़ है, दिल के मसाइल से कोई दो चार है, एस्टमा है या कोई भी क्रॉनिक जो है वो पेन है, तो उससे बेचैनी जो है वो ज़्यादा हो सकती है या वो बेचैनी का सबब बन सकते हैं। और जैसे कि रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है हमारी, उसमें बेशुमार वजूहात होती हैं एनजाइटी की या अजीब की बेचैनी की, जिसमें मुलाजमत का कुछ दबाव है, माली परेशानियां हैं, घर के मसाइल हैं और खुदा नखास्ता किसी अजीज़ की वफात भी हो सकती है, इम्तहानात का बहुत दबाव है, इस तरह अज़वाजी या ख़ानदानी कुछ मसाइल हैं, ये सब हमारी बेचैनी को बढ़ा सकते हैं। और जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें ये है कि नींद का पूरा ना होना, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी या एनर्जी ड्रिंक्स जो है उनका इस्तेमाल करना, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना और हर वक्त मोबाइल या सोशल मीडिया इस्तेमाल जो हम करते हैं तो उससे भी बेचैनी बहुत ज़्यादा हो जाती है। नेगेटिव जो न्यूज़ हैं

0: वो एंजाइटी को बढ़ा सकती हैं। तो लिसनर्स, बेचैनी की वजह को समझना उसके इलाज की तरफ पहला कदम है।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamualaikum साथियों, आप सुन रहे हैं Eco Switch on FM 107 with Safa. साथियों, ईद का नाम सुनते ही ना दिल बड़ा खुश सा हो जाता है. गार्डन. नए नए कपड़े पहनने को दिल करता है. घर की सजावट होती है. फैमिली गैदरिंग्स होती हैं. मेहमान आते हैं भाई. मजे के लजीज खाने पकते हैं. और भाई, तोहफों की भरमार भी शुरू हो ही जाती है. तोहफों का सिलसिला भी एक अलग ही होता है. अच्छा, ईद ना वाकई में खुशी और शेयरिंग का एक खूबसूरत मौका होता है, ये मैं मानती हूँ. लेकिन क्या आपने कभी ये बात सोची है कि ईद की तैयारियों के दौरान हम कितना वेस्ट क्रिएट करते हैं? भाई देखिए, एक्स्ट्रा शॉपिंग होती है, खाना अक्सर औकात जाया करते हैं, प्लास्टिक डेकोरेशंस होती हैं, डिस्पोजेबल आइटम्स होते हैं और अननेसेसरी पैकेजिंग भी यूज होती है. अच्छा, खुशी मनाने के साथ साथ अगर हम थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का ख्याल भी कर लें तो क्या ही बुरा होगा. ईद का मजा दोबाला हो सकता है भाई. तो भाई, आज हम इको स्विच में बात करने जाएंगे इको फ्रेंडली ईद सेलिब्रेशंस की, यानी ईद की खुशियां भी और एनवायरनमेंट की हिफाजत भी. लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ पर. साथियों, ईद की खुशी का मौका होता है, लेकिन सेलिब्रेशंस के दौरान कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस भी क्रिएट हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर मैं मिसाल दूं तो जरूरत से ज्यादा शॉपिंग करना, प्लास्टिक बैग्स और पैकेजिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना, खाने का ज्यादा बनाना और फिर जो लोग उसे खाते हैं वो ज्यादा प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर आधा खाना वेस्ट कर देते हैं. डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज होती हैं, डिस्पोजेबल कप्स यूज होते हैं, डिस्पोजेबल कटलरी इन शॉर्ट यूज होती ही होती है. एक्स्ट्रा डेकोरेशंस जो सिर्फ एक बार यूज होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं. हम अक्सर मेहमानों के लिए बहुत ज्यादा तैयारी कर लेते हैं जो मोहब्बत और खुशी की निशानी होती है. लेकिन थोड़ी सी प्लानिंग के साथ ना हम वेस्ट को कम कर सकते हैं और हाँ, रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकता है. अच्छा, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन मैं आपको देती हूँ इको फ्रेंडली ईद के लिए कुछ सिंपल आइडियाज जो कि हम सब अपना सकते हैं. पहली चीज तो ये कि स्मार्ट शॉपिंग करें ना. देखिए, ईद की शॉपिंग करते वक्त सिर्फ वही चीजें खरीदें जो वाकई में जरूरी हैं. क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग आइटम्स चूज करें जो कि ज्यादा अरसे तक यूज किए जा सकते हैं. दूसरी चीज ये कि रीयूजेबल डेकोरेशंस यूज करें ना. हर साल नई प्लास्टिक डेकोरेशन खरीदने के बजाय कुछ ऐसी लाइट्स, फैब्रिक और डेकोरेशंस घर में मौजूद होती हैं जिनको हम क्रिएटिवली अगर इस्तेमाल करें ना तो वो मल्टीपल टाइम यूज हो सकती हैं. तीसरी चीज ये कि भाई, खाने का ज्यान कम करने की कोशिश करें. देखें, ईद पर मेहमानों के लिए खाना जरूर बनाएं. मैंने मना नहीं किया. ऐसा नहीं कि मेहमान आपके घर से भूखे चले जाएं, ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी. लेकिन देखें, क्वांटिटी का अंदाजा लगाने की कोशिश करें. बचा हुआ खाना प्रॉपरली स्टोर करें या जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का इंतजाम करें. अच्छा, रीयूजेबल सर्विंग आइटम्स यूज करें. डिस्पोजेबल प्लेट्स और कप्स की जगह पर आप घर के बर्तन यूज कर सकते हैं. इससे वेस्ट भी कम होता है और मेहमान नवाजी भी ट्रेडिशनल टच के साथ हो जाती है ना. वो कुछ मेहमान होते हैं ना, कहते हैं हाँ, हमें प्लास्टिक के बर्तनों में खाना दे दिया डिस्पोजेबल में, तो उनके इस नखरे से भी आप बच जाएंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इको फ्रेंडली गिफ्ट्स हैं. तोहफों के लिए रीयूजेबल बैग्स, प्लांट्स, हैंडमेड आइटम्स या यूजफुल गिफ्ट्स चूज किए जा सकते हैं. गिफ्ट की वैल्यू साथियों सिर्फ पैकेजिंग में नहीं होती बल्कि सोच और मोहब्बत में होती है. चलिए, इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ आपको. बहुत सी फैमिलीज अब अपनी ईद सेलिब्रेशंस में छोटी छोटी इको फ्रेंडली चेंजेस ला रही हैं. कुछ लोग ईद के कपड़ों की शॉपिंग में जरूरत और क्वालिटी को तरजीह देते हैं

0: फैमिलीज रियूजेबल गिफ्ट बैग्स संभाल कर रखती हैं ताकि अगले मौकों पर दोबारा अगले मौकों पर उन्हें यूज किया जा सके। कुछ लोग ईद के बाद एक्स्ट्रा जो खाना बच जाता है उसको वेस्ट होने के बजाय, वेस्ट करने के बजाय पहले से प्लान कर लेते हैं कि भाई खाना किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये चेंजेस ईद की खुशी को कम नहीं करते साथियों, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि उसमें एक रिस्पॉन्सिबल टच ऐड कर देते हैं। तो साथियों, आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है कि इस ईद एक ऐसी इको फ्रेंडली आदत जरूर अपनाएं जो इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट के लिए बेहतर हो, चाहे वो खाने का वेस्ट कम हो, रियूजेबल आइटम्स यूज करना हो या स्मार्ट शॉपिंग करना हो। और हमें जरूर बताएं आप ईद पर सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार करते हैं, फैमिली गैदरिंग्स का, खाने का या गिफ्ट्स और डेकोरेशंस का। भाई इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, ईद की असली खूबसूरती सिर्फ तैयारियों में नहीं होती बल्कि खुशी बांटने और अल्लाह की दी हुई नेमतों की कदर करने में होती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka, FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mahvish Khan. Aaj hum baat karenge acha mashwara dene ki ahmiyat ke bare mein. अच्छा मशवरा देना एक जिम्मेदारी भी है और एक सदका भी। जब कोई शख्स आपसे राय मांगे, उसे सच्चाई और खुलूस के साथ बेहतरीन मशवरा देना चाहिए। अक्सर लोग बिना सोचे समझे मशवरा दे देते हैं, जो कभी कभी दूसरे के लिए मुश्किल पैदा कर देता है। लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि हर बात समझ कर और नीयत साफ रख कर गाइड करें। अच्छा मशवरा देने का मतलब ये है कि हम दूसरे के लिए भी वही सोचें जो अपने लिए पसंद करते हैं। इसमें ऑनेस्टी और कंसर्न दोनों शामिल होते हैं। आज का अमल ये है कि जब भी कोई आपसे राय मांगे तो उसे ध्यान से सुने और ईमानदारी के साथ मशवरा दें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महवश के साथ।
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
0: FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One step to 2030.
2: दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां टेक्नोलॉजी की तरक्की बहुत तेजी से हो रही है और इसी तरक्की में से एक अहम फील्ड है स्पेस एक्सप्लोरेशन। जी हां, पहले स्पेस मिशन सिर्फ चंद सुपर पावर कंट्रीज तक महदूद थे, लेकिन आज अमेरिका, चाइना, यूरोप, गल्फ कंट्रीज, इंडिया भी स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत इन्वेस्ट कर रहा है और इसी कंपटीशन को अक्सर कहा जाता है न्यू स्पेस रेस। शायद आपने ये टर्म या ये वर्ड तो सुन रखे होंगे। देखिए, स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजना नहीं है, इसमें प्लैनेट्स की रिसर्च है, सैटेलाइट्स लॉन्च करना है, मून और मार्स मिशन है और नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट भी शामिल है। साथ ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे AI, रोबोटिक्स, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स और स्मार्ट सेंसर्स भी स्पेस प्रोग्राम्स का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सैटेलाइट्स क्या हैं और ये हमारी जिंदगी में क्या रोल अदा करते हैं। देखिए, सैटेलाइट्स एक मशीन होती है जो अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है और मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करती है। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, GPS नेविगेशन, वेदर फोरकास्टिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजास्टर मैनेजमेंट सब सैटेलाइट्स की वजह से मुमकिन है। ये बात इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारी लाइफ या हमारी डेली लाइफ का एक बड़ा हिस्सा स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जब आप गूगल मैप्स यूज करते हैं, राइडिंग हेलिंग एप्स यूज करते हैं या वेदर अपडेट रखते या देखते हैं, तो असल में आप सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे होते हैं। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी में स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी गहरी अहमियत रखती है। न्यू स्पेस रेस की वजह से इनोवेशन और रिसर्च में बहुत तेजी आ रही है। कंपनीज जैसे SpaceX, ब्लू ओरिजिन नए रॉकेट्स और रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं। इससे स्पेस मिशंस की कॉस्ट कम हो रही है और फ्यूचर में आम लोगों के लिए स्पेस टूरिज्म के दरवाजे भी खुल सकते हैं। मुस्तकबिल में यानी फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन का असर और भी ज्यादा नजर आएगा। बेहतर सैटेलाइट से इंटरनेट स्पीड इंप्रूव होगी, रिमोट एरियाज को कनेक्टिविटी मिलेगी और कम्युनिकेशन सिस्टम मजीद मजबूत होंगे। एग्रीकल्चर में फार्मर्स सैटेलाइट्स के जरिए जमीन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी डेवलप होंगी। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के जरिए क्लाइमेट चेंज को समझना और उसका मुकाबला करना आसान होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल स्पेस मिशन में नए इन्वेंशंस को जो है वो समझने का मौका देगा। जैसे पहले बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो आज हम स्मार्टफोन्स में देखते हैं, उनकी बुनियाद स्पेस रिसर्च में रखी गई थी। इस फील्ड का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। स्पेस इंडस्ट्री नई जॉब्स पैदा कर रही है। इंजीनियर्स हो, साइंटिस्ट हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स के लिए नए करियर ऑप्शंस पैदा हो रहे हैं। इससे मुल्क की इकोनॉमी और साइंटिफिक प्रोग्रेस दोनों को फायदा होता है। दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन सिर्फ सितारों तक पहुंचने का ख्वाब नहीं है, बल्कि इंसानी तरक्की का एक अगला मजबूत कदम है। आज जो रिसर्च स्पेस में हो रही है, वो कल हमारी जिंदगी को ज्यादा कनेक्टेड, ज्यादा स्मार्ट और ज्यादा इफिशेंट बनाएगी। न्यू स्पेस रेस इंसानियत को इनोवेशन, नॉलेज और डिस्कवरी की कई नई मंजिलों तक

0: लेकर जा रही है। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सिर्फ दूसरे प्लैनेट्स को नहीं समझेंगे बल्कि अपनी जमीन को भी बेहतर बना सकेंगे। मुस्तकबिल उन्हीं कौमों का होगा जो साइंस, इनोवेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन की अहमियत को समझकर आज से उसकी तैयारी शुरू कर देंगी। तो चलिए आज से इसकी तैयारी शुरू करते हैं। फिलहाल मुझे यानी नाज़िया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: दोस्तों, मेट्रो स्टेशन में सेफ्टी और सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर अमल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका सफर और दूसरों का सफर भी पुरसुकून और महफूज हो। कुछ अहम बातें जो हर मुसाफिर को याद रखनी चाहिए वो ये हैं कि अपनी पर्सनल चीजें हमेशा अपने साथ महफूज रखें। सामान खो जाने से बचने के लिए अपने बैग्स और सामान पर नजर रखें। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरन मदद तलब करें। स्टेशन स्टाफ या सिक्योरिटी पर्सनल से राब्ता करें ताकि आपको जरूरी मदद मिल सके। दरवाजों के करीब खड़े ना हों, खुसूसन जब दरवाजे खुल रहे हों या बंद हो रहे हों। दरवाजों से सेफ डिस्टेंस बनाए रखना जरूरी है ताकि चोट लगने का खतरा ना हो। स्टेशन के अंदर दिए गए इंस्ट्रक्शंस और साइन को ध्यान से पढ़ें और उन पर अमल करें। ये आपकी सेफ्टी के लिए होते हैं। स्टेशन के अंदर स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। स्मोकिंग ना करें ताकि सबके लिए सेफ और सेहतमंद माहौल बना रहे। एस्केलेटर या चलती सीढ़ी पर बच्चों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। हमेशा उनका हाथ पकड़ कर रखिए। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपना और दूसरों का सफर बेहतरीन और महफूज बना सकते हैं। सेफ्टी सबकी जिम्मेदारी है, इसलिए हमेशा एहतियात और तवज्जो के साथ मेट्रो स्टेशंस का इस्तेमाल करें। FM 107 आपको याद दिलाता है कि सेफ्टी सबसे पहले।